0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए, बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम सर्वहित के लिए, ताकि सभी मानव जन का कल्याण हो सके, उनके दुखों का विनाश हो सके, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, इसी भावना के साथ में हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने के लिए हम हमेशा ही अपने स्टूडियो में डॉक्टर लीना सिन्हा जी को आमंत्रित करते हैं और आज भी हमारे स्टूडियो में डॉक्टर लीना सिन्हा जी उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, पिछले एपिसोड में आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनवाया था। आपने कुमार कार्तिकेय के बारे में उनका वर्णन किया था, क्योंकि उनकी उत्पत्ति आवश्यक थी और सभी देवताओं के प्रयास से भगवान शिव और पार्वती के द्वारा कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो अब आपने बताया कि सभी देवता कुमार की स्तुति करते हैं और उनका धन्यवाद किया। तब कार्तिकेय ने कहा कि ये सभी पर्वत आप सभी ऋषियों को, सभी देवताओं को वरदान देंगे, क्योंकि ये सब मेरे माता में हैं, यानी कि मेरे नाना हैं। हम सबको कार्तिकेय की तरह ही आत्मबलि बनना चाहिए। अब फिर कैलाश, सब कैलाश चले गए थे। अब कैलाश में जाके सबने, सारे देवताओं ने भगवान शिव का और कार्तिकेय की उनकी स्तुति की और भगवान शिव ने अपने बेटे का माथा चूमा और स्वागत किया। अब इसके बाद में माँ पार्वती और शिव जी ने भगवान कार्तिकेय का, कुमार कार्तिकेय का स्वागत किया। वो तो सब देवता जो हैं सबको प्रणाम करके, शिव, पार्वती और कार्तिक को प्रणाम करके चले गए थे। इसके बाद फिर क्या हुआ, किस प्रकार से भगवान शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय का स्वागत किया और आगे कैसे उनके लिए क्या कहा?
1: हाँ मंजू जी, शिव परिवार की बात चल रही है तो मन आनंदित होता ही है, खुश होता ही है
0: जी,
1: क्योंकि शिव क्या है, शिव सर्जक है, न केवल इस विश्व के अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के। कल्प कल्पांतर में, युग युगांतर में जब भी सृष्टि की पुनर्रचना होती है तो उसमें शिव और शक्ति ही प्रमुख होते हैं, उनके द्वारा पुनर्रचना होती है। तो अभी जो हम लोग शिव पुराण पढ़ रहे हैं, उस शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड के 13वें अध्याय की ओर हम लोग हैं, जिसमें कि कुमार की विशेषता बताई गई है। कुमार कौन है? कार्तिकेय, जो शिव पुत्र है और पार्वती की गोद में भी विराजते हैं। तो अब देखिए कि उनके विषय में और क्या कहा जा रहा है। कुमार का जन्म हुआ था तारकासुर के वध के लिए। कहते हैं त्रयोदश अध्याय में कि तारकारे रीति श्रुत्वा वृतम अद्भुतम उत्तमम नारद सुप्रसन्नो अथ पप्रच्छ प्रीति तो विधिम। कहते हैं कि तारकासुर के शत्रु का आश्चर्यजनक चरित्र सुनकर नारद ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से पूछा, क्योंकि कार्तिकेय का वर्णन किया गया कि कार्तिकेय ऐसे हैं, वैसे हैं, अद्भुत तो होंगे ही, क्योंकि अद्भुत परमात्मा, अद्भुत परमेश्वरी के वो पुत्र हैं, तो अद्भुतता तो उनके साथ जन्म से ही जुड़ी हुई है। और जब जन्म हो गया उसके बाद भी अद्भुत कि किस किस तरह से वो जो है कार्तिकेय के रूप में परिणत हुए। वे सन्मुख वाले थे, छह मुख वाले थे और छह कृतिकाएं जो है उनकी माँ थी। तो उनके विषय में और कुछ जानना चाहते हैं नारद, क्योंकि नारद जी भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वो लोक लोकांतर भ्रमण कर करके भक्ति का प्रचार और प्रसार करते हैं। आज के युग में, कलयुग में, एक भक्ति ही ऐसी चीज है जो सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम भक्ति करें तो कलयुग समाप्त तो हो सकता है हमारे मन का। हमारे मन में अगर सतयुग आ जाए तो हम यहीं इसी धरा पर स्वर्ग का एहसास करने लगेंगे, क्योंकि मन की धरा पर स्वर्ग का अवतरण होना चाहिए। धरती पर स्वर्ग का अवतरण वो तो अलग बात है, वो सामूहिक रूप से होता है। वो माता है जो अद्भुत कार्य करके यह कार्य करती हैं स्वर्ग के अवतरण का। लेकिन हम और आप अपने जीवन में, अपने मन के धरातल पर अगर स्वर्ग का अवतरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शिव पुराण हमें जो समझा रहा है वह अपने मन के धरातल पर स्वर्ग के अवतरण की बात करता है। अपने मन के धरातल पर हम कैलाश को ला सकते हैं, अपने मन के धरातल पर हम वैकुंठ को ला सकते हैं।
0: एक मिनट, मैं पूछना चाहूंगी बीच में, माफ कीजिएगा, कि अब ये मन के धरातल पर हम कैसे मानसरोवर ला सकते हैं, कैसे कैलाश को ला सकते हैं, ये हमारे श्रोताओं को इसका जरूर थोड़ा खुल के बताइए व्याख्या।
1: अभी देखिए, अभी नारद जी की चर्चा चल रही है। नारद जी सूत जी से पूछते हैं कि आप कार्तिकेय के विषय में और भी बताइए। तो नारद जी क्या है, भक्त हृदय, उनके हृदय में वैकुंठ का वास है। कैसे, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने हृदय में उतार लिया तो वैकुंठ में कौन रहते हैं?
0: भगवान विष्णु,
1: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। तो उनके हृदय में वैकुंठ का वास हो गया, क्योंकि हृदय में वे भगवान विष्णु और लक्ष्मी को रखते हैं। हनुमान के हृदय में राम बसे हुए हैं और माता जानकी बसी हुई है, तो साकेत उनके हृदय में बसा हुआ है। कैलाश को हम उतारना चाहते हैं तो शिव पार्वती को हम भज ले, और उन वो हमारे हृदय में अगर बस जाते हैं तो क्या होगा कि कैलाश बस जाएगा। कर्पूर गौरम हम सब जानते हैं, तो हृदय रूपी सिंहासन पर हम जिस भी भगवान को बैठा रहे हैं वो भगवान अपने धाम के साथ हमारे यहाँ विराजते हैं। यही कैलाश है, यही वैकुंठ है, यही स्वर्ग का अवतरण है। क्योंकि तो नारद जी जो है वो अपनी जिज्ञासा बस पूछना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि आप उनके विषय में, कार्तिकेय के विषय में कुछ और बताएं। अब देखते हैं आगे क्या है। नारद उवाच, देव देव प्रजानाथ शिव ज्ञान निधे मया श्रुतम कार्तिक सद्वृत्तम अमृताद अपि चोत्तमम्, अधुना श्रोतुम इच्छामि गणेशम वृत्तम उत्तमम तज्जन्म चरितम दिव्यम सर्व मंगल मंगलम। कहते हैं कि तारकासुर के शत्रु का आश्चर्यजनक चरित्र सुनकर नारद ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा से पूछा, हे देव देव प्रजापति शिव तत्व के ज्ञाता, मैंने अमृत से भी उत्तम कार्तिकेय का चरित्र सुना, अब मैं सब मंगलों को भी मंगल देने वाले गणेश जन्म के दिव्य चरित्र को सुनना चाहता हूँ। अब उनकी इच्छा जो है गणेश जी के दिव्य जन्म के विषय में जानने की है। सूत जी ने कहा, नारद मुनि के इस प्रकार वचनों को सुनकर प्रसन्न चित ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके कहा। अब क्या कहा ब्रह्मा जी ने, कल्प भेदात गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधे परात सनी दृष्टम सृष्टिन्नम संचितम गाजमाननम इदानिम श्वेत कल्पोक्ता गणेशोत्पत्ति रुच्यते यत्र छिन्नम शिरस्तस्य शिवेन च कृपालुना संदेहो नात्र कर्तव्य शंकर सूति कृण मुने साही सर्वाधिप संभुर निर्गुणा सगुनो अपि ही। अब वो कहते हैं ब्रह्मा जी की कल्प भेद से गणेश जी के जन्म की कथाएं अनेक प्रकार की है, क्योंकि हर कल्प में गणेश जी आते हैं, हर कल्प में कार्तिकेय आते हैं, हर कल्प में राम आते हैं, हर कल्प में कृष्ण आते हैं, तो हर कल्प में हर कोई आता है। अब कैसे आते हैं, क्योंकि सतयुग है तो सतयुग में शिव पार्वती आते हैं, त्रेता युग है तो राम और सीता आते हैं, द्वापर युग है तो राधा और कृष्ण आते हैं, कलयुग में कल्कि अवतार की चर्चा होती है और कलयुग में बहुत तरह के अवतार भी आते हैं क्योंकि उनके द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन होता है, जैसे बुद्ध आए, महावीर आए, ईसा आए, हजरत आए, तो इनके द्वारा क्या हुआ, धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ। लेकिन युग परिवर्तन के समय भगवान जो है युगल रूप में आते हैं, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी, युग परिवर्तन और धर्म चक्र प्रवर्तन में क्या अंतर है विशेष। तो अब यहाँ पर कहते हैं वो गणेश जी के विषय में कि गणेश जी क्या है, इस समय श्वेत कल्प से में हुई गणेश जी के जन्म की कथा कही जा रही है, जहाँ कृपालु शिव जी ने उनका सिर काटा था। हे मुनि, सृष्टिकर्ता शिव के संबंध में संदेह नहीं करना चाहिए, वह शिव सगुण तथा निर्गुण होकर भी सबके स्वामी हैं। हे मुनिवर, उन्हीं की लीला से इस संपूर्ण संसार की सृष्टि पालन तथा विनाश होता है। शिव की ही लीला है जो विष्णु भगवान को हम पालक रूप में देखते हैं और ब्रह्मा जी को है सृजनकर्ता के रूप में देखते हैं। ये सब शिव से ही निकले हैं, क्योंकि शुरुआत में ज्योतिर्लिंग की कथा बताई गई है कि अग्नि स्फुलिंग दोनों के बीच में प्रकट हुआ। कौन दोनों के बीच में? ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के बीच में। जब दोनों विवाद करने लगे कि मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, तो क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि से निकले थे और वहीं विराजमान हो गए थे कमल के फूल पर, तो वो बोलते थे कि नहीं मैं बड़ा हूँ। विष्णु भगवान बोले कि तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है तो मैं बड़ा हूँ। तो बीच में अग्नि स्फुलिंग आ गया और उसने कहा कि ठीक है, आप हम इसे नाप लीजिए, जो भी मेरे ओर छोड़ को देख लेगा, आदि और अंत को देख लेगा,
2: वही बड़ा
1: है। तो विष्णु भगवान गए नीचे, ब्रह्मा जी गए ऊपर। ऊपर चलते गए, कहीं ओर छोड़ पता ही नहीं चले। विष्णु भगवान नीचे गए, जाते गए, कहीं पता ही नहीं चले। लेकिन विष्णु भगवान सत्यवादी थे और ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए। केतकी के पुष्प को प्रकट किया और केतकी का के पुष्प को कह दिए कि तुम जो है झूठ बोल देना कि हाँ हम देख लिए। तो भगवान शिव के पास जब दोनों आए, उस अग्नि स्फुलिंग का स्वरूप था, शिव का स्वरूप था, तो बोले कि आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, मैं बता सकता हूँ, आप बताइए कि किसने देखा मेरा आदि, किसने देखा मेरा अंत। तो विष्णु भगवान बोले कि मैं तो नहीं देख पाया आपका अंत, और ब्रह्मा जी बोल दिए कि मैंने देख लिया। तो और इसका इसकी साक्षी जो है केतकी है। केतकी को सामने खड़ा किया गया और उन्होंने कह दिया कि हाँ ब्रह्मा जी ने देखा है। उसी समय ब्रह्मा जी को श्राप मिल गया कि तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है और विष्णु भगवान की पूजा होती है। विष्णु भगवान शिव के हृदय हैं। शिवस्य हृदयम् विष्णु, विष्णुश्च हृदयम् शिव, कि शिव विष्णु के हृदय हैं और विष्णु शिव के हृदय हैं। तो दोनों एक दूसरे के से लगे रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी भी निकले शिव से और विष्णु भगवान भी निकले शिव से, और सबको काम बांट दिया गया। शिव क्या है? आदि पुरुष। और शक्ति क्या है? आदि नारी कह सकती हैं और अर्धनारी स्वरूप दोनों का है। तो इसलिए हमें शिव को समझना पड़ेगा। शिव के रुद्र अवतार अलग है, महाकाल अवतार अलग है, हर रूप में भगवान शिव हैं। लेकिन परमेश्वर की जब हम बात करते हैं तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव है, और पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से जो तीन धाराएं निकली, सत, रज और तम, सतोगुण जो है हमारा वो ब्रह्मा जी और सरस्वती है, रजोगुण जो है वो विष्णु भगवान है और लक्ष्मी जी हैं, और तमोगुण जो है वो महाकाल और महाकाली है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे तभी हम शिव को समझ पाएंगे। तो इस शिव पुराण में उन शिव की चर्चा की जा रही है जिन्होंने भिन्न भिन्न रूप धारण किए, लेकिन पर ब्रह्म परमेश्वर जो हैं उन शिव की चर्चा की जा रही है शिव पुराण में। तो कहते हैं कि श्वेत कल्प में जो है भगवान गणेश का आविर्भाव हुआ और ये सृष्टि पालन और विनाश जो है ये शिव के द्वारा, शिव लीला के द्वारा होता है। शेष आदर से सुनो। अब ब्रह्मा जी बताते हैं कि उद्वाहिते शिवे चात्र कैलासम च गते सती कियता चैव कालेन जातो गणपतेर भवः एकस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मिलित्वा वै विचारे तत्परा अभवत् रुद्रस्य च गणाः सर्वे शिवस्य आज्ञा परायणा ते सर्वे अपि अस्मदीयाश्च नंदी भृंगी पुरः सराः। कहते हैं कि शिवजी के विवाह होने तथा कैलाश जाने के कितने समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। एक बार जया तथा विजया नाम की सखियां पार्वती से मिलकर विचार करने लगी। शिवजी के सभी गण उनकी आज्ञा पर तत्पर रहते हैं। वे सभी नंदी भृंगी आदि हमारे भी हैं, असंख्य प्रमत गण हैं, परंतु उनमें हमारा कोई नहीं है। सब शिव जी की आज्ञा तो मान लेते हैं, हमारे भी हैं, लेकिन शिव के पीछे पीछे ये ज्यादा रहते हैं, ऐसा जया और विजया ने पार्वती से कहा। वे सभी शिव जी की आज्ञा पाकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं, वे सब भी हमारे हैं, किंतु उनसे हमारा मन नहीं मिलता। और हे पुण्यवती, उनमें से एक सेवक तुम्हें शिव जी से कहकर अपना बना लेना चाहिए। सखियां तो होती ही हैं कि हमेशा अपनी सखी के विषय में सोचना कि मेरी सखी किस में सबसे ज्यादा प्रसन्न होगी, और कुछ चापलूसी भी कर लेती हैं, तो बोलती हैं कि ये नंदी प्रमथगण जितने भी हैं सब शिव की आज्ञा में तत्पर रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक को तुम अपने लिए केवल रख लो जो तुम्हारी आज्ञा में तत्पर हो। तो यह बात जो है, अब देखिए पार्वती किस रूप में इसे लेती हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, सखियों द्वारा कहे गए इन वचनों को पार्वती ने हितकर समझा और वैसा करने के लिए वे प्रयत्न करने लगी। पार्वती जी आगे कहते हैं कि उसके बाद किसी समय पार्वती स्नान कर रही थी, नंदी को डांटकर सदाशिव घर के भीतर आ गए। जगदम्बिका ने असमय में शिव जी को आते हुए देखा तो वह सुंदरी लज्जित होकर उठ खड़ी हुई, उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त हुई और अपनी सखी की उस बात को उन्होंने सुखद समझा। तो एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी आदि को तो डांट करके शिव जी अंदर आ गए और इनको लज्जा हुई पार्वती मैया को। फिर उन्होंने अपनी सखियों की बात को सोचा कि मेरा कोई ऐसा हो जो बिल्कुल मेरा हो, ठीक है, क्योंकि नंदी आदि तो शिव जी की आज्ञा मानते ही है, मेरी भी मानते हैं, लेकिन अपना कहने लायक एकदम मेरा ही हो वैसा नहीं। तो कहते हैं कि इस प्रकार कुछ समय बीतने पर परामाया परमेश्वरी शिवा पार्वती ने मन में सोचा। क्या सोचा पार्वती जी ने? कहते हैं, मदीय सेवक कश्चित अद्भुत भवे छुप तरह कृति मद आज्ञया परम नान्य रेखा मात्रम चलेधि विचार्यति च सा देवी वपुसो मल संभवम पुरुषम निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुतम सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्व सौभाढ़्यम महाबल पराक्रमम। अब देखिए पार्वती जी, उन्होंने सोचा पार्वती ने अपने मन में कि कोई एक मेरा सेवक होना चाहिए जो अत्यंत योग्य तथा कुशल हो और जो मेरी आज्ञा के बिना थोड़ा भी इधर उधर न करे। ऐसा विचार कर उस देवी ने अपने शरीर से निकले हुए मैल से समस्त लक्षणों से युक्त एक पुरुष का निर्माण किया जो सभी दोषों से रहित शरीर के सभी अवयवों से सुंदर बड़े आकार का सब प्रकार से शोभा संपन्न महान बलि तथा पराक्रमी था। उसे अनेक प्रकार के उत्तम वस्त्र आभूषण पहनाए और अनेक उत्तमोत्तम आशीर्वाद दिए। माता पार्वती शक्ति संपन्ना तो है ही और उन्होंने जब पुत्र बनाया तो बहुत सारे आशीर्वाद भी उन्हें दिए। कहते हैं कि मत पुत्र त्वम मदियो असि नान्य कश्चित इहास्ति में एव मुक्त स पुरुषो नमस्कृत्य शिवाम जगो। कहते हैं सूत जी कि पार्वती मैया ने उस पुरुष से कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो और यहाँ मेरा कोई नहीं है। ऐसा करने पर उस पुरुष ने पार्वती को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। अब गणेश जी ने कहा, वो पुरुष कौन थे? गणेश। उन्होंने कहा, किम कार्यम विद्यते ते अद्य करवानी तवोदितम इत्युक्त्वा सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतम शिवा। अब गणेश जी पूछते हैं कि आज आपका क्या कार्य है जिसे मैं आपकी आज्ञा से करूं? ऐसा उनके कहने पर शिवा ने अपने पुत्र पार्वती पुत्र से कहा। अब क्या कहा शिवा ने? हे तात सुनो मद वाक्यम द्वारपालो भवाद्य में मत पुत्र त्वम मदियो असि नान्यथा कश्चिद अस्ति में। कि हे पुत्र मेरी बात को सुनो, आज तुम मेरे द्वारपाल बनो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। हे पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी कहीं से भी हट से भी मेरे घर के भीतर प्रवेश न करे, यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? इत्युक्त्वा च तदौ तस्मै यस्तिम चाति दृढ़ मुने तदीयम रूपम आलोक्यम
2: सुंदरम हर्षम आगता, मुखम आचुंब्य सुप्रीत्या आलिंग्य तम कृपया सुतम स्वद्वारी स्थापयामास यष्टि पाणिम गणाधिपम।
3: क्या करती हैं कि हे मुनि, इतना कहकर उसे एक मजबूत लाठी दे दी और उसके सुंदर रूप को देखकर वे प्रसन्न हो गईं। उसका मुख चूमकर प्रेम से उसे आलिंगन कर अपने पुत्र गणेश के हाथ में लाठी देकर उसे अपने द्वार पर खड़ा कर दिया। हे तात, पार्वती के हित के लिए दरवाजे पर स्थित वह देवी पुत्र महावीर गणेश हाथ में लाठी लिए हुए था और अपने पुत्र गणेश को दरवाजे पर रखकर पार्वती अपनी सखी के साथ स्नान कर रही थी।
1: अब देखिए, सारी लीलाएं माँ है, आदिशक्ति है, तो लीलाएं तो उनके साथ जुड़ी ही हुई है। कौतिक उनके साथ जुड़ा हुआ है, अद्भुतता उनके साथ जुड़ी हुई है, वे अद्वितीय चरित्र वाली है। अब माँ को क्या आवश्यकता थी गणेश जी का को जन्म देने की और यह कहने की केवल तुम ही मेरे हो, जबकि माँ के रोम रोम में भगवान शिव बसे हुए हैं। लेकिन माँ माँ होती है, शिव एकांत में भी समाधिस्थ रहते हैं और माँ को चाहिए कोई साथ में रहने वाला। माँ है तो संतान तो चाहिए ही चाहिए। तो कार्तिकेय जो है वो तारकासुर के वध में रह गए और उसके बाद फिर वो भी ध्यान समाधि में चले गए, तो माँ के पास कुछ था नहीं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा बनाए जो हमेशा मेरे पीछे पीछे करे, मुझे माँ माँ कह करके पुकारे, मेरे साथ खेले। हर कोई चाहता है, क्योंकि शिव समाधिस्थ हो जाते थे तो माँ अकेली पड़ जाती थी। तो उन्होंने मैल से उत्पन्न किया गणेश जी को और गणेश जी ने जब अपना कार्य पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे द्वारपाल हो और हमेशा के लिए तुम मेरे ही हो, तुम में मैं सब कुछ स्वयं को ही देखती हूँ, तुम मेरे हो। तो अब आगे क्या होता है कि पुत्र को तो रख दिया उन्होंने दरवाजे पर और क्या दे दिया, एक डंडा, बड़ा सा डंडा दे दिया और अपनी शक्ति से संपन्न भी कर दिया। छोटा बालक सारी शक्तियों से संपन्न तो बालक है, अहंकार तो आएगा ही, क्योंकि बालक में क्या होता है, जब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो बाल सुलभ चेष्टा उसके अंदर आ जाती है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है कि इसी समय कौतुकी नाना प्रकार की लीला करने में कुशल शिवजी दरवाजे पर आ गए। ये तो होना ही था कि भगवान शिव क्या है, पति है माता के। अब माता के पति हैं तो वो तो कहीं भी जा सकते हैं। तो कहते हैं कि वो कौन आ गए, भगवान शिव। उवाच च शिवेशम तम अभिज्ञाय गणाधिप मातुराज्ञायां बिना देव गम्यताम न त्वया अधुना मज्जनार्थम स्थिता माता क्वप यासितो व्रजाधुना इत्युक्त्वा यष्टिकाम तस्य रोधनाय तदा ग्रहित। कहते हैं कि गणेश जी जो वहाँ खड़े थे, शिव जी को तो देखे लेकिन वो पहचानते नहीं थे शिव जी कौन है। तो गणेश जी ने शिव जी को पहचाने बिना कहा, हे देव, माता की आज्ञा के बिना आप भीतर मत जाइए, मेरी माता भीतर स्नान कर रही है, कहाँ जा रहे हो, इस समय जाओ। इतना कहकर उन्हें रोकने के लिए हाथ में लाठी उठा ली। उसे देखकर शिव जी ने कहा, अब शिव जी उसे देख करके क्या कहते हैं, वो कहते हैं, तम दृष्टुआ तू शिव प्राह कम निषेधसी मूर्धि माम न जानासी अस्य अद्भुदे शिवो अहम इति नान्यथा ताडितस्तेन यष्टया ही गणेशेन महेश्वर प्रत्युवाच सतम पुत्रम बहुलीलश्च कोपितः। कहते हैं कि वो जब लाठी उठा लिए तब शिव जी कहते हैं, हे मूर्ख, तुम किसे रोक रहे हो, हे दुर्बुद्धि, मुझे नहीं जानते हो, सचमुच मैं शिव हूँ। उस गणेश ने लाठी से शिव जी को मारा। लीला कुशल शिव जी ने क्रुद्ध होकर उस लड़के से कहा, अब क्या कहा शिव जी ने कि तुम मूर्ख हो, मुझे नहीं जानते हो, मैं गिरजापति शिव हूँ। क्या कहते हैं कि मैं गिरजा का पति हूँ, शिव हूँ। अरे बालक, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे क्यों रोकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, यह कहकर घर के भीतर प्रवेश करते हुए शिव जी को हे विप्र फिर उसने डंडे से मारा। तब शिव जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को आज्ञा दी, यह कौन है, यह क्या करता है, हे गणों तुम देखो। इतना कहकर लोकाचार में तत्पर अनेक प्रकार की अद्भुत लीलाओं को करने वाले शिव जी क्रुद्ध होकर घर के बाहर बैठ गए। अब देखिए गणेश जी चूंकि माता ने उन्हें खड़ा किया था, वो माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे, वो नहीं जानते थे कि शिव कौन है। लेकिन ये रूपक बहुत ही सुंदर है, अगर हम इस रूपक को समझ पाए तो। क्योंकि जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं, माता के गर्भ से जब हम निकलते हैं, हर मनुष्य माता के गर्भ में आता है, तो जन्म के साथ ही माता पिता का सब कुछ हमें मिल जाता है। अगर हम गरीब घर में जन्म लिए हैं तो गरीबी हमें मिल जाती है, अगर अमीर घर में लिए हैं जन्म तो अमीरी मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं जिनके घर में जन्म लेते के साथ ही बच्चा जो है अमीर हो जाता है।
0: लीना जी, प्रसंग तो इतना सुंदर चल रहा है कि रोकने का मन नहीं होता है, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो अब यहीं हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। और दोस्तों, अगले एपिसोड में हम पुनः यहीं पर मिलेंगे। अभी लीना जी को हम धन्यवाद देते हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, मुझे भी इजाज़त दीजिए क्योंकि इस एपिसोड को समाप्त करने का समय हो चला है। अगले एपिसोड में हम यहीं मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर मिलते हैं। फील गुड, फील लाइव।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Aaja tujhe bhi main kara dun ta man che pe disco.
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रांगा और लेकर के आ गई हूं प्रोग्राम आत्मबोध। ये खूबसूरत सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इसी के साथ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपके पास चले आते हैं और हमारे साथ में मैं अकेली नहीं होती हूं, स्टूडियो में होते हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी, तो आज भी ये स्टूडियो में मौजूद है। तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे हालचाल जानते हैं और उसके बाद बताती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में।
3: ओम शांति। मैं बीके ज्योति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका, आपको भी से मिलके भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस आध्यात्म की बातें करते हैं तो और ये वातावरण के अंदर भी बहुत एक पॉजिटिविटी हो जाती है और जो लोग सुनते हैं उनके भी मन में पॉजिटिविटी जरूर होती होगी। यही हमारी शुभकामना
2: जी। और पूरे दिन में सुबह सुबह का जो वक्त होता है ना, वो बहुत ही ऐसा जिंदगी को जीने वाला वक्त होता है, क्योंकि उसके बाद तो भाग दौड़ शुरू हो जाती है।
3: बिल्कुल।
2: तो सुबह सुबह ऐसी वाणी सुन लेना ही अपने आप में दिन बनाने वाली बात है। बीके प्रिया जी, आप कैसे हैं?
4: बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है हमारे जो भी लिसनर्स हैं, श्रोतागण हैं, वो भी बहुत ही खुश होंगे, बहुत सुखी होंगे। और इसी खुशी और सुख को बढ़ाने के लिए ही हम सभी आप सबके बीच में आज राम चरितमानस जी का शुरुआत कर रहे हैं। और प्रियंका, आप कैसे हैं?
2: जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप लोगों से मिलती हूँ और इतनी सुबह मिलती हूँ तो और बढ़िया हो जाती हूँ, एक अलग सी पॉजिटिविटी। और आप दोनों से मिलती हूँ तो मैं और अच्छी हो जाती हूँ, और साथ ही आप लोगों का साथ हमें मिलता है। शुक्रिया, अपना साथ आप ऐसे ही बनाए रखें। और आप जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और अभी अभी सुनना शुरू किया है या कुछ समय से सुनना शुरू किया है और आपको नहीं पता कि अपनी बातों को रेडियो तक पहुंचाना कैसे, यानी कि हमारे तक पहुंचाना कैसे, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा नंबर है 8010781078।

0: वंदना देख रही थी। इसमें श्री रामचरितमानस में शुरू होते ही नमन वंदना है, जिसमें मैंने जितना पढ़ा तो मुझे यही समझ में आया कि देवताओं को तो नमन किया ही गया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, असुरों को भी नमन किया गया है जिनको धिकारा जाता है। यहाँ पर उनको नमन करने की मतलब क्यों ऐसा किया गया है और ये पूरी नमन वंदना क्या है, आप इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत गहराई से जानने की बातें हैं कि तुलसीदास जी ने इस पूरे रामचरितमानस में बहुत सुंदर ढंग से हर एक चीज की बड़ी अच्छी क्लेरिफिकेशन की है। उन्होंने सबसे, जैसा कि हमने अगर श्रीमद् भगवद गीता आपको याद हो तो हमने किया था
0: जी,
1: उसके अंदर परमात्मा की जो बात कही थी कि परमात्मा सभी जो पुष्पों में सबसे सुंदर पुष्प है, नदियों में जो सबसे उत्तम नदी है, उसकी संज्ञा दे करके और उनको नमन किया गया था, उनकी महिमा की गई थी परमात्मा के बराबर। ऐसे ही यहाँ तुलसीदास जी ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी कुल का है, लेकिन उनमें अगर अच्छे आचरण हो जाते हैं तो वो वंदनीय हो जाता है, वो भी पूजनीय हो जाता है। और इसी चीज को उन्होंने कहा कि जो भी, चाहे वो उत्पत्ति करने वाले हैं, क्योंकि वो चाहे पालना करने वाले, चाहे विनाशकारी, तीनों ही चीजें, क्योंकि ये जरूरी है। तो इस सृष्टि में हम जो लोग हमारी कमियों को निकालते हैं, या जो लोग हमें निग्लेक्ट करते हैं, या जो लोग हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, तो हम कई बार उनसे नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि वो भी कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं, उनका वो व्यवहार भी कहीं ना कहीं हमें कुछ शिक्षा दे जाता है और हमें आगे बढ़ाता है। और जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने सबको नमन किया, चाहे वो यक्ष हैं, देव हैं, अक्षर हैं, या फिर राक्षस हैं, उन्होंने उनमें बताया, जैसे कि राक्षसों की बात कही गई तो रावण में, रावण के भाई विभीषण राक्षस कुल में थे, लेकिन उनके अंदर परमात्म चिंतन था, परमात्मा को वो याद करते थे और परमात्मा से उनका कनेक्शन रहा, उसके नाम में वो डूबे हुए थे, इसीलिए उनको उच्चतम बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया और उनकी वंदना की गई। ऐसे ही अगर हम यक्षों की बात करें, या हम जैसे हम गाते भी हैं कि वो अंधन को आंख देते हैं,
0: कोढ़िन
1: को काया देते हैं, तो अर्थ इसका क्या है? कोई आंखों के अंधों की बात यहाँ नहीं है, यहाँ जो अहंकार में अंधे हुए पड़े हैं उनको भी वो आंखें खोलते हैं कि आप खोलो आंखें ज्ञान की रोशनी से अज्ञानता के अंधकार को मिटाओ। कोढ़िन को काया अर्थात जो शरीर होते हुए भी अपने शरीर से कार्य नहीं लेते हैं, जो शरीर को बैठा देते हैं, उनको कहा गया कि उनमें वो बल भर देता है परमात्मा का नाम, उनमें वो ताकत भर देता है। कोई भी तरह की शरीर की विक्षिप्तता भी, अगर शरीर में हमारी कोई कमी है, तो हम सब ये बात जानते हैं कि परमात्मा ने अगर किसी की पांचों इंद्रियों में एक भी इंद्री कमजोर है तो उसकी छठी इंद्री बहुत मजबूत होती है। तो परमात्मा ने उसको कहीं ना कहीं चीज दी हुई है जिसको हम समझ नहीं रहे और हम उसको वीकनेस समझ लेते हैं। तो यहाँ जो महिमाएं की गई हैं, यहाँ जो भी चीजें कही गई, जैसे कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा भी, जो सुमिरत सिद्धि हुई गण नायक करिबर बंदन, करूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। बस याद करें मेरा साथी कौन है, परमात्मा, और मेरे सारे कार्य हुए पड़े हैं, माना मेरे अंदर वो सारी ताकत, वो सारी एनर्जी, वो चार्ज हो जाती है और उसी से हम जो है, जिसके अंदर बताया भी उन्होंने, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करो। गणेश जी को भी आवाहन कर रहे हैं, चाहे वो श्याम वर्ण वाले नील कमल पर विराजित क्षीर सागर में सोए हुए श्री विष्णु जी की बात कहें, चाहे वो शिव की बात करें, चाहे वो पार्वती जी की बात करें, सबकी उन्होंने वंदना की है। और वंदना के पीछे ये कि सब मेरे लिए सम्माननीय है, चाहे वो फूल है, चाहे वो पशु है, चाहे वो देव है, चाहे वो मनुष्य है, सब मेरे लिए वंदनीय है। और उसी वंदना के शिखर को ये लेकर के श्री रामचरितमानस का शुभारंभ किया गया है और सबको नमन किया गया है। और इसके शुभारंभ हम भी कर रहे हैं, तो हम भी आप सबको नमन करते हैं, जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी हमारा नमन वंदन है कि वो सुने और अपने बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करके इसके अर्थ को जाने
0: जी। और जब हम कोई चीज सुनते हैं तो उससे जुड़े कई प्रश्न भी आते हैं, तो अगर आपके जहन में कोई प्रश्न है, कोई बात

0: जो आप हम तक पहुंचाना चाहें, तो हमारा नंबर है जो कि बहुत ही आसान है, नंबर है 8010781078। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। और जब आप मैसेज करें तो नीचे अपना नाम और अपनी जगह जहां से आप भेज रहे हैं वो लिखना ना भूलें। बीके ज्योति जी ने नमन वंदना बताया कि किस तरीके से तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस शुरू करने से पहले नमन वंदन किया है, जिसमें देवताओं को भी नमन किया गया है, असुरों को भी नमन किया गया है, यहाँ तक कि जो पशु हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनको भी नमन किया गया है। अब जो एक चीज मेरे दिमाग में आई है, जो मैंने इसी में ही देखी, और मैं जानना चाहूंगी बीके प्रिया जी से। प्रिया जी, एक लाइन में मैंने पढ़ा था कि किसी के लिए अगर उसे सिद्धि पानी है या किसी को अपना जीवन तारना है तो उसके लिए राम नाम ही काफी है
1: जी।
0: इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे राम नाम काफी है और किस तरीके से एक आदमी अपने आप को सिद्ध कर सकता है या फिर अपने आप को उतार सकता है संसार से।
1: जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस जो लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा, तो उसमें अगर आप शुरू के ही अर्थ को समझेंगे तो वहां दो शब्द विशेष करा रहे हैं, जिसका हम आगे चलकर भी और आपको और अच्छे से बता पाएंगे कि नाम और रूप, यहाँ दो चीजों की चर्चा हो रही है। तो दोनों ही अलग बताए जा रहे हैं। जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने IQ लेवल, जो उस समय उनका लेवल था, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और जो सज्जन अर्थात जो समझदार है, जो समझ सकते हैं वो समझें, और जहां मैं गलत हूँ वहां उस चीज को वो करेक्ट करें। तो मैं समझती हूँ कि उनका IQ लेवल हमारे लेवल से तो काफी समय से हाई है, तो उन्होंने वहां इस चीज को बहुत स्पष्ट कहा है कि नाम अलग है और रूप अलग है। रूप वो है जो हम देख पा रहे हैं, अर्थात तीर धनुषधारी जो है वो राम जी को देख पा रहे हैं, और नाम जो राम है वो बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा है, बहुत फलदायी है, लेकिन ये राम अलग है। और यहाँ राम नाम जो बताया गया है इसकी संज्ञा किसी देहधारी पुरुष को नहीं दी गई है। यहाँ राम नाम में अग्नि, सूर्य और चंद्र का समावेश दिखाया है, जो र, आ और म को संबोधित कर रहा है
0: जी।
1: यहाँ र, आ और म ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अर्थात तो महेश को भी संबोधित कर रहा है। अर्थात ये राम नाम इतना बड़ा है कि प्रकृति के जो तीन जो विशेष बताए, जैसे अग्नि, सूर्य और चांद, ये उनसे भी पावरफुल है, और जो पूरी सृष्टि का ही जिसको कहे स्थापना, पालना और विनाश के लिए निमित्त बताए जाते हैं, ये उनसे भी बड़ा है। तो ये वो राम जो नाम लिया जा रहा है, ये इतना पावरफुल है, इतना सृष्टिकर है, कि अगर इसको हम, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि इसको अगर हम उल्टा भी पढ़ते हैं कि मरा मरा मरा मरा भी अगर हम बोलते हैं तो भी ये बाद में आकर आपको सुनाई राम राम राम देगा। तो ये इतना सृष्टिकर है कि अगर आप इसे उल्टा भी पढ़ते हो तो भी आपको इसका फल प्राप्त होता है,
0: इतना पावरफुल,
1: इतना पावरफुल है। लेकिन अगेन कि हमें नाम और रूप को पूरी बारीकी से समझना होगा, क्योंकि अगर मैं नाम लेते वक्त रूप किसी और दिशा की तरफ चली जाती हूँ, बुद्धि मेरी उधर चली जाती है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं सेब, दिल में मेरे सेब खाने की चाहत है पर मुंह, मतलब दिख मुझे सेब ही रहा है पर मुंह से मैं आम बोल रही हूँ, तो वो चीज फिर क्लैश होती है। तो वो चीज मुझे मेरे अंदर को संतुष्टता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। फल वो भी है आम और फल वो भी है सेब, लेकिन मैं चाहती सेब खाना हूँ पर मांग में आम रही हूँ, तो फिर वो पूर्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से तुलसीदास जी इसको बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट कर रहे हैं कि जो नाम है वो बहुत ऊंचा है और बहुत श्रेष्ठ है, बहुत पावरफुल है, लेकिन जो रूप जब हम नाम लेते हुए अपने मनस पटल पर धारण करते हैं, अगर मेरी बुद्धि उस रीति या उस दिशा में चली जाती है तो फिर मेरे को उतनी पावर की जो मेरे को होनी चाहिए प्राप्ति वो नहीं होती है। तो यहाँ इन दोहों में बहुत स्पष्टता है, लेकिन उस स्पष्टता को जानने के लिए हमें उतने ही सरल भाव से, उस नजर से हमें देखना होगा कि यहाँ दो चीजों का वर्णन है, किसी एक का वर्णन नहीं है। और ये हमारे पूरी की पूरी शुरुआत में ही ये दिया गया है, इसीलिए श्रोतागणों से भी मेरा अनुरोध है कि जब भी हम श्री रामचरित्र मानस को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, तो इस बात को हम जरूर ध्यान दें कि यहाँ पर दो चीजों का ही बहुत सुंदर रीति से वर्णन है। तो राम नाम बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है, जिसका देवता भी, जैसे आपने अभी जो शुरू में देखा कि सभी को वंदना की गई है, तो सभी ने रिटर्न में राम नाम की वंदना भी की है। यानी देव गण, असुर गण, दानव गण, पशु गण, जो भी समस्त है, वो सब राम नाम को याद कर रहे हैं। लेकिन चोला जो रूप बोला गया है, वहां वो शब्द यूज नहीं हो रहा है। अर्थात हमें ये चीज लेनी होगी, जब रूप वर्ड आ रहा है तो हम राम जी जो धनुष वाले हैं उनको समझेंगे, और जहां नाम लिया जा रहा है वहां उस रूपधारी राम जी को नहीं बोला जा रहा है। इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है
0: जी। यानी कि राम नाम जो है वो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग है कि अगर आप अपने मन में अगर कोई चीज चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे ये नाम पाना है, मुझे अपने मन में वो चीज रखनी होगी जी, बहुत ही पावरफुल ये कहें कि नाम है। और जैसे कि हम सब भी कहते हैं कि अगर मन में कोई चीज आपके है और अगर आप दिल से वो चीज करते हैं तो डेफिनेटली पूरी होती है, तो वही इस नाम के साथ में है। अच्छा, आप राम नाम की बात हुई है तो मुझे याद आ गया, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चार राम की बात की थी। मैं दोबारा से इस पर आना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी। और हमने पिछले अध्याय में बात की थी चार राम की, हमने चार राम की इम्पोर्टेंस बताई थी। तो ये चारों राम जो हैं, मैं ज्योति जी आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से अलग हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा महिमा किनकी है? क्या ये एक ही रूप हैं या ये अलग अलग रूप हैं? और अलग अलग रूप हैं तो महिमा सबसे ज्यादा किसकी है?
2: जैसा कि चार राम की बात कही गई है तो इसमें तो विदित ही है कि चार राम है तो अलग अलग बताए गए हैं, तो नेचुरली उसमें डिफरेंस तो होगा ही। तो जैसे साधारण और महत्वपूर्ण जो राम की बात कही गई, तो जो कहा गया कि एक राम जो सकल पसारा, जो दुनिया में बच्चों का नाम रख देते हैं राम श्याम, और एक राम जो घट घट लेता, माना जो हम सबके अंदर आत्मा राम विराजमान है, उसके लिए कहा जाता है। तो इसके बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो दो राम की बात कही गई कि एक राम जो जग से न्यारा और एक राम जो त्रेता युगी श्री रामचंद्र जी हुए, इन दो राम में कौन महत्वपूर्ण है? तो तुलसीदास जी ने इसके लिए भी बहुत सुंदर इसके अंदर चित्रण किया है कि जो त्रेता युग के श्री रामचंद्र जी थे, उनकी जो बात कही गई है वो एक दैहिक रूप में व्यक्ति आए और उन्होंने आकर के अपने कर्मों से श्रेष्ठता दिखाई है, कि कैसी भी जटिल परिस्थितियों में उन्होंने अपने गुणों को नहीं छोड़ा, अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। लेकिन यहाँ नाम और रूप दो बातें कही गई हैं, और तुलसीदास जी ने उन्होंने बहुत अच्छा बताया भी है। कहा गया कि एको छत्रु एको मुकुटमणि सब बरनिन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। माना तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप और एक जो है मोर मुकुटधारी, जिसमें आगे भी समझाया कि समझूत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई इस उपाधि, अखत अनादि सुसा मुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, लेकिन दोनों में एक स्वामी है और एक सेवक के समान है। अब स्वामी और सेवक की दोनों की प्रीति है, इसको अगर हम समझना चाहें तो इस विधि से भी समझ सकते। मान लिया हम कोई परेशानी में हम फंसते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं।
0: हाँ जी,
2: भगवान को याद करते हैं, मुझे कोई हेल्प चाहिए, और मेरे को जैसे ही मैं भगवान को याद कर रही हूँ तब तक परमात्मा ने आपको भेज दिया, आपने मेरी मदद की। तो यहाँ पर आप मेरे लिए उस समय भगवान का रूप बन गए, भगवान को याद किया लेकिन मदद मुझे आपसे मिली है। यहाँ दो हैं, आप डिफरेंट हैं लेकिन जिसको याद किया वो डिफरेंट है, लेकिन मदद मुझे क्योंकि आपसे मिली है तो मैं आपको भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ। तो आपकी भी इम्पोर्टेंस है, प्लस में उसको जिसको याद किया उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो नाम और नामी, माने जो मदद कर रहे हैं वो दैहिक रूप के व्यक्ति हैं, क्योंकि परमात्मा मदद करने नहीं आते, वो निराकार हैं, वो किसी ना किसी के माध्यम द्वारा हमारे को मदद कराते हैं। तो दो चीजें हैं, ऐसे ही रामचंद्र जी जो है वो दैहिक रूप है, लेकिन जो नाम है उनका, जो राम नाम की बात कही गई, वो निराकार की बात कही गई है। इसी को इसमें कई बार कई लोग सोचते कौन बड़ा कौन छोटा, तो कहीं हम ऐसा ना हो कि अपराध कर दें किसी को डिनाई करके, तो हमें किसी को हम छोटा बड़ा कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर परमात्मा को याद किया और आपको नहीं भेजते तो मेरा कार्य तो नहीं हो रहा है।
0: बिल्कुल।
2: तो आप भी मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं और परमात्मा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट, इसीलिए वहाँ सबसे पहले सबकी वंदना की गई है। तो परमात्मा ने यहाँ पर बताया भी है कि कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। अब अगर मैंने नहीं वो किया और मदद मिल रही है तो मैं नहीं पहचानूंगी, लेकिन मैंने अगर याद किया है और उसको तुरंत मुझे मदद मिली तो मेरा माइंड तुरंत जाएगा भगवान ने देखो मेरे को, इनको मेरी मदद के लिए भेज दिया है। तो दोनों को याद करना, नाम को भी और रूप को भी, लेकिन हमें दिखता रूप है तो हम ज्यादा फंस किस में जाते हैं,
0: रूप में,
2: रूप में, नाम को भूल जाते हैं। और इसको सबसे ज्यादा जो आगे भक्तों की बात कही गई या जो भी हम भक्त में शिरोमणि, तो उनके बहुत से ऐसे भक्तों की बातें की गई जिन्होंने जाना है और आगे बताया भी है कि ये सिर्फ समझदार ही समझ सकते हैं, प्रभु श्री राम अपने नाम ना का ही अनुगमन करके चले आते हैं। जैसे ही राम नाम लिया तो हमारी बुद्धि में तुरंत आया कि राम जी मेरी मदद के लिए आ गए। तो वो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन परमात्मा जो निराकार है, उस निराकार परमात्मा ने ही हमारे लिए बहुत से लोगों को मददगार रूप में, तो हमें दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों राम डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। इसके अंदर जो बात कही गई है कि जैसे दोनों का, तो एक अंधकार साइड है और एक उजाला है, लेकिन हम अंधकार वाली चीजों को तो देख पा रहे हैं
0: उजाले,
2: लेकिन जो उजाला है जो अंधकार को दूर करने वाला है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। मान लीजिए कमरे में रोशनी दिख रही है लेकिन वो बल्ब नहीं हमें दिखाई दे रहा है, कहाँ से रोशनी आ रही है। तो सेम यही चीज आगे भी बताई गई है जिसको हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अंधकार क्या है और रोशनी क्या है, नाम और रूप का और क्या डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छे से तुलसीदास जी ने आगे बताया है।
0: जी हम ये जरूर जानेंगे और जानेंगे बीके प्रिया जी से, बीके ज्योति जी ने चार राम के बारे में बताया, लेकिन हाँ एक चीज और बताई अंधकार और उजाले की। तो राम नाम यहाँ पर क्या काम कर रहा है, या अंधकार और उजाला क्या इसके मायने हैं, किस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है राम की इम्पोर्टेंस, ये हम जानेंगे बीके प्रिया जी से। तो प्रिया जी आप बताइए कि जो ज्योति जी ने अंधकार और उजाले की बात की गई है वो किस तरह से की है और क्या वजह है और किस तरीके से राम की इम्पोर्टेंस वहाँ पर है।
3: जी जैसे कि उन्होंने बताया कि हथेली पर अगर कोई चीज, दो चीज सिमिलर पड़ी है लेकिन आपको नाम नहीं पता, तो दोनों सेम मना होते हुए भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या लेना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसे बुलाना कैसे,
0: बुलाना कैसे।
3: लेकिन अगर वही हमें नाम पता है और सामने कोई भी चीज नहीं पड़ी है तो भी हम बता सकते कि मुझे क्या चाहिए। क्लियर। तो उसी प्रकार से अंधकार और यहाँ प्रकाश की बात हुई है कि प्रकाश ये वो भौतिक प्रकाश की बात नहीं है, या आध्यात्मिकता की प्रकाश कह सकते हैं, या आंतरिक जगत जो आत्मा का उजाला हम कह सकते हैं, कि ये वो उजाला है जो हम भौतिकवाद में नहीं देख सकते या फिजिकल लेवल पर हम इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए भी हमें एक समझ की आंख चाहिए या बुद्धि रूपी एक आंख नेत्र हमें चाहिए, और वो हमें ये दर्शाने की कोशिश में तुलसीदास जी है कि यहाँ पर राम को सिर्फ एक नहीं लेकर के चलना है। जो बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल ज्योति जी ने अपने व्याख्यान में दिया है कि अगर हम भगवान को याद करते हैं उसकी मदद के लिए और सडनली कोई एक व्यक्ति आकर के मुझे मदद करता है, तो मैं ना तो उस व्यक्ति को नकार सकता हूँ और ना मैं उस परमात्मा का तिरस्कार कर सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने ही अब मेरी हेल्प के लिए उस व्यक्ति को मेरे पास भेजा है। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से हमें श्री राम चरित्र मानस को भी समझना है कि एक निराकार परमात्मा जो सुप्रीम है, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी भी बोल देते हैं, जिसे हमने ब्रह्म भी शब्द शास्त्रों में लोगों ने लिखा है, तो वो परमात्मा अलग है जिसका नाम हम याद कर रहे हैं और रूप जिसके द्वारा कार्य कराने के लिए परमात्मा ने भेजा
0: है,
3: क्योंकि वो तो बिन पग बिन हाथ के है, तो वो तो शरीरधारी ना है, इसीलिए उन्होंने हमारे कार्य करने के लिए, क्योंकि कार्य भौतिक है
1: तो उसको भौतिक रीति यानी शरीर से किया जाएगा। तो यहाँ एक शरीरधारी राम नाम के जो देवत्व देवताई गुणों वाला जो व्यक्तित्व दिखाया गया है तो वो अलग है। तो यहाँ जैसे बात हुई कि किसको बड़ा माने और किसको छोटा माने, तो हम इस द्वंद में ना जाएं तो भी अच्छा है, क्योंकि ना तो मेरे लिए वो व्यक्ति कम है जिसने मेरी मदद करी, और ना ही मेरे लिए वो परमात्मा कम हो सकता है जिसकी वजह से मदद
0: भेजी
1: जी। तो यहाँ पर हम इस चीज को लेकर के श्री रामचरितमानस को ना पढ़ें, लेकिन ये बात हम जरूर ध्यान रखें कि दोनों का अपना महत्व है, और हमने इनमें से किसी एक को भी हटाया तो फिर हमारी श्री रामचरितमानस की जो प्राप्ति है, उपलब्धि है, वो हमारी इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो एक बहुत सुंदर दोहा है जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुन सगुन बीच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, यानी इन दोनों को एक्सप्लेन करना ये इतना ज्यादा माना इजी नहीं है। अकथनीय यानी वो बोल नहीं पा रहे, उनके पास शब्द नहीं है उस चीज को अच्छे से क्लियर करने के लिए। वो समझने में सुखदायक है, आप इस चीज को अगर समझ जाएंगे कि यहाँ दो चीजों की बात हो रही है, लेकिन दो चीज में टेक्निकली अगर आप जाएंगे तो शायद कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर दिल से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ एक उस निराकार की बात हो रही है और एक साकार शरीरधारी की बात हो रही है, तो ये सुखदायी लगेगा। तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निराकार को एक्सप्लेन हमारे शास्त्रों में उस रीति से करने में हमारे जो उस स्तर के लेवल के जो महाऋषि रहे या ऋषिगण रहे, उन्होंने कहा है ये बात को कि हम नेति नेति, अर्थात हम पूरी तरह से नहीं जानते। तो जितना हमें बताया गया है उस निराकार के बारे में, तो यहाँ तुलसीदास जी भी वही कह रहे हैं कि वो अकथनीय है, उनके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषीय है, यानी वो कह रहे हैं यहाँ परमात्मा को उन्होंने निर्गुण कहा, तो निर्गुण को शब्द वाचक हम ना लें, निर्गुण माना जिसमें कोई गुण ना हो, लेकिन यहाँ निर्गुण वो बोला गया कि जिसमें भौतिकता का कोई गुण नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, यहाँ वो निर्गुण बोला गया कि वो गुण और अवगुण सगुण जो भी शब्द आते हैं ये उनसे बियॉन्ड है, पार है। तो परमात्मा को उन्होंने निर्गुण कैटेगरी यानी किसी भी तुलना से भी अतुलनीय बताया है, और जो राम जो फिजिकल हम देख पाते हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि वो जो सगुण है जिनके गुण हमें दिख रहे हैं कि भाई मधुर भाषी है, बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत उनका हृदय जो है कोमल है, तो जो हमने उनके गुण पढ़ ये सगुण बोला गया है। तो यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि दोनों को एक्सप्लेन करना, ये दुभाषी यानी जो समझाने वाला भी बहुत इंटेलिजेंट है जो इन चीजों को समझ पाए या समझा पाए, तो उन्होंने अपने पूरा लेवल जोर लगा करके बताया है कि यहाँ पर दो चीजों का वर्णन है, और हमें उन दोनों को अपनी बुद्धि में रख करके अगर हम पढ़ते हैं तो इसका संपूर्ण प्राप्ति है। और परमात्मा के अंत में वो ये कहते हैं कि जो परमात्मा के गुण या रहस्य को जानना चाहते हैं, यहाँ पे राम जी का नाम नहीं यूज हुआ है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, यहाँ वो स्पष्ट कहते हैं कि जो परमात्मा के गुण रहस्य को यानी यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। यानी अगर हम अगर उस निराकार की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर मैं उस निराकार को अपने माइंडसेट में रखता हूँ और मुंह से उनका नाम भी लेता हूँ तो भी मैं स्पष्ट समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे मनस्पटल में वो चीज नहीं आ रही है और सिर्फ मैं जप रहा हूँ जो हम करते हैं, नॉर्मली हम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आई जो बुद्धि का जो मनस्पटल है जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ इस चीज पर तुलसीदास जी जोर देते हैं कि आपके मन बुद्धि में क्या है, तो फिर जीभ से भी जो आप बोलेंगे वो ठीक है
0: बिल्कुल,
1: और अगर आपके मन बुद्धि में वो चीज नहीं है तो जो जीभ से आप बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से सटीक नहीं होगा।
0: तो यानी कि अगर उनको पाना है और उनसे किसी प्राप्ति की अगर हमें तो कहें कि उम्मीद है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी वो चीज रखनी होगी, राम नाम रखना होगा, तभी वो जुबान से निकलेगा और उसकी कहें कि फल की प्राप्ति हो सकती है। और यही हम लोग प्रैक्टिकली देखते भी हैं, अगर मन में ही वो चीज नहीं है तो वो आपको, आप चाहे जितने भगवानों का नाम ले लें, आपको वो नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके लिए मन में संकल्प लेना जरूरी है और राम नाम या जो भी आप

जिस भी भगवान को मानते हैं उनके बारे में एक वो सोच रखना, एक वो अच्छी कहें कि कामना रखना बहुत जरूरी है। बहुत खूब, ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है, लेकिन ये सारी बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल आज दीजिए हमें इजाजत, और चलते चलते बस आपसे यही कहूंगी कि अपना ध्यान रखिए, और आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जिस माहौल में हैं, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और अगर कठिन परिस्थिति में फंसे भी हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली है। तो बस इसी के साथ और इसी अच्छे विचार के साथ में हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों और कथाओं को हम आपके लिए लेकर आते हैं और स्टूडियो में होती हैं रागले खदासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत ग्रंथ के अंदर समाहित बहुत सारी कथाओं के बारे में, और शायद इन कथाओं को आपने महाभारत जो सीरियल टीवी पर प्रसारित होता था उसमें देखा भी होगा, सुना भी होगा। लेकिन हम आपको रागलेखा दासी जी से पूरी व्याख्या, पूरी कथा सहित ये बता रहे हैं बहुत सारे प्रसंग। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी हमें उस कथा के बारे में बता रही थी जहाँ पर भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी, और बहुत सुंदर ये वृतांत जो है रागलेखा दासी जी हमें बता रही थी। तो आगे इसमें आज इस कथा को आगे जारी करते हुए आगे की कहानी जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी,
1: इस प्रकार जो भीम थे वो आगे बढ़कर कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुँचे। भीमसेन ने वहाँ पहुंचकर उसका निर्मल जल जी भर कर पिया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उस सरोवर और सुगंधित वन को देख कर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के शस्त्र पहनावे से सुसज्जित होकर इस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीम के पास आकर उनसे पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है, परंतु आप हथियार भी लिए हुए हैं, कहिए आप किस उद्देश्य से आए हैं? राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है, मैं धर्मयाद युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ और महाराज पांडु का पुत्र हूँ। राक्षसों ने कहा, ये यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थान है, यहाँ मरणाधर्म मनुष्य विहार नहीं कर सकता। आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए, फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे, क्योंकि द्रौपदी के कहने पर भीमसेन यहाँ पे सुगंधित कमल लेने आए थे। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं कमल महाराज युधिष्ठिर को भेंट करना चाहती हूँ और मैं इसको काम्यवन ले जाऊंगी। तो उसी को ढूंढते ढूंढते भीम यहाँ पर आए हैं और यक्ष से उनका सामना हुआ, कुबेर के जो अनुचर थे।
0: जी जी,
1: और नहीं तो आप कमलों के झांक भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, राजा लोग मांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है। ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए उस सरोवर में उतर पड़े। जब वे राक्षसों ने उन्हें रोका, वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। भीमसेन ने भी अपनी यमदंड के समान सुवर्ण मंडिता भारी गदा को उठाकर ठहरो ठहरो ऐसे चिल्लाते हुए उन पर आक्रमण किया। इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओर से घेर कर उन पर तोमर कटी शादी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उनके शस्त्रों के खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया भीम ने। उन्होंने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले, मुझे इन सब बातों का पता है, द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उतने ले जाए। राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेन के पास आए। भद्रिका आश्रम में भीमसेन के युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देख के धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ भी कर बैठा है, क्योंकि अकस्मात होने वाले उत्पात किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा कि जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको शीघ्र ही शीघ्र रास्ता चलना चाहिए। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चले और घटोत्कच तुम द्रौपदी को ले चलो। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की सुवासित एक अत्यंत मनोहर सरोवर को देखा। उसी के तीर पर परम तेजस्वी भीमसेन दिखाई दिए, जिनके पास अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे। इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सौगंधित कमल ले लिए और देवताओं के समान उस सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय वहाँ पर गंध मादन के शिखर पर ही निवास किया। फिर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये मार्ग बहुत दुर्गम है, इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे ना बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से नर नारायण के स्थान बद्रिकाश्रम को लौट जाए, क्योंकि ये सब देवताओं के स्थान है तो इसके आगे जाना उनके अनुमति नहीं थी।
0: जी जी।
1: अब हम जटासुर के वध की बात करते हैं। एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया। वो बोला, मैं समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ। ऐसा कहकर वे सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकश और द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे। वो मशादी महर्षि गण स्नान करने चले गए। उसी समय जटासुर भयानक रूप धारण करके तीनों पांडव द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस ने अपनी की कौशिकी नामक तलवार छीन कर जिस पर भीमसेन गए थे उस पर आवाज लगाने लगे। युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए और उनके भार से दब कर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम उस मूल राक्षस से डरो मत, मैंने उसकी गति को कुटिल कर दिया है। अकस्मात इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने कहा, राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। भीमसेन ने ललकारा, हे रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसीलिए मैं तुझे कैसे मारता। ये राक्षस ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है नरक में जाता है। तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता, बट तुझे बक और हिडिन के रास्ते में जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। फिर इन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे को चोटे करने लगे। उन्होंने वज्र के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे को घूसों की वर्षा करने लगे। जिस समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा, उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देख कर भीमसेन ने उसे पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। कोहनी की चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हम जान रहे हैं लागलिखा दासी जी से। अभी किस तरह से जो भीमसेन हैं वो पहुंचे थे कमल पुष्प लाने के लिए, और अब हमने जटासुर के वध की भी कथा लागलिखा दासी जी से जान ली है। अभी हमने जटासुर के वध की कथा को जाना और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लागलिखा दासी जी से अगली कौन सी कथा वो सुनाने वाली है। जी
1: जी। जटासुर के वध के बाद महाराज युधिष्ठिर फिर नर नारायण के आश्रम में जाकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया है, क्योंकि अर्जुन तो 12 वर्ष के उसमें अज्ञातवास में गए थे।
0: हाँ जी।
1: तो वो अभी अर्जुन को स्मरण कर रहे हैं। अर्जुन ने मुझसे कहा था कि 5 वर्ष का स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं वो राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बैठा कर ले जाते पांडवों को। 7वें दिन हिमालय की पवित्र पृष्ठ पर पहुंचे। वहां उन्हें राजऋषि विश्वकर्मा का पवित्र आश्रम देखा। पांडवों ने आश्रम में पहुंचकर परम धार्मिक राजऋषि विश्वकर्मा को प्रणाम किया। राजऋषि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया। उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहां 7 दिन रात-रात निवास किया। क्रमशः उन वीरों ने परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया। फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्ष से सुशोभित राजऋषि अरिष्टसेन का आश्रम देखा। राजऋषि बड़ी तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यंत कृष्ण था, शरीर की नसें दिखाई देने लगी थी। अरिष्टसेन ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में इस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भेरी, पनव, शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है। आप लोगों को यही बैठ बैठ कर उसे सुनना चाहिए। यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है और उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को नांग कर केवल परम सिद्ध और देव ऋषि ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की पर्चियों से मारते हैं। अतः जब तक अर्जुन आए तब तक आप यही निवास कीजिए। इस प्रकार वहाँ रहते हुए उनके वनवास का 5वां वर्ष भी बीत गया। तब हम एक प्रसंग लेते हैं भीम का सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्न का उत्तर। एक समय भीमसेन स्वेच्छा अनुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर पर तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे, इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था तो भी उस सर्प के चंगुल में फंस कर वे बेकाबू हो गए। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घबरा उठे। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हो गई। भीमसेन के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर बोला, ये राजकुमार मेरे मुख में स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है, अगर रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। दुष्ट ने कहा, सर तुम कोई देवता हो या दैत्य हो या वास्तव में सर्प ही हो? सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। जंगम बोलो तो सही, कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो, तब भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर बोला, राजन मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। मैंने अनेकों यज्ञ की, तपस्या की, स्वाध्याय किया और अपने मानव इंद्रियों को विजय प्राप्त करी
2: जी।
1: उस समय सत्कर्मों से और अपने पराक्रम से मुझे तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उसी ऐश्वर्य को प्राप्त कर मेरा अहंकार बढ़ गया, मैंने मन मदोन्मत होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित होकर महर्षि अगस्त ने मुझे उस अवस्था में पहुंचा दिया। महाराज अगस्त की ही कृपा से आज तक मेरे पूरी जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। उसी के शाप के अनुसार दिन के छठे माह भाग में ये तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ, अतः मैं ना तो इसे छोड़ूंगा और ना ही इसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो इसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज सुनो, इसमें सत्य दान क्षमा सुशीलता क्रूरता का अभाव तपस्या दया ये सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण है। जानने योग्य तत्व हो तो पर भ्रमी है और सुख दुख से परे है, यहाँ पहुँच कर भी उसे जाना मनुष्य के शोक से पार हो जाता है। अहिंसा दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं, किंतु अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। तुमने सुख दुख से रहित पद बतलाया है, इसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार से तो सुख दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्रों में सत्य उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मणों में नहीं है तो वे शूद्र शूद्र नहीं है और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इसका अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती और उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती क्योंकि उसमें परस्पर विरोध है, इसी प्रकार जो वेद पद है उसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करने के लिए अपने से अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख और दुख से संपर्क नहीं होता। सर बोला, राजन यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है,

0: क्योंकि इस समय सभी वर्णों में सम्मिश्रण हो रहा है, सभी मनुष्य सभी जाति के स्नेह से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। बोलचाल, मैथुन, मित्रवर्ती, जन्म मरण, ये सब मनुष्यों को एक से देखे जाते हैं। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील सदाचार को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है, उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है, उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसके वेद का स्वाध्याय नहीं कराया जाता तब तक वे शूद्र के समान है। यदि वैदिक संस्कार करके वेद अध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो उसे ही मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया। सर बोला, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो, तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली बातें सुन लिया। अब तुम, मैं तुम्हारे भाई भी इनसेन को कैसे खा सकता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, सर्वराज तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हो, बताओ किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है। अब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं और सर्प उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में कौन बड़ा है, अहिंसा और प्रिय भाषण इसमें किसका महत्व अधिक है किसका कम। सर्प बोला, प्रिय भाषण इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है, किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दान बड़ा होता है। इस प्रकार कहीं तो ये बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनके गौरव और लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। विष्णु ने कहा, मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यही त्याग देता है, बिना देह के वे स्वर्ग में कैसे जा सकता है और कर्मों के अवश्यम्भावी फल को कैसे भोगता है। सर्प ने कहा, राजन अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव की तीन प्रकार की गति देखी जाती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना। यदि आलस्य और प्रमाद को त्याग कर वह अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में और पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, हिंसा में तत्पर होकर जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है और अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो बैठता है, वही तिरिय योनि में जन्म लेता है। फिर सत्कर्मों का आचरण करने के निमित्त मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर उसकी तिरिय योनि से उद्धार होता है। युधिष्ठिर बोले, सत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसका आधार क्या है, इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो। तुम सब विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते। विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा ये मन किसी एक ही विषय में लगाया जाता है, इसलिए एक साथ इसके द्वारा अनेकों विषयों का ग्रहण करना संभव नहीं है। जिसे हम बुद्धि, इंद्रिय और मन से युक्त होने को भोक्ता बताया है वही आत्मा अनात्मा के चिंतन में लगी हुई उत्तम अदम बुद्धि को रूप आदि विषयों द्वारा प्रेरित करता है। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है। विष्णु ने कहा, हे सर मुझे मन और बुद्धि का ठीक ठीक लक्षण बताओ। सर बोला, बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती है। बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती रहती है, अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है, वासना वाला तो मन ही है। विष्णु बोले, बुद्धिमानों में शेष तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो, तुम्हारी दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। सर ने कहा, ये धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो ये अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मंदोन्मत हो गया था और मोह के कारण जब मेरा अधपतन हो गया तब चेत हुआ। अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने से मेरा वह कष्टदायक श्राप निवृत्त हो गया पूर्व काल में मैं जब चढ़ कर राजा था, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था, इतने अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे सभी मुझसे मुझे कर दिया करते थे। उस समय मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी और आंख उठाकर देखता उसका तेज छीन देता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया था कि 1000 महर्षियों ब्रह्म ऋषियों ने मेरी पालकी धोई। इस अत्याचार ने मुझे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त जब पालकी धो रहे थे, मैंने उन्हें लात मारी और तब एक क्रोध में भर कर उन्होंने कहा, अरे ओ सर तू नीचे गिर। तब मेरे राज सिंह लुप्त हो गए और मैं उत्तम विमान से गिर पड़ा। मुझे मालूम हुआ मैं सर होकर नीचे मुख किए गिर रहा हूँ। अगस्त मुनि से याचना की, भगवान मैं प्रमाद व विवेक शून्य हो गया था, उससे आप घोर अपराध हुआ है, आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे मैं शाप का अंत हो जाए। तब धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें शाप से मुक्त करेंगे और इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, उस समय तुम्हें फिर पुण्यों का फल प्राप्त होगा। महाराज तो ये है तुम्हारी भाई महाबली भीमसेन, तुम्हारा कल्याण हो और मुझे विदा दो, मैं पुनः स्वर्लोक को जाऊंगा। ये कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया, दिव्य देह धारण करके वे पुनः स्वर्लोक में चले गए।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जाना कि किस तरह से युधिष्ठिर जी ने जो है एक अजगर को उनके श्राप से मुक्ति दिलाई। राजा नहुष थे वो स्वर्ग में विचरण करते थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उनको ये योनि मिली और किस तरह से युधिष्ठिर ने उनको उनके श्राप से मुक्त किया, ये कथा हमने जानी आज रागलेखा दासी जी से। तो श्रोताओं, आगे और भी कथाएं हैं, प्रसंग हैं जो हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

0: यार हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के सातों दिन आपके साथ रहूंगे। अब 7 से लेकर 9 बजे तक बहुत सारी हम कर रहे हैं बातें, और आज बहुत ही ज्यादा खास दिन है क्योंकि बहुत सारी खास जानकारी मेरे पास आ जाती है। जी हाँ, आज दिन जो है वो है वेंसडे का, और वेंसडे वाले दिन हमारे साथ आकर के जुड़ जाते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश कुमार। बहुत सारी हम करने वाले हैं बातें, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं आप जानना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में, जरूर हम बात करेंगे डॉक्टर राजेश से। लेकिन उससे पहले भाई बहुत ही खूबसूरत गाने भी हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें भी हैं। और आपको बता दूं, देखिए आज हमारा जो सेगमेंट है ये शुरू होने वाला है जिसका नाम है दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो में आपके लिए कमाल की एक जानकारी लेकर के आई हूँ, एक लाइफस्टाइल को आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह का लाइफस्टाइल जो है जापान में फॉलो किया जाता है। जापानीज कल्चर है, जापानीज लाइफस्टाइल है, और इसीलिए कहा जाता है कि वहां के लोग इतने

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने लेकर के आ जाती हूँ। बातें हमारी चल रही हैं रिचार्ज मॉर्निंग में, इस सेगमेंट चल रहा है दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो में आज का एक बहुत ही खास जो टॉपिक है वो लेकर के आई हूँ, और वो है लाइफ स्टाइल के बारे में, और वो भी हमारी इंडियन नहीं बल्कि जापानीज। जी हाँ, देखिए भागदौड़ भरी जिंदगी में आपका सहारा बन सकती है ये जापानीज लाइफस्टाइल, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। इसे कहा जाता है यूटोरी लाइफस्टाइल। अब ये जो यूटोरी लाइफस्टाइल है ये क्या है? देखिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक काम की जिम्मेदारियां, टेंशन हमें पल पल तंग करती रहती हैं और हमारे अंदर कई जमी रहती है। रोजाना यही जो साइकिल है ये रिपीट होती है और बहुत ही ज्यादा मोनोटनस हो जाता है ना हमारे लिए। दिल और दिमाग पर बोझ बढ़ता है, और ऐसे में जापान की एक खास लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा आपको भारी मात्रा में फायदा मिलने वाला है। अब इससे होता क्या है, इससे स्ट्रेस जो है वो कम होता है, मन को शांति मिलती है, और तमाम तरीकों से आप जो है अपनी लाइफ में फोकस्ड रह पाते हैं। आज इसी लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जिसका नाम है यूटोरी लाइफस्टाइल। अब यूटोरी लाइफस्टाइल के मतलब समझते हैं और साथ ही कुछ बातें भी आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सकते हैं। तो वो कैसे बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आ रहती हूँ आपके साथ, यानी कि मंडे टू संडे, और हम करते हैं बहुत सारी बातें। फिलहाल सेगमेंट का टाइम है और सेगमेंट है दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो में हम बात कर रहे हैं यूटोरी लाइफ स्टाइल की। देखिए, यूटोरी का मतलब है छूट या मुक्ति। अब जिंदगी जीने का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि लाइफ में थोड़ा आसान और आरामदायक लाइफ को बनाना ज़रूरी है, और आज हर किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हम स्ट्रेस, थकान और बर्नआउट से बच सकें। यूटोरी के लिए देखिए काफ़ी सारे जो है तरीके हैं, और इसको बहुत ही आसान तरीके से अगर जो बताता है वो है जापान, क्योंकि वहीं की ये लाइफ स्टाइल है। अब यूटोरी के ज़रिए आप काम और पढ़ाई या ऑफिस का जो पर्सनल टाइम होता है ना, ये जो पर्सनल आपकी लाइफ है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। और यही यूटोरी लाइफ है जो आपको तरीका सिखाती है जिससे खुद को आप इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। जी हाँ, अब सबसे पहले आता है कि इसका इतिहास क्या कहता है। जी हाँ, देखिए 1990 के दशक में ना जापान में बर्नआउट की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग ज़्यादातर समय देखिए उनका जो है वो काम में ही निकल जाता था, काम में बिजी रहते थे, स्कूलों में पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा हो रहा था, और सोशल लाइफ जो है वो लगभग ना के बराबर रह गई थी। ऐसे में देखिए सोसाइटी को ने महसूस किया, समाज ने ये महसूस किया कि इस रफ्तार को धीमा करना ज़रूरी है। इसी दौरान यूटोरी जो IUCO यानी कि जो यूटोरी एजुकेशन है, ये इसकी शुरुआत हुई, जिसका मकसद पढ़ाई के दबाव को कम करने और बच्चों को ज़्यादा आराम देने के साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाना था। अब इसीलिए ये जो यूटोरी लाइफस्टाइल है ना, ये इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि इससे फ़ायदे आपको बहुत सारे मिलते हैं। अब ये कौन कौन से फ़ायदे हैं जो आपको मिल सकते हैं, या हम भी अगर इस यूटोरी लाइफस्टाइल को अपना आजमाते हैं या अपनाते हैं तो क्या बदलाव आ सकते हैं, जानेंगे कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैन वृष्णा 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं. बातें हमारी चल रही हैं और यूटोरी लाइफस्टाइल के बारे में आपको बता रही हूं. यूटोरी लाइफस्टाइल जो कि जापानीज लाइफस्टाइल है, ताकि आप अपने मन को शांत रख सके. इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जरूरी है कि हम भी यूटोरी लाइफस्टाइल को अपनाएं. अब बात आती है इसके फायदों की कि अपनाएं भी तो क्यों अपनाएं भाई, कि फायदे मिलेंगे तभी तो. अब फायदों की बात करें तो काम और पढ़ाई से आराम मिलता है, यानी कि जापान ने काम के घंटे जो है उनको कम किया और स्कूलों में पढ़ाई का टाइम जो है उसमें भी कटौती की, ताकि स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज बर्नआउट से बच सके. ऑफिस में ज़्यादा लंबे जो ब्रेक्स होते हैं, ज़्यादा घंटे काम करने के लिए जो है वो एक नियम बनाए गए कि जिस भी एम्प्लॉय को काम करना है वो अपने परिवार और खुद के लिए समय निकाल सके, ये टाइम उनको दिया गया. यानी कि जो ब्रेक टाइम है उसमें भी एक ऐसा ब्रेक टाइम जो कि काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो, ताकि आप अपने परिवार वालों को टाइम दे सकें. स्ट्रेस कम करने के लिए ये नियम बनाए गए. इसके बाद आ जाता है मन की स्थिति पर ध्यान देना, मेडिटेशन और ऐसी एक्टिविटी में आपको इंडल्ज होना, जिससे आप जो है मेंटल हेल्थ को बूस्ट आप कर सकते हैं और साथ ही आप जो है लॉन्ग स्ट्रेस को समझें. जी हाँ, देखिए इसको मैनेज करना ज़रूरी है स्ट्रेस को. अगर लॉन्ग टर्म ये जो आपका जो टर्म चल रहा है, यानी कि जो स्ट्रेस चले जा रहा है, इसको कम करने के बारे में ज़रा सोचें किस तरह से कम किया जा सकता है. नहीं तो मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है, आपके दिमाग पर जोर पड़ सकता है, जिससे प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आ पाएगी जितना कि आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस में जाते जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये दिमागी पर असर डालेगा और आपको बीमार करेगा. इसी के साथ यूटोरी का मतलब है कि ज़िंदगी में सिर्फ काम ही नहीं बल्कि खेल, परिवार और खुद के लिए भी वक्त निकालना ज़रूरी है. तो इसीलिए देखिए आज के टाइम में ये ज़रूरी है कि आप भी इस यूटोरी लाइफस्टाइल को जो है वो फॉलो करें और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे आपको भी मिले. इनफैक्ट ना सिर्फ इंडिया में बल्कि देखिए बाहर भी, और भी बहुत सारे दुनिया में और भी देशों में और भी अलग अलग हिस्सों में लोग जो है तेज़ी से स्ट्रेस और बर्नआउट के शिकार आराम से हो रहे हैं. और ऐसे में यूटोरी हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में आराम और खुशी भी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. काम करना ज़रूरी है, फाइनेंशियली आपको रहना स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है, लेकिन इसी बीच आप खुद को मत भूलिए, क्योंकि अगर आप खुद को जिस दिन भूल जाएंगे उस दिन आप जो है ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे. तो देखिए आप एक बंद डब्बे में बिल्कुल भी मत रहिए, इससे बाहर निकलिए. ये जो यूटोरी लाइफस्टाइल है, यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि अपना काम छोड़ दीजिए, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हाँ ब्रेक्स लीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए. अगर आप उनसे मिल नहीं सकते हैं तो फ़ोन पे बात कीजिए, वीडियो कॉल्स, आजकल तो ज़माना वीडियो कॉल्स का है, तो वीडियो कॉल्स कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स को. थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, बाहर जाइए, वॉक कीजिए. काम का प्रेशर अगर ज़्यादा है तो काम को डिवाइड कर दीजिए. टाइम मैनेजमेंट सीखिए कि कैसे आप जो है अपने वर्क लाइफ बैलेंस को, अपनी पर्सनल लाइफ को आप बैलेंस कर सकते हैं और उसमें भी अपना टाइम, अपनी खुशी के लिए टाइम निकाल सकते हैं. तो चलिए ये टाइम और ये जो यूटोरी लाइफस्टाइल है इसे फॉलो कीजिए और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपके क्या विचार हैं इस यूटोरी लाइफस्टाइल पर. नंबर बहुत ही आसान है 8010781078. इसी के साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर राजेश, जो कि बात करने वाले एक बहुत ही खास टॉपिक पर. और देखिए आज जो है, क्योंकि अब सेगमेंट का टाइम आ जाता है और सेगमेंट है स्ट्रेच प्लीज, तो बात करेंगे स्ट्रेच प्लीज में डॉक्टर राजेश के साथ, जो कि एक योग गुरु है, हैप्पीनेस कोच है और साथ ही साथ है हेल्थ एक्सपर्ट. तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में हमारे सेगमेंट का टाइम हो चला है। सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। और हमारे साथ आ जाते हैं हर वेंसडे को डॉक्टर राजेश कुमार। और आज जो वेंसडे का दिन है, डॉक्टर राजेश आपसे जानना चाहूंगी हमारा जो अगला सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा खास है। योग के बारे में हम सुनते हैं, मेडिटेशन के बारे में भी आपसे जानना चाहती हूँ, क्या है और क्यों जरूरी है?
1: साक्षी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे सुन करके यह सवाल जो है, क्योंकि पूरा समुदाय जो है मानव का वह वर्तमान में और आधुनिक युग में मेडिटेशन वर्ड से बड़ा फैमिलियर हो गया है। और मेडिटेशन जो है ये कल्मिनेशन ऑफ माइंड हम कह सकते हैं। ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जिससे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं और एक लंबे समय तक के लिए जो शांति, सुकून और जीवन में आनंद को जो आप ढूंढते हैं, यह मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त होता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। शरीर के लिए हम भोजन की बात करते हैं, जीवन शैली की बात करते हैं, लेकिन ध्यान तो मन और आत्मा का भोजन है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए ध्यान जरूर कीजिए और मनुष्य जाति के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है ध्यान।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, मेरा ये मानना है कि जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की, बड़ा मुश्किलात उसमें आती है क्योंकि पहला स्टेप लेना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, जब हम ध्यान की इसमें बात करें, जब हम मेडिटेशन की बात करें, तो जैसे ही हम सोचते हैं कि मेडिटेट करना है तो हम आंखें बंद करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार, बहुत सारी सोच हमारे दिमाग पर एक काबू मानो कर लेती है और हम फिर मेडिटेट नहीं कर पाते। हम उन्हीं बातों में लगे रहते हैं, चाहे फ्यूचर की हो, पास्ट की हो, या फिर हम बात करें किसी डर की हो, वो कहीं ना कहीं हम सिर्फ उसी में घुलते जाते हैं। लेकिन ऐसे में ये ध्यान तो नहीं, आंखें बंद करना सिर्फ मेडिटेट करना तो नहीं है, तो किस तरह से कर सकते हैं?
1: ये बड़ा अच्छा, ये टेक्निकल क्वेश्चन है आपका ये, और बड़ा अच्छा आपने पूछा और सारे लोग इसमें संघर्ष भी करते हैं। देखिए, जब आप आंखें बंद करते हैं तो अंदर का बंदर जो है ना वो जाग जाता है और वो बंदर जब जाग जाता है तो तरह तरह के विचार, इतने सारे विचार, अच्छे बुरे गंदे विचार, अच्छे बुरे सकारात्मक नकारात्मक सब तैयार होता है और आता है और आपको हिलाता है और आप परेशान होने लगते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है आपके वर्तमान जीवन से। ऐसे ऐसे विचार आएंगे। तो देखिए, ध्यान का जो उद्देश्य है, सबसे पहला जो उद्देश्य है वह है साक्षी भाव। जो आ रहा है आने दो। दृष्टा भाव के साथ ध्यान का अभ्यास शुरू कीजिए। साक्षी भाव के साथ, विटनेस एटीट्यूड के साथ, डोंट बी जजमेंटल। अगर अच्छे विचार आ रहे हैं तो आप देखिए, बुरे विचार आ रहे हैं तो आप दृष्टा बन के देखिए। जैसे आप सिनेमा में जो पर्दे पर चलता है ना, एक इंसिडेंट, दूसरा आ रहा है, दूसरा रील, तीसरा, तो ऐसे ही अपने विचारों को देखिए। विचारों के प्रति सजग बनिए, विचारों के प्रति दृष्टा भाव बनाए रखिए और विचारों के प्रति साक्षी भाव बनाइए। यही ध्यान का सबसे पहला सूत्र है, साक्षी बनना। साक्षी जब आप बनेंगे तभी आप एंजॉय करेंगे। अपने विचारों के साथ अटैच मत होइए। जैसे आप किसी चित्रपट पर आप जाकर के सिनेमा देखते हैं और फिर आप निकलते हैं और फ्री हो जाते हैं, वैसे ही ध्यान के अभ्यास में आपके विचार आते हैं, उनको जानिए, देखिए और फ्री हो जाइए। क्योंकि आपके अवचेतन मन में जितने सारे दमित विचार हैं वह निकलते हैं। जिस प्रकार से दूध को आप गर्म करते हैं गैस पर, फायर में, तो बवाल आता है ना, ऊपर एकदम उबाल आता है, वैसे ही जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई, ऊर्जा अंतर्मुखी हुई, आपके अवचेतन मन के दरवाजे खुले, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुले और चेतन मन से और जो भी दमित विचार है वो आएगा। ये धीरे धीरे आने दीजिए और दृष्टा बने रहिए। एक दिन बिल्कुल विचार शून्य की स्थिति को आप पा लेंगे और यही है ध्यान और इसी का उद्देश्य है।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, बहुत ही अच्छी बातें जो हैं अभी हो रही हैं, आप अपने विचार साझा कर रहे हैं। हमारे लिसनर्स के भी कुछ सवाल हैं जो मैं चाहूंगी आप उनका जवाब जरूर दें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सुनाती।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा,
1: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार
2: नौ बरस लंबी थी ना।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहा हूँ। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। फिलहाल टाइम हो रहा है हमारे सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में, बातें हम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश, जो की एक योग गुरु है, हेल्थ एक्सपर्ट है और साथ ही साथ हैप्पीनेस कोच भी है। बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर राजेश। अभी हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन के बारे में, मेडिटेशन जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान केंद्रित करना। और ध्यान किस तरह से लगा सकते हैं ये तो आपने बताया है, क्यों जरूरी है ये भी बताया। लेकिन अब जो सवाल है हमारे लिसनर्स की ओर से, वैसे तो बड़े कॉमन सवाल रहते हैं, लेकिन कहीं ना हम इसी उलझन में उलझते रहते हैं कि अच्छा आंखें बंद करने का मतलब है ध्यान करना, या फिर मेडिटेट करने का मतलब है किसी शांत जगह पे जाके ध्यान करना। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेडिटेट करने के लिए क्या सच में कहीं जाने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारे लिसनर का, हमारे मोहित जी का एक हमारे लिसनर हैं, उनका सवाल है क्या ध्यान केंद्रित करने के लिए या मेडिटेट करने के लिए क्या ज़रूरी है नेचर के बीच में जाके ही या पहाड़ों पर जाकर ही ये मेडिटेशन हो सकती है?
1: देखिए, ये तरह तरह के लोगों के प्रश्न है, लेकिन मेरा जो मानना है, हंसवा खिलवा करवा ध्यान, हंसते रहो खेलते रहो और उसी हंसते खेलने के क्रम में ध्यान कर लिए। हमारे पुराने ऋषियों ने कहा है, मनुष्यों ने कहा है कि ये जीवन में सतत ध्यान होना चाहिए, इसके लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक चीज साक्षी जी मैं बताना चाहता हूँ और मानव रचना के जो श्रोतागण है, रेडियो आपके रेडियो के जो श्रोतागण हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर शांति है, सुकून है, तो आप कहीं पर भी आपके लिए हिमालय ही है। अगर आपका मन अशांत है, आप अगर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो आपके लिए हिमालय भी अशांत हो जाएगा। इसलिए आपकी तैयारी ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं पर भी बैठ करके ध्यान, ट्रेन में चलते चलते कर सकते हो, मेट्रो में करते करते चल सकते हो, श्वासों पर, सिर्फ आप श्वासों के प्रति जागरूक बन जाइए, विटनेस बन जाइए, श्वासों को जानिए, सिर्फ दृष्टा भाव बन करके देखिए, साक्षी भाव बन करके देखिए, यही है ध्यान। ध्यान का जो पहला सोपान है वह है अपने श्वासों के प्रति दृष्टा बनिए।
0: बिल्कुल,
1: अपने आप को जानने के लिए श्वास ही आपका एक मार्ग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राजेश, अगला सवाल है आपसे और ये जानना चाहती है हमारी लिसनर है अनामिका जी, उनका सवाल है। अनामिका जी का सवाल है कि क्या कभी हमें

0: गाइडेड मेडिटेशन भी ट्राई करनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते टाइम ध्यान हट जाता है, तो ऐसे में क्या करें?
1: जिस समय आपका ध्यान हट जाता है कोई बात नहीं, फिर जहां से आपकी सजगता जुड़ती है गाइडेड मेडिटेशन पर, टीचर पर, गुरु पर, मास्टर पर, तो फिर वहां से शुरू कीजिए।
0: तो डॉक्टर राजेश, क्या गाइडेड जो होती है मेडिटेशन जो होती है उसमें हम कई सारी बातें सुनते हैं, क्योंकि वो साथ साथ जो है वो हम पूरी बातें जो है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन जो है वो चलती रहती है, तो ऐसे में कभी ये भी होता है कि हम उस चीज़ को करने में इतने ज़्यादा इतने लंबे टाइम तक कम्फर्टेबल नहीं है, और तब जो है ध्यान हटना शुरू हो जाता है, उस टाइम पर क्या करना चाहिए? क्योंकि हम कितना भी फिर हम कोशिश कर लें फिर वो नहीं हो पाता, और आजकल सिर्फ गाइडेड इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे किसी गुरु के पास जा रहे हैं, बल्कि आजकल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर आप यूट्यूब पे भी देखिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी ऐसी मिल जाएंगी, ऐसे एक वॉइस का मिल जाता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गाइडेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं मेडिटेशन के लिए वो अच्छी हैं, या फिर जो हम मन से करें, शांति से करें, वो ज़्यादा बेहतर है?
1: देखिए, योग एक विज्ञान है, और यह विज्ञान शरीर का नहीं है, सिर्फ शरीर का विज्ञान हम समझते हैं तो ये हमारी, हम इसको बहुत छोटे लेवल में देख रहे हैं, यह मन का विज्ञान है। अब एवरी इंडिविजुअल्स की डिमांड अलग अलग है। अगर मान लीजिए कोई जीवन में डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसके लिए ध्यान अच्छी चीज नहीं है, वो और अंदर अंतर्मुखी बन जाएगा। तो आपको बड़ा सजग रहना है कि आपको क्या जरूरत है। हर ध्यान सबके लिए सही नहीं है, जैसे जो लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे जो जीवन में कुछ संघर्ष कर रहे हैं, और खास करके डिप्रेशन वालों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ध्यान मत कीजिए, आप डायनामिक प्रैक्टिस कीजिए। तो ध्यान जो है, यह सबसे पहले समझना होगा कि आपकी जरूरत है या नहीं है, आप किस क्वालिटी में क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक सामान्य जनमानस के लिए जो ध्यान है, 2 से 5 मिनट का रोज करना चाहिए, सोने के पहले आंखों को बंद करके। अगर आप किसी भगवान में आस्था रखते हैं उनके साथ जुड़िए, गुरु में भी आस्था रखते हैं गुरु के साथ जुड़िए, जिससे आपका आंतरिक संबंध है, इंटरनल रिलेशंस आपका बना हुआ है, परमात्मा से मिला हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, गुरु से बना हुआ है, जिससे भी बना हुआ है उससे आप जुड़िए, और अपने आप को आप इस्टेब्लिश कीजिए। इससे आपकी एकाग्रता आएगी, मन की एकाग्रता ध्यान के लिए बहुत जरूरी है, और जब मन की एकाग्रता होती तो आपके पूरे साइकोफिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है आपके व्यक्तित्व का, वह बैलेंस होता है, माइंड और ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड का, यही जगह है जहां हमारी बीमारियां, हमारे जितने सिंपैथेटिक अराउजल हैं, हाइपरटेंशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वह मॉनिटर हो जाता है। इसलिए ध्यान रोज कीजिए, 2 से 5 मिनट से शुरू कीजिए, कोई जरूरी नहीं है आपको आधा घंटा 1 घंटा करने के लिए, शुरू कीजिए 2 मिनट से। सुबह उठते हैं आंखों को बंद करके थोड़ा देर के लिए अपने श्वासों को देखिए, ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं, थक गए हैं, कुछ देर के लिए आंखों को बंद के अपने श्वास की आवाज को सुनिए, सोहम की आवाज पर अपनी चेतना बनाइए, श्वास के लेने पर सो और श्वास के छोड़ने पर हम। बुद्ध का तो यही ध्यान था, उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने श्वासों के प्रति दृष्टा बनेंगे, साक्षी बनेंगे, आनापान जिसको कहते हैं मेडिटेशन जो विपश्यना का है, यही तो है, श्वासों को जानिए, जिसने अपने श्वासों को जान लिया वह संसार के सारे रहस्यों को जान लिया।
0: बिल्कुल,
1: यही है ध्यान।
0: बिल्कुल, तो चलिए, बहुत सारी बातें जो हैं आज हमने करी हैं और कई सारी बातें जानी हैं, और थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश कि आप हमारे साथ यहाँ आए, इतनी सारी आपने बातें करी, अपने विचार साझा करें, हमारे लिसनर्स के जवाब भी दिए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
1: धन्यवाद साक्षी, आपसे मिलकर के रेडियो मानव रचना के श्रोतागण से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है।
0: डॉक्टर राजेश, यही आशा करूंगी कि अगले वेंसडे आप फिर से आएंगे बहुत सारी जानकारी लेके, और अगली बार का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो भी बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। जी हाँ, देखिए, मन की बातों को जानेंगे, योग के बारे में जानेंगे, और कुछ खास बातें जानेंगे योगासन के बारे में भी। चलिए, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेना, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगी जिसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले सेगमेंट में जिसका नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel like.
2: Ajo, huh? ये हुई ना बात।

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट का टाइम है हमारे और सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद RJ साक्षी। आज एक बहुत ही खास एक शख्सियत के बारे में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहीं ना कहीं खो जाते हैं, जो काम तो बहुत अच्छा करते हैं, ये जो देखिए कामयाबी तो हासिल करते हैं, लेकिन उन्हें कोई याद नहीं रखता है। आज एक ऐसे ही शख्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जब जिंदगी हर्डल्स बन जाए ना, तब ही असली हर्डलर जन्म लेता है। और आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे कहानी जो एक खिलाड़ी की है, जो कि मतलब एक अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन कहीं ना ये भीड़ में खो गए। कहीं ना कहीं इतना सब कुछ हासिल करने के बाद, इतना हमारे देश का नाम रोशन करने के बाद, ये कहीं ना खो गए, बिल्कुल खो गए। जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ, इंडिया के एथलीट्स वर्ल्ड में नई लहर जो लेकर के आए, उनका नाम है धरुण अयास्मी। तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे से आने वाले धरुण का बचपन आसान बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ 8 साल के थे जब उनके पापा, जो कि एक बस कंडक्टर थे, उनका कैंसर से देहांत हो गया। घर में सिर्फ माँ थी जो ट्यूशन पढ़ाकर दो बच्चों को संभाल रही थी और अपना भी खर्चा जो है वो चला रही थी। पर धरुण ने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। स्कूल में पहले वो कबड्डी खेलते थे, लेकिन कोच ने उनके रनिंग स्पीड देखते हुए कहा कि ये तो स्प्रिंटर बन सकता है बेटा। बस फिर क्या था, धरुण ने एथलेटिक्स को अपना कर्मा बना लिया। पर ये रेस सिर्फ ट्रैक तक सीमित नहीं थी, शूज अफोर्ड नहीं कर सकते थे, न्यूट्रिशन की कमी थी, पर प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। सुबह 4 बजे उठकर मिट्टी के ग्राउंड पे प्रैक्टिस किया करते थे, दिन भर कॉलेज और पार्ट टाइम काम भी करते थे, और शाम को फिर दौड़ भाग में लग जाते थे, यानी कि अपनी प्रैक्टिस में लगते थे। 2016 रियो ओलंपिक्स के लिए जब इंडियन 4x400 meter रिले टीम चुनी गई, धरुण उनमें सबसे जवान मेंबर थे। और फिर 2018 में एशियन गेम्स में 400 मीटर्स हर्डल में उन्होंने सिल्वर जीता। और हर किसी को देखिए बहुत ही ज़्यादा हैरानी थी इस बात से कि कैसे उन्होंने ऐसा कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया इसके साथ, जो ही था 48.80 seconds का। और ये सब एक ऐसे लड़के ने किया जिसके पास न ट्रैक था, ना कोचिंग थी, और ना कोई लग्जरी, ना कोई ऐसा कुछ था कि खाने पीने का कुछ ऐसा न्यूट्रिशन मिल रहा हो। सिर्फ जो एक चीज़ थी वो था उनका जुनून, और इसी जुनून ने उन्हें मेडल तक का रास्ता दिखाया। धरुण अयास्मी ने ये साबित कर दिया कि कहानी वही नहीं होती जो हेडलाइंस में आती है, असली कहानी तो वो होती है जो मिट्टी से निकल कर मेडल तक जाए। सैल्यूट है हमारे इस अनसंग हीरो को जिनका नाम है धरुण अयास्मी। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद आपको एक और ऐसे ही अनसंग हीरो के बारे में बताने वाली हूँ कौन है, बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और सेगमेंट जो है ये हमारा चल रहा है, सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी। और इस पावर प्ले विद आरजे साक्षी में मैं आपके साथ कर रही हूँ बहुत सारी बातें। जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया है धरुण अयासमी के बारे में जो कि एक अनसंग हीरो है। ऐसे ही एक और कहानी आपको बताती हूँ जो कि है कृष्णा नागर की। जी हाँ, कृष्णा नागर जो कि पैरा बैडमिंटन का चैंपियन है। जो देखिए कहा जाता है ना, जहाँ जिंदगी लिमिट सेट करती है ना, वहीं से कृष्णा जैसे लोग लिमिट तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नागर की अगर बात करें तो इनकी हाइट सिर्फ 4 feet 5 inches है, लेकिन उनका जज्बा इतना बड़ा है कि उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन कर दिया। कृष्णा को चाइल्डहुड से ही जो है वो देखिए कहा जाता था ड्वार्फिज्म कहा जाता था, और लोग उन्हें जो है वो छोटा कहते थे, उनके हाइट को लेके उनको चिढ़ाते थे, काफ़ी कुछ कहते थे, लोग उन्हें छोटा समझकर इग्नोर कर देते थे। पर कृष्णा ने बैडमिंटन रैकेट उठाया और दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को हराया। उनकी ट्रेनिंग के दौरान कई बार उन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया, पर वो सिर्फ एक लाइन कहते थे, हाइट मैटर नहीं करती, फ्लाइट मैटर करती है। और इसी फ्लाइट में चढ़कर उड़ान भर ली और गोल्ड मेडल जिता दिया। आज कृष्णा नागर एक रोल मॉडल है उन सब के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं लेकिन मेंटली अनबीटेबल हैं। तो चलिए, ऐसे ही अनसंग हीरो को सैल्यूट है जो कि हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करवा रहे हैं। और ऐसे ही एक और भी मैं आपको बता दूं, एक ऐसे ही अनफॉरगेटेबल मैं आपको फुटबॉलर एक जीनियस है जो कि है तुलसीदास बालाराम, जो कि 1956 और 1960 ओलंपिक्स में जब इंडिया फुटबॉल में टॉप 4 टीम्स में से थी तब एक नाम था तुलसीदास बालाराम। गरीबी में वैसे ये पले बड़े, और उसके बाद देखिए क्या हुआ कि इनके पास जो है वो शूज़ के पैसे नहीं थे, फुटबॉल खेलने तक के पैसे नहीं थे, या कहीं जाते थे तो लोग गरीब थे तो पहले इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है कास्ट सिस्टम भी था तो उनको हटा दिया जाता था। और इंडिया के लिए उसके बाद जो इन्होंने किया, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत से अपने इरादों से दिखा दिया कि ये किसी से कम नहीं है, इंडिया के लिए गोल स्कोर इन्होंने किए इटली जैसे टीम के अगेंस्ट, और उनकी स्पीड और स्टेमिना लेजेंड बन चुकी थी। लेकिन जब तक मीडिया ने उन्हें नोटिस किया वो ऑलरेडी फुटबॉल छोड़ चुके थे। आज उनका नाम टेक्स्ट बुक्स में जरूर मिलता है और हमारे दिलों में भी। तो चलिए सैल्यूट करते हैं एक ऐसे ही खिलाड़ी को एक बार फिर से, और आप अब कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। तो आप जुड़े रहिए क्योंकि अब वक्त जो है ये हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का। सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें होंगी बहुत सारी बातें। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 7.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूं। जी हां, बात मैं कर रही हूं अब हमारे अगले सेगमेंट की, जो कि है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि बात मैं अब कर रही हूं कौन बनेगा सेहतमंद की। अच्छा, आप बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि अभी है ना हम बात करने वाले हैं हमारी पहली आज की पहेली की। अच्छा, पहेलियों के जो सही जवाब देगा हर महीने, पूरे महीने, हर एक दिन कंसिस्टेंट रह के, भाई अगर जो विनर होगा उनको मिलेगा मौका मुझसे मिलने का, हमारे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टेशन आने का, और साथ ही सभी एड्रेस से मिलने का। चलिए इसी के साथ आज की पहेली आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा आसान सी ये पहेली है। रात को साफ देखने की क्षमता दूं, आंखों की सेहत में बढ़ा दूं, गाजर में रहती हूं मैं खास, मेरी कमी से होती है रात में प्यास, बताओ कौन हूं मैं। अच्छा, इसका हिंट जो है वो रहेगा मेरी ओर से आपके लिए, नारंगी सब्जियों में ये पाई जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा खास है, और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको काफ़ी कठिनाई हो सकती है। एक बार फिर से मैं पहेली दोहरा देती हूँ, ज़रा ध्यान से सुनेगा, आपको समझ आ जाएगा किस बारे में मैं बात कर रही हूँ। रात को साफ दिखने की क्षमता दूँ, आँखों की सेहत में बढ़ा दूँ, गाजर में रहती हूँ खास, मेरी कमी से होती है रात में प्यास। चलिए इसका जवाब दीजिए आप, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ लेकर आई हूँ प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, सोमवार से लेकर रविवार, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और हम करते हैं बहुत सारी बातें. फिलहाल सेगमेंट का हमारे टाइम चल रहा है. सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें हम बात कर रहे हैं हमारी पहेली की. तो जी हाँ, तो पहेली मैंने आपसे पूछी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान पहेली है, जिसके बड़े सारे जवाब मेरे पास आए हैं. पहेली एक बार बता देती हूँ मैं आपको. रात को साफ दिखने की क्षमता दूँ, आँखों की सेहत में बढ़ा दूँ, गाजर में रहती हूँ खास, मेरी कमी से होती है रात में प्यास. तो देखिए, इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा आसान है. इसका जवाब है विटामिन ए. जी हाँ, विटामिन ए जो है वो आँखों की रोशनी और इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है, अच्छा बनाती है, ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए. इसकी डेफिशिएंसी से हमारी आँखें कमज़ोर हो सकती हैं, तो इसीलिए विटामिन ए लेना ज़रूरी है. इसी के साथ साथ जिसका सबसे जल्दी सही जवाब आया है वो है हमारी एक लिसनर, जिनका नाम है अनामिका. अनामिका जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सटीक जवाब दिया और बहुत ही जल्दी जवाब दिया है. और बहुत सारे जवाब आए, बबलू जी का भी जवाब मेरे पास आया है, साथ ही साथ मेरे पास जवाब यहाँ पर आया है सीमा जी का, इसी के साथ सुनीता जी का और मोहित जी का भी जवाब मेरे पास आया है. अब इसी के साथ वक्त जो है वो हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी अगली पहेली. तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

था पूरा सार चंदन का। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ लेकर आई हूँ प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। इसी के साथ एक बहुत ही खास जानकारी आपको दे दूं। देखिए, आप कहीं भी जाते हैं, शहर से बाहर जाते हैं, यानी कि फरीदाबाद शहर से बाहर जा रहे हैं, तो अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़ नहीं सकते। जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारी इंटरनेट ऐप के थ्रू। यानी कि आपको बस क्या करना है, अपना मोबाइल फोन लेना है, कोई भी आपका जो एंड्रॉयड या iOS मोबाइल फोन हो वो लेना है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाना है और वहां पर आपको सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, हमारी ऐप को करना है डाउनलोड और कमाल के पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ढेर सारी जानकारी आपको मिल सकती है। अगर कुछ आपकी पॉडकास्ट जो है, कुछ बात जो है वो छूट जाती है, तो भी आप उस पर सुन सकते हैं, एक्सपर्ट की एडवाइस आपको मिल सकती है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो अभी लेती हूँ एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। बातें हमारी चल रही हैं, आपको अगली अपनी पहेली के बारे में बता दी। हमारी आज की अगली पहेली बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको बस जल्दी से इसका जवाब देना है। तो अपना मोबाइल फ़ोन बिल्कुल तैयार रखिए। पहेली है, हड्डियाँ बनाऊँ मजबूत, सूरज में छुपा मेरा सुरूर, धूप से मिलता हूँ मुफ्त, बचपन से बुढ़ापे तक जरूरी सबूत। जी हाँ, ये है आज की पहेली। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हड्डियों बनाऊँ मजबूत, सूरज में छुपा मेरा सुरूर, धूप से मिलता हूँ मुफ्त, बचपन से बुढ़ापे तक जरूरी सबूत। तो ये है आज की पहेली। हिंट मैं आपको दे देती हूँ, ये जो है हमारी बॉडी को कैल्शियम सोखने में मदद करता है। अब ये क्या है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सभी की बॉडी के लिए, हमारी देखिए ज़रूरत है, इसकी डेफिशिएंसी से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में आप बताइए, कौन सी बात मैं क्या मैं कहना चाह रही हूँ, क्या है पहेली का जवाब। नंबर एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 8010781078। आप दीजिए इस पहेली का जवाब। तक के लिए कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। एक पहेली आपसे पूछी है और इस पहेली का जल्दी से आपने जवाब जो है वो मुझे दिया है। पहेली बहुत ही ज्यादा आसान, मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। हड्डियां बनाऊं मजबूत, सूरज में छुपा मेरा सुरूर, धूप से मिलता हूँ मुफ्त, बचपन से बुढ़ापे तक जरूरी सबूत। ये है हमारी आज की पहेली और इसका जो जवाब है सबसे सटीक, सबसे सही दिया है हमारे लिसनर ने, जिनका नाम जो है वो है मोहित जी। जी हाँ, मोहित जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, कंग्रेचुलेशंस। और आप भी कंसिस्टेंट रह के आपने जवाब दे सकते हैं। अगर आप पूरे महीने कंसिस्टेंट रहते हैं और जो सबसे ज्यादा जवाब देता है, यानी कि पूरा महीना कंसिस्टेंट रहता है और जल्दी जल्दी सारे जवाब देते हैं अगर आप, तो आपको मिलता है मौका मेरे साथ आपको रेडियो स्टेशन यहाँ पर आने का, मुझसे बातचीत करने का लाइव और सभी आरजे से मिलने का। अब बात करते हैं यहाँ पर इस पहेली के जवाब की, जो है विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी जो है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है और विटामिन डी मिलता है हमें सनलाइट से, यानी कि हमारे जो धूप है ना। मतलब आप सोचिए कि मैंने पहली में इसका जवाब दे दिया था, इतना आसान था ना, तो आपने जल्दी जल्दी जवाब दे रहे थे और हमारे पास जवाब भी आए हैं, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए इसी के साथ लेती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी करी हमने आज बातें. देखिए अपने सेगमेंट दिल धड़कने दो में हमने बातें करी हैं और यूटोरी लाइफस्टाइल के बारे में मैंने आपको बताया है. स्ट्रेस से दूर रहना ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं. इसी के साथ साथ सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज जो कि मैं लेकर के आती हूँ आपके पास योगा और मेडिटेशन की हम बातें करते हैं. तो आज हमने डॉक्टर राजेश से बहुत सारी बातें करी. आज वेंसडे का दिन है और हर वेंसडे हमारे साथ आकर के जुड़ जाते हैं डॉक्टर राजेश जो कि एक योग गुरु हैं, हैप्पीनेस कोच हैं और साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट हैं. तो बातें हमने बहुत सारी करी हैं योग गुरु से भी. इसी के साथ पावर प्ले विद आरजे साक्षी जो कि हमारा अगला सेगमेंट जिसके बाद हमने बात करी है. यहाँ पर देखिए बहुत ही अनसंग हीरोज की हमने बात करी है और सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद जिसमें पहेलियाँ आपसे पूछती हूँ. तो चलिए इसी के साथ बहुत सारी हमने बातें तो करी हैं और ऐसे ही बातें अब मेरी जारी रहेंगी लेकिन अभी नहीं कल. यानी कि अब वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाज़त लेने का. ये वक्त है ये जो कहता है कि साक्षी अब देखिए अब इजाज़त ले लीजिए क्योंकि अब आने वाली है आरजे दीक्षा जो करेंगी आपसे ढेर सारी बातें. व्हाट्सएप फरीदाबाद में क्या कुछ खास है ये कुछ बताने वाली है और भाई जानकारी ज़रूरी भी है. तो आप बस उन्हीं के साथ जुड़े रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त. मुलाकात होगी आपसे कल. ये वादा आपसे करती जा रही हूँ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. आप कहीं मत जाइए. जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव.

मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग ले एक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे। इस

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को एक अलग पहचान दिलाई है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने न केवल 1, 2 या 10 मेडल जीते होंगे, वो भी गोल्ड या सिल्वर, बल्कि अनगिनत मेडल्स उनके घर की एक वॉल पर लगे हुए हैं जो कि आर्चरी के फील्ड में उन्होंने अर्जित किए हैं। जी हाँ, हम आज के कार्यक्रम बियॉन्ड द गेम में बात करने वाले हैं देश के जाने माने आर्चर अर्जुन अवॉर्डी, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियनशिप के मेडलिस्ट अभिषेक वर्मा जी से, जो कि फिलहाल इंडियन आर्चर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स भी हैं। तो आज इनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। प्रोग्राम का नाम है बियॉन्ड द गेम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ।
1: अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
2: थैंक यू सो मच।
1: तो अभिषेक जी, हम बात करें हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जिन्होंने आर्चरी के क्षेत्र में देश को एक अलग पहचान दिलाई है। और जब मैं आपके मेडल्स के बारे में देख रही थी इंटरनेट पर, जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो मुझे टिपिकली फिंगर से काउंट करने पड़े, इतने सारे मेडल्स थे आपके।

0: वो स्टार्टिंग जर्नी थी टिल अभी तक लास्ट मंथ ही हम फ्लोरिडा वर्ल्ड कप खेल करके आए हैं, उसमें मेरा मेडल रहा है। तो बैक टू बैक टूर्नामेंट आते गए खेलते गए, तो मेरा बस यही है कि एक टूर्नामेंट बीत गया, नेक्स्ट टूर्नामेंट की सोचो और आगे बढ़ो। अगर पुराने
1: जी
0: वालों की खुशी या गम अगर हम करते रहेंगे तो आने वाले टूर्नामेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं ज़्यादा सोचूं, चाहे वो इंटरनेशनल में एशियन गेम्स हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या वर्ल्ड कप्स हो या कोई नॉर्मल नेशनल हो, मैं हर एक को इक्वल ही सोचता आया हूँ। टूर्नामेंट को टूर्नामेंट की तरह सोचा है और आगे बढ़ता चला हूँ। एक टूर्नामेंट खत्म तो मेरे को दूसरे की प्रिपरेशन करनी है, दूसरा खत्म तो मुझे आगे एक और की प्रिपरेशन करनी है। तो बैक टू बैक मेरा ये रहा है और फॉर श्योर मतलब कोशिश करी कि अच्छा कर पाऊँ,
1: जी
0: मेडल ले पाऊँ, और बैक टू बैक में मेडल दिए भी हैं और कई।
1: जी
0: पर ये भी है कि इतने सारे मेडल लिए हैं पर इससे कहीं ज़्यादा मैंने हार भी फेस करी है। ऐसा नहीं है कि मैं
1: जी
0: जाता हूँ
1: जी
0: और मेडल दे करके आ जाना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे
1: बिल्कुल
0: वर्ल्ड वाइड प्लेयर आते हैं, परफॉर्म
1: बिल्कुल
0: करते हैं, मेडल सिर्फ तीन ही होते हैं। तो अगर आपने दो जीत देखी है तो उसके पीछे तीन हार भी हैं,
1: बिल्कुल
0: जो
1: बिल्कुल
0: हार्ड वर्क होता है, जो चीज़ें होती हैं, तो वो भी एक प्लेयर की लाइफ में इम्पोर्टेंट लेसन है। अगर उस हार को अगर वो बना ले कि अपना फियर बना ले कि नहीं मैं तो हार गया, मैं कोशिश ही ना करूं, तो आने वाली जीत का वो मजा नहीं ले पाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी लंबी आपकी मेडल्स की लिस्ट है, ये आपने आर्चरी में जीते हैं, लेकिन शुरुआत आपने शायद आर्चरी से नहीं, लॉन टेनिस से की थी। आप लॉन टेनिस खेलते थे और उसके बाद
0: राइट
1: आर्चरी में आए, क्या ये सच है?
0: नहीं, बिल्कुल सच है। ये लॉन टेनिस मेरा फर्स्ट गेम था। ऑल्दो मैं काफी सारे गेम्स मैंने खेले हैं अपने चाइल्डहुड में। मैं क्रिकेट खेलता था, हॉकी खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, स्केटिंग करता था, सारे काफी करे हैं। पर प्रोफेशनली मैंने एक बार एंटर फर्स्ट जब मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जाना है तो मैंने लॉन टेनिस लिया। 2 महीने करा, 2 महीने में दो तीन रैकेट तोड़े और
1: जी
0: दो शूज पेयर मैंने खराब करे। फिर पेरेंट्स ने बोला नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, कोई अपने स्कूल में जाना और अपने पीटी टीचर से जाकर के बोलना कोई ऐसा गेम बताए जिसमें
1: तोड़ फोड़
0: फाइनेंशियली
1: थोड़ी कम हो
0: तोड़ फोड़ नहीं, उसमें
1: जी
0: फाइनेंशियल भी कम लगे, उनका कोई अमाउंट ना लगे, उनका कोई पैसे ना लगे। पर बाई चांस ही मेरे बस जो सीनियर, क्योंकि हमारे स्कूल हब होता था आर्चरी गेम का, तो उन्होंने भी
1: जी
0: बोल दिया, मेरे जो टीचर थे राम कुमार सरावस, उनने बोल दिया कि ठीक है आप आर्चरी ज्वाइन कर दो। कहने के लिए तो चलो बहुत अच्छा किया, मुझे आर्चरी में डाल दिया। पर ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी ना कि बहुत ये सबसे मतलब इसमें अमाउंट नहीं लगता वो है, पर एक्सपेंसिव गेम के मुझे लग रहा है कि टॉप एक्सपेंसिव गेम्स में आर्चरी शूटिंग ये सब आते हैं,
1: जी
0: तो वो रहा इसमें। पर ठीक रहा, अच्छा रहा, उनका अच्छा डिसीजन था। तो उन्होंने प्लेयर को बखूबी नापा कि कैसा प्लेयर है, क्योंकि आर्चरी या शूटिंग ऐसे गेम है जो वो होते हैं ना, कई तरह के बच्चे होते हैं हमारे। एक होता है चंचल वाला होता है, एक होता है शांत होता है। तो एक प्लेयर को देख करके जज करना कि कौन सी गेम के लिए सुटेबल है, जो फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर है लाइफ का, वो शायद पीटी टीचर ध्यान से देखते हैं कि कोई एक्टिव है कोई नॉन एक्टिव है, कौन चेस के लिए बढ़िया है, कौन क्रिकेट के लिए बढ़िया है, कौन रनिंग में बढ़िया है, कौन शॉटपुट में बढ़िया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: फर्स्ट
1: तो
0: डिसीजन लाइफ में उन्होंने दिया था।
1: जी जी
2: सो बहुत सारी बातें हम अभिषेक जी से कर रहे हैं, देश के जाने माने आर्चर जिन्होंने तीरंदाजी को एक नया मकाम दिया है, और किस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी इससे लेकर, और किस तरीके से वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं आज भी, ये हम जान रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है बियॉन्ड द गेम। वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM. नाम है मेरे दीक्षा और आपके लिए कार्यक्रम लेकर आई हूँ बियॉन्ड द गेम, एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ पर हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो खेल जगत की जानी मानी हस्ती हैं, देश का नाम विश्व पटल पर रोशन कर चुके हैं और आज भी उनकी कोशिशें जारी हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज अभिषेक वर्मा जी से, जो कि वैसे तो असिस्टेंट कमिश्नर हैं इनकम टैक्स विभाग में, लेकिन इसके साथ साथ जिस लेवल पर ये पहुंचे हैं वो अपने खेल के कारण पहुंचे हैं। और खेल इनका है आर्चरी यानी तीरंदाजी, एक ऐसा खेल जिसमें इन्होंने शुरुआत करी यूं ही मजे मजे में, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहां तक पहुंच जाएंगे और मेहनत मशक्कत और अपनी सोच के साथ इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। दिन रात की कोशिशें, दिन रात की मेहनतें, पूरे परिवार का सपोर्ट लगता है तब जाकर एक खिलाड़ी तैयार होकर गोल्ड मेडल लेकर आता है। तो अभिषेक वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोग्राम का नाम है बियॉन्ड द गेम।
1: तो ये स्कूल से शुरुआत करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी स्कूल के दिनों के बारे में, हमें कुछ बताइए कि आप गेम्स तो बहुत सारे खेलते थे, आपने अलग अलग स्पोर्ट खेले हैं और अच्छे खेले हैं। जब कोई रैकेट तोड़ने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो गेम भी बहुत सॉलिड तरीके से खेल रहा है ताकि रैकेट टूट चुके हैं। लेकिन फिर उसके बाद आर्चरी में आए, तो स्कूल के दिनों की कुछ यादें, फिर आर्चरी की शुरुआत आपने करी, उसमें क्या स्ट्रगल फेस करी या किस तरीके से कितना फोकस्ड रहना पड़ता है इस खेल के लिए, ये हमें थोड़ा सा बताएं।
2: देखिए ना, गेम लेना ना एक पैशन का काम होता है। वो फॉर एग्जांपल जब कोई जीत करके आता है प्लेयर और उसको सबके सब सम्मानित करते हैं, प्रिंसिपल ड्यूरिंग द प्रेयर सेरेमनी उसको अवार्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको सबके सब जानने लग जाते हैं। तो मेरे जब सीनियर स्कूल नेशनल्स खेल करके आए तो उनको इमीडिएट माला पहनाई, कैश अवार्ड दिए, चीजें करी, तो बहुत एक तरह से वो प्रेरित, वो करने वाला इमोशन वो मेरे आज भी मेरे लिए है। मैंने जब देखा फिर हुआ कि नहीं, ये तो हमें भी करना चाहिए, मुझे भी करना है। तो एक वो जोश लाना कि स्पोर्ट्स के प्रति कि नहीं ये स्पोर्ट्स करना है, तो अपने घर में जाके बात करना, फिर पीटी टीचर, तो एक सबसे अहम भूमिका वो टीचर की रही है, स्पोर्ट्स टीचर की, क्योंकि जो और टीचर होते हैं तो फॉर श्योर एक बच्चे के भविष्य के लिए ही काम करते हैं, पर जो स्पोर्ट्स टीचर है एक ही स्पोर्ट्स टीचर होता है पूरे स्कूल में,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: एफर्ट करता है वो कि वो ना हो। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने 100%, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स इनिशियली जब करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग रहता है, एकदम रिजल्ट आपका नहीं आता इनिशियली, उसका बिल्कुल नहीं रहता। मेरी अगर बात करें तो मैंने एट क्लास में मैंने आर्चरी स्टार्ट करी थी, यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मैं जाता था ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि कोच वहीं पे थे लोकेश सर मेरे, तो वहां पे वो सिखाते थे। इनिशियली मुझे 2 साल 1 साल मतलब अप्रोक्सीमेट 18 महीने से 2 साल मेरे को लग गए एक नेशनल में परफॉर्म करने लायक बनने के लिए। तो उस ड्यूरिंग पीरियड क्लास 8 to 9 मुझे सपोर्ट चाहिए था मुझे, क्योंकि क्लासेस मिस भी होती थी, पीरियड भी मिस होते थे,
1: बिल्कुल।
2: तो उसमें हेल्प करने के लिए मेरे पे बस एक ही शक्ल होती थी मेरे पीटी टीचर की, सर प्लीज हेल्प मी। तो वो जाते थे, टीचर से बात करते थे, मेरे एग्जाम में भी उस टाइम पे रिजल्ट पे इम्पैक्ट आया। पहले मैं कह सकते हैं 60-70% वाला एवरेज स्टूडेंट था, फिर गेम, और उसको अगर एक गेम को आप 6 घंटे दे रहे हैं लाइफ के, उसके बाद थक हार के सो रहे हैं, तो उसके बाद इम्पैक्ट आएगा, तो वो एवरेज घट करके 40-50% पे आ गई, पर वो रही, रेगुलर रही। दो साल के बाद ही ड्यूरिंग द स्कूल टाइम ही एट द क्लास ऑफ 10th में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने नेशनल चैंपियनशिप में, नेशनल था वो, तो इमीडिएट ऐसा एफर्ट हुआ कि मतलब आफ्टर द नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियन बनते के साथ ही मैंने न्यू मॉडर्न बोज में स्विच करते के साथ इंडिया टीम में नेक्स्ट ईयर मैंने सीनियर इंडियन टीम में मैंने अपना डेब्यू किया। वहाँ पे स्कूल में एकदम कैसे मतलब नाम फैल गया अभिषेक, तो
1: स्कूल में और आसपास के जो लोग होते हैं पड़ोस में अब एकदम हीरो बन जाते हैं, वो वाली सिचुएशन हो गई आपके साथ
2: फॉर श्योर। एक आप एक स्कूल में, एक नॉर्मल स्कूल में एक अच्छी एक अचीव करना, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में, एक चैलेंजिंग काम था कि
1: वहाँ पे, क्योंकि बच्चे भी बहुत सारे होते हैं वहाँ पर,
2: कह सकते हैं हमारी 60 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी, फिर एटमोसफेयर भी वैसा ही होता है, बट ठीक है। मैं खुश हूँ अपने एकेडमिक जो मेरा हिस्ट्री रही है, मेरी क्लासेस रही है, मेरे टीचर्स रही है, मेरे को सपोर्ट रहा है, शायद उसी के बदौलत मैं आज अच्छा कर पा रहा हूँ। तो स्कूल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में, क्योंकि वो वही गाइडेंस देता है। वो कहते हैं ना कि बिफोर बिलो 18 तो मतलब एडल्ट भी नहीं, मतलब उनका माइंड काम ही नहीं करता, इसलिए गवर्नमेंट भी वही मानती है, मतलब सारा स्कूल एक तरह से फ्रेशर का स्कूल होता है, जैसा ढाल दो वो वैसा ढलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ठीक बात कही आपने।
2: तो हमें भी नहीं मालूम होता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इसमें अहम भूमिका जो लाइफ की जो चेंज करने वाले होते हैं शायद पेरेंट्स के बाद वो स्कूल के टीचर्स ही होते हैं जो गाइडेंस करते हैं, और उन्हीं की गाइडेंस पे हमारा पूरा थ्रू आउट द करियर डिपेंड होता है। कई लोग साइंस लेते हैं, कई लोग आर्ट्स लेते हैं, कई लोग गेम में जाते हैं, कई लोग कॉमर्स में जाते हैं, तो वो डिसीजन शायद स्कूल के टीचर देख करके करते हैं और वो वही एक लाइफ लॉन्ग बन जाता है।
1: जी जी,
0: तो बहुत सारी बातें और भी जारी रहेंगी अभिषेक वर्मा जी के साथ, लेकिन अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और इस बातचीत को आप बार बार सुनना चाहते हैं, किसी खेल प्रेमी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो दिल में मत रखिए, शेयर कीजिए। हमारी ऐप यानी हमारा इंटरनेट रेडियो ऐप डाउनलोड कीजिए, रेडियो मानव रचना, जो कि प्ले स्टोर और iOS पर उपलब्ध है। आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद पॉडकास्ट सेक्शन में जाइए, आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सुन सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM आपके अपने शहर फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम बियॉन्ड द गेम, और बियॉन्ड द गेम में हर हफ्ते एक खास खिलाड़ी के साथ होती है मुलाकात जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर बनाई है अपनी एक अलग पहचान। और आज इसी कड़ी में हम बात करें हैं अर्जुन अवार्डी अभिषेक वर्मा जी से, जो कि देश के जाने माने आर्चर हैं। जी हाँ, आर्चरी को इन्होंने अपने खेल की श्रेणी में रखा। शुरुआत में कुछ और गेम्स खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आर्चरी की तरफ बढ़े तो दुनिया ने इनका लोहा माना। और आज की तारीख में ये असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स विभाग हैं, और साथ ही एक बहुत ही जाने माने आर्चर भी हैं, जो कि दुनिया भर में अभी भी भारत का परचम लहरा रहे हैं।
1: तो अभिषेक जी, ये तो स्कूल की बात हुई, स्कूल के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, तो उसमें भी आपके इस गेम का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेना होता है तो स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है और उनको आगे अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती है।
2: देखिए, ये बहुत हमारे पे एडवांटेज बोलते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन, अब अगर आप कंपेयर करोगे नॉन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स वाला जो मेडलिस्ट होगा उसके पास चॉइस होती है कि कौन से कॉलेज में जाए।
1: बिल्कुल।
2: पर जो नॉर्मल वाले जो होते हैं वो स्कोर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं मुझे ये कॉलेज मिलेगा।
1: बिल्कुल।
2: तो शायद मेरे लिए लाइफ में भी यही था कि मैं 2007 में मैंने स्टार्ट किया था हंसराज कॉलेज, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है हंसराज से 2007-10 में। तो मेरे पास एट द टाइम ऑफ 2007 मेरे पे ऑप्शन था दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है।
1: Okay.
2: क्योंकि मैं एशियन चैंपियन बन चुका था, इंडिया टीम के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेडल ला चुका था, सीनियर नेशनल चैंपियन बन चुका था, मेडल ऑफ वो थे, और कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी गेम्स जो होते हैं वो मेन माने जाते हैं, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप लाना मायने रखता है, इंटर कॉलेज मायने रखता है, तो हर कॉलेज भी चाहता है कि हमारे कॉलेज में अच्छे प्लेयर्स आए जिससे कि हम चैंपियनशिप्स और आगे बढ़ पाए।
1: बिल्कुल।
2: तो मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन था, और थैंक यू हंसराज कॉलेज एक आउटस्टैंडिंग मेरे को सपोर्ट करने के लिए, आउट ऑफ द वे जाकर के सपोर्ट करने के लिए। उसमें सविता कोचर मैम हुआ करती थी मेरे टाइम पे, एमपी शर्मा सर आज तक मेरे हंसराज कॉलेज में आज भी हैं और सपोर्टिव रहे हैं हमेशा। तो बियॉन्ड दैट वो कह सकते हैं ना कि वो एकेडमिक भी आपकी चल रही है साइड बाई साइड, आपकी आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा ग्राउंड था वो जो कि खोल रखा था उन्होंने कि आप कभी भी ट्रेनिंग करो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: जी, यानी फैसिलिटीज बहुत होती हैं, और कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में तो बहुत सारी स्पोर्ट्स की सुविधाएं होती हैं, ड्रामेटिक्स का, म्यूजिक का, हर तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं।
2: बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक है। एक अच्छा कॉलेज वही है ना कि आपको टाइम देता है, ऑप्शन देता है, आपको सपोर्ट करता है, स्कॉलरशिप देता है, स्कॉलरशिप में आपकी फीस रिफंड कराता है, आपको सपोर्ट करता है कि एक बच्चा का फ्यूचर अच्छे से बन पाए। इसमें अहम भूमिका अदर टीचर्स की भी रहती है, फिर अगेन वही कि इसमें हमारे स्पोर्ट्स टीचर का बड़ा रोल रहता है कि वो जाकर जाता है, क्योंकि हर कोई टीचर अपने उसमें रहता है कि वो अच्छा करे, पर उसके लिए टाइम चाहिए होता है, टाइम स्पोर्ट्स काफी सारा टाइम ले लेता है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन दे नहीं पाता, पर फिर भी इतना निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल ही पीछे हो जाओ। एटलीस्ट मैं 12th में 68% वाला स्टूडेंट रहा।
1: 68 तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं अगर मैं कहूँ, जिस तरीके से आपने अपना शेड्यूल बताया है उस दौरान रहा करता था।
2: नहीं, अगर आप कंपेयर करेंगे 80 वाले से तो शायद नीचे में आ जाते हैं,
1: पर 80 वाला सिर्फ ट्यूशन जाता है और पढ़ के एग्जाम देता है।
2: हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में 8 घंटे जुड़ गए थे स्पोर्ट्स के नाम के, और उसके बाद 8 घंटे रनिंग भी, एफर्ट भी धूप में, क्योंकि आर्चरी आउटडोर गेम है।
1: बिल्कुल।
2: करने के बाद थक हार के जो बच्चे जो हालत होती थी कि रात में तो कुछ समझ में नहीं आया, 9 बजे तो बस लेटे, मतलब बैठे बैठे सो गए, ऐसा हालत होता था।
1: तो पेरेंट्स खुश हो गए थे इसके बाद आपके बहुत ज्यादा?
2: मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, पेरेंट्स फॉर श्योर बहुत खुश थे नेशनल चैंपियन बनने के बाद, एक अवार्ड मिलने के बाद एक रिवॉर्ड उनको मिला कि इतना बड़ा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ली, पर उनके लिए एक चैलेंजिंग था कि गेम स्विच करना। आर्चरी में ना 2-3 तरीके के गेम्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनेशनल में जो परफॉर्म करते हैं रिकर्व और कंपाउंड, और एक होता है जो सिर्फ नेशनल लेवल पे किया जाता है और यूनिवर्सिटी लेवल पे किया जाता है, उसको बोलते हैं इंडियन राउंड बोल, दैट इज कॉल्ड, मतलब वुड का बना होता है पर वो इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर सकते, वो बेसिक बो होता है। तो जब आपको स्विच करना होता है, एक बेसिक बो की कॉस्ट अराउंड उस टाइम पे 2000 थी,
1: पर एक प्रोफेशनल समय आज से 20 साल पहले की बात आप बता रहे
2: हैं। पर एक प्रोफेशनल बुक की कीमत 1,00,000 रुपए थी।
1: ओ, जो कि काफी महंगा रहा है। जैसे हम शूटिंग में अक्सर देखते हैं कि बहुत महंगा गेम है, बहुत महंगा स्पोर्ट है, वैसे ये भी महंगा ही है।
2: बिल्कुल महंगा स्पोर्ट्स है। और कह सकते हैं 1,00,000 रुपए उस टाइम पे, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के, और जिसका जिसको हमें मालूम ही नहीं फ्यूचर हमें कैसा होगा या स्पोर्ट्स टाइम पे क्या होता था। आज के टाइम में तो गवर्नमेंट, स्टेट, यूनिवर्सिटी, मानव रचना जैसे इंस्टीट्यूट इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा हेल्प मिल पा रही है, पर उस टाइम पे कुछ भी नहीं था ऐसा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही है कि फैसिलिटीज उस दौरान थी नहीं, और अब तो जिस तरीके से मेडल्स धीरे धीरे आ रहे हैं तो गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है, तो ये काफी बदलाव है आजकल के खिलाड़ियों के लिए।
2: बिल्कुल ठीक है। तो वही टाइम अगर याद करूं तो मैंने, मुझे भी नहीं मालूम कि पेरेंट्स ने कैसे उन्होंने, मैंने बस मजाक में कहा था कि मॉडर्न बोज में आना है और करना है, और उन्होंने पता नहीं कहां से लेके आए, मुझे नहीं मालूम, उस टाइम पे नहीं थे हम, पर लेकर के आया और स्विच करवाया, और विद इन अ ईयर मैंने उनको रिजल्ट दिया। तो कहीं ना कहीं वो भी सेटिस्फाई हुए हैं इस चीज से कि कहां से कैसे हुआ, पर अच्छा हुआ जो भी हुआ
1: जी
2: हुआ उस टाइम को,
1: और बहुत अच्छा हुआ तभी भारत को इतने मेडल्स मिल पाए और आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
0: तो अभिषेक वर्मा जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। दोस्तों कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। बहुत ही कमाल की और बहुत ही रोचक बातें चल रही हैं। अभिषेक वर्मा जो कि जाने माने आर्चर हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं आर्चरी के क्षेत्र में, उनसे हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। प्रोग्राम का नाम बियॉन्ड द गेम।

0: फील गुड फील लाइव। मैं हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम बियॉन्ड द गेम, जहां पर खिलाड़ी और खिलाड़ियों की जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें, उनके करियर से जुड़ी बातें, उनके खेल में आई हुई स्ट्रगल्स और अचीवमेंट से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। और आज इसी कड़ी में इस प्रोग्राम में मैं दीक्षा लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खास मेहमान, अभिषेक वर्मा, जो कि अर्जुन अवार्डी हैं, वर्ल्ड चैंपियन है और देश के जाने माने आर्चर हैं, जो फिलहाल बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल्स पर भारत को मेडल्स दिलवा चुके हैं। और मेडल्स की जो तालिका है वो तो मैं आपको शुरुआत में बता ही चुकी हूँ, लेकिन इनके करियर से जुड़ी हुई कुछ और बातें भी अभी जाननी बाकी हैं। तो करते हैं और भी बातचीत।
1: बात करते हैं थोड़ी सी आर्चरी की फील्ड के बारे में। जब आप आर्चरी में कदम रखते हैं तो आपने जैसे कहा कि आपको तो लगा कि शायद सस्ता गेम है, लेकिन सस्ता स्पोर्ट है नहीं, ये काफी कॉस्टली है। आपको भी बहुत सारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं, बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट सुन रहे होंगे, उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो कैसे आर्चरी की फील्ड में एक स्टूडेंट को शुरुआत करनी चाहिए, पेरेंट्स क्या सोचे? क्योंकि हमारा देश वो देश है जहां पर क्रिकेट को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस बात के लिए मैं नेगेटिव भी नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन हाँ, एक जो प्यार होता है लोगों को, एक जुड़ाव होता है, वो क्रिकेट से बहुत ज्यादा है। तो हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा क्रिकेटर बन जाए, बच्चे को सबसे पहले खिलौने में बैट दिला दिया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद बाकी चीजों की बारी धीरे धीरे आती है और आर्चरी के बारे में नॉर्मली लोग नहीं सोचते हैं।
2: देखिए, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है, हर कोई चाहता है क्रिकेटर बन जाए, ये एक चाहना एक अलग हो गया, पर एक मेरा इंडिया टीम में खेले, क्रिकेटर बन जाए, फेम आ जाए, पैसा आ जाए, वो एक चाहने वालों की मतलब वो ज्यादा हो गए परसेंटेज, 90% लोग ऐसे सोचते हैं। पर अगर आप देखें पूरे देश में क्रिकेट खेलने वालों की जनसंख्या कितनी है और उसमें से सिर्फ 11 खिलाड़ी खेल पा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो अपॉर्चुनिटी अब आपके लिए, देखिए स्पोर्ट्स करना, एक मेरे मायने में स्पोर्ट्स करने के दो रीजन होते हैं। हर कोई प्लेयर नहीं बन पाता, हर कोई मेडल नहीं ले पाता, पर
1: बिल्कुल
2: हर कोई अपनी सेहत को अच्छा कर सकता है स्पोर्ट्स करके। स्पोर्ट्स कराया इसलिए जाता था कि पीसफुल माइंड के लिए, बॉडी रिलैक्स के लिए, एक कसरत के लिए, यही तो था मेन फंडा हमारा स्पोर्ट्स करने का।
1: फोकस बहुत अच्छा होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी
2: होती है। ये गेम टू गेम डिफर करता है। अगर आपको रनिंग कराई जाती थी तो आपको स्टेबिलिटी, आपको मतलब मींस आपको बॉडी में स्ट्रेच और सब चीजें कराने के लिए और फोकस करने के लिए, फोकस वाले गेम करवाए, तो माइंड कंसंट्रेशन करने के लिए आपको चेस, आर्चरी, शूटिंग, ऐसे ऐसे गेम करवाए जाते हैं। तो उस टाइम पे, अब तो कॉम्पिटेटिव आ गए कि हमें मेडल लाना है, हमें ये लाना है, पर गेम एक्चुअली गेम करने का रीजन यही होता था कि बच्चा एक्टिव रहे,
1: बिल्कुल
2: सेहत एक्टिव रहे। और अब आज की जनरेशन में दूसरे पॉइंट से स्पोर्ट्स हो गया कि भैया बच्चा मीडिया में ना घुस जाए, वो बाहर निकले, आउटडोर एक्टिविटी करे, वो रनिंग करे, वो स्विमिंग करे, वो आर्चरी करे, वो फोकस करे, वो इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से बाहर निकले। वो आज की डेट में क्या हो रहा है, बच्चा फोन लेकर के चिपक गए या टैब में चले गए। आप कहीं पे भी चले जाइए, कोई से भी पेरेंट्स को देख लीजिए, रेस्टोरेंट हो तो बच्चे के हाथ में फोन होगा, या फ्लाइट हो तो भी बच्चे के हाथ में फोन होगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: फॉर श्योर अट्रैक्ट करता है, फॉर श्योर ये शायद टाइम कंज्यूम, पेरेंट्स को अपना टाइम मिल जाता है, ठीक है, तो एट द टाइम वो गलत। क्यों ना इसको हम दूसरे वे में देखा जाए कि एक बच्चा स्कूल के बाद आने के बाद, अपनी ट्यूशन करने के बाद, अपना एक दो घंटे के लिए कोई भी गेम पकड़ करके उसमें चला जाए, उसमें थक हार के दो तीन घंटे बाद थक हार के आए, उसको खाना खाते के साथ वो नींद आ जाएगी, वो सो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: बॉडी की एनर्जी को यूटिलाइज करा जाए उसकी।
1: बिल्कुल,
2: ये भी हमें करनी चाहिए। ये शायद स्पोर्ट्स हमारे लिए एक हो गया जीतना और एक हो गया बॉडी के लिए, माइंड के लिए, अपने लिए, एक अच्छी फिजिक के लिए स्पोर्ट्स हो गया। तो आप क्या चूज करते हैं, वो आपकी सोच है
1: जी। और अगर आर्चरी की फील्ड में कोई बच्चा जाना चाहता है या उसके पेरेंट्स चाहते हैं वो आर्चरी को एक्सप्लोर करें, तो क्या सही उम्र रहती है और किस चीज का ध्यान बच्चों को और पेरेंट्स को रखना चाहिए, कैसे शुरुआत करें इस फील्ड में?
2: देखिए, एट द एज ऑफ 6-7 आप स्टार्टअप ले सकते हैं कि हाँ आर्चरी में एंटर, 7 ईयर्स में आप कर सकते हैं, क्योंकि आर्चरी में अब अंडर 10, अंडर 14, अंडर 15, अंडर 18, 21 ऐसी कैटेगरीज हैं। और जरूरी नहीं है कि इमीडिएट आते के साथ आप मॉडर्न बोज लीजिए, आप जो नेशनल लेवल पे किया जाता है, सीनियर नेशनल, यूनिवर्सिटी, स्कूल नेशनल, SGFI, स्टेट, वो वाले सारे के सारा इवेंट कवर होता है इंडियन बोज किट में। उसकी कॉस्ट अराउंड 8-10,000 आती है।
1: ओके।
2: तो आउट द ईयर आप उसको कर सकते हैं, एक 1 or 2 or maximum 3 years के बाद आप देख सकते हो कि आर्चर कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंटरेस्ट कैसा है, वो टाइम दे रहा है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप इसको मॉर्निंग बोर्ड में शिफ्ट कर सकते हो, तो आपको भी जजमेंट मिल जाती है कैसा बच्चा परफॉर्म करेगा।
1: जी जी बिल्कुल, तो यानी शुरुआत 6-7 साल की उम्र से अब की जा सकती है।
2: बिल्कुल की जा सकती है
1: जी, और अपने आसपास की एकेडमीज को एक्सप्लोर करना चाहिए पेरेंट्स को, और स्कूल में अगर ये सुविधा है तो उसका जरूर फायदा उठाना चाहिए।
2: हाँ, स्कूल लेवल एक अच्छा है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, पर साइड बाय साइड आपको एक अच्छी एकेडमी में ज्वाइन करना एक इजी हो जाता है, आपको एक अच्छा कोच मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है कि आप कैसे कर सकते हैं।
1: जी जी, तो अभिषेक जी आपने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, आपने एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, ये सारी चीजों में आपने मेडल्स जीते, और उसके बाद आपने जो अर्जुना अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा, वो कुछ पल हमें बताना चाहेंगे आप?
2: 2014 में मुझे अर्जुना अवार्ड मिला था, मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि कंपाउंड इवेंट नॉन ओलंपिक इवेंट था, मैं मेडल्स तो काफी सारे ले आया था पर किसी भी नॉन ओलंपिक आज कंपाउंड में किसी को भी आज तक हिस्ट्री में वो नहीं मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला नहीं था।
1: ओके,
2: मैं बहुत उम्मीद थी, चीजें थी, रिक्वेस्ट थी या परफॉर्मेंस थी, उस टाइम पे फेम था, सब चीजें हुआ था कि मैं इमीडिएट मतलब एशियन चैंपियन बना था, एशियन चैंपियन के साथ 3 ही गोल्ड होते हैं, तीनों के तीनों गोल्ड क्लिंच करे थे मैंने, फिर नेशनल चैंपियन बना था, वर्ल्ड कप मेडल लिए थे कॉन्टिन्यू, और एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट होकर के हमारा प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो बड़ा कह सकते हैं कि टाइम बड़ा उम्मीदों भरा था कि फर्स्ट में इंडियन कंपाउंड आर्चर बना जिसको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो कह सकते हैं उसके बाद लाइन लगाने वाला ओपनिंग बेस्ट मतलब ओपनिंग वाला करने वाला अर्जुन अवार्ड का मैं बना था, उसके बाद कंटिन्यू क्योंकि हमने एशियन गेम्स में मेडल गोल्ड मेडल लिया, इमीडिएट फिर एक और को दिया गया, फिर हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया, फिर अर्जुन अवार्ड तीसरे को दिया गया तीसरे साल, तो कंटिन्यू कंपाउंड के लिए भी ओपनिंग हो गई थी फिर ये।
1: जी जी, और अपने
2: आप बहुत सबसे बड़ा अवार्ड आपको मिलना, मतलब जी जी, एक स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम होता है अर्जुन अवार्ड मिलना,
1: बिल्कुल
2: आर्चरी में हार्डली अभी तक 7-8 जनों को मिला है, और उसमें अपना नाम बनाना एक अपने आप में सबसे बड़ा मेडल है।
1: जी, और मैं हमारे लिसनर्स को ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि जब भारत के टॉप आर्चर्स की बात होती है, टॉप 10 आर्चर्स की बात होती है, तो उसमें अभिषेक जी का नाम उस लिस्ट में जरूर आता है, और ये बहुत गर्व की बात है कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और हम रेडियो मानव रचना के माध्यम से सभी को आपकी ये बातचीत और आपकी जर्नी सुना रहे हैं आज।
2: हाँ जी,
0: बातों का सिलसिला जारी रहेगा अभिषेक जी के साथ। आर्चरी के क्षेत्र में अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं 8010781078। रेडियो मानव रचना की पहल ऐसे ही कुछ जाने माने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से आपकी पहचान कराएं, मुलाकात कराएं, और क्या पता आप या आपके परिवार में कोई और भी कल देश का नाम रोशन करें इनसे इंस्पायर होकर। सो ऐसी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा प्रोग्राम बियॉन्ड द गेम में। वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: सनम।
1: मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप रेडियो मानव रचना 107.8 FM। प्रोग्राम चल रहा है बियॉन्ड द गेम, और इस खास प्रोग्राम में हर हफ्ते मुलाकात होती है एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जिन्होंने भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है खेलों के क्षेत्र में। और आज इसी कड़ी में हम बातचीत करें हैं अभिषेक वर्मा जी के साथ, जो कि आर्चरी के क्षेत्र में एक बहुत ही जाना माना नाम है। और साथ ही अगर आप देश के 10 आर्चर्स की बात करेंगे तो उस श्रेणी में ये आते हैं काफी ऊपर लिस्ट में, और अर्जुन अवार्डी हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। मेडल्स की लिस्ट तो आप पूछिए ही मत कितनी बड़ी है, जिसको शायद मैं एक प्रोग्राम में पूरा बता भी नहीं सकती हूँ। तो अभिषेक जी से जुड़कर बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारी बातें उनसे हम जाने हैं आर्चरी के क्षेत्र के बारे में।
0: तो अभिषेक जी, अब अर्जुना अवार्डी तो आप बन गए और आपने इतना कुछ अचीव भी कर लिया, लेकिन उसके बाद आप आज असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर कार्यरत हैं इनकम टैक्स विभाग में। ये किस तरीके से जो है अपॉर्चुनिटी आई और किस तरीके से आप उस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोगों को अक्सर लगता है कि खिलाड़ियों का करियर खेल में बन गया तो बन गया, वरना फिर नहीं बन पाएगा।
2: देखिए, पहले तो मैं सबको बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आज का टाइम स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत गोल्डन पीरियड टाइम कह सकते हैं आप। अगर एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लेवल की आपको जॉब मिलती है। अगर कोई नेशनल लेवल में अचीवर है तो उसको क्लास सी की जॉब मिल सकती है। कोई इंटरनेशनल में एक्सप्लोरर है, मेडलिस्ट है, तो उसको ग्रुप बी की जॉब मिल सकती है। और अगर कोई अच्छे गेम्स मीन्स एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ऐसे इवेंट में मेडल आता है तो उसको उसके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर की जॉब मिल सकती है।
0: जी,
2: तो ये अप टू स्पोर्ट्स पर्सन के हाथ में होता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% सपोर्ट कर रही है स्पोर्ट्स पर्सन को, उनके कोटा दे रही है, सीट दे रही है, सब चीजें दे रही है। अगर मेरी बात मानी जाए, मतलब मेरी बात करी जाए, तो मैं एकेडमिकली, मैंने कहा आपको कि मैं आफ्टर द ग्रेजुएशन मैंने अपनी पोस्ट ग्रेड, मैंने अपनी बीपीएड एमपीएड मैंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से करी थी।
0: जी,
2: मैंने अपनी एकेडमी को कंटिन्यू रखा। साइड बाय साइड मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट टीए ग्रुप सी की जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली थी 2014 में।
0: ओके,
2: मैंने उसको ग्रैब किया क्योंकि क्योंकि स्पोर्ट्स में उस टाइम पे जॉब थी ही नहीं, बहुत कम थी। मैंने इमीडिएट मैंने ग्रैब करी, मैंने वेट करा अपना साइड बाय साइड। मैं डिपार्टमेंट का थैंक यू करता हूँ अगेन, वही मेरे स्कूल कॉलेजेस, और अब डिपार्टमेंट की बारी आई कि उन्होंने मुझे 100% सपोर्ट करा, फ्रीडम दी कि आप खेलो, अच्छा परफॉर्म करो। और मैंने रिजल्ट दिए एशियन गेम्स 2014 में, मैंने इमीडिएट डिपार्टमेंट ज्वाइन करते के साथ ही मैं डबल मेडलिस्ट बना। बैक टू बैक 15 में मैं वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड कप विनर बना। बैक टू बैक एशियन चैंपियनशिप में मैंने फिर अगेन चैंपियन बना, तो मेडल मैंने कंटिन्यू रखे। फिर 2016 में अगेन एक अपॉर्चुनिटी आई जो स्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई ग्रुप बी की।
0: ओके,
2: मैंने इमीडिएट मैंने ज्वाइन करा, उसके एक टेस्ट होते थे,
0: एग्जाम देने पड़ते हैं इसके, जो लोगों को नहीं पता है शायद।
2: मैंने क्लियर करें, उसके बाद एक जब आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं, इंस्पेक्टर बनने के बाद भी आपको कंफर्मेशन एग्जाम होते हैं।
0: ओके,
2: 4 एग्जाम होते हैं कंफर्मेशन, जो कि आपको विद इन अ 10 ईयर आपको करने हैं।
0: जी जी,
2: मैंने डिपार्टमेंट में रहते हुए उस ट्रेनिंग करी, उन एग्जाम की तैयारी करी, साइड बाय साइड मेरा गेम भी चल रहा था, साइड बाय साइड में इसकी भी, जब भी मेरे को टाइम मिलता था तो मैं इसकी भी तैयारी करता था। अपने चारों एग्जाम क्लियर करे मैंने कंफर्मेशन के, उसके बाद मैं एलिजिबल हुआ आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर के एग्जाम देने के लिए।
0: ओके,
2: मैंने अपने इनकम टैक्स ऑफिसर के मैं एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और मैंने अपने एशियन गेम्स 2018 का आ गया था, मैंने उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करी। दोनों प्रिपरेशन चल रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 5 एग्जाम होते हैं उनमें से 4 क्लियर कर लिए थे।
0: ओके,
2: और एक एग्जाम मेरा रह रहा था क्योंकि मेरा वो टूर्नामेंट से क्लैश कर गया था, मैं दे नहीं पाया था।
0: जी,
2: टाइम पीरियड दिया जाता है कि जो क्लियर कर लिया वो नेक्स्ट ईयर आप आपको, जो नहीं क्लियर करा वो नेक्स्ट ईयर आप दे सकते हैं। पर 2018 में मैंने अगेन मैंने मेडल ले लिया एशियन गेम में। तो भारत सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है जो कि DOPT में स्पोर्ट्स पर्सन को प्रेरित करती है, देती है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन।
0: ओके,
2: किसी भी स्पेसिफिक इवेंट्स जैसे कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक, वर्ल्ड कप, नहीं वर्ल्ड कप नहीं,
0: वर्ल्ड चैंपियनशिप,
2: वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इन चार इवेंट में कोई भी अगर आप मेडल अचीव करते हो, क्योंकि बहुत बड़ा मेडल है, तो आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा।
0: ओके जी।
2: मैं स्पेक्टर तो बन ही गया था, मेरे को आउट ऑफ, मैंने एग्जाम भी क्लियर कर लिए थे, ऑल्दो मैं नेक्स्ट ईयर कर भी लिया था, पर मुझे आउट ऑफ टर्न एग्जाम के, मतलब आउट ऑफ टर्न देने के बिहाफ से मुझे आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, मुझे प्रमोट किया गया
0: जी।
2: अब आउट ऑफ टर्न के बाद मैंने, मतलब मैंने ज्वाइन करते के साथ अपना गेम को कंटिन्यू रखा और साइड बाय साइड मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी एसीआईटी ग्रुप के लिए।
0: ओके।
2: क्योंकि मंजिलें आगे बढ़ती जा रही, मैं कह रहा हूँ कि एक के बाद एक टूर्नामेंट्स आते रहेंगे, एक के बाद आके बाद चले।

0: चैलेंजेस आते रहेंगे, वो कंटिन्यू आपको करने हैं। तो मैंने अगेन मैं 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने मेडल लिया और उसके बिहाफ पे मैंने अपना सेकंड आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मैंने ग्रैब करा अपने डिपार्टमेंट के थ्रू। अपॉर्चुनिटी मिली कि ड्यू टू दिस मेरे को मिल सकता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में मैक्सिमम 3 ही आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलते हैं
1: जी, जो
0: कि आप अवेल कर सकते हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOPT गाइडलाइंस के थ्रू आपको अवार्ड और प्रमोशन देती है। तो मैं ACIT मैंने 2023 में मैंने एज ACIT मैंने ज्वाइन किया और अपनी ट्रेनिंग हाथ के हाथ कंप्लीट करी। पर ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ऑल एग्जाम और सब चीजें, इसके साथ साथ मेरा टूर्नामेंट और प्रिपरेशन कंटिन्यू रही।
1: इसके
0: साथ साथ मैंने MA साइकोलॉजी भी कंटिन्यू ओपन से करता रहा, क्योंकि मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाह रहा था कि ठीक है ये अपॉर्चुनिटी आई है अगर करने की, तो मैं कंटिन्यू कर रहा था। 2022 में एशियन गेम्स होने थे जो कि पोस्टपोन होकर के 23 में हुए। अगेन ये मेरा थर्ड 23 में मेरा एशियन गेम्स आया और डबल मेडल मैंने वापस से एशियन गेम्स में क्लिंच करे और मैं एलिजिबल हो गया अपने थर्ड और लास्ट आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए। हर एक के रूल्स रेगुलेशन सब चीजें होती हैं, तो उसमें मुझे अपनी ट्रेनिंग और अपना प्रोविजन पीरियड अपना कंप्लीट करना होता है। बीच में एग्जाम्स भी सब चीजें होते हैं, वो सब कंप्लीट करते हुए आपको 2 साल आपको सर्व करना है, उसके बाद आप थर्ड के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये पीरियड रहता है, ये चीजें रहती है। तो मैं यही सबसे ये कहूंगा कि अपनी एकेडमिक को छोड़ना नहीं है, साइड बाय साइड लेकर के चलना है। अगर आपने वहां पे छोड़ दिया, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन तो अच्छे पर एकेडमिक ट्वेल्थ भी नहीं करी उन्होंने,
1: बिल्कुल बिल्कुल उससे वो रुक जाते हैं।
0: हाँ, वो रुक जाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि एजुकेशन आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए कह सकते हैं जिम्मेवार है, ये नहीं सिर्फ कोई डिग्री ले ली और आप एलिजिबल हो गए। वो आपको चीजें सिखाती है, आपका लाइफ स्टाइल सिखाती है, आपको बोलना, चीजें करना, या आपको आना जाना समझ देना, मतलब एक तरह से आपको लेसन है लाइफ के। ये शायद स्पोर्ट्स के साथ साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, लाइफ लॉन्ग ये आपके साथ जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को अक्सर ये लगता है कि सिर्फ खेल लिया तो काम बन जाएगा, पर खेलों के साथ साथ अगर एकेडमिक्स पे ध्यान दिया जाए तो आपकी तरक्की जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाती है और बहुत अच्छे तरीके से होती है, सिस्टमैटिक वे में होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
1: तो अभिषेक जी, बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। मैं कुछ चीजों में ना विजुलाइज करने लग गई थी कि किस तरीके से आप खेलते होंगे या किस तरीके से आपने एग्जाम्स दिए होंगे, क्योंकि इन फील्ड्स में एग्जाम देना, खासतौर पर से जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑलरेडी आप उसमें होते हैं और प्रमोशन के लिए एग्जाम देना होता है, अपने आप में बहुत थकाने वाली चीज भी हो जाती है, क्योंकि आप उस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, आप एक्सपर्ट अपने खेल के होते हैं, फिर भी आपको दूसरों से कम्पीट करना होता है अपनी फील्ड में भी।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल कहा, ये बहुत चैलेंजिंग होता है अपने मतलब उसी डिपार्टमेंट में बैठ करके, कि जहाँ पे रोज वो रूल रेगुलेशन लगाते हैं करते हैं और हमें उसकी नॉलेज नहीं,
1: बिल्कुल
0: एग्जाम देना प्रिपेयर करना चैलेंजिंग होता है, फॉर्श्योर होता है। पर स्पोर्ट्स पर्सन एक अच्छा वो है जिसको फाइट करनी आती है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल आपने जो बातें कही हैं बहुत ही कमाल की बातें कही हैं, और मैं चाहूंगी बस आप कुछ ही शब्दों में एक अच्छा सा मैसेज हमारे यंग आर्चर्स के लिए और साथ ही उन सभी बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा फोन छोड़ के किस तरीके से जाएं, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं ये बस बता दीजिए हमें।
0: देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको अभी समझ नहीं है, तो पेरेंट्स को इसमें बहुत अपना रोल अदा करना है। एक उनके साथ साथ आपको भी टाइम देना पड़ेगा, बच्चों को गार्डन ले जाइए, पार्क ले जाइए, स्टेडियम्स ले जाइए, कहीं पे भी ले जाइए, उनके साथ साथ आप अपनी जर्नी भी स्टार्ट कीजिए, आप अपना डेब्यू भी स्टार्ट कीजिए, आप वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, आप भी गेम कीजिए। जरूरी नहीं सिर्फ बच्चे ही खेलेंगे, बैडमिंटन बच्चा खेलने गया साइड में आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चे को भी बूस्ट मिलेगा, बच्चे को भी वो होगा कि प्रेरित होगा और आपकी नजरों में भी रहेगा और एक बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आज के टाइम में दिल्ली NCR चीजों में ऐसे उलझ गए हैं, पोल्यूशन, हेल्थ, डॉक्टरों के चक्कर काटना, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसीलिए है कि एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पा रही, बच्चे की लाइफस्टाइल नहीं हो पा रही। एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन इजीली बहुत इजीली बीमार नहीं होता, अगर आप कंपेयर करेंगे नॉर्मल से तो बिल्कुल भी नहीं होगा उनके दिमाग में, बिल्कुल मतलब वो है फिजिक को लेकर के, मतलब बिल्कुल एक्टिव है क्योंकि उनकी बॉडी एक्टिव है। तो अपने बच्चों को एक्टिव रखिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए कि क्या रिजल्ट आएगा, वो फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा थर्ड आएगा, पर एक अच्छी हेल्थ रहेगी। बच्चा एक टाइम ऐसा भी आता है मेहनत करने के बाद, एक टाइम क्लिंच होगा होगा ऐसा कि आपकी सक्सेस आपको मिलने लग जाएगी, पर मुझे
1: जी
0: नहीं मालूम वो कब मिलेगी, 2 साल 3 साल 4 साल, पर मेहनत कर रहे हो कंटिन्यू तो एक क्लिंच ऐसा आएगा जिसमें आप बढ़ते चले जाओगे।
1: बिल्कुल। और मुझे लगता है आजकल के जो बच्चे हैं, जेनजी कह लें या जेन अल्फा कह लें, इन लोगों में पेशेंस थोड़ा सा कम है। वो पेशेंस ना होने की वजह से ये बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उस चीज को छोड़ देते हैं।
0: बिल्कुल ठीक है। एक वही है ना, एक हमारे में है 10,000 आवर्स लगते हैं किसी भी बड़ी विक्ट्री को अचीव करने में।
1: जी
0: अब आप गिव अप कर देते हैं 500 आवर्स में, तो गिव अप मत कीजिए, आपको अभी 10,000 कंप्लीट करने हैं और 100% विक्ट्री आपको मिलेगी, बीच में नहीं छोड़ना आपको। तो वही सबसे बोलूंगा कि एक हार दो हार तीन हार पर जीत चौथी पांचवी आपकी है।
1: बिल्कुल। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस अगर आप हार भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ बार हारेंगे लेकिन अल्टीमेटली आप जीतेंगे और सीखेंगे तभी आप जीतेंगे। तो अभिषेक जी, बहुत अच्छा लगा बियॉन्ड द गेम में आपने आज हमसे बातचीत की और आर्चरी की दुनिया से हमें रूबरू कराया, हमारे लिसनर्स को रूबरू कराया। आपसे बातचीत करके मुझे तो बहुत मजा आया और यकीनन हमारे लिसनर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आगे आने वाले अलग अलग टूर्नामेंट्स के लिए और भारत को ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहें, जिस प्रकार से अनगिनत मेडल्स लेके आपने भारत को एक एक आर्चरी की दुनिया में एक नया मकाम दिया है, ऐसे ही आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनते रहें आगे भी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
2: बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं बियॉन्ड द गेम में और बहुत ही मजेदार, बहुत ही रोचक कॉन्वर्सेशन रही है। आपको ये बातचीत, ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नंबर हमारा बहुत आसान है, इट्स 8010781078। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है या आप किसी के साथ ये जानकारी जो आर्चरी के क्षेत्र से, तीरंदाजी के खेल से जुड़ी हुई शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। बस आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, इंटरनेट रेडियो मानव रचना, और इस ऐप को प्ले स्टोर या iOS किसी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के अनुसार। और फिर ये पॉडकास्ट आपको पूरा कभी भी सुनने को मिलेगा, कहीं भी सुन सकते हैं आप, इसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और क्या पता आपके एक शेयर से एक नया खिलाड़ी हमारे देश को मिल जाए। फिलहाल बहुत सारी बातें मैं कर चुकी हूँ बियॉन्ड द गेम में, फिर से होगी मुलाकात एक नए खिलाड़ी और उनके कुछ खास सफलता के सूत्रों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा।

0: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आप सभी को पता है कि मानवता की राह पर एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें मैं आपको अनसंग हीरोज से मिलवाने की कोशिश करती हूँ, उन लोगों से मिलवाने की कोशिश करती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे हैं, हमारे समाज, देश और दुनिया के लिए अलग अलग किस्म के काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मैं आपको उन लोगों से मिलवाने की कोशिश करती हूँ जिन्हें मैं अनसंग हीरोज ऑफ द सोसाइटी कहती हूँ, यानी वो लोग जो मानवता के ढेर सारे काम कर रहे हैं। और आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं धरती माँ ट्रस्ट से। धरती माँ ट्रस्ट की मैं अगर बात करूँ तो इनका नाम बड़ा ही क्यूट है। मुझे याद है बॉलीवुड इंडस्ट्री ने धरती माँ की सौगंध हमें बड़ी खिलाई है और हम धरती माँ की सौगंध खाते भी आए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो ओरिजिनली धरती माँ के लिए काम कर रहे हैं। हम सब तो सौगंधे खाते हैं और उन्हें याद करते हैं, पर ये धरती माँ की रक्षा कैसे कर रहे हैं, सेवा कैसे कर रहे हैं, आज इसकी कहानी इन्हीं की जुबानी। और इसके लिए मैं करूंगी स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में भवन सिंह बिष्ट जी को और दीपिका बिष्ट जी को। भवन सिंह बिष्ट जी जो धरती माँ ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं और दीपिका बिष्ट जो की सेक्रेटरी हैं। तो आपका स्वागत है रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल भवन सिंह आप जी से करती हूँ। भवन सिंह जी, मुझे बताइए, धरती माँ ट्रस्ट, आप लोग ना पर्यावरण पर बहुत सारा काम करते हैं, पर मुझे ये बताइए कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और हर चीज के पीछे ना एक कहानी होती है। मतलब शायद ही मैं किसी ऐसे एनजीओ से मिली हूँ जो कॉन्शियसली सोचा हुआ नहीं है या उसके पीछे कोई कारण नहीं था। तो अगर मैं धरती माँ ट्रस्ट की बात करूँ तो इसकी शुरुआत कैसी और इसके पीछे की कहानी क्या है?
1: जी, सभी देशवासियों को और पूरे भारतवासियों को मैं धरती माँ ट्रस्ट की ओर से सादर नमस्कार करता हूँ। धरती माँ ट्रस्ट की जो नींव रखी एक दिव्य प्रेरणा के माध्यम से, जो मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने मुझे यह नाम दिया कि जिस तरीके से मुझे बचपन से ही एक छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करना, उनको यूजफुल बनाना, यह मेरी आदत में था। और कहीं ना कहीं पूरे यूनिवर्स में ये जो वाइब्रेशन गई थी, उस माध्यम से मेरे गुरुदेव ने ही मुझे यह सुना होगा कि इस कार्य के लिए, कि उन्होंने इस नाम को मुझे दिया कि धरती माँ

0: नाम रख करके एक बड़ा आपने काम करना है पूरे विश्व के लिए, तो यह नाम मुझे मिला और इस पर हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि हम कोई ऐसी एनजीओ बनाए, हम छोटा सा अपना एक जो जिससे हमारी फैमिली अच्छे से उसका पालन पोषण हो सके उस तरीके से काम करता था। मैं अपना फर्नीचर का काम था हमारा, और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी में एक हम इंटीरियर का, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट भी आज भी है, उस चीज़ को मैं अच्छी तरीके से कर रहा था। तो ये बीच में इनिशिएटिव जो मेरे जीवन में आया तो एक मेरे लिए एक ज़िंदगी का नया मोड़ था जो शायद मेरे लिए ईश्वर ने चुना होगा। तो इस फील्ड में फिर हम आगे बढ़ते रहे। और पर्यावरण क्या है, धरती को कैसे सुरक्षित और व्यवस्थित किया जा सके, फिर धीरे धीरे इस चीज़ पर हमने स्टडी करी और उन छोटी छोटी चीज़ों पर हमने फोकस किया, उन पर उनको प्रयास किया कि इसको मानव समाज तक हम एक अच्छा संदेश कैसे दे सकें। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि एक छोटा सा एक टॉफ़ी या बिस्कुट का जो रैपर होता है उसको हमने संभालना शुरू किया, उसको वेस्ट के डब्बे में हमने डालना बंद किया कि ताकि अगर वो वहाँ पहुँचेगा तो हमारे द्वारा धरती बिल्कुल दूषित हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। यहाँ से हमने इसकी शुरुआत करी।
1: वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम आज भी देखें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इस चैलेंज पर इसलिए ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इतने सारे डंपिंग यार्ड्स बने हुए हैं और हमारे घर से कूड़ा सुरक्षित तरीके से चला जाता है, हमारा घर बहुत ही साफ रहता है, तो आगे ये वेस्ट का क्या होता है, हमें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब इतने सालों में आप खुद देख रहे हैं, चाहे आप रोज अगर गुड़गांव जाते हैं तो बंदवाड़ी का वो डंपिंग यार्ड देखते होंगे, फरीदाबाद के आसपास आप देखते हैं तो अलग अलग खत्ते बने हुए हैं और वहाँ पर आपको अब दिख रहा है कि ये वेस्ट काली पन्नियाँ नीली पन्नियाँ भर भर कर और उन्हें मवेशी खाते हुए। सो कहीं ना कहीं हमने इस वेस्ट को अब खुद ही अपने पर्यावरण का हिस्सा बना लिया है और अपने घरों से निकलकर शायद हमारी सड़कों पर ये वेस्ट आ गया है। लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है और इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस पर कोई है जो काम कर रहा है और वो है धरती माँ ट्रस्ट। बहुत सारी बातें हैं जो इनसे करने वाली हूँ, बस उससे पहले लेने वाले हैं एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप कहीं नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम बात कर रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के बारे में। धरती माँ ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं बीएस बिष्ट जी, वो मेरे साथ बैठे हैं और उनके सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट मेरे साथ बैठी हैं। दीपिका, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण पर आप लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली किस तरीके से करते हैं और क्या है आपकी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग पूरी?
1: मेरा नाम दीपिका बिष्ट है और हम लोग सब लोग एनजीओ में मिलके काम करते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप होता है कि अपने लेवल पे, अपने सेल्फ लेवल पे हम लोग धरती पर वेस्ट ना पहुंचाएं।
0: जी,
1: जितना हो सकता है उसको बचाया जा सकता है, रीयूज करें। हम लोग फर्स्टली मार्केट में जाते हैं वेजिटेबल्स लेने के लिए, तो हम लोग पॉलीथीन का बैग का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, अपना एक कॉटन का बैग लेके जाते हैं, सारी सब्जियों को उसी में कैरी करते हैं और घर पे आकर उसे कैटेगरीराइज कर देते हैं। जितना हो सकता है हमने आसपास हम जितने लोगों को मिलते हैं उनको ये मैसेज ज़रूर देते हैं। ये एक फर्स्ट स्टेप होता है, हमारे जो पॉलीथीन है वो डेली यूज़ में आती ही आती है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बस जितना हो सकता है अपने सेल्फ लेवल पे उसको अवॉइड करें। और हमारी एनजीओ जो है पर्यावरण के लिए बहुत सालों से काम कर रही है, तो हम लोग इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं जगह जगह जा कर के, स्कूल में, कॉलेज में, क्योंकि एक यूथ ही है जो इसको अच्छे से समझ सकता है और जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको लगता है कि वो उसको जल्दी हमारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, समझते नहीं हैं। वो जो यूथ है उनको पता है कि हाँ आने वाले टाइम में यही चीज़ हमें प्रॉब्लम देगी, तो हम सस्टेनेबल के भी ऊपर काम करते हैं। तो उसका अल्टरनेट हमने मार्केट में ये निकाला, फिर हमने पूछा कि आप इसका अल्टरनेट क्या बताएंगे, तो फिर हमारे हमने बैग्स बनाने शुरू करे।
0: जी,
1: कॉटन के बैग्स हो गए, जूट के बैग्स, ताकि उनसे हम बचाया जा सके मार्केट को और अपनी एनवायरनमेंट को।
0: दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। सो इसको सही में अगर आप चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आदत हमें पड़ जाती है, फिर चाहे वो रोज सुबह उठकर चाय पीने की है, कॉफ़ी पीने की है, या फिर एक आदत है कि आप सड़कों पर चलते नहीं हैं, आप सड़कों पर रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, या फिर आप मोबाइल फ़ोन पर घंटों बात करते हैं, या आप अपने घर का वेस्ट जो है आज भी सेग्रीगेट नहीं करते हैं, उसे इकट्ठा करके एक काली पन्नी में डालते हैं और उसे कूड़े वाले को दे देते हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की आदतें हैं। आपके घर में आरओ होगा, लेकिन आज भी आरओ का जो पानी है वो यूं ही, जो वेस्ट वाटर है वो यूं ही बहता रहता होगा। ये सब हमारी आदतें हैं और एक लंबे समय से इन आदतों को हमने पाल लिया है और फिर ये आदतें जाती नहीं हैं। और जैसा दीपिका ने कहा कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं या एल्डरली लोग हैं, या फिर कहना चाहिए वो लोग हैं जो अब मिडिल एज हैं, उनका माइंडसेट बदलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बदल पा रहे हैं और वो है आज की जेनरेशन। उस जेनरेशन को यह समझ में आता है कि घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ मिलता है, और आप घर से नहीं देश से बाहर निकलिए तो विदेश में जाकर आपको चकाचक सड़कें मिलती हैं, खूबसूरत सड़कें मिलती हैं और वहाँ पर कूड़ा नहीं है। सो मैनेज तो किया जा सकता है, पर ज़रूरत है खुद को बदलने की। सो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट को बदलने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, जिन्हें क्रिएट करती है धरती माँ ट्रस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक छोटा सा क्लॉथ बैग लेकर जाया जा सकता है तो आप भी सब्जी खरीदने के लिए एक पहल या एक बदलाव कर सकते हैं। क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे बताइएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, क्योंकि अब है फिलहाल एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। फील गुड फील लाइक।
2: क्या कहा?

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं आज धरती माँ ट्रस्ट के साथ। धरती माँ ट्रस्ट से हमारे साथ प्रेसिडेंट बीएस बिष्ट जी और सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट हमारे साथ हैं। अब बात करते हैं इनके एक बड़े खास कार्यक्रम की, स्पैरो कंजर्वेशन। जी हाँ, स्पैरोस को बचाने की बहुत जरूरत है। एक जमाने में हमारे घरों के बाहर या फिर अगर कहना चाहिए छतों पर चींची चींची करती छोटी छोटी चिड़ियाएं होती थी, बट आजकल खत्म हो गई हैं। आजकल हमें कहीं कहीं पर सोसाइटीज के बड़े बड़े घरों में या फिर शॉफ्ट्स में हमें सिर्फ कबूतर नजर आते हैं। सो क्या कारण है इन चिड़ियाओं के चले जाने का, और वो जो वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़ियाएं होती थी वो कहाँ लुप्त हो गई हैं जानते हैं। सो किस प्रकार से इन चिड़ियाओं को बचाया जाता है भवन सिंह जी?
1: सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, गौरैया हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा वरदान है, प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। जो पहले जिन घरों में गौरैया रहा करती थी वो इतने जानकार थे, इतने समझदार थे और इतने साइंटिफिक थे कि उनके लिए अपने घरों में ही उन्होंने उनके लिए घोंसला छोड़ दिया था, जगह छोड़ दी थी दीवारों में, और ज़मीन से लेकर के 10 फीट की हाइट पे, 15 फीट की हाइट पे, 9 फीट की हाइट पे वो होल होते थे जहाँ पर गौरैया रहा करती थी। तो धरती माँ ट्रस्ट ने उन अपने पुराने दादाजी के घर के उस जगह को देखते हुए, उन होलों को देखते हुए, यहाँ NCR दिल्ली फरीदाबाद गुड़गांव में भी इस इनिशिएटिव कदम को इस तरीके से मार्केट में पहुँचाया ताकि हम अपनी गौरैया को बचा सकते हैं। और हमने समाज में लकड़ी के पुराने, जो पुरानी लकड़ियाँ होती है फैक्ट्रियों से जो वेस्ट बच जाता है उनको हम कलेक्शन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये वेस्ट हमें दे दीजिए। कहीं पे हमें वेस्ट फ्री में भी मिल जाता है और कहीं हमें खरीद के भी लाना पड़ता है, तो उसका उसके लिए निश्चित जो उसका जो साइज़ है 9x7x8 साइज़ का हम उसका घोंसला तैयार करते हैं और 10 फीट की 9 फीट की हाइट पर उसको स्टेबल कर देते हैं। और इवन आप मुश्किल से उसको लगाएंगे, गौरैया अगर आसपास देख रही होगी तो उसको अडॉप्ट कर लेती है और उसके बाद उसकी जनरेशन आगे बढ़ती है और खुश होकर के वो धन्यवाद देती है प्रकृति को, मानव को, कि किसी ने मेरे बारे में सोचा और मैं इसके बारे में क्यों ना सोचूंगी।
0: सो भाई देखिए, अगर हम स्पैरो कंजर्वेशन की बात करें तो न सिर्फ अब हम खुद ही ये देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे एनिमल्स और बर्ड्स, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, अब सोसाइटियां बन रही हैं और पुराने जमाने के घर नहीं रह गए हैं, बड़े बड़े बंगलोज नहीं रह गए हैं, तो इन सभी जीव जंतुओं के घर छिन गए हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जंगल खत्म हो गए तो सारे के सारे जानवर, अगर आप देखें तो रोज सुबह अगर आपको अपनी पूरे सोसाइटी में ढेर सारे बंदर नजर आते हैं तो दरअसल ये बंदर तो अपने ही जंगलों में घूम रहे थे, बट परेशानी है कि इनके जंगलों को काटकर हमने सोसाइटी बना ली है, तो अब ये बंदर कहाँ जाएंगे या फिर ये बाकी जानवर कहाँ जाएंगे। सो इन जानवरों को अपना घर बनाने की भी जरूरत है, लेकिन बंदरों के लिए शायद आप बड़े घर नहीं दे सकते हैं, जिराफ के लिए नहीं दे सकते हैं, एलिफेंट के लिए नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी गोरैया के लिए तो आप अपने ही इस घर के अंदर जगह बना सकते हैं। सो कोशिश करिए कि लुप्त होती हुई गोरैया के लिए आप छोटा सा एक घर जरूर बनाएं। सो अपने घर में एक छोटा सा घोंसला बनाने की जरूरत है, और उस घोंसले को अगर आपने प्रोक्योर करना है तो उसके लिए आप धरती माँ ट्रस्ट को जरूर कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको रेडीमेड ऐसे घोंसले देंगे जिसमें गौरैया रहकर खुश रहेगी और आपके घर में चहलकदमी मची रहेगी। छुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के साथ। धरती माँ ट्रस्ट से हमारे साथ प्रेसिडेंट बीएस बिष्ट और साथ के साथ सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट जी हैं। अब हम आपसे एक बड़ा खास सवाल पूछना चाहेंगे पवन सिंह जी, और पवन सिंह जी वो ये है, आपके दो बड़े खास इनिशिएटिव हैं, नवसृजन टूरिज्म और उसके साथ साथ वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट। मुझे ये बताइए, जो वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट है और नवसृजन टूरिज्म है, दरअसल इसमें आप क्या करते हैं?
1: सबसे पहले तो मैं वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा। नवसृजन एक हमारा प्रोजेक्ट है, धरती माँ ट्रस्ट ने इसकी जब नींव रखी धरती माँ ट्रस्ट की, उसके बाद हमने एक नवसृजन एक अलग से हमने प्रोजेक्ट बनाया कि इसके अंतर्गत हम किन किन कैटेगरीज में हम काम कर सकते हैं। नवसृजन जो वेस्ट क्राफ्ट है, हमारे घर और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जिस भी प्रकार का जो भी वेस्ट है, हम मानव समाज तक हर इकाई उस हर एक वर्ग तक हम पहुँचते हैं, जिस तक हमारी पूरी प्रयास रहते कि हम किन किन को इस बातों को कि इस मैसेज को पहुंचा सके। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर हम बताने जाएंगे, स्कूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी नींव है, वो उन बच्चों को हम सिखाते हैं कि वेस्ट को हमें किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, उस किस तरीके से उसको अलग अलग करना है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व में इस कचरे को दो तरीके से, तीन तरीके से हम समझ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसको दो तरीके से बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे, गीला कचरा और सूखा कचरा। हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को, गीले कचरे को अलग ग्रीन कलर के एक, आप किसी भी तरह का एक डब्बा बनाइए, उसमें रखिए, और सूखा कूड़ा जो होता है उसको एक दूसरे रेड कलर के डब्बे में उसको आप रखिए, ताकि उसमें हम छोटे छोटे बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो वेस्ट है हम उससे कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको हम आराम से ज़मीन पर गाड़ भी सकते हैं, उससे हमारी खाद बन सकती है। और सूखा जो कूड़ा होता है उससे आप समाज के उस व्यवस्था को, जो समाज ने, सरकार ने हमारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, वहाँ तक हम उसको बहुत अच्छे तरीके से, हम जैसे हमारे घरों में आजकल गाड़ियाँ आती हैं वेस्ट को लेने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलेक्शन के तौर पर करते हैं, तो उनको हम वो सूखा कूड़ा देंगे तो उनको बहुत ईजिली उसको अलग अलग करने में कोई असुविधा नहीं होगी। और गीले कूड़े से जो आप खाद बनाएंगे उससे एक आप जैविक ताकि और आगे बढ़ सकते हैं, उससे आप कंपोस्ट से अच्छी तरीके से खेती भी कर सकते हैं। आप अपने घर में बालकनीज में छोटे छोटे पौधों में अच्छी अच्छी खाद आप बनाएंगे तो गीला कचरा हमारे बाहर जाने से बच जाएगा। और सूखे कूड़े से आप जैसे टॉफ़ी के, बिस्किट्स के, नमकीन्स के, कई तरह के जो आप रैपर्स हैं, उन रैपरों से भी आप बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना सकते हैं। और कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते हैं, उसको एक छोटा सा एक ऐसा रूप दे सकते हैं, पुराने घर में हमारे कपड़े बहुत पड़े रहते हैं, उसका एक छोटा सा थैला बना करके उसमें आप भरते जाइए, एक कुशन का, एक तकिए का काम भी करेगा, आपके बैठने के काम आएगा। और जिस भी प्रकार का जो भी वेस्ट, जैसे क्लॉथ है, आज हमारे मार्केट में कपड़ों की ऐसी डिमांड आ रही है, हम कपड़ों को भी यूँ ही फेंक दिया करते हैं डंपिंग यार्डों में, और हमारे देश में आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ कपड़ों की बहुत सख्त ज़रूरत हो। ठंडियों में आप देखिए बहुत से लोग ठिठुरते रहते हैं, बैठे रहते हैं स्टेशनों में, बहुत हम जगह जगह घूमते हैं, हर स्टेशनों में आप देश के कई राज्यों में आप पहुँचे, जैसे गरीब जो लोग रहते हैं उन तक हम इस कपड़े को पहुँचा सकते हैं। आप धरती माँ ट्रस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं कि अपना घर का जो भी वेस्ट है, वो चाहे किसी भी तरह का वेस्ट है, वो भी आप हमें दे सकते हैं एज ए डोनेट के तरीके से आप। और इन चीज़ों को आप यूज़फुल कैसे बनाएंगे, इसको आप क्रिएटिव कैसे करेंगे, हमारी जो यूट्यूब चैनल है धरती माँ ट्रस्ट के नाम से, हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, धरती माँ .org पे भी विजिट करें, उससे भी आप इन बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं।
0: सो दोस्तों, अब आपको समझ में आया कि वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट क्या है, मतलब जो वेस्ट है उसको आप बहुत खूबसूरत क्राफ्ट में बदल सकते हैं और उसे मैनेज करते हुए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे ना तो आप वेस्ट को कूड़े में जाने देंगे और उसे धरती में वापस जाने से अच्छा धरती माँ को सुरक्षित और स्वच्छ रख सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम सुन रहे हैं आप मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी. मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के साथ, जिसके प्रेसिडेंट BS बिष्ट और सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट मेरे साथ बैठी हैं. दीपिका, आपसे जानना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप इन कामों को करने के लिए जाती हैं, खास तौर पर मैं वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूंगी, किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं? क्योंकि ना, मुझे पता है आप लोगों को जाकर कितना भी समझा ले, बट क्योंकि लोगों का माइंडसेट नहीं बदलना है, लोगों की आदत नहीं है, सो बड़ा मुश्किल होता है. सो किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं?
1: जैसे हम किसी को फर्स्ट समझाएंगे
0: जी,
1: तो वो तो कहते हैं कि हमारे करने से क्या हो जाएगा
0: जी,
1: पूरी दुनिया ऐसा कर रही है, ये तो होता ही रहता है, हमें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है
0: जी,
1: सरकार अपना काम कर रही है. तो वो लोग इसको समझते नहीं है, पर हम जितना हो सकता है हम उन्हें समझाते हैं, बताते हैं. जो यूथ होते हैं वो थोड़ा बहुत समझते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम फॉलो करेंगे, पर कुछ टाइम तक फॉलो करते हैं, फिर वो भी जो नेचुरली सब कर रहे हैं वैसे करना शुरू कर देते हैं. और बड़े लोग हैं वो तो मोस्टली सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है उस चीज़ को. वो बोलते हैं कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा.
0: वाकई ये बिल्कुल सही है, मतलब दीज आर सम रियल टाइम चैलेंजेस लोग फेस करते हैं. आप सोचिए ना कि आप जाएंगे और आप लोगों को एजुकेट करेंगे, आपके आज के बाद से आपके घर का जो कूड़ा है उसे ना सेग्रीगेट करिए, गीला अलग करिए, सूखा अलग करिए. तो अक्सर लोग ये जवाब देते हैं कि आप अपना काम खुद करिए, ये तो सरकार की ड्यूटी है कि हम अपने घर से कूड़ा निकाल देंगे, वहां जाकर ये कूड़ा आगे सेग्रीगेट हो जाएगा. सुन, सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली सेग्रीगेट हमेशा सोर्स पर होता है, यानी जहाँ कूड़ा बन रहा है वहीं आप उसे अलग कर सकते हैं. एक बार आपने सूखे कूड़े को गीले कूड़े में मिला दिया, तो बड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि वो जो गीला कूड़ा है वो सूखे कूड़े को भी गीला कर देता है. उसके बाद आप उसको वापस सुखाएंगे, एक प्रोसेस सोचिए कि आपके गीले और सूखे कूड़े को जब आप मिक्स कर चुके हैं, तो कहाँ कौन सज्जन है जो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके इस मिक्स करे हुए कूड़े को पूरा पहले वो अलग करेंगे, फिर सारी चीज़ों को अलग करने के बाद सेग्रीगेट करेंगे, जो पॉसिबल नहीं होता है. सो ये कुछ खास चैलेंजेस हैं. हम अपनी धरती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तादाद में लोग इस धरती को पोल्यूट कर रहे हैं. सो चलिए हम सब भी वो बने जो धरती माँ ट्रस्ट की तरह कॉन्शियसली इस वेस्ट को सही ढंग से मैनेज करें. और जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लव.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के साथ। धरती माँ ट्रस्ट बहुत बेहतरीन काम कर रही है पर्यावरण पर, जिनके प्रेसिडेंट बी एस बिष्ट जी और दीपिका बिष्ट जो कि सेक्रेटरी हैं मेरे साथ हैं। अब भवन सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी टीम कितनी बड़ी है और आप लोग दरअसल किस प्रकार काम करते हैं। सो अवेयरनेस फैलानी है, फिर साथ के साथ लोगों में बदलाव लाने की कोशिश करनी है, वेस्ट मैनेजमेंट के क्राफ्ट्स हैं, आप लोग स्टॉल्स लगाकर इसका सामान भी बेचने की कोशिश करते हैं, लोगों को एजुकेट भी करते हैं कि वेस्ट में से सामान कैसे बनाया जा सकता है। सो किस प्रकार करते हैं
1: इसमें? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे घर में किस प्रकार का जो कूड़ा होता है
0: जी,
1: उसको हम कैसे हम उसको यूजफुल बना सकते हैं
0: जी?
1: ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि हम जो हमारे घर का जो किसी भी प्रकार का जो कूड़ा है, उस कूड़े को हमने ये समझना है कि ये व्यर्थ नहीं है
0: जी।
1: इससे भी हम कुछ न कुछ अर्न कर सकते हैं, इससे भी हम कुछ वेल्थ में इसको बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँगा, हमारी पुरानी जीन्स की पैंट है, हमने फेंकनी है, अब हमने नहीं पहननी, उसका आप थैला बना लीजिए। उसका जब आप थैला बनाएंगे तो कुछ भी नहीं, तो आपका साल या दो साल आराम से वो थैला आपके काम करेगा और एक अच्छी फीलिंग भी आपको देगा कि मैंने अपने हाथों से यह बैग बनाया। और कई सारी ढेर सारी पॉलीथीन को आप बचा सकते हैं। और जो हमारी टीम काम करती है, हम घर से ही इसका प्रयास शुरू करते हैं
0: जी।
1: जैसे कि हमने जो भी प्रकार का जो कूड़ा है उसको हमने कैसे किया, हमने अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा इसको आपने अलग अलग रखना है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, समाज की एक नींव कहाँ से रखी जाएगी? अपने घर से। अपने बच्चों को आप सिखाइए, अपनी आदत में बदलिए उसको कि हमने उसको वेस्ट में डालना ही नहीं है। अब इसका करेंगे क्या? लोगों की यही सबसे बड़ा प्रश्न होता है, अब हमें इसका, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है इसको सेग्रीगेट करने का, इसको अलग अलग करने का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश का जो हमारी जेब से पॉकेट में से जो रोज के आपके बगैर कहे, आपको बगैर समझे हुए आपके 50 रुपये यूँ ही निकल जाया करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, जो कि आप रोज़ाना 50 रुपये दे रहे हैं भारत सरकार को। कैसे? समझिए, हमारे घर से जो भी कूड़ा ले जाने वाला व्यक्ति है उसको सरकार सैलरी देती है, कहाँ से देगी? हमारी पॉकेट से देगी। उसके बाद उसने बड़ी गाड़ी में उसको ट्रांसफ़र करना है, उनको सैलरी कहाँ से जाएगी? हमारी सेब से जाएगा। अब उसके बाद जो ट्रक जाएगा डंपिंग यार्ड में जाएगा, वहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनको सैलरी कौन देगा? भारत सरकार देगी। भारत सरकार हमारी जेब से निकालेगी। हम जो टैक्स पेयर करने वाले हैं उनके जेब से जाएगी। अब उस पर सेग्रीगेट करने वाले जो लोग हैं, वो गीले कचरे को और सूखे कचरे को जब अलग अलग करते हैं, उनमें से जो निकलने वाली जब इकट्ठा होता है उसमें डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जब निकलती हैं, तो बताइए सो दोस्तों, वो हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारे जैसे हाथ पैर नाक कान आँख वाले लोग हैं, वो कितनी मुसीबतों के साथ हमारे समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए और हमें एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमारे घरों के आसपास हमारी गंदगी ना हो उसको व्यवस्थित करने के लिए वो इतने गहरे डीपली हम काम कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पे और कार्बन डाइऑक्साइड, वो दिन रात सूंघते रहते हैं और वो इस चीज़ से बीमार भी हो जाते हैं। आज डंपिंग यार्ड जितने भी बन चुके हैं हमारे देश में, आप वहाँ के आप देखिए, दिल्ली NCR के आसपास आप जब लोग जाते होंगे तो कितनी, मतलब कितनी बदबूदार जो स्मेल जो वहाँ से आती है, उससे हम प्रदूषित भी हैं और आप इसको मैं 100% ये कहना चाहूँगा, उससे हम लोग बीमार भी रहते हैं। तो जो हमारी टीम है, यहीं से उसकी शुरुआत होती है कि उसको हम अलग अलग रखें और उससे फिर यह निष्कर्ष निकालें, अब इसको हम किस तरीके से इसको वेल्थ में बदल सकते हैं, जैसे बैग बनाना है, पेंटिंग्स बनानी है और उसके फ्लावर पॉट बनाने हैं, इवन धरती माँ ट्रस्ट जो पॉलीथीन होती है उसकी चप्पलें भी बनाते हैं। हम जगह जगह जा कर के स्टॉलों के माध्यम से अपने गुड्स को बेचते हैं और समाज को ये समझाते हैं कि आप जो है इस चीज़ को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, हमने राष्ट्र को, अपने पूरे विश्व को बदलना है, उसको सुव्यवस्थित करना है, उसको दुनिया से एक भारत को अलौकिक स्थान दिलाना है। हम उनको संदेश देते हैं कि हम अपनी धरती पर वेस्ट को जाने से यहीं से शुरुआत उसकी करते हैं। हमारी ऐसे इस तरीके से पूरी टीम काम कर रही है, जो कि हमारे गली मोहल्ले में लोग हैं और धरती माँ ट्रस्ट के 150 वॉलंटियर आज काम कर रहे हैं, जो मानव समाज को जागृत कर रहे हैं।
0: वाह, तो भाई देखिए, इतने सारे लोग हैं जो पॉलीथीन से चप्पल बना रहे हैं, बहुत सारे पॉलिथिन बैग से क्राफ्ट आइटम बनाया जा रहा है, वेस्ट से यूजफुल चीजें बनाई जा रही हैं जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जरूरत यह है कि इसमें कहीं ना कहीं माइंडसेट

और उसके बदलाव की जरूरत है। सो क्या आप इस माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी धरती माँ ट्रस्ट के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो मेरा अगला सवाल यही है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के साथ, जिसके की प्रेसिडेंट बीएस बिष्ट जी और सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट मेरे साथ बैठी हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई इस ट्रस्ट के साथ कैसे एसोसिएट हो सकता है। भाई देखिए, मुझे भी पता है कि इनकी बातें सुनकर आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई है, थोड़ा सा एंथुजियाज्म आया और आपको भी लग रहा है कि चलिए अपनी धरती माँ को बचाया जाए। तो धरती माँ को बचाया कैसे जा सकता है, जानते हैं दीपिका बिष्ट से, जो कि सेक्रेटरी हैं धरती माँ ट्रस्ट की। दीपिका, अगर कोई आपके धरती माँ ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहता है, कोई वॉलंटियर करना चाहता है, कोई एसोसिएट करना चाहता है, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो क्या आपकी वेबसाइट है, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं और कैसे आप तक पहुँच सकते हैं?
1: हमारी वेबसाइट है www.dhartimaa.org, आप उसमें विजिट कर सकते हैं, हमारे उसमें सारी डिटेल्स हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसमें मेंबर्स बन सकते हैं, वॉलेंटियर का फॉर्म भर सकते हैं, हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसमें आप आइए। हम अपने वॉलेंटियर्स को, अपने मेंबर्स को यही बोलते हैं कि आप अपने लेवल पे एक स्टेप जरूर आगे करिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पर्सन को इस चीज़ को समझाइए, अपने तक ही उस मैसेज को ना रखें। आगे आप बात को बढ़ाएंगे तो तभी हमारा पूरा जो समाज है वो एक साथ जुड़ेगा, एक सोच के साथ आगे बढ़ेगा। तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, उसमें आपको डिटेल्स मिलेंगी। हमारे काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ जगह जगह जाके स्टॉल्स लगाते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम में, वो सब हम सब मिल के लोगों को आगे मोटिवेट करते हैं।
0: वाकई भाई, आप अगर मोटिवेटेड हैं तो आप इनके साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं, तरीका आपके पास है। अगर आपको लगता है कि आप श्रमदान देना चाहते हैं तो आइए किसी दिन वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके को सीख लीजिए। अगर आपको लगता है आपके पास समय नहीं है लेकिन आपके पास पैसा है, आप इन्हें धन दे सकते हैं, जिससे कि वो अलग अलग एरियाज में जाकर इस पर्यावरण को ठीक कर सकेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप इनके इनिशिएटिव से अपने आप को जोड़ सकते हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप इनके साथ वॉलंटियर बनिए और अलग अलग तरीके से धरती माँ को एक बार फिर से वो तोहफा दीजिए जो धरती माँ आपसे चाहती हैं, गंदगी नहीं सफाई। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हमने ढेर सारी बातें जानी धरती माँ ट्रस्ट के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानवता की राह पर चल रहे हैं। ऐसे ही आज दो शख्सियत से मैंने आप लोगों को मिलवाया, प्रेसिडेंट बी एस बिष्ट भवन सिंह जी, और साथ के साथ अगर देखा जाए तो दीपिका बिष्ट जो कि सेक्रेटरी हैं धरती माँ ट्रस्ट की, आज यहाँ पर आई और उन्होंने बताया कि धरती माँ ट्रस्ट का सही मायने में उद्गम किस लिए हुआ और उसका उद्गम होने के बाद इतने लंबे समय, अगर आप देखें 2009 से इन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया, 2014 से लेकर 2025 तक की मैं अगर बात करूं तो इतना लंबे समय से ढेर सारे काम कर रहे हैं मानवता की राह पर चलते हुए। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी भवन सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स जो आपको रेडियो मानव रचना के जरिए सुन रहे हैं, उन्हें क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं एक छोटा सा एक कहानी के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ।
0: जी,
1: अगर एक मेले में, मैं कहूँ कि ये हमारा पूरा विश्व जो है एक मेला है, एक बाजार है, इसमें पिता पुत्र ये आप फिर कहें कि एक पूरी फैमिली अगर साथ में जा रही है कहीं पे, तो उसमें फैमिली का एक भी मेंबर अगर छूट गया, एक भी सदस्य अगर उस मेले में अगर कहीं खो गया, तो वह बच्चा भी परेशान हो जाएगा और पूरी फैमिली भी परेशान हो जाएगी और पूरा गांव भी परेशान हो जाएगा। हो सकता है उसके लिए पूरा जिला और पूरा राज्य भी परेशान हो सकता है, यहाँ तक कि पूरा देश भी परेशान हो सकता है। हम इस बात को इतनी गहराई से समझ सकते हैं कि हमारे द्वारा, हमारी एक सोच के द्वारा अगर हम एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, वह है वेस्ट मैनेजमेंट। और वेस्ट मैनेजमेंट ही हमें पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व में एक ऐसा अलौकिक स्थान दिला सकता है जो कि सोच भी बहुत बड़ी, एक कल्पना आप उसको करिए तो आप हमारे इस देश को पूरे विश्व में ऐसा सुंदर बना सकते हैं। इसी बात को लेकर के हमने एक बीच में एक प्रश्न हमसे छूट गया था कि नवसृजन टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा संदेश यह है कि अगर आप बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर जाना चाहते हैं, खूबसूरत जगहों को ढूंढना चाहते हैं और खूबसूरत सा आप भोजन ढूंढते हैं, खूबसूरत रहना ढूंढ सकते हैं और अच्छा शुद्ध पानी ढूंढ सकते हैं, तो यह हमारी डिमांड होती है वहाँ जा करके। तो इसको वहाँ पर जा करके हम शुद्ध कैसे पाएंगे? जब हम करेंगे तब हमें वो शुद्धता मिलेगी। हम एक उदाहरण के तौर पर और आपको बताना चाहूँगा कि अगर सपोज एक एग्जांपल के तौर पर आप उत्तराखंड में, मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ, आप नैनीताल की झील पर आइए, घूमिए, किसी भी स्टेट में आप जाइए, वहाँ पर जा करके अगर आप अपने द्वारा कुछ भी वेस्ट अगर करके आ रहे हैं तो आप बहुत बड़ा एक पाप करके आ रहे हैं और इस धरती माँ पे आप जो बोझ एक्स्ट्रा डाल रहे हैं और जो उसके द्वारा उसको वहाँ पे उसको इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद वो बहुत सारी प्रोसेसिंग के जरिए जाता है, बहुत अज्ञानतावश वहाँ पे अभी भी, आज भी हमारे देश में इतना सब काम होने के बावजूद, स्वच्छता अभियान होने के बाद भी, देश के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, उसके बावजूद भी आज हम एक ही गलती कर रहे हैं। जो इस गलती को हम सुधार सकते हैं वह है हमारा नवसृजन प्रोजेक्ट का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, कूड़ा न जलाएं, न बहाएं, न फैलाएं, इसे विश्व कल्याण के लिए उपयोगी बनाएं। अगर इस मुहिम को आप अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहते हैं, उसका अनुसरण करना चाहते हैं, तो आइए धरती माँ ट्रस्ट के साथ जुड़िए और आप हमारे वॉलंटियर बन सकते हैं। हमारे धरती माँ ट्रस्ट के वॉलंटियर न बन करके आप अपने वॉलंटियर बनिए, अपने पूरी फैमिली के लिए, अपने पूरे राज्य के लिए, पूरे विश्व के लिए, यही मेरा संदेश है। आइए हम सब मिलकर अपनी धरती माँ की रक्षा करें, सुव्यवस्थित करें और सुंदर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तहे दिल से धन्यवाद बिष्ट जी, आज आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि ऐसे धरती माँ ट्रस्ट के शायद 150 वॉलंटियर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना इनके साथ जुड़कर या इनके बिना भी हम अपने घर पर सिर्फ एक छोटा सा प्रण लें कि आज के बाद से हम अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वेस्ट को उस धरती पर न जाने दें जहाँ दरअसल जिस धरती को हम अपनी

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे, संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना, रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं

0: लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम, लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम ऑफ रेडियो मानव रचना। और इस कार्यक्रम में मैं आपको बहुत सारी सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ। इन सशक्त महिलाओं की जिंदगी के कुछ पन्नों को हम पलटने की कोशिश करते हैं, इनकी कहानी सुनने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप जिंदगी में सशक्त कैसे हो सकते हैं। सो आज सशक्तिकरण में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है राधिका वर्मा जी। राधिका वर्मा डायरेक्टर हैं द सेंट लैब की, यानी ये खुशबू से ओतप्रोत हैं और साथ के साथ ही लोगों के जिंदगियों में खुशबू फैलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस खूबसूरत सी महक के साथ ये लोगों के जीवन को कैसे महका रही हैं और अपने जीवन को इन्होंने खुशनुमा कैसे बनाया है, आज हम इसके बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी।
0: राधिका जी, इस कार्यक्रम का सबसे पहला सवाल ना एक स्टैंडर्ड सवाल है जो मैं हर महिला से पूछती हूँ, अमीर गरीब, मोटी पतली, खूबसूरत या नॉर्मल लुकिंग, हर महिला से मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके लिए सशक्तिकरण क्या है। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके लिए महिला सशक्तिकरण इसकी क्या डेफिनेशन होगी, क्या परिभाषा होगी, मतलब आपको एग्जैक्टली क्या लगता है कि बहुत सारा पैसा होना सशक्तिकरण है, फ्रीडम होना सशक्तिकरण है, बहुत सारा ऐशो आराम होना सशक्तिकरण है, एग्जैक्टली आप किसे सशक्तिकरण मानती हैं, आपके लिए एम्पावरमेंट क्या है?
1: पहली बात, ये बहुत बहुत डीप सवाल है, इसका आई थिंक आज तक कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा, आई थिंक मैं भी नहीं दे पाऊंगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि सशक्तिकरण बहुत ही सिंपल और सरल है। इट्स लाइक हमारी आम जिंदगी में ही हमें सशक्तिकरण या फिर वुमेन एम्पावरमेंट जिसे हम बोलते हैं वो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सशक्तिकरण सिंपली कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। अगर मैं कोई दो काम या तीन काम या चार काम एक साथ कर रही हूँ तो कोई मुझसे ये नहीं पूछे अरे तुम औरत होके ये चार काम कैसे एक साथ कर रही हो। बार बार बार बार बार बार किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे अपने आप को प्रूव ना करना पड़े, क्योंकि हम कहीं भी देख ले, घर देख ले, कॉर्पोरेट्स देख ले, गवर्नमेंट सर्विसेज देख ले, कहीं पर भी देखें, एक उसी सेम सीट के लिए एक महिला को अपने आप को ज्यादा प्रूव करना पड़ता ही है। और अगर इस चीज का मैं एक बहुत ही सिंपल सा अगर एग्जाम्पल दूं, शायद हमारे जो लोग हमें सुन रहे हैं वो शायद रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है, मी एंड माई हस्बैंड वी वेंट फॉर अ हाउस व्यूइंग
0: जी।
1: ओके, अब वहां एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको नहीं पता कि इस घर के पैसे कौन देने वाले है, जो भी
0: जी,
1: वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन और उसके बीच में हर एक चीज ही इज रेफरिंग टू माई हस्बैंड, बिल्कुल इनविजिबल हूँ मैं, वो मुझे देख ही नहीं पा रहे। And I'm putting my questions and he's not even like answering those questions.
0: Yes.
1: So questions उन्होंने अगर answer भी किए तो वो भी सिर्फ मेरे husband को address करते हुए।
0: Yes.
1: तो ये जो सभी चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत तोड़ती हैं। ये चीजें औरत को मजबूत भी बनाती हैं।
0: जी।
1: पर शुरुआत में ये चीजें औरत को तोड़ती हैं। तो आई थिंक एज अ सोसाइटी हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें, आप औरत से सवाल मत करो कि अरे आप कैसे करोगे, अरे वो कर लेगी और वो करती आई है।
0: आई नो। वाकई राधिका जी बिल्कुल सही, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक बड़ा सही एग्जाम्पल था। आज भी बहुत सारी चीजें हैं जहां ये माना जाता है कि महिलाएं एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। डिसीशन जो वर्ड है ना, मैं हमेशा क्यों कहती हूँ सशक्तिकरण डिसीशन है, महिलाओं के डिसीशन की रिस्पेक्ट ही नहीं है, या मुझे लगता है रिस्पेक्ट से भी ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोग सोचते हैं कि महिलाओं को क्या डिसीजन लेना है, उनके ऊपर तो हमें शायद कोई डिसीजन थोपना है।
1: और ये बात मैं आपको बड़ी बड़ी कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स के बारे में भी बता सकती हूँ। हम अभी जो कहते हैं ना कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, देश बहुत आगे बढ़ चुका है, सोच बहुत आगे जा चुकी है, ऐसा नहीं है। अगर सेम चीज एक मेल काउंटर पार्ट को रखनी है तो उसे उसके पीछे की रीजनिंग उतनी नहीं देनी पड़ेगी जितनी एक फीमेल काउंटर पार्ट को देनी पड़ेगी।
0: वाकई। सो देखिए, महिलाएं बहुत सारी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेती हैं, सॉफ्टर सेक्स कहलाती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी जब हक की बात आती है, अधिकारों की बात आती है, डिसीशंस की बात आती है, तो एक महिला पैदा होने का हक भी खुद नहीं ले सकती है। फिर आगे नेक्स्ट जब वो जननी बनती है या माँ बनती है, उसका उसका अधिकार भी उसके पास खुद के पास नहीं है। थोप देती है समाज कि आपको बच्चा पैदा करना है। और बिल्कुल ऐसे ही शादी है, आपका बिजनेस है, आपके पढ़ाई है, आपका करियर है, ये सब डिसीशन आज भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कोई और ले रहा है। पिता ले रहे हैं, भाई ले रहे हैं, पति ले रहे हैं, या फिर कोई परिवार का सबसे बड़ा सदस्य जैसे बहुत समझदार माना जाता है, बट महिलाओं के डिसीजन खुद महिलाएं ले रही हैं, ये बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए मैं ये कहती हूँ महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आएंगे, करेंगे ढेर सारी बात द सेंट लैब की डायरेक्टर राधिका वर्मा के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। आज हम बात कर रहे हैं राधिका वर्मा जी से, जो डायरेक्टर हैं द सेंट क्लैब। भाई हमने उनसे सशक्तिकरण के बारे में तो पूछ लिया, लेकिन चलिए अब एक बड़ा अहम सवाल। हर सदी, हर युग और हर एरा में मैंने देखा है कि महिलाओं के जो चैलेंजेस है ना, वो बदलते आए हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा ब्रेक पर जाने से पहले कि महिलाएं पहले पैदा ही नहीं हो पाती थी ना, पैदा होना एक चैलेंज था। फिर धीरे धीरे पढ़ाई एक चैलेंज बना, चलिए पढ़ने भी लग गए, अपने पैरों पर भी खड़े होने लग गए, थोड़े बहुत डिसीजन शादी के, आप लव मैरिज कर लें, मना लें परिवार को, थोड़ा बहुत समाज बदला। बट हर एरा में महिलाओं के जो चैलेंजेस हैं वो बदलते जा रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। राधिका जी आपसे जानना चाहूंगी, मुझे ये बताइए कि आज के जमाने के, करंट टाइम्स के क्या चैलेंजेस हैं जो महिलाएं फेस करती हैं?
1: तो आज के जमाने के चैलेंजेस ऑफकोर्स बड़े हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे एक मौका मिला कि मेरे घर में कभी भी मेरे और मेरे भाइयों में कोई डिफरेंस नहीं किया गया। मुझे अपॉर्चुनिटीज उतनी ही मिली, मैं बाहर गई पढ़ने के लिए एंड एवरीथिंग। मैंने अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। पर आई थिंक आज की महिला में जो अभी भी चैलेंज है वो ये है, एक इंटरनल गिल्ट है कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे ऊपर रखने की। मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी मम्मी जो है वो हमेशा से एक वॉकिंग वुमन रही है एंड शी इज डन रियली वेल फॉर हरसेल्फ, फॉर आवर फैमिली, शी इज प्रोवाइडेड फॉर अस। और अभी मैं अगर बोलूँ कि शी इज प्रोवाइडेड अस एज अ मैन, तो कहीं ना कहीं शायद मैं भी एक इनइक्वालिटी कर रही हूँ। पर आप सबकी समझ के लिए किसी तरीके से उन्होंने ये सब किया है एंड आई हैव सीन हर ऑल्सो टेकिंग दिस गिल्ट of not being able to present, of not being able to emotionally provide, or not being able to, मतलब जो होता है ना, एक अपने आप को चुनने के लिए तुमको कुछ छोड़ना पड़ता है, वो एक अंदर की गिल्ट नहीं जा रही है आजकल की औरतों में भी। फॉर एग्जाम्पल मैं भी काम करती हूँ और आई हैव हेल्प एंड एवरीथिंग, बट स्टिल हर दूसरे तीसरे दिन लगता है अरे यार आई नीड टू गिव बैक टू माई होम एज वेल, आई नीड टू बी देयर, आई नीड टू बी प्रेजेंट। जबकि यही सेम थॉट प्रोसेस किसी आदमी या किसी मर्द के दिमाग में नहीं आता।
0: Yes.
1: अब काम को उतनी ही तवज्जो और उतना ही रिस्पेक्ट और क्रेडिट दे पाते हैं। कहीं ना कहीं एक औरत वहां पे पीछे रह जाती है, क्योंकि मैं कुछ भी काम कर लूं मैं उस गिल्ट को नहीं छोड़ पाती एंड मैं वो क्रेडिट ग्रैब नहीं कर पाती, उस क्रेडिट का फल भोग नहीं पाती, क्योंकि मुझे पता है कि उसके लिए मैंने कहीं ना कहीं कुछ छोड़ा है, क्योंकि इनेट वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी।
0: दरअसल फैक्ट है ये राधिका जी, इसे कहा जाता है वर्क लाइफ बैलेंस। सो हमारा वर्क जो है वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि उसे कभी भी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना ही नहीं गया है। करियर हमेशा महिलाओं के लिए सेकेंडरी माना गया है। और ये जो बात है ये घर पर तो अप्लाई करती है, घर वाले ये सोचते हैं आप घर का जब तक सारा रख रखाव, खाना बनाना, बच्चों का देखभाल, सब कुछ करने के बाद आप नौकरी पर जाइए, आप वहां से वापस आएंगे तो आप सारे पूरे परिवार का ख्याल रखिए। लेकिन अगर खुदा ना खासा घर को अगर जरूरत है तो आप सबसे पहले होने चाहिए जो छुट्टी लेंगी, क्योंकि आपके करियर का क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये जो सोच है, इसी सोच के कारण महिला को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई उसकी पहली प्रायोरिटी शायद उसका घर है, और अगर वो उसके बियॉन्ड जा रही है तो ये नौकरी तो वो अपने लिए कर रही है या ये बिजनेस तो वो अपने लिए कर रही है। इसमें शायद मतलब पूरा परिवार चला सकती है वो इस बिजनेस से, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्रेडिट जरूर होगा। इंदिरा नुई जी, मतलब मुझे कहना चाहिए, मैं हर बार अक्सर उन्हें कोट करती हूँ, बट वो खुद ये कहती हैं कि भाई मैं जब बोर्ड मीटिंग्स में बैठी होती थी तो एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे ऐसा लग रहा होता था कि मेरी हाउस हेल्प को जो इंस्ट्रक्शन देने हैं वो मुझे ही देने हैं, मेरे बच्चों के रख रखाव के लिए मुझे जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो मुझे ही देने हैं। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई और नहीं लेगा, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। एंड डिस्पाइट कि मैं एक इतनी बड़ी कंपनी की, और कहना चाहिए इतने सारे देशों को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन ये जिम्मेदारी वहीं रह जाती है। और इस गिल्ट के साथ, जो राधिका ने कहा, एक्चुअली महिलाओं में अंदर ये गिल्ट है, और यही कारण है कि महिलाएं करियर में बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाती हैं और फिर वो सेकेंड इनिंग्स हमेशा छोड़ देती हैं। उनको ऐसा लगता है कि चलिए भाई पहले परिवार है, बाकी सब कुछ बाद में है।
1: पर क्या ये सही है? पर यहाँ मैं एक और चीज ऐड ये करना चाहूंगी भावना जी।
0: जी,
1: बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बदल भी रहे हैं।
0: यस,
1: बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं एंड जैसे मेरा परिवार भी बहुत बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। बट की बात कर रही हूँ ये वो है कि महिला इंटरनली खुद से नहीं छोड़ पा रही है।
0: जी,
1: ओके, तो यहाँ पर हमें उन लोगों को भी थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए कि हाँ आप लोग बदल रहे हो, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग कि ये मेरे मैंने बचपन से देखा है, तो इसे छोड़ने में अब शायद अगली जनरेशन,
0: बट वो राधिका जी तब पॉसिबल होगा जब उस जिम्मेदारी को कोई होल हार्टेडली ले लेगा. जब आपको ये पता होगा कि इफ नॉट मी देन ये जिम्मेदारी ले रही है. जैसे अगर आप देखेंगे कि हम अपने घर को निश्चिंत होकर तब छोड़ते हैं जब हमें पता होता है हमारी जो हाउस हेल्प है वो निश्चिंत रूप से हमारा सब काम करेगी. गर्मा गर्म खाना परोस दिया जाएगा, बनाकर रख दिया जाएगा, घर का रखरखाव किया जाएगा, बर्तन साफ हो जाएंगे, पूरा घर चमक रहा होगा. सो हमें ऐसा लगता है अब हम आराम से अपने ऑफिस में समय बिता सकते हैं, हम अपने बिजनेसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. लेकिन अगर घर पर वो नहीं है तो हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी हमेशा वही रहती है. सो दोस्तों कहीं ना कहीं ये प्राइमरी जिम्मेदारी को शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ खाना बनाना, खाना खाना और घर का रखरखाव बेसिक लाइफ स्किल्स हैं, ये किसी महिला की जिम्मेदारी नहीं है. और सोचिए आज की महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है. आप क्या मानते हैं मुझे जरूर बता सकते हैं. अपनी प्रतिक्रिया, अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस भेज दीजिए मुझे 8010781078 पर. वक्त एक बड़े प्यारे से गाने का, सुना रही हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन सा गाना, बड़ा कहीं मत जाना. जुड़े रहना अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। और जब मैं वी कहती हूँ ना तो मैं गर्व से कहती हूँ, महिलाएं एक साथ खड़ी हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकती हैं और सशक्तिकरण तो डेफिनेटली ला सकती हैं। चलिए भाई, आप सुनते हैं राधिका वर्मा जी की कहानी को, डायरेक्टर हैं द सेंट लैब की। सो राधिका, मुझे बताइए कि आपने द सेंट लैब कब शुरू किया और इसके पीछे की कहानी क्या है?
1: जी बिल्कुल, अगर हम द सेंट लैब की बात करें तो ये मेरे जो फादर साहब हैं उनकी ही कंपनी का एक ब्रांड है। तो अगर मैं बोल सकती हूँ तो शायद 30 साल पहले शुरू हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर एक और नया वर्टिकल शुरू किया, विच इज अ परफ्यूम, जो हम लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। मेरे पापा की एक ख्वाहिश थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अलग दूसरे बिजनेसेस के लिए कोई चीज लाते हैं लेकिन वो आम पब्लिक के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे। तो वहां पे हमारी थोड़ी सी एक इनोवेशन आई कि क्यों ना हम इसको आम पब्लिक तक भी लेकर जाए। अगर हमारे पास कोई हुनर है, कुछ है, तो हम डायरेक्ट अपने भारतीयों के लिए कोई एक ऐसी चीज बनाए। दूसरा इसमें एक पैट्रियोटिज्म भी था एक फैक्टर कि परफ्यूम एक ऐसी चीज है कि हम ही लोग बनाते हैं और हम ही लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर के लोग उनको मेड इन पेरिस, मेड इन दुबई लगा के और दुगने तिगने दामों पे हमारे ही लोगों को बेच देते हैं।
0: जी,
1: तो एक ये भी एक इंस्पिरेशन थी कि नहीं, हमें मेड इन इंडिया बना के अपने लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बनाना है और अपनी इंटरनल टेक्निक्स यूज करके हम किसी और को अपनी चीजों का क्रेडिट क्यों दें।
0: Yes.
1: जो कि भारतीय और औरतें दोनों ही हमेशा से देती आई
0: है। Actually, yes.
1: तो ये एक बिल्कुल चीज थी इसको शुरू करने से करने के लिए।
0: बड़ी खूबसूरत सी कहानी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है ना, ये हम सबको शायद या पूरे भारत को जोड़ने वाली है, क्योंकि ये फैक्ट है कि जब कभी भी हम महंगे परफ्यूम्स की बात करें तो हमने कभी भी भारत को नहीं देखा। यानी कि अगर इत्र की भी बात करें तो वो भी हम बाहर जाते हैं, और इनफैक्ट जैसे खुद राधिका जी ने कहा कि हम दुबई जाते हैं, पेरिस जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, हम अलग अलग देशों में जाते हैं और वहां जाकर हम क्या करते हैं, वहां के परफ्यूम्स लेकर आते हैं ये सोचकर कि ये जो बड़ी ब्रांड्स है ना, ये बहुत अच्छे परफ्यूम्स बना रही हैं। और आप खुद सोचकर देखिए कि अगर आपको ये पता लगे कि जिस परफ्यूम को आपने खरीदा है ये दरअसल भारत में ही बना है, बस ब्रांड किसी और का है, हमने किसी और के लिए काम किया है, सो अंदर से कैसी फीलिंग आएगी कि अरे हमारी चीज है। इमेजिन करिए ना, आपने आलू का पराठा बनाया और कोई आपकी प्लेट में से लेकर चला गया और फिर उसको वापस लेकर आया और फिर उसको चौगुने दाम पर आप ही को दे रहा है, तो आप कहेंगे तो मैंने ही बनाया था, ये मेरे ही पराठे को आपने नया नाम दे दिया है। सो कुछ इसी तरीके से हम बरसों से परफ्यूम्स के साथ करते आए हैं, बट अब शायद जमाना बदल रहा है। राधिका जैसी बहुत सारी एम्पावर्ड वेमेन आगे आ रही हैं और एक सपना पूरा कर रही हैं, और शायद ये सेंट लैब का सपना हमारे भारत के लिए एक नई पहचान भी लेकर आए। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट की इस खूबसूरत सी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं इक्वली ब्यूटीफुल राधिका वर्मा जैसे, जो कि डायरेक्टर हैं द सेंट लैब की। राधिका, अब एक अहम सवाल, बीइंग अ वुमन, देखिए हमें बड़े सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस है, चाहे वो हमारी नौकरी है, चाहे वो हमारा घर है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने जब द सेंट लैब शुरू किया, सपना पापा का था, लेकर आगे गई, सोचा कि हम थोड़ा पेट्रियोटिज्म डालें, लेकिन जब आप ये लेकर गई तो एज अ वुमन आपने कभी कुछ चैलेंज फेस किया? कहीं आपको लगा हो कि लोगों ने कहा हो कि अगर इसे कोई और रिप्रेजेंट कर रहा होता तो ज्यादा अच्छा होता, या मार्केटिंग या फिर ब्रांडिंग, कभी ऐसा लगा हो कि ओ आप तो एक महिला हैं, आपके साथ भी कोई और है, ऐसा कभी सवाल आपसे पूछा गया हो?
1: टू बी ऑनेस्ट भावना जी, मुझे मेरी इंडिविजुअल जर्नी में बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत बहुत सपोर्ट मिला है, मेरे भाइयों का, मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, तो मुझे डायरेक्टली इतना कोई चैलेंज अभी तक मुझे नहीं आया है, और ये आई थिंक बहुत अच्छी बात है बाकी सभी महिलाओं के लिए कि हाँ अब ऐसी महिलाएं हैं जिनको नहीं आ रहे चैलेंज। पर मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी जरूर शेयर करूंगी, जो महिलाएं हमारे लिए काम करती हैं, जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके चैलेंजेस को शेयर करना चाहूंगी
0: जी।
1: आज भी उन चैलेंजेस से जूझ रही हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा इंदौर में एक स्टोर है और वहां पर उस स्टोर की देखरेख करने के लिए एक लेडी है, उनका नाम है दुर्गा
0: जी,
1: ठीक है। नाउ शी केम टू मी फॉर लुकिंग फॉर अ जॉब, और वो जिस तरीके से बात करती है, शी इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन शी टॉक्स, शी ब्यूटिफुली translates everything and does everything. She is a Maharashtrian lady. धीरे धीरे उनसे बात करके मुझे पता चल, and she was very blatant about it, कि दीदी मुझे परफ्यूम के बारे में कुछ नहीं पता, आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। और पता है, to be honest, ये बात भी सिर्फ एक औरत ही बोल सकती है। तो उन्होंने मुझे ये कहा and I was like, अच्छा ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी। बट धीरे धीरे उनसे बात करके मुझे ये रियलाइज हुआ कि उनके घर में उनको बहुत दबाया जाता है, जिस वजह से वो जो वो कहना चाहती है, जो वो बोलना चाहती है, कर नहीं पाती। वो बाहर आई, उन्होंने हमारे साथ एक महीना बताया, आई थिंक उनके 28th day ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट, ओके। हम दोनों इस तरीके से खड़े थे, क्योंकि जो भी हमारे स्टोर पे आता है मोस्टली मैं उनको हैंडल करती हूँ। हम खड़े थे, जैसे ही कोई आया अंदर, वेरी यूजुअल मैं खड़ी हुई अपनी जगह से कि आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे पीछे किया और उन्होंने मेरे कान में बोला, दीदी इनको मैं देखूं? I was like, बिल्कुल दुर्गा दीदी देखो। दुर्गा दीदी ने उस 15 मिनट के कॉन्वर्जेशन में, उन्होंने इंग्लिश में भी बात की उनसे, ठीक है, और उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा कि सर क्या आप मुझसे हिंदी में बात कर सकते हैं। उन्होंने हमारी पूरी कहानी बताई, एवरीथिंग शी इज बीन ग्रास्पिंग इन द पास्ट 1 month, ओके, एंड शी कन्वर्टेड दैट क्लाइंट, एंड द स्माइल दैट वॉज देयर ऑन हर फेस, She was like, आज मैंने अपना फुल पोटेंशियल जाना है, आज मैंने उसे महसूस किया है, आज मैंने कुछ किया है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो, और ये कुछ चैलेंजेस हैं जो वुमेन फेस कर रही है। वो अपने घर पे अपनी पोटेंशियल नहीं दिखा पाती, पर वो यहाँ पर अपना वही सेम पोटेंशियल पूरे मन से, पूरे तन से दिखा पाती है, क्योंकि वहाँ, अब यहाँ पर उनके पास वो प्रेशर नहीं है, वो आईज नहीं है।
0: Yes.
1: तो ये एक चीज है जो मैंने महसूस की है, और इसीलिए अब हम ये भी चाहते हैं कि हम मोस्टली अपने प्रोडक्शन लाइन में, अपने सेल्स में, अपने मार्केटिंग में मोस्टली सिर्फ और सिर्फ औरतों को हायर करें।
0: How sweet.
1: ये क्योंकि ये एक एक्चुअल इम्पैक्ट है जो हमने देखा है अपने काम के थ्रू, और आदमी काम, टू बी ऑनेस्ट, अगर इंटरनल सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आदमी काम सिर्फ इम्पैक्ट के लिए करता है। भावना जी, आप भी आरजे रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं एक महसूस होता होगा कि हाँ मैंने बहुत सारी जिंदगियों को टच किया है।
0: Actually.
1: और इस उद्देश्य के साथ मैं भी निकली हूँ कि मैं बहुत सारी औरतों को टच करना चाहती हूँ, उनकी जिंदगियां बदलना चाहती हूँ।
0: So, एक सशक्त महिला ही दोस्तों ऐसा कह सकती है, जैसा आपने सुना कि जब कभी भी हम देखते हैं एक महिला अपनी जर्नी जब अचीव करती है तो उसे पता है कि उसने किस स्ट्रगल को देखा है, उसने किस अप्स एंड डाउन्स को देखा है, और उसके बाद वो चाहती है कि मैं कुछ महिलाओं की जिंदगी, देखिए आप पूरे जीवन में आप सारे विश्व को तो नहीं बदल सकते, आप पूरे देश को भी नहीं बदल सकते हैं, बट हाँ आप कुछ जीवनों को बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो इस कार्यक्रम के थ्रू मैं हर बार ये महसूस करती हूँ कि एक कहानी और कितने सारे लोगों के लिए मोटिवेशन, कितनी महिलाएं ये महसूस कर रही हैं आज कि हम अगली राधिका वर्मा हो सकते हैं, हम भी वो एक सपना पूरा कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा था, हम एक बिजनेस करेंगे, अपने पैरों पर खड़े करेंगे अपने आप को और अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे कि दुनिया में याद रखा जाए। भाई देखिए, जब कभी भी आप द सेंट लैब का नाम सुनेंगे सो आप एकदम याद करेंगे, ओ हाँ, राधिका वर्मा की कहानी हमने सुनी थी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप भी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती हैं एक नाम के साथ, तो आपको सशक्त होने की जरूरत है। लेकिन ये सशक्तिकरण तभी हो पाएगा जब कोई आपके लिए मार्गदर्शक बने, कोई आपकी मदद करे। और शायद ऐसी ही बहुत सारी महिलाएं कोशिश करें तो बहुत सारी महिलाएं आज अपने आप में बहुत सशक्त हो सकती हैं। राधिका जी, आप एक बहुत ही अच्छी पहल के साथ बहुत ही नेक काम कर रही हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं राधिका वर्मा जी के साथ, जो कि डायरेक्टर हैं द सेंट लैब की। राधिका जी, अब हमने बहुत सारे चैलेंजेस की, सशक्तिकरण की बात करी, अब बात करते हैं सपोर्ट की। देखिए भाई, इस समाज में महिलाएं हैं तो पुरुष भी हैं, सो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा सपोर्ट कौन रहा और आप अपनी सशक्तिकरण की जर्नी को, एम्पावरमेंट की जर्नी को कैसे डिफाइन करेंगी।
1: भावना जी, मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट, आई थिंक सपोर्ट प्लस इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स मेरी माँ रही है, बिकॉज शुरुआत की 13-14 सालों में जब उनकी शादी हुई थी, मैंने उनको एज अ हाउसवाइफ देखा है, एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग एंड द काइंड ऑफ यू सी एन इमर्जेंस आउट ऑफ नथिंग, आई हैव सीन दैट इन हर, कि आप एक नॉर्मल घरेलू परिवार में एक महिला हो और फिर उसके बाद आपने कुछ बिल्ड किया और कुछ इतना खूबसूरत, इतना बड़ा बिल्ड किया है, और उनके चैलेंजेस भी मैंने देखे, उन्होंने किस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट किया है, अपने आप को बार बार बार बार बार बार चीजें सिखाई हैं, सपोर्ट की हैं विदाउट एनी सपोर्ट, तो वो मेरी एक इंस्पिरेशन रही है। तो शी हैज बीन द ग्रेटेस्ट सपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक द मेन इन माय लाइफ, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, माय ब्रदर्स, माय हस्बैंड, माय फादर, इंक्लूडिंग माय फादर इन लॉ, ओके, एंड ऑल्सो मतलब माय मदर इन लॉ एज वेल। I think all of them have created such a safe ecosystem, a very robust ecosystem for me, कि मैं उसमें फल फूल सकती हूँ, खेल सकती हूँ, अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे वो एक सेफ स्पेस दिया है, एक इक्वल इन्वायरमेंट दिया है। तो आई थिंक यस, अगर मैं नंबर वन पे रखूँ तो अपनी माँ को रखूंगी, और दूसरा मेरी पूरी फैमिली, बहुत बहुत बहुत थैंक यू उन सभी को।
0: हाउ स्वीट, वाकई दोस्तों बहुत बड़ा संदेश है ये। देखिए जिस प्रकार से खुद राधिका जी कह रही हैं, वही मैं इंस्पायर हुई अपनी माँ से, लेकिन ये मेरा पूरा परिवार है जिसने मेरी मदद की और आज मैं यहाँ तक पहुँच सकी। सो कहीं ना कहीं हम भी किन्हीं का परिवार हैं, और अगर आप ये देखें, आप अपने परिवार में झांक कर देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम उन्हें जिम्मेदारियों में बांध देते हैं, हम उन्हें कहते हैं आप एक पत्नी पहले हैं, आप एक माँ पहले हैं, या फिर और कुछ नहीं तो आप एक महिला पहले हैं, आपकी जिम्मेदारी घर है। सो जरूरत कभी पड़े तो कोशिश करिएगा कि आप भी उन्हें पंख देने की कोशिश करें, जिससे वो भी एक ऊंची उड़ान उड़कर अपने सशक्तिकरण को महसूस कर सके। राधिका ने महसूस किया, उनकी माँ ने महसूस किया, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस सशक्तिकरण को महसूस करना चाहती हैं, बट जरूरत है आपके विचार और आपके सोच के बदलने की। सो अगर समाज बदलेगा तो महिलाओं के लिए जीवन और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। आज इस खूबसूरत से कड़ी में हमने ढेर सारी बातें की राधिका वर्मा जी के साथ, जो कि डायरेक्टर हैं द सेंट लैब की। राधिका जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला, इस खूबसूरत सी कहानी को शेयर किया और साथ के साथ बहुत सारी महिलाओं को मोटिवेट किया अपने जीवन के कुछ पन्ने पलट कर। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी?
1: आई थिंक मैं एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज है और स्पेशली सभी महिलाओं के लिए, वैसे ही एप्लीकेबल सभी पे होता है, कि अगर जिंदगी में कभी भी आपको मौका मिले कि आप किसी को हाथ पकड़ के ऊपर ला सकते हो, तो प्लीज वो हाथ जरूर बढ़ाना। गो बियॉन्ड योर लिमिट्स टू अपलिफ्ट समवन एंड यू विल सी द वर्ल्ड, यू विल सी पीपल अराउंड यू, यू विल सी थिंग्स चेंजिंग। दैट्स इट, ये छोटा सा मैसेज है एंड आई थिंक दिस विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट।
0: वाकई ये बहुत पावरफुल मैसेज है, क्योंकि देखिए अगर एक हाथ आपने बढ़ाया और एक हाथ किसी और ने बढ़ाया, सो आप सोचिए ऐसे ही धीरे धीरे सारे हाथ बढ़ते रहेंगे। और जितनी भी महिलाएं हैं उन सब के लिए और पुरुषों के लिए भी, मुझे ऐसा लगता है जीवन बदल जाएगा। बस जरूरत ये है कि पुश मत करिए, ऊपर उठाने की कोशिश करिए, कॉम्पिटिशन में मत पड़िए। कहा जाता है एक महिला दूसरी महिला से हमेशा जलन रखती है, जेलस रहती है, सो वो सारी जो सोच है ना उसे पीछे छोड़ दीजिए। महिलाओं में जेलसी की नहीं लेकिन शायद प्यार की जरूरत है, और यही एक बहुत बड़ा संदेश है जो हम सशक्तिकरण के लिए फैला सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच राधिका जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच।
0: सो दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम जो मैं आपके लिए संडे की शाम को लेकर आती हूँ। और अच्छी बात यह है कि हर संडे की शाम को और भी सुहानी बनाते हैं मानवता की बात करते हुए। हम सबको पता है कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस मानवता को भूलते जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि मैं उन सभी लोगों से आपको मिलवाती हूँ जो इस तरीके के काम करते हैं, जो ह्यूमैनिटी के काम करते हैं, मानवता के काम करते हैं। आज इस कड़ी में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के बारे में शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, और अगर पूरे शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में नहीं पता है, तो इनका भवन कहां पर है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार के काम ये करते हैं, आज हम बहुत सारी बातें इनसे जानने वाले हैं। स्टूडियो में मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के, राकेश सोनी जी हैं जो कि ट्रेजरर हैं, और महेश गटानी जी हैं जो कि सेक्रेटरी तो हैं ही इस साल के, लेकिन वैसे हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर के ऑल ओवर के प्रेसिडेंट रहे हैं और एक बहुत ही सीनियर मेंबर है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के। आप सभी का स्वागत है रेडियो वन रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल राम कुमार जी आपसे करना चाहूंगी, अगर मैं पूछूं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट तो इसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है?
3: माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट की शुरुआत सन 1985 में समाज सेवा और जन सेवाओं के कार्य करने हेतु शुरू किया गया था। इस ट्रस्ट के तहत हम समाज सेवा के कार्यक्रमों में माहेश्वरी समाज के सभी जरूरतमंद परिवारों को मेडिकल सहायता, शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप, विधवा पेंशन और शादी में सहयोग करते हैं। जन सेवा के कार्यक्रमों में नेत्र चिकित्सा शिविर, पोलियो करेक्टिव सर्जरी कैंप, दिव्यांग कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप,

0: आयुर्वेदिक चेकअप कैंप, निःशुल्क एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का भी महेश्वरी भवन में संचालन, समय समय पर हार्ट चेकअप, कैंसर, डायबिटिक एवं अन्य बीमारियों के संबंधित अवेयरनेस कैंपों का भी आयोजन हम करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय प्रशासन का सहयोग, कोरोना के समय प्रशासन को फुल सपोर्ट, साथ ही साथ रेड क्रॉस के सहयोग से फूड पैकेट्स, सूखा राशन तथा जरूरतमंद परिवारों को वितरण किया गया।
1: सो भाई, बड़े सारे काम है जो माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट करती है, लेकिन अगर हम देखें एक लंबे समय से माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का जब गठन हुआ, तो इसका गठन इसलिए नहीं हुआ कि चलिए अपने समुदाय के लोगों की मदद की जाए, इसलिए हुआ कि इस पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और खास तौर पर अगर हम अपने शहर की बात करें तो हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश में हम अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं वो लोग जिनके पास पर्याप्त नहीं है, जिनके जीवन के लिए उनके पास पर्याप्त नहीं है। अब क्या पर्याप्त नहीं है? कई बार उनके पास सेवाएं पर्याप्त नहीं है, अगर वो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। सो ये जो सलाह है ये उन्हें कहाँ से मिलेगी? और ऐसे नेकी के काम माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट एक लंबे समय से करती आ रही है। अब ये किस प्रकार के काम कर रहे हैं, कैसी कैसी चीजें होती हैं, किस प्रकार के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, समय समय पर किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं, टीम कैसी है, बहुत सारी बातें हैं जो इनसे पूछनी है, लेकिन उतने ही गाने भी तो हैं जो आपको सुनाने हैं। सो फिलहाल कहीं मत जाइए, एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरत्न 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरत्न 107.8 एफएम पर हम चल रहे हैं मानवता की राह पर, और हम मानवता की राह पर चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सदन जो है या भवन जो है वो आपको मिलेगा 7 सेक्टर में। कहां पूछूंगी, लेकिन ये सवाल पूछने से पहले राकेश जी, हम बात कर रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में, सो मुझे बताइए कि किस प्रकार के अलग अलग काम हैं जो किए जाते हैं।
1: जय महेश, ये माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट जो विभिन्न समय पे अंतराल में अपना कैंप लगाता है फरीदाबाद में, और इसका जो लाभार्थी है वो आसपास के 150 से 200 गांव इसके लाभार्थी होते हैं। जैसे हम पोलियो कैंप लगाते हैं या नेत्र चिकित्सा कैंप लगाते हैं। नेत्र चिकित्सा कैंप तो अब क्या है कि गवर्नमेंट की उसकी वजह से थोड़ा सा कम हो गया
0: जी।
1: बाकी वो लगाते हैं, तो हम एक महीने पहले से हम इन गांवों में, जो मेवात के गांव हो गए, नूह हो गए, उसके आसपास हमारी टीम जाती है
0: जी।
1: और वहाँ पे प्रचार करती है, वहाँ के सरपंच हो गया या प्रधान हो गया, उनसे वो बात करती है, उनको पेम्पलेट देती है, फिर ये बताती है कि माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट जो कि सेक्टर 7A में स्थित है, वहाँ पे पोलियो कैंप चलता है, उसमें आप आए। और जो भी लोग वहाँ आते हैं, अपने आते तो वैसे वो लेके आते हैं डंडा जैसा की, लेकिन जाते अपने पैरों से हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमारे समाज के जो व्यक्ति है, जो हमारे समाज के जो भी सदस्य है, उनका पूरा ध्यान भी रखते हैं और ये सेवा कार्य हम करते रहे हैं।
0: राकेश जी, एक चीज जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी, और वो ये है कि जो आप लोगों का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है दिव्यांग के लिए कैंप, उसमें बहुत सारे दिव्यांग आते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जो कि दूर दूर से कहीं से आते हैं, जिनके पास शायद कोई सहारा नहीं होता है, उनके लिए किस प्रकार की सुविधा और किसके एसोसिएशन के साथ मिलकर किस तरीके से आप ये दिव्यांग कैंप लगाते हैं?
1: मैं आपको यही बता रहा था कि इसके लिए हम एक महीने पहले से गांव-गांव जाके भ्रमण करके उनको अपने जैसे एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, उनके सरपंच हो, प्रधान हो, उनको हम अपने पेम्पलेट देते हैं। अगर उनको बोलते हैं कि आपके पास अगर आने की सुविधा नहीं हो तो हमारे को इन्फॉर्म कर दो, हम वहाँ से गाड़ी भेज देते हैं, उनको बुलाते हैं। उसके बाद वहाँ पे हमारी पूरी टीम है समाज की, वो निस्वार्थ 24 घंटे वहाँ पे तैनात रहती है, और उनके जो भी डॉक्टर्स, जो महावीर, भगवान महावीर कैंप है जयपुर का, उसके साथ में मिलके हम उनका ये इलाज करवाते हैं और उनको पैरों से वापस भेजते हैं। उसके बाद उनको ट्राई साइकिल जो भी उनको देनी होती है वो भी हम समय समय पर देते हैं।
0: दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे दिव्यांग ऐसे होते हैं जो शायद कम पैसे होने के कारण या फिर कोई और परेशानी के कारण विकलांग तो हो गए, लेकिन उनके पास इतनी सुविधा नहीं होती है कि वो अपने अंग लगवा सकें। आजकल तो आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट होता है, कृत्रिम अंग जो है वो लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये लगाना भी तो अपने आप में एक कॉस्ट है। मिनिमम 5 से लेकर 15-20-25 हजार तक का एक खर्चा आता है, और कई बार परिवारों में इतना पैसा ही नहीं होता है कि उस विकलांग इंसान के लिए वो एक कृत्रिम कोई भी अंग है वो लगाया जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट निःशुल्क आपके लिए ये काम करती है, और खूबसूरत बात यह है कि आप किसी भी गांव के हो सकते हैं, आप इस शहर में कहीं भी रह सकते हैं, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप एक विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, और आपको आना है और आपको चाहिए कि आपका अंग लग जाए और उसके बाद आप अपना जीवन आसानी से बिता सकें, सो ये सब काम करती है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं मैं जो इनसे जानना चाहती हूँ। आज माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से रामकुमार राठी जी, राकेश सोनी जी और महेश जी मेरे साथ बैठे हैं। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, यानी मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक बेहतरीन सा गाना, लेकिन आप कहीं मत जाना। फील गुड फील लाइव।
2: क्या कहा?

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं, राकेश सोनी जी हैं जो ट्रेजरर हैं, और महेश जी हैं जो कि मुझे कहना चाहिए सर्वे सर्वा एक लंबे समय से माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। और इतने लंबे समय से मैं इन्हें काम करते हुए देख रही हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ कि भाई इनका जो नेकी का काम है ना वो जन जन तक पहुंचे। महेश जी, अब अगला सवाल आपके साथ। किसी भी काम को करने के लिए अकेला इंसान नहीं कर सकता, तो एक टीम की जरूरत होती है। मुझे बताइए आपकी टीम किस प्रकार काम करती है।
1: महेश कट्टानी, महामंत्री माहेश्वरी मंडल, अध्यक्ष हरियाणा पंजाब प्रादेशिक माहेश्वरी ट्रस्ट। माहेश्वरी समाज बिजनेस और सेवा कार्यों में हमेशा अग्रणी रहा है। जहाँ तक सेवा कार्यों को संपन्न करने का सवाल है, हम लोगों के हम साल में कुछ न कुछ सेवा कार्य करते रहते हैं। हमेशा सेवा के कार्य चलते रहते हैं। सेवा के कार्य में जब भी हमारा कोई प्रकल्प सामने आता है, सबसे पहले हम कार्यकारिणी से अप्रूव करते हैं। उसके बाद में उस कार्य को एग्जीक्यूशन के लिए हम अलग अलग टीमें बनाते हैं। अपने प्रचार प्रसार की टीम बनती है, प्रिंटिंग का काम देखने की होती है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन का काम होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और 4-5 दिनों का अगर प्रोजेक्ट होता है तो शाम को उसका रिव्यू भी होता है। तो सब मिला के समाज में हमारे युवा साथियों की, सीनियर लोगों की फंड रेजिंग, तो सब मिलके उस काम को सफल बनाने के लिए हम दिन रात उसमें लगे रहते हैं जब तक पूरा, और उसी की बदौलत हमारे हर कैंप सफल होते हैं।
0: वाओ, तो आपने खुद ही देखा भाई माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के कितने सारे काम हैं, लेकिन इसके लिए एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत है। अब आइडियली अगर आप किसी भी ट्रस्ट या फाउंडेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर तो आपने सुना ही है और वो फोरफ्रंट पर हमेशा होते हैं, लेकिन उनके पीछे होती है वॉलंटियर्स की और मेंबर्स की एक बहुत बड़ी टीम। और माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उन सभी को मैं सलाम करना चाहूंगी। जिस ढंग से वो लोग हर काम को एग्जीक्यूट करते हैं और जितने सेवा भाव से लगे रहते हैं, मुझे कहना चाहिए एक बहुत ही नेक संस्था है जो ढेर सारे काम कर रही है। भाई आने वाले समय में अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में आपके आसपास कहीं कोई ऐसा शख्स है जिसको किसी भी प्रकार की जरूरत है और उसकी जरूरत आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, सो एक ऐसी जगह है जहां आप दरवाजा खटखटा सकते हैं और वो है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। अब आप इनसे कैसे जुड़ सकते हैं, आप इनके कामों में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, सब चीजों के बारे में करेंगे बात। जुड़े रहेगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, और आज माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं, राकेश सोनी जी हैं और महेश जी हैं। राम कुमार जी, आपके पास वापस आऊंगी। जब कभी भी हम ट्रस्ट की बात करते हैं, फाउंडेशन की बात करते हैं या एनजीओ की बात करते हैं, सो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये सारे काम करना ना बड़ा आसान होता है। आप अपनी नौकरी पर जाइए, आप अपने बिजनेस में जाइए, फिर थोड़ा सा पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करके आप एक टीम बना लीजिए और इन सारे कामों को कर दीजिए। लेकिन इन कामों को एग्जीक्यूट करने में ढेर सारे चैलेंजेस हैं जो आते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के किस प्रकार के चैलेंजेस हैं, तो क्या कहेंगे आप?
1: इन चुनौतियां तो इसमें काफी आती है
0: जी,
1: लेकिन फिर भी हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे ट्रस्टी हैं
0: जी,
1: उनके अंदर काफी सेवा भाव है।
0: वाओ।
1: और हम लगभग आपस में मिल करके इन चुनौतियों को पूरा कर लेते हैं। कोई भी काम करने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है
0: जी,
1: लेकिन हमारे जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही सेवा भावी है।
0: वाओ।
1: उसके लिए मुझे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि 1985 से ये संस्था आज लगभग 42-43 साल हो रहे हैं।
0: वाओ।
1: 42-43 साल से चल रही है, जुड़े।
0: और अगर मैं मेंबर्स की या वॉलंटियर्स की या इसके लोगों की बात करूं, तो कितने लोग होंगे जो इस पूरे ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं?
1: ये मेंबर हमारा लगभग मेंबर्स है 1100 मेंबर के आसपास हमारे इस ट्रस्ट के हैं लोग।
0: इतना बड़ा वॉलंटियर ग्रुप, सोच सकते हैं आप, 1100 लोग अगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं, सो क्या नहीं किया जा सकता है। और सोचिए, हर इंसान अपनी फील्ड में महारत हासिल किया हुआ, यानी ये सब एक बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हैं, जो अपने अपने काम तो करते ही हैं, लेकिन सेवा भाव इतना है कि कोई भी इनके पास आए तो वो खाली हाथ ना जाए, उसकी झोली भर कर जाए। अब परेशानी कैसी भी हो सकती है, मान लीजिए कि कोई आए और कहे जी मेरे घर में खाने के लिए राशन ही नहीं है, तो ये इस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं कि आपको वो भी मुहैया कराया जाए। और कई बार, जैसे मैंने कहा, कुछ बड़े बड़े काम हैं जो करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स अक्सर ये लगाते हैं। गर्मी के समय में आपने देखा होगा कि एक सबसे बड़ा चैलेंज है थैलेसेमिक बच्चे हों या नॉर्मल लोग हों, हॉस्पिटल्स में इसकी काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो जाती है। सो किस प्रकार से होने वाला है ये सब करेंगे बात, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: Welcome back, friends. आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, A Step Towards Humanity. मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ. माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में आपने जाना 1985. Can you believe I was just born at that time? तब से आज तक ये पूरा का पूरा ट्रस्ट चलता आ रहा है. इतने सारे लोग इसके मेंबर्स हैं और उस टाइम से लेकर आज तक इतना सारा काम किया जा रहा है, मतलब हैट्स ऑफ. लेकिन ये एक ऐसी ट्रस्ट है जो निरंतर आने वाली पीढ़ी को भी सेवा सिखाती आ रही है. ऐसा नहीं है कि एक ही जनरेशन काम करती है, जनरेशन से जनरेशन ये काम सीखते जाते हैं, टीम बनती जाती है और ये सारे के सारे काम आप तक पहुंचते हैं. बेनिफिशियरीज की हमने बात की कि भाई किस तरीके के लोग हैं, गांव से लेकर शहर तक जिसकी भी जरूरत है ये वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. अब एक बड़ी जरूरी चीज है जो अक्सर मुझे लगता है कि हर फाउंडेशन, हर ट्रस्ट अपनी तरफ से कोशिश तो करता है लेकिन उन सभी के लिए बड़ा चैलेंज भी होता है ऐसी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, और वो है ब्लड डोनेशन कैंप. भाई मैं खुद जब ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करती हूँ तो मुझे स्ट्रेस रहता है क्या पता लोग डोनेट करने आएंगे या नहीं. एक बड़ा ही खास डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. महेश जी, मैं चाहूंगी आप इसके बारे में जरूर बताएं.
1: जैसे कि आपने बताया है कि गर्मियों के अंदर ब्लड की बहुत ज्यादा कमी रहती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हर साल हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते रहते हैं. और अभी आने वाले रविवार 24 मई 2026 को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है जो रोटरी ब्लड सेंटर एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर कर रहे हैं. और हमारा टारगेट मिनिमम से मिनिमम 101 यूनिट का है और हमारी कोशिश रहेगी 150 क्रॉस करें. और इसके लिए, इसको सफल बनाने के लिए हमने पिछले संडे मीटिंग करी थी. मीटिंग करके हमने अपने कार्यकर्ता की टीम बना के पूरे समाज में जो रेगुलर ब्लड डोनर्स है उनको 1-to-1 कॉन्टेक्ट करके फाइनली कि कौन लोग कंसेंट दे रहे हैं जो ठीक है उनकी हम लिस्ट तैयार करेंगे. और ब्लड डोनेशन कैंप से 2 दिन पहले फिर रिमाइंड करके और फिर फाइनली जो ब्लड डोनर डे के दिन उनकी एक एक लिस्ट को हम लोग टिक करके रहेंगे भी कौन बंदा नहीं है, कौन नहीं है. तो ये ऐसा कैंप है जिसमें हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं जो ब्लड डोनेट कर सके और हमारे कैंप के साथ जुड़े. धन्यवाद.
0: ब्लड डोनेशन के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई बहुत ज़रूरी है ब्लड को डोनेट करना. क्यों? क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं, एक एक यूनिट ब्लड का इंतज़ार कर रहे होते हैं. और आपने व्हाट्सएप्स पर तो देखा ही होगा, फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, हाथ जोड़े हुए इमोजी होती है, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई या फिर मेरे ससुर बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, आप लोग प्लीज़ आकर ब्लड डोनेट करिए. बट हम सब हमेशा यही सोचते हैं ना कि ये कौन लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं और उन लोगों तक पहुँच पाते हैं जो उनके लिए वाकई एंजल का काम करते हैं. सो हम और आप ही वो लोग हैं जो किसी के एंजल बन सकते हैं. अगर आप ये बनना चाहते हैं सो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सा मौका है. इस बार 24 मई 2026 को रोटरी ब्लड सेंटर के साथ ऑर्गेनाइज किया जाने वाला माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का ये बहुत ही खूबसूरत सा इनिशिएटिव है. अगर इनकी ये मानना है कि 150 यूनिट होना चाहिए तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसे 200 यूनिट बनाएं. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद पिछले 3 महीनों में ब्लड डोनेट ही नहीं किया, आप बिल्कुल हेल्दी हैं और ब्लड डोनेट कर सकते हैं. सो चलिए भाई इस बार का टारगेट बना लीजिए, आज ही से अपने कैलेंडर को ब्लॉक कर लीजिए. 24 मई को पहुंचिए माहेश्वरी सेवा सदन 7A, सेक्टर 7A फरीदाबाद, और मेरे साथ मिलकर चलिए भाई इस ब्लड डोनेशन कैंप को सक्सेसफुल बनाते हैं. सो आप सभी से यही अपील है कि आप सभी इस कैंप में आइए और किसी के लिए एंजल बन जाइए. और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लाइव.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, और ये सारी बातें सुनकर आई एम श्योर आपके अंदर की मानवता जाग उठी है। अब आपको लग रहा है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अब चलिए भाई, आप मेंबर नहीं है, वॉलंटियर नहीं है, तो बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, कौन आपसे एसोसिएट हो सकता है, कौन आपके साथ जुड़ सकता है, कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, किस तरीके से आप एसोसिएट करते हैं, जानूंगी अब हमारे ट्रेजरर राकेश सोनी जी से।
1: हमारे यहाँ माहेश्वरी, जैसे माहेश्वरी मंडल का गठन हुआ था 1982 में
0: जी।
1: उसके 3 साल बाद हमने ये सोचा कि समाज की सेवा कैसे हो सकती है, इसलिए इसका गठन किया गया माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का 1985 में
0: जी।
1: उसके नीचे भी हमारे माहेश्वरी मंडल में 2 संस्था और काम करती है, एक युवा संगठन और एक महिला संगठन। तो हम सब मिलके ये समाज सेवार्थ कार्य जैसे समय समय पर अंतराल में हम करते रहते हैं। हर 3 महीने में हम अपनी मीटिंग बुलाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि इंटरमीडिएट क्या हमारे को समाज की सेवा का काम करना चाहिए। कभी हम आई कैंप लगाते हैं, कभी पोलियो कैंप लगाते हैं, कभी आयुर्वेदिक कैंप भी लगवाते हैं, कभी ब्लड हार्ट चेकअप कैंप लगवाते हैं। ऐसे हम अंतराल में कुछ न कुछ करते रहते हैं, और इसमें सभी हमारे माहेश्वरी समाज के वॉलंटियर हैं जो अपनी स्वेच्छा से वहाँ आते हैं और अपना जैसे समय का जो भी है जो देते हैं। और हमारे समाज में भामाशाह की कोई कमी नहीं है, उसका

0: हमारे पास कोई भी कभी कमी का महसूस नहीं होता है और इसीलिए हम अपना समाज की सेवा के काम करते रहते हैं।
1: नहीं देखिए, मैं ना हमेशा कहती हूँ तीन तरीके के दान होते हैं। आप श्रमदान दीजिए अगर आपके पास श्रम है तो, भाई आपकी क्षमता है और आप जाकर श्रम कर सकते हैं, यानी आप जाकर वॉलंटियर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है भाई आपके पास टाइम ही नहीं है, आप मेरे जैसे इंसान हैं जो अक्सर अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। सो आपके पास एक चीज़ है धन, सो आप धन का दान दे सकते हैं, उस धन से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। सो कई बार आपने देखा होगा कि श्रम करने वाले बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनके पास श्रम से होने वाला जो दान है उसके लिए धन चाहिए होता है, वो नहीं होता है। और तीसरा सबसे जरूरी दान, समय का दान। आज के जमाने में मोबाइल फोन में हम घंटों खत्म कर देते हैं, अगर आप अपने दो घंटे भी निकालते हैं और अपना समय आप जाकर किसी को मोटिवेट या इनकरेज करने के लिए देते हैं ना, तो इससे अच्छा और इससे बड़ा दान हो नहीं सकता है। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट न सिर्फ ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही खूबसूरती से अपने जितने भी कहना चाहिए माहेश्वरी ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं और जितना भी इनका समाज है वो तो आगे बढ़ता ही है, लेकिन क्या हम इसमें अपना हाथ नहीं निभा सकते हैं या हम इनका साथ नहीं दे सकते हैं? ज़रूर दे सकते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हैं, दिव्यांग कैंप्स हैं या फिर इनके अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, इसमें आप भी जुड़ सकते हैं। बेनिफिशरीज लाने के तरीके से, कॉन्ट्रीब्यूशन के तरीके से, वॉलंटियर के तरीके से आप ज़रूर ये कर सकते हैं और चलिए मिलकर इस दुनिया को और भी खूबसूरत जगह बनाते हैं। छुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। Feel good, feel light.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो वाना प्रश्ना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो वाना प्रश्ना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। हमारे साथ माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से राम कुमार राठी जी हैं, जो कि प्रेजिडेंट हैं, राकेश सोनी जी हैं, जो ट्रेजरार हैं, और महेश घटानी जी हैं, जिनको मैं एक लंबे समय से जानती हूँ और मैंने इनके ढेर सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारे कामों को खुद विटनेस भी किया है। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप तीनों आए। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे? राम कुमार राठी जी, आपसे शुरुआत करेंगे।
1: सभी के लिए संदेश, मानव मात्र की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और हमारे समाज का मोटो भी सेवा ही संकल्प है।
2: मैं तो यही कहूंगा कि समाज के लिए हर किसी व्यक्ति को अपना समय जरूर देना चाहिए। समय दोगे, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आप काम हाथ में लेंगे तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं आएगी। बस आपका मोटिव अच्छा होना चाहिए, सेवार्थ भाव होना चाहिए, तो समाज की सेवा करते रहना चाहिए। यही हमारा समाज का सेवा ही संकल्प, यही हमारा समाज का ध्येय है।
3: माहेश्वरी समाज का मेन मोटो ही सेवा ही संकल्प है, क्योंकि पूरा समाज, चाहे कहीं से पूरे भारतवर्ष में देखें, संख्या में बहुत कम है, लेकिन समाज बिजनेस में सबसे अग्रणी है और सेवा में भी अग्रणी है। राजस्थान में आप एक एक गांव में देखेंगे तो धर्मशाला से लेके हॉस्पिटल से लेके पशु पक्षियों तक का ध्यान रखा जाता है। उसका मेन मोटो हम लोगों का यही है, सेवा ही संकल्प। जब भगवान ने अगर हमारे को जीवन दिया है तो उस जीवन की सार्थकता उसी में है कि हम मानव मात्र की कुछ सेवा कर सके। जय महेश।
0: न सिर्फ समाज का जो संकल्प या कहना चाहिए मोटो है वो बहुत ही खूबसूरत है कि सेवा ही संकल्प है, लेकिन साथ के साथ आप खुद ही देखिए कि अगर आपको भगवान ने समर्थ बनाया है, हमेशा हम कहते हैं ना कि भगवान ने हमें समर्थ बनाया है, सो जब आप समर्थ हैं सो कोशिश करिए कि आप समाज को और भी समर्थ बनाएं। ना कि हम खुद तो खूब अमीर हो जाएं, लेकिन आसपास का हमारा समाज जो है ना वो हमेशा आपको लगे कि उस तरीके से नहीं बढ़ पाया है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इस समाज का ही एक हिस्सा है। सो आज हम चले माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, जहाँ पर हमारे साथ राम कुमार राठी जी, राकेश सोनी जी और महेश कटानी जी थे। और आज की इस मानवता की राह पर हमने माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में ढेर सारी जानकारी ली। वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आपसे इजाजत लेते हुए बस एक ही वादा, अगले हफ्ते मैं आऊंगी आप ही के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो वाना प्रश्ना 107.8 एफएम के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए, बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांका आपके साथ और इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। प्रोग्राम में जहां मैं आप लोगों के पास होती हूं पूरे 2 घंटे के लिए जहां होती हैं खूब सारी बातें और खूब सारे गाने मैं आपको सुनाती हूं। तो आज के प्रोग्राम में भी आप बिल्कुल तैयार हो जाइए जहां आपके पसंद के गाने मैं आपको सुनाने वाली हूं। और इसी के साथ ही आज के इस खास मौके पर जी हाँ चिल्ड्रंस डे के इस मौके पर आप सभी को बहुत सारी बधाई बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम में वही कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपको बहुत सारे भाव मन के अंदर आने वाले हैं। क्या होने वाला है ये आपको मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और एक गाना सुनाती हूँ मैं आपको। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आपका कोई सवाल है या कोई मैसेज आपको हम तक या बाकी लिसनर्स तक पहुंचाना है या कोई गाना आपको सुनना है या किसी को डेडिकेट करना है तो हमारा नंबर है 8010781078। चलिए गाना एंजॉय करते हैं और इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।
1: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

कहते हैं बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है, जहां ना कोई चिंता ना कोई डर, बस खेल, सपने और ढेर सारी मासूमियत। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। ये कैसा शो जो दिल से जुड़ता है, और आज तो दिल को छू लेने वाला दिन है। जी हां, आज है चिल्ड्रंस डे, और आज इस मौके पर मैं एक ऐसी जगह पे हूं जहां जिंदगी को दूसरा नाम मिलता है। जी हां, यहां वो बच्चे रहते हैं जिन्हें शायद अपना कोई नाम मिला, लेकिन अब इनके पास है मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी का प्यार भरा परिवार। जी हां, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी की, जहां हम गए, हमने ढेर सारी बातें की। और इस संस्था के प्रेसिडेंट है श्रीमती सिमरन लांबा, जो पिछले कई सालों से इन बच्चों की जिंदगी में माँ जैसी ममता और मार्गदर्शक जैसी शक्ति लेकर आई है। सिमरन, जिसे आज हमने बहुत सारी बातें की, इनसे जाना मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी किस तरह से इन बच्चों के लिए काम करता है, आप किस तरह से सहयोग दे सकते हैं, और भी बहुत कुछ, यहाँ तक कि बच्चों की कहानियां हम सुनेंगे इस प्रोग्राम में, कि किस तरह की कहानी है उन छोटे छोटे बच्चों की जिन्होंने शायद कुछ देखा ही नहीं अभी, जो अभी देखना बाकी है, लेकिन एक मोड़ पर उन्हें कोई अपना छोड़कर चला गया। तो आज हम करने वाले हैं सिमरन लांबा जी से ढेर सारी बातें, और साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई सवाल है आपका, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। तो आइए एंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रांका आपके साथ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और इस वक्त हमारे साथ में है सिमरन लांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम।
1: थैंक यू प्रियंका जी।
0: जी, मिरेकल के प्रेसिडेंट हैं और आज हम इनसे ढेर सारी बात करने वाले हैं, आपसे जानने वाले हैं आपकी इस पूरी जर्नी के बारे में, मिरेकल की नींव कैसे रखी जाई गई, किस तरह से आज ये वर्क करता है और भी बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। सबसे पहले आप हमारे रेडियो के माध्यम से जुड़ी हैं, सभी लोग आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी, सभी लोगों के लिए मैसेज क्या होगा आपका?
1: सबके लिए मेरा मैसेज ये होगा कि बच्चों को थोड़ा बच्चों के तरीके से देखें और थोड़ा इंसान को ह्यूमैनिटी ग्राउंड में होना चाहिए और जितना हम बढ़ चढ़ के आप सपोर्ट कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भविष्य में हमारे देश के लिए या संसार के लिए ये जनरेशन है, क्योंकि ये अभी हमारी स्टार्टिंग स्टेज है, नींव है हमारे बच्चे, है ना। आज ये इनका भविष्य अगर अच्छा होगा तो कल आने वाला हम सबका भविष्य अच्छा होगा, देश के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए उन्नति वो होगा ये।
0: जी मैम, सबसे पहले मिरेकल की नींव कैसे रखी गई, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, और कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है एक ड्रीम से, तो क्या आपका भी कोई सपना था या किस तरह से आपने मिरेकल की नींव रखी?
1: मिरेकल की नींव तब स्टार्ट हुई जब मैंने मास्टर्स किया MSW, तब हम लोग इंटर्नशिप करने के लिए होम्स में जाते थे, तो जब हमने ऑर्फनेजेस के अंदर इंटर्नशिप किया, मैंने वहाँ एक चीज़ महसूस की कि बच्चों को ना मतलब माँ बाप की कमी कहीं ना कहीं खलती थी, अगर किसी ने कोई डोनेशन दिया या कुछ भी दिया तो उनको पता रहता था, और वो चीज़ कहीं ना कहीं ना हम बड़े तो बड़ों की तो डिग्निटी होती है पर हम ये भूल जाते हैं बच्चे की भी अपनी एक डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और हम कहीं ना कहीं उसको ना हार्म कर रहे होते हैं उनके हाथों में कुछ ना कुछ दे के और फोटोज़ क्लिक करके। आजकल ये ट्रेंड भी है कि हमें देना है या हमने कोई पुण्य का काम करना है जी तो हमें बच्चों को देना है, तो वो कहीं ना कहीं हार्म करती है और वो बच्चा डीमोटिवेट होता है, वो सोसाइटी में जेल नहीं हो पाता
0: जी।
1: तब मैंने डिसाइड किया कि मैं कैसा होम बनाऊंगी जो जीरो होगा, यहाँ बच्चे नहीं रहेंगे और हर बच्चे को उसका घर मिलेगा। फिर हमने स्टार्ट किया, तब गवर्नमेंट का साथ टाई अप करके हमने एडॉप्शन देना स्टार्ट किया कि होम के अंदर एक भी बच्चा नहीं हो, बच्चे की सही जगह उसका घर हो, फैमिली से बेटर कोई जगह नहीं है, तो तब हमने फिर इसको 2015 में इसको स्टार्ट किया।
0: तो करीबन इसे 10 साल हो गए,
1: 10 साल हो गए इसको, 10 साल हो गए, और कम से कम मैंने 250 बच्चों को अडॉप्शन में दे दिया हमने, इन कंट्री इंटर कंट्री, 40 बच्चों के तो खुद के उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ के उनको वापस किया। कई बार बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं, या मियाँ बीबी का कभी झगड़ा हो जाता है तो वाइफ रोड पर छोड़ के चली जाती है बच्चे को, तब हमने 40 बच्चों को तो उनके बायोलॉजिकल को वापस किया, बाकी को हमने जो स्पेशल नीड हैं या आपके नॉर्मल बच्चे हैं तो हमने एडॉप्शन में दिए हैं सारे।
0: तो कई बार ऐसा होता होगा कि काफ़ी ब्रूटल केस भी आते होंगे आपके पास में, तो कोई ऐसी कहानी जो आप शेयर करना चाहें?
1: काफ़ी केस है, एक बार कोविड में हुआ था कि दो भाई बहन को उनके सगे ताऊ ने जला दिया था बिल्कुल बम बांध के, और बीके चौक पर उनको फेंक दिया था बच्चों को, और एक बच्चा है जो 9 साल की लड़की है वो सेक्सुअली असोल्ट भी है, 3 बहनें हैं हमारे को, शायद बाप ने ही दारू के लालच में उस बच्चे को बेच दिया, तो बहुत वर्स्ट केसेस में आते हैं बच्चे, बहुत ट्रोमाटाइज भी होते हैं बच्चे, उन्हें कभी कभी अपने उस पास से निकलने के लिए साल साल दो दो साल लग जाता है, पर जब वो निकलते हैं फिर बहुत अच्छा निकलता है।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और आज हम हैं मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी, जहां पर हम बात कर रहे हैं इस संस्था के प्रेसिडेंट श्रीमती सिमरन लांबा जी से, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं, बच्चों के एक्सपीरियंस जान रहे हैं और किस तरह से हर एक बच्चे की कहानी है जो ये हमें बता रही हैं और कितनी तकलीफें बच्चों की जिंदगी में और उनको कैसे उभारने का काम करते हैं सिमरन जी। तो काफी कुछ हमें इनसे जानने को मिल रहा है। ये वाकई ऐसा होता क्यों है, क्यों इस तरह से बच्चों के साथ में चीजें होती है? बच्चों को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है या उसके माँ बाप कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनको वापस से आपने वो किया, तो कितनी खुशी होती होगी ना ये देख करके कि जो बच्चे खो गए हैं वो वापस से अपने माँ बाप के पास पहुँच गए।
1: काफ़ी कई बार कई पेरेंट्स के बच्चे मिसिंग हो जाते हैं पर वो सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं और बच्चा यहाँ तड़पता है अपने माँ बाप के लिए और जब वो मिलता है और उसके बाद वो बहुत टाइटली पकड़ के रखता है कि मैं दोबारा नहीं खो जाऊँ। कि देखो बच्चे के अंदर एक फियर होता है, डर होता है उसके अंदर कि मैं दोबारा नहीं कहीं जाऊँ। अब कई बार लोग कहते हैं बच्चा वहाँ से भाग गया, मेरे यहाँ होम में गेट खुला रहता है, उनको पता है वापस आना है। कहीं घूमने भी जाते हैं ना तो वहाँ पर वो ढूंढते हैं कि बड़ी मम्मा कहाँ है, हम कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि उनको लगता है एक बार खो के हम दोबारा नहीं खोना चाहते। तो बच्चा बहुत मासूम होता है और ये सच में आपसे सच में प्यार करता है। देखो बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप पैसे वाले हैं, सुंदर हैं, नहीं है, वो जो आपको सच में कहते हम लोग कहते हैं ट्रू लव आपको बच्चा ही कर सकता है लाइफ में और कोई नहीं कर सकता है।
0: बहुत बहुत बढ़िया आपने ये बात बोली है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अभी मिरेकल में कितने बच्चे हैं अभी जो यहाँ पर हैं?
1: 95 बच्चे हैं यहाँ पे।
0: अच्छा, तो 95 है जिसमें से आप एज बताएंगे कैसे कैसे?
1: हाँ, मेरे पास 0 से लेके 16 साल तक के बच्चे हैं, 62 गर्ल्स हैं, बाकी 33 मेरे पास बॉयज़ हैं और नॉर्मल बच्चे हैं प्लस स्पेशल बच्चे हैं और ओवरऑल हरियाणा के 0 to 6 वाले स्पेशल एड बच्चे यहीं आते हैं,
0: तो
1: स्पेशल बच्चे ज्यादा
0: हैं। ओके, तो जब ये बच्चे इतने हैं तो कभी ऐसे खर्चे को लेके कभी ऐसे दिमाग में थॉट आया हो कि क्या कहीं से हम कुछ कर सकते हैं, या कितने लोग हैं जो आपके साथ इस जगह को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, कितने लोग फंडिंग दे रहे हैं, कितने लोग हैं जो आपके मदद के लिए आगे आ रहे हैं कुछ सा?
1: हाँ, हमारे पास 2 कंपनीज जुड़ी हुई हैं, एक है ब्रिलियन, एक है फ्लोर। ब्रिलियन वो जो ऑल आउट कंपनी ऑल आउट बनाती है वो कंपनी हमें स्पॉन्सर करती है, एक फ्लोर कंपनी है जो बच्चों का स्पॉन्सर करती है, प्लस कुछ कभी कभी हमारे पास रोटरी है जो सामान के लिए हमें कुछ चाहिए काइंड्स के लिए तो हम रोटरी को, कुछ इंडिविजुअल डोनर्स हैं। पर फिर भी क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, मेडिकल एक्सपेंस ज़्यादा हैं क्योंकि स्पेशल नीड है और इन्फेंट्स हैं तो उसमें हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, फंड्स की तो दिक्कत आती है छोटे बच्चों बहुत, क्योंकि हर चीज़ फ्री में नहीं आती, हर चीज़ में पैसा लगता है।
0: जी,
1: बच्चों के दूध है, लैक्टोजन है, डायपर्स हैं, खाना है, मेरे 30 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका लंच है, सब कुछ है। मेरी बिल्डिंग है जो ये रेंटेड बिल्डिंग है, इसमें बिजली है और जो स्टाफ है उसकी सैलरी है, कोई फ्री में नहीं करेगा ना, क्योंकि सबका अपना अपना घर है, कोई 1 महीना 2 महीना कर देगा कैसे करेगा, सर्वाइवल कैसे करेगा। तो टिल ऑफ द एंड जो लास्ट में क्वेश्चन आ जाता है पैसा, तो पैसा कहीं ना कहीं तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
0: वाकई में किसी संस्था को चलाना है तो पैसा बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ। आप अगर चाहते हैं इनके साथ जुड़ना तो मैम कैसे जुड़ सकते हैं लोग आपके साथ?
1: आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, हमारे मिरेकल की वेबसाइट पे जाके डोनेशन दे सकते हैं, आप फिजिकली आके दे सकते हैं, किसी एक बच्चे को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं 5,000 per month, या आपको लगता है हमें किसी का लंच स्पॉन्सर करना है लंच कर सकते हैं बच्चों के लिए, ये काइंड्स में कुछ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, कि किसी बच्चे का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का है एक्सपेंस तो आप वो उसको बेयर कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर कोई एक बंदा 500 रुपये per month भी देता है तब भी वो हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए वो 500 रुपये छोटा है पर वो हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा।
0: क्या कोई यहाँ क्राइटेरिया है कि मतलब बच्चा इतनी एज के बाद वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होगा या कब तक बच्चा यहाँ रह सकता है?
1: हमारे पास जो सर्टिफिकेशन है वो 0 to 6 तक है। अच्छा। पर मेरे पास बड़े बच्चे भी हैं जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, और मेरा मानना कि भाई बहन अलग नहीं होने चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से यहाँ थे अब वो बड़े हैं, तो उसके लिए भी हमने एक CCI के लिए फाइल चलाई हुई है कि मेरा एक्सटेंड कर दो 25 बच्चों का, एटलीस्ट मेरे बच्चे मेरे पास ही वो रहेंगे क्योंकि उनके लिए ये घर है, और मैं नहीं चाहती कि वो पहले से उनके पेरेंट्स नहीं है, फिर हम भाई बहनों को भी अलग कर दें, या एक बच्चा बचपन से यहाँ से पला है, सडनली आप किसी को चेंज करते हैं। आप सोचो ना, हम एक न्यू जॉब भी शिफ्ट करते हैं ना, तब भी हमें कैसा लगता है, और वहाँ तो वो बच्चा है, यहाँ उसकी अटैचमेंट है, पता नहीं दूसरी जगह उसकी अटैचमेंट होती है, वहाँ पे वो मिक्सअप होता नहीं होता है केयर टेकर से, या और बच्चे कैसे हैं। तो ये है, ये आपको पलट के थैंक्स भी नहीं कर सकते, इनको पता, इनको ये भी नहीं पता है कि इनके लिए लड़ा कौन, बच्चे को क्या पता, शायद उसको आगे से पता भी नहीं चलेगा। तो लोग जो है आजकल शायद बेनिफिशियरीज के लिए काम करते हैं, या हमको यहाँ से कुछ थैंक्स मिलेगा, या हमारी वाहवाही होगी, तो उसके लिए लोग ज्यादा करते हैं, पर इनके लिए ये भी नहीं सोचते। मैं हमेशा कहती हूँ, डिपार्टमेंट से भी कुछ भी डिसीजन किसी बच्चे के लिए लेना है तो अपने बच्चे को हमेशा आंखों के आगे रखो, कि अगर ये चीज मेरे बच्चे के साथ है तो उस पर कैसा इम्पैक्ट करेगा, तब जाके यहाँ सोचो। हमारे JJAC में लिखा तो है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, पर क्या हम बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के लिए काम कर रहे हैं? हम उस बच्चे को एज अ पेपर के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर, वहाँ से वहाँ ट्रांसफर, वहाँ से वहाँ। वो ये नहीं सोचते, मैंने अभी घर शिफ्ट किया, उसमें मछलियाँ ट्रांसफर हुई हैं, तो मछलियों ने दाना नहीं खाया क्योंकि उनके लिए नया घर था, तो वो मछलियाँ हैं, और यहाँ तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं। मेरे स्पेशल नीड रूम में जो बच्चे हैं उनका रूम बिल्कुल सेटअप है, अगर आप उसको एक रूम से या उनकी केयर टेकर भी हटा देते ना, वो खाना नहीं खाते दूसरों से। सोचो, परमात्मा ने अगर कोई चीज़ छीनी है ना, तो दूसरी चीज़ दी भी है। तो हम हमारे केयर टेकर्स बहुत मुश्किल होता है जो स्पेशल बच्चों के पास हैं, कि भैया नहीं, दूसरे के हाथ से वो पानी मुंह बंद कर लेते हैं, दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि उनको वही केयर टेकर चाहिए, वही रूम चाहिए जिस रूम में वो लोग रह रहे हैं,
2: वो तो उनको माता पिता मान चुका
1: है। यस, तो मैंने क्या कहा, परमात्मा कुछ चिंता ना कुछ देता भी है एक सेंस, और जो हमारे तरफ पास बच्चे आते हैं ना, उनके अंदर एक ऑलरेडी डर होता है अबेंडन होने का, कि वो ऑलरेडी पहले से उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, और फिर वो यहाँ जेल होते हैं, यहाँ एडजस्ट करते हैं, अपनाते हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर एक डर होता है। तो क्या हम इन बच्चों को ये डर ही दें हमेशा? कुछ अच्छा नहीं दे सकते क्या हम लोग? दे सकते हैं
2: बिल्कुल। जो भी इस धरती पर आया है और आ करके अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो आप गलत है, क्योंकि अगर आपने जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर अच्छा है जिसे आप देख नहीं रहे हैं। अब जैसे ये बच्चे हैं, इनके साथ बचपन से ही बहुत गलत होता आया है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो इस तरह से माँ या बाप के रूप में आगे आता है। तो चलिए अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो मानव रचनाओं 107.8 FM पर। मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और आज के इस प्रोग्राम में यानी आज ऐसा खास मौके पर हम हैं मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी, एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है। और वो बच्चे जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं या अपनों ने उन्हें छोड़ दिया है, ऐसे बच्चों को यहाँ पर पनाह दी जाती है। और सिर्फ पनाह ही नहीं बल्कि हर तरह का ख्याल रखा जाता है, फिर चाहे हम मेडिकल की बात करें या फिर उनकी एजुकेशन की बात करें या फिर उनकी हम हर एक चीज़ की बात करें, सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और इस संस्था को, इस पूरे मिरेकल को चलाती हैं यानी कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिमरन लांबा जी, इनसे आज हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं बच्चों के बारे में। सिमरन लांबा जी जो काम कर रही हैं, बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला ये काम है, बहुत ही ज्यादा प्रेरणा देने वाला है। मैं दोबारा कहूंगी, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैम, एक बार आप अपने बारे में और बता दीजिए।
1: मेरी जो संस्था का नाम है मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी है, ये सूरजकुंड लेकवुड सिटी के अंदर है। आप गूगल पे जैसे सर्च करेंगे, आप एडॉप्शन एजेंसी डालें या मिरेकल डालें तो आपको आएगा हमारा। वहाँ मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। या किसी को कोई अबैंडेंड बच्चा मिलता है, और आपसे मैं एक चीज़ और भी ये कहूँगी कि अगर कोई लड़की लगता है कि अनवेड है, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसको लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो बच्चा डिलीवर करके उसको फेंके नहीं, उसको हमारे पास आएं और हमारे पास बताएं और हम उस बच्चे को सेफ सरेंडर करवाएंगे। उसमें उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। कई बार बच्चों में होता है कि हमें पता नहीं होता और अब बच्चा पैदा किया और फेंक देते हैं। कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, आप प्रेग्नेंट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके लिए आप अबॉर्शन ना कराएं, क्योंकि आप अबोर्ट कराते हैं, बच्चा अबोर्ट नहीं होता, फिर उसको फिर फेंक देते हैं, फिर बच्चा वो स्पेशल नीड हो जाता है, पूरी जिंदगी उसकी बेड पर निकल जाती है। तो कोशिश करें, आपको लगता है नहीं, आप गूगल पे जाएं, मेरा नंबर है उसके अंदर, मैं नंबर बोल भी देती हूँ, 7291977831। कोई भी लगता है कि प्रेग्नेंट है, बच्चा है, हम नहीं रखना चाहते हैं, इवन कपल भी कि गर्ल चाइल्ड हम रखना नहीं चाहते, आप हमें कॉन्टेक्ट करें, हम आके लेके जाएंगे। आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, गवर्नमेंट का प्रोविजन है, कुछ में नहीं होगा, आप अपना बच्चा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: एडॉप्शन की बात करें तो कितने परसेंटेज पे है यहाँ पर
1: एडॉप्शन? तो ठीक है, रेशियो पर डिपेंड करता है कि बच्चा लीगल फ्री कैसा है, केसेस कैसे हैं। तो पेरेंट्स हैं हमारे पास, पर बच्चे भी हैं, पर लीगल फ्री के ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश करते हैं हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों, जैसे अभी इस महीने हम लोगों ने 5 बच्चे रिलीज़ किए हैं, नेक्स्ट मंथ हम 2 करेंगे। कुछ बच्चे हमारे स्पेशल नीड है, तो हमने स्पेशल नीड बच्चों को भी किए हैं, उनके लिए माता पिता हमें यहाँ नहीं मिलेंगे पर बाहर अब्रॉड मिल जाते हैं। तो फॉरनर्स हमेशा स्पेशल बच्चा लेते हैं। तो है रेशो, कोशिश तो है कि हमारे साथ साल में कम से 10 से 15 बच्चे तो बच्चों को घर तो मिले, परमानेंट घर मिले।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और प्रोसीजर क्या है? कई सारे माता पिता हैं जो अडॉप्ट करना चाहते हैं बट अडॉप्शन के प्रोसीजर से डरते हैं। कई बार बहुत सी चीज़ें उनके सामने आती है कि आपसे ये पूछताछ होगी, वो होगी, बहुत सारी चीज़ें। और तो क्या इस तरह के लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों?
1: अडॉप्शन के लिए गवर्नमेंट की साइट है मिशन वात्सल्य, बहुत ईजी साइट है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ आप पेरेंट्स का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, आप संस्था में आए, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लेके हम रजिस्टर करके देंगे आपको। ऑनलाइन प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है, शॉर्टकट जाने की जरूरत नहीं है किसी भी पेरेंट को, और लीगलाइज बच्चा लेना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं कि आपकी इतनी इनकम देखी जाएगी या आप गरीब हैं या रईस हैं, हमें बच्चों के लिए एक अच्छे माँ बाप चाहिए। एक नॉर्मल फैमिली भी अपने बच्चे को पाल लेती है, हम सिर्फ इतना वो देखते हैं कैलकुलेशन कि अगर ये एक बच्चे को पाल पाएंगे कि नहीं पाल पाएंगे, या कभी कोई सिंगल कपल रह जाता है कि एज अ सिंगल स्पाउस क्या बच्चे को पाल पाएंगे। तो हर एजेंसी देती, कहीं बच्चा वापस तो नहीं आएगा, आप समझो बच्चा को पहले उसके बायोलॉजिकल ने छोड़ा, फिर यहाँ से वो फिर अडॉप्शन में गया, फिर पेरेंट्स वापस आए, तो उसके लिए बहुत नुकसान है। तो ये सब क्राइटेरिया देखते हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती है, कोई डर नहीं है। एडॉप्शन को लेके लोगों के दिमाग में बहुत मिथ है कि हम छुपाएंगे, बच्चा लेके आए कुछ पे, क्यों छुपाना, आप क्राइम थोड़े ना कर रहे हो, अच्छी बात है एडॉप्शन कर रहे हो, है ना। तो एडॉप्शन को खुल के करना चाहिए, बता के करना चाहिए, प्राउडली करना चाहिए, ये काम हो रहा है। और खून का रिश्ता क्या होता है? मियां बीवी का खून का रिश्ता नहीं होता, कोई खून का रिश्ता नहीं होता, मुझे लगता सब सफेद होते हैं। रिश्ता दिल से बनता है और बच्चा ना पेट से कभी नहीं पैदा होता, बच्चा पैदा ही दिल से होता है। अगर बच्चा पेट से पैदा होता तो मेरे पास होम में बच्चे नहीं होते। तो कभी भी ये सोचे कि हम एडॉप्शन ले रहे हैं, हम खुल के ले रहे हैं भाई, समाज क्या कहेगा, समाज का काम है बोलने का। समाज आपके दुख को नहीं देखता, ना किसी को देखता है। आपको एक परिवार मिल रहा है, एक अधूरी परिवार को एक पूरे परिवार मिल जाता है, बच्चे को माँ बाप, माँ बाप को बच्चा। तो एडॉप्शन के लिए हमेशा मैं सबको ये कहूंगी कि लीगल जाएं, गवर्नमेंट की साइड है मिशन वात्सल्य, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, वहाँ पे पास में डीसीपीयूज हैं, आपको नई फॉर्म फिल करना आता, आप डीसीपीयूज के पास जाएं, वो आपको फॉर्म फिल करके देंगे। साइबर कैफे या कोई भी ऐसे इन जगह पे नहीं जाएं, सरकार सरकारी जो सरकारी चीजें बना रखी है सरकारी बंदों के पास आए। क्या पता दूसरा बंदा आपको फ्रॉड करे, आपका डाटा लेके बैठे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको कह के नहीं जी हम आपको बच्चा दिला देते हैं जी, आप कैसे कर देते, वो फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा हो जाता है। बच्चा खरीदे नहीं, पैसा देके बच्चा नहीं, फिर आपने सामान लिया, बच्चा नहीं लिया। सरकार ने यहाँ पे एक नॉर्मल फीस रखी हुई है कि आपका हर कोई बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है। तो यहाँ कोई रईस गरीब नहीं है, एक नॉर्मल फीस है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, आपके आधार कार्ड, आपका आईडी प्रूफ वगैरह, आपकी इनकम का प्रूफ, तो इतना मुझे नहीं लगता कोई इतना डिफिकल्ट है जितना लोगों ने बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वेटिंग पीरियड ज्यादा है, वेटिंग इसलिए ज्यादा कि 2 साल कोविड में बंद हो गया, वो बैकलॉग बढ़ गया। पर ऐसा नहीं, आप रजिस्टर करें, बच्चा मिलेगा जरूर, चाहे 3 साल बाद मिले, मिलेगा जरूर।
2: मतलब इतना लंबा टाइम पीरियड भी जाता है,
1: जाता है, क्योंकि कोविड में पहले 1.5 साल की ही वेटिंग थी, पर कोविड में 2 साल बंद था। हम एडॉप्शन देते हैं कैसे ना, पेरेंट्स आते कैसे, वो 2 साल से हमारा बैकलॉग बढ़ गया। अब गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, पर टाइम तो लगेगा हर चीजों को करने के लिए।
0: अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और हमारे साथ इस वक्त हमारे शो में हैं सिमरन लांबा जी, जो कि मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं।
1: तो जैसे ये रिक्वेस्ट आती है तो क्या कोई रिक्वायरमेंट भी होती है कि हमें कैसा बच्चा चाहिए, किस तरह की नीड है उनकी?
2: आती है, फैमिलीज बहुत चूजी होती हैं। गर्ल और बॉय चूज करने का ऑप्शन होता है, बाकी किसी चीज़ का नहीं होता कि सुंदर है, गोरा है, काला है, पीला है, कुछ नहीं। आपको जो रेफरल में आएगा, क्योंकि रैंडम ही रेफरल आता है, हमको भी नहीं पता किसके पास जा रहा है किसके पास नहीं जा रहा, तो वो है। तो अदरवाइज लोगों की तो बहुत चॉइस होती है कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। फिर हम काउंसलिंग करते हैं, नहीं परमात्मा आपको बच्चा देता तो हम बोलते कि हमें लड़का दो जी, लड़की दो, गोरी देना, काली मत देना, ऐसी देना। तो इसको भगवान का एक तोहफा ही मानो ना, तोहफे की तरह एक्सेप्ट करो। करती हैं फैमिलीज।
1: अभी जैसा कि कहा आपने कि कोरोना के टाइम पर ये बंद रहा था, तो पीछे से इतनी रिक्वेस्ट आई हैं तो वो अभी पेंडिंग में चल रही हैं, तो टाइम लगेगा। और भी बहुत कुछ के एक समाज जो है, अगर आप देखेंगे तो वो बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ जो आपको पीछे खींचेगा। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप ये काम कर रहे हैं और इस बीच कोई ऐसा आपने अपने बारे में सुना हो, या कभी ऐसा लगता हो कि यार ये समाज ही होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर कैसे कोई आगे बढ़ पाएगा?
2: कभी ऐसा कोई किस्सा? बहुत चीज़ें सुनते हैं हम लोग को। मेरे को तो काम का, अच्छा मैडम को तो इंटरेस्ट है, पैसा आता होगा इसलिए मैडम बच्चे अडॉप्शन में दे रहे। ऐसा कुछ नहीं, बहुत नेगेटिव। मैं कभी कभी अच्छा भी बोल लूँ, हमारे समाज में है कि जो इंसान अच्छा करता है उसे करने भी नहीं देते हैं। आप सोचो ना, बच्चों को घर मिलेगा। और रही बात फीस की, फीस तो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई, मैंने तो डिसाइड नहीं की हुई ना, और वो फीस भी सोसाइटी के अकाउंट में जाती, मेरे पर्सनल अकाउंट में तो नहीं आते ना। मेरा क्या बेनिफिट है? मेरा ये बेनिफिट है कि मेरे बच्चे को घर मिल रहा है। मेरे बच्चे को घर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए। शायद आपके लिए या किसी और समाज के लिए घर का इम्पोर्टेंस नहीं होगा, पर मेरे बच्चों के लिए घर बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हम लोग सोचते, क्योंकि जब मैंने उनके मुंह से सुनना शुरू किया कि घर, तो मुझको भी रियलाइज़ हुआ यार घर, ये वर्ड तो मेरे दिमाग में इतने साल में कभी नहीं आया। जब बच्चों को मैंने स्कूल भेजा और जब स्कूल से वो बच्चे वापस आए, एक बच्चा मेरा सो गया, दूसरे बच्चे ने उसको कहा कि उठ जाओ, घर आ गया। और मुझे तब रियलाइज हुआ हाँ घर। मैं तो आज तक अपना एनजीओ की तरह ही चला रही थी इसको, पर मुझे नहीं पता चला उस बच्चे के लिए घर कब बन गया। और एक परमानेंट फैमिली बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है। माँ बाप से बेटर कुछ नहीं है, माँ बाप ही होते हैं।
1: हम भी जब कुछ दिन के लिए घर से बाहर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हमें अपने माँ बाप चाहिए, हमें उनको देखना है, हमारे पेरेंट्स, हम उनसे दूर हैं। तो सोचो कि ये तो बच्चे परमानेंट दूर हैं, इनको तो ये भी नहीं पता कि इनके माँ बाप कहाँ हैं, कैसे कैसे दिखते हैं, या क्या कहानी है, क्या हमारा पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं पता,
2: कुछ नहीं पता। और जिन बच्चों को पता है वो अपने बैकग्राउंड से बहुत नफरत करते हैं। जो बड़े बच्चे जिनको पता है या कोई ट्रोमा है उनको बहुत करते हैं। बट जो छोटे से बड़े हो जाते हैं, बड़े के पूछते हैं कि बड़ी मम्मा वाई मी।
1: अच्छा, आपको बड़ी मम्मा कहते हैं?
2: बड़ी मम्मा कहते हैं। बड़ी मम्मा ऐसा क्यों हुआ, हमारे पापा मम्मी क्यों मर गए, हमें क्यों छोड़ गए, कब आएंगे या आप कब ढूंढोगे हमारे लिए? तो बोलते हैं अच्छा नए पापा मम्मी ढूंढ दो। सोचो तो वाई मी, घर। मैंने क्या कहा ना, घर, माँ बाप सब बच्चों को चाहिए। क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, मैं यहाँ बैठी होती हूँ, मैं संडे को भी यहाँ आती हूँ, क्योंकि उनको अपनी हर चीज़ें बतानी होती हैं। स्कूल से आते ही मुझे बच्चे अपनी डायरीज दिखाएंगे, आज ये मिला, या आज दो स्टार मिले, आज स्माइली मिला, या कोई अवार्ड मिला, कोई मेडल मिला, तो उस मेडल को उतारते नहीं, सीधा आते भाग पहन के यहाँ के दिखाते, बड़ी मम्मा देखो। सोचो कितना है। तो उन फैमिली क्यों नहीं चाहिए उनको? फैमिली देखो, ये होम, ये लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए बच्चे के लिए। हम देखा जाए है तो ये अनाथ आश्रम है ना, और ये परमात्मा किसी का बच्चा यहाँ ना भेजे, परमात्मा किसी का बच्चा नहीं भेजे, आना ही नहीं चाहिए बच्चा। और मेरा तो बस चले, मैं तो सारे बच्चे रिलीज कर दूँ, सारे बच्चे अडॉप्शन में, तो सबका अपना अपना घर खाली होना चाहिए। क्या करना है बच्चों को, उनका घर, ताकि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ें बता सकें। यहाँ मेरी जान खाते रहते हैं, बड़ी मम्मा ये ऐसे किया, उसमें ऐसे किया, देखो मुझे आज ये मिला, आज मुझे वैसे मिला। तो कितनी चीज़ें हैं जो उनको बतानी है, उनको सुनने वाला कौन है? होम्स में, मैं ये नहीं कह रही होम्स रख नहीं रहे, हम लोग एक शेल्टर दे रहे हैं सब कुछ, पर वो प्यार माँ बाप कहाँ से दें?
1: कई बार ना ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं, कई बार की चीज़ें जब समझ नहीं आती, बच्चे को इस तरीके से इस कंडीशन में छोड़ना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप उनको देखती हैं, जब आप तक खबर पहुँचती हैं, तो आप किस किस केस में, किस किस सिचुएशन में बच्चों को देखती हैं? और मैं चाहती हूँ कि आपने जो जो केसेस देखे हैं बुरे से बुरे, वो आप सबके साथ शेयर करें, ताकि कल को किसी के जहन में अगर ये बात आती भी है तो उसको बच्चे का क्या हर्ष होता है उसके बारे में भी पता।
2: जब हम लोग बच्चों के केसेस की बात करते हैं, जब कुछ बच्चे साथ बहुत ट्रेजेडी होती है, और कई बार बच्चे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बहुत नफरत करते हैं, कई बार माँ है, फादर ने छोड़ दिया, मदर ने दूसरी शादी कर ली, यहाँ बच्चे को छोड़ गए, फिर मदर ने तीसरी शादी कर ली, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, वो जाता नहीं। अब एक मेरे पास एक है, दो भाई बहन, बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी मदर ने कहा मैं लेके जाऊंगी, उसकी मुझे बोला बड़ा, बड़ी मम्मा मैं इस औरत के साथ नहीं जाऊंगा, यस, और उसको पहचानता है कि वो मेरी मम्मी है। मैं कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, उसने ये बोला बड़ी मम्मा मैं इस औरत के साथ नहीं जाऊंगा, इस औरत, मैं औरत नहीं बोलते बेटा, औरत किसने बोला? कह रहे नहीं बड़ी मम्मा वो मेरी मम्मी नहीं है। मैं कहा नहीं वो आपकी मम्मी है, उसके नहीं। तो माँ बाप ऐसी हरकत करते हैं या ऐसी चीज़ें बच्चों को छोड़ देते हैं। तो बच्चे को जब इनिशियल स्टेज में माँ बाप की ज़रूरत होती है ना, तब माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं। फिर जब वो अपने बुढ़ापे में जाते हैं फिर उनको बच्चे याद आते हैं, फिर वो चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे पास आए और हम जाएं। तो उसने कहा बड़ी मम्मा मैं यहीं रहूँगा, शैतानी नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, पर मैं इस औरत के साथ नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। तो मैं कहना हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमें बड़ों को इमोशंस होते हैं, हम ही डिप्रेशन में जाते हैं, हमें एंजाइटी होता है, सब कुछ होता है। नहीं, बच्चों का अलग लेवल की एंजाइटी है जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। हमारा बच्चों की तरफ से कोई गौर ही नहीं है, बच्चों की तरफ हमारा कुछ नहीं है। बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं, बच्चों को भी एंजाइटी है, उनकी अपनी दुनिया और उनके अपने इतने सवाल हैं, उसका शायद आंसर किसी के पास नहीं।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका, आपके साथ प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और हमारे साथ इस वक्त हैं सिमरन लांबा जी, जो कि मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं। बच्चों के अपने सवाल, अपनी बहुत सारी बातें होती हैं, उनको सुनने वाले घर में पेरेंट्स होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो नहीं है उस स्थिति में, वो कहीं ना कहीं आपको ही माँ, आपको ही पिता, सब कुछ आपको ही समझते होंगे। और मैं समझ सकती हूँ कि वो फील कितना प्राउड मोमेंट होता होगा आपके लिए कि आप कितने सारे बच्चों की बड़ी मम्मा हैं।
1: यस, अब जैसे मेरे पास एक बड़े ब्लड की आशा, तो उसने उसका बर्थडे था, तो मैंने कहा क्या, क्योंकि मैं यहाँ पर हर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, तो उनसे पूछ पूछ के उनके अकॉर्डिंग केक वगैरह आते हैं। अच्छा। तो उसने कहा बड़ी मम्मा मुझे ना BTS का केक चाहिए। मुझे लगा BTS कोई फ्लेवर होगा। मैं कहा कौन सा फ्लेवर है, नया फ्लेवर है? तो फिर मेरे बेटे ने कहा नहीं मम्मी, आजकल कोरियन ग्रुप है BTS। तो मुझे लगा यार बच्चा बड़ा हो गया, कोरियन ग्रुप मतलब वो देख रही है, तो सोचो उसकी फीलिंग्स है ना। तो फिर मैंने उसके लिए वो BTS का दो उसका बनवा के दिया प्रॉपर। फिर उसने कहा बड़ी मम्मा मुझे BTS की टी शर्ट चाहिए, ऐसी चाहिए। फिर वो लेके आई। तो पता भी नहीं चलता बच्चे कब आते हैं और कब बड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इच्छाएं किसको बताएंगे वो, किसको बताएंगे वो, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना माँ बाप। और जब उस लड़की की मदर एक्सपायर हुई थी, तो उसकी मदर ने लास्ट उसको एक चप्पल दी थी, और वो उस चप्पल को वो अपने पास ही रखती है, सोचो। और हर मदर्स डे में उसको निकालती है। और कई बार मेरे बच्चे मदर्स डे फादर्स डे में भी ना थोड़ा मायूस हो जाते हैं। स्कूल्स में थोड़ा सा है कि आप ये भी देखो कि हमारे जैसों के बच्चे भी जा रहे होते हैं स्कूल के अंदर। तो शायद ये मदर डे फादर डे हम एक दिन ही क्यों सिखाएं, हमेशा सिखाएं ग्रैंड पेरेंट्स डे, क्योंकि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उनको बहुत मुश्किल होती है।
0: और सबसे बड़ी चीज़ बच्चों के साथ सहानुभूति,
1: सहानुभूति, क्योंकि जब मदर से आता है बड़ी मम्मा किसका नाम लिखे, मैं कह लिखो तो बच्चे मेरा नाम लिखते हैं, फादर जैसे लिखते हैं, पर कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं कि हमारे माँ बाप नहीं हैं।
0: कितने बच्चे हैं जो अभी इस वक्त स्कूल जाते हैं, किस किस एज के?
1: वो 30 बच्चे हैं, 3.5 साल से 12 साल तक का बच्चा स्कूल जाता है।
0: अच्छा।
1: स्कूल जाते हैं यहाँ पे मुरारीलाल स्कूल है, उसमें जाते हैं, हमारे बस आती है प्रॉपर, बस में जाते हैं। अच्छा। पढ़ाई में अच्छे हैं। और मैं तो जो बड़े बच्चे बीच में आए थे उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने किया। एक को तो डॉक्टर बनना है, तो बहुत मेहनत कर रही है वो लड़की, क्योंकि बड़ी एज में आके फिर फर्स्ट करना, फिर सेकंड करना, फिर मैं तो उसको फोर्थ में करा रही थी क्योंकि हम जंप करा रहे थे। उसने कहा नहीं मुझे ना फिफ्थ में ही आप कराओ, उसको फिफ्थ में ही आप करवाओ उसको। तो मैंने मना किया उसको आशा को कि नहीं बेटा। तो उसने कहा नहीं बड़ी मम्मा मुझे फिफ्थ में करो। तो प्रिंसिपल से उसने बात की और उसे फिफ्थ में कराया। अब वो फिफ्थ करेगी, फिर फिफ्थ के बाद उसने खुद कहा कि मैं सेवन्थ करूँगी, फिर एट्थ नहीं सीधा मुझे नाइन्थ में करना, ताकि उसकी उसको उसकी उम्र भी बढ़ गई ना, बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं। तो ये है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे और बच्चों से पीछे हैं, क्योंकि उनकी स्कूलिंग लेट शुरू हुआ, उनका वैसा अलग से ट्रेजडी थी। अपनी मेहनत अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं।
0: आपके अभी तक जितनी भी बातें मैंने सुनी हैं, मतलब आप अपने बारे में कम और इस ऑर्फनेज के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। सबका अपना ड्रीम होता है, मुझे बड़े होके ये बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे अच्छा अच्छा पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छी अच्छी फैमिली बनानी है मुझे। मुझे लगता है कि आपका सपना सिर्फ और सिर्फ मिरेकल को आगे बढ़ाना है, राइट?
1: मेरा सपना बस ये।
0: तो आज से अगर मैं 5 साल आगे आपको देखती हूँ, क्या सपना है आपका, आप मिरेकल को कहाँ तक लेकर के जाना चाहते हैं?
1: मैं मिरेकल को काफ़ी आगे लेके जाऊँगी। मेरा सपना है अपने बच्चों को IAS दुनिया बनाती है, क्योंकि मैंने अपने होम से 2 IAS भी नहीं निकाले तो क्या फ़ायदा। काफ़ी आगे लेके जाऊँगी, इवन नॉर्मल बच्चे नहीं, स्पेशल बच्चे भी। मेरे स्पेशल बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। मेरे पास एक बच्चा है बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, उसके लिए भी ऐसा नहीं कि स्पेशल बच्चे आइए आप दान दीजिए और रोटी चावल, नहीं, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना है। मेरे पास स्पेशल एजुकेटर है, वो अच्छे से उनको ट्रीट कर रही है, अच्छे से उनको समझा रही है, पढ़ा रही है, और उनमें काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, ताकि अपने पैरों पे खड़े हो। मेरा मानना है कि 18 साल के बाद उनको पता होना चाहिए कि लक्स साबुन भी हमने खरीदना है, इंडिपेंडेंट। मैंने यहाँ अपाहिज नहीं बनाने, हमारे यहाँ डोनेशन देने का तरीका भी अलग है। भाई आप हाथों में बांट के लेके नहीं जाओगे, आप दे के जाओ और रिसीत लेके जाओ। बच्चों को हम वैसे देंगे, एक एक चीज हाथों में नहीं, या फोटोशूट नहीं करना चाहिए। आपने देना दो, नहीं देना मत दो, क्योंकि उससे क्या है, देखो उनकी ग्रूमिंग नहीं होती। बच्चों में ना बिहेवियर इश्यूज भी बहुत होते हैं, फिर वो डिपेंड हो जाएंगे, उनको लगेगा हमें तो कोई देगा। उनको पता होना चाहिए हमें अर्न करना है, भाई हमें हर चीज अर्न करनी है, मेहनत करनी है, इंडिपेंडेंट बनाने हैं बच्चे। अब जैसे सैटरडे संडे को ऑफ होता है, तो अलमारियां वो अपनी अपनी आप साफ करते हैं। जिसकी सबसे बेस्ट अलमारियां होगी उसको उसका डायपर को गिफ्ट चाहिए, या बाहर जो भी चाहिए, सैटरडे में क्या बॉयज मेरे हमेशा जीतते हैं, क्योंकि वैसे वो हमेशा कभी अच्छी नहीं रखते, पर उनको पता है सैटरडे को उनको रखनी है सबसे, लड़कियों से भी अच्छे सेट सेट करके रखते हैं हमारे यहाँ। गाड़ी चाहिए, रिमोट कंट्रोल वाली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इससे क्या उनको इंडिपेंडेंट होंगे। क्योंकि सच्चाई क्या, 18 साल के बाद तो देखो एक ना एक दिन तो करना ही है ना, अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। तो आदत मुझे वही डालनी है कि मेरे होम से जब बच्चा बाहर निकले उसको दान की आदत नहीं है, उसको इंडिपेंडेंटली कि हाँ मैं ये करके इतना कमा के इतना करके मैं घर खड़ा हो सकता हूँ।
2: तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे बच्चे जो आज इंडिपेंडेंट हैं?
1: हाँ, है मेरे पास इंडिपेंडेंट बच्चे हैं मेरे, पर अभी मैंने एडॉप्शन ज़्यादा दिए हैं तो मैंने बड़े होने नहीं दिए, कोशिश मेरी थी कि एडॉप्शन हो जाए। ये वो बच्चे जो कोविड में भाई बहन आ गए, सिबलिंग्स हैं या माइनर स्पेशल नीड हैं, तो ये वो बच्चे हैं। अदरवाइज तो मेरे पास सारे बच्चे एडॉप्शन में, क्योंकि पहली प्रायोरिटी मेरे लिए है बायोलॉजिकल फैमिली, दोबारा उसके बाद एडॉप्शन नहीं है, फिर तो अपने पैरों पे खड़े होंगे वो। इसलिए मैंने पढ़ाई पे फोकस किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम स्कूल को भी फीस देते हैं, कोई वो नहीं है, क्योंकि हम फंड्स ले रहे हैं और फीस दे रहे हैं। दो ट्यूटर हैं, पढ़ाई की वैल्यू शायद मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पढ़ेंगे तो अपने पैरों पे खड़े होंगे, पढ़ाई है। और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मैं ड्रीम देखती हूँ, देखो ना आशा का ड्रीम है डॉक्टर बनना, और उस डॉक्टर बनने के लिए वो बच्ची सच में बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि बड़ी एज में आके फर्स्ट में बैठना छोटे बच्चों के साथ इतना इजी नहीं है, वो सबसे बड़ी है। और फिर मैथ पकड़ना वो काफ़ी टफ सब्जेक्ट है मेरे लिए, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है मैथ, और मैथ को निकालना करना, और वो कर रही है बच्ची, सोचो उनका अपना एक ड्रीम है। तो मैं जो ड्रीम जीती हूँ मैं अपने बच्चों का ड्रीम जीती हूँ, क्या करना है। वो आशा डॉक्टर बनती है, इससे बड़ा बेटर क्या है, क्या अचीवमेंट, और कुछ भी नहीं है।
2: कितना प्राउड मोमेंट होता होगा ना जब आप अपने आप को शीशे के सामने देख के ये सोचते होंगे कि लोग तो एक दो तीन या चार बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, मैं तो कितने सारे बच्चों की पेरेंट्स हूँ, और बड़ी माँ दर्जा ही आपको बड़ी माँ का मिले।
1: हाँ, मेरे को तो वाकई में लगता है, मुझे कोई कहता है ना आप ऐसे वैसे, मैं कहा मुझसे ज़्यादा रईस कोई नहीं है, मैं इतने सारे बच्चों की माँ, क्योंकि वो बच्चे सच में मुझसे प्यार करते हैं, सच में कुछ में, बड़ी मम्मा ये, बड़ी मम्मा ऐसे, बड़ी मम्मा ऐसे, देखो बड़ी मम्मा, और खुश है। और उनको बोलो नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे नहीं, ऐसे करना। हाँ, बीच में कोई प्रॉब्लम थी, अब हमारी अपनी फंडिंग की प्रॉब्लम थी, तो दूसरे बच्चे, बड़ी मम्मा को दुखी मत करो, बड़ी मम्मा के पास पैसे नहीं है, इस बैग को फाड़ना नहीं, इसको भी चलाना है, अपने आप ही अपने आप ही समझ रहे हैं। मैं तो उनकी बातें सुन रही थी, मैं तुमको किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, अरे बड़ी मम्मा हमें पता है अभी फंड नहीं आया ना आपके पास, मैंने उसको बोल दिया वो बैग नहीं फाड़ेगा। मतलब सोचो अपने आप ही कॉस्टिंग करना, बजट की कॉस्टिंग करना उन्होंने खुद ही सीख लिया, कि बड़े मम्मा को दुखी नहीं करना। तो सोचो कितना प्यार करते हैं वो।
2: जी वाकई में एक बहुत प्यार, एक सम्मान की बात है कि, और बहुत खुशी भी मिलती होगी आपको कि बच्चे इस कदर प्यार करते हैं, जबकि आपका ब्लड से कोई रिश्ता नहीं है, बट उसके बाद भी आपको माँ कहना, आपकी फीलिंग्स समझना, एक वाकई में प्राउड मोमेंट होता होगा। आज की जनरेशन की बात करें तो बहुत ना ऐसे ज़रा सा दुख आए या ज़रे से असफलता मिली तो बहुत जल्दी हार जाते हैं, उसके बाद फिर या तो दूसरा रास्ता अपना लेते हैं या फिर थक हार के बैठ जाता है कि हमारी ज़िंदगी में लगता भगवान ने कुछ दिया ही नहीं हमें। आप उन बच्चों को, उस यूथ को, स्पेशली आज के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, जो लोगों को आप एक मैसेज दे रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन सब यूथ को?
1: आजकल के बच्चे जल्दी थक जाते हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हमारे पास अगर दुख आया तो सुख भी आया, और ये हमारे अपने अंदर की जंग है और इसे हमें लड़ना है, हमें कमज़ोर नहीं बनना है कि हम वहाँ से, कोई बात नहीं, सक्सेस नहीं दोबारा हो जाएंगे, फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप टॉपर नहीं, बैक टॉपर नहीं थी अपनी क्लास की, मैं कर नहीं रही हूँ, और जो लोग टॉपर भी होते ज़्यादा क्या कर लेते हैं, तो ये मत सोचो कि प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में कंपटीशन आ गया, पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपैरिजन करते हैं, ये फलाने का बच्चा, ये फलाने का, क्या ज़रूरत है, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है भाई, आपके पास सबका बच्चा है, अच्छा है, अच्छे संस्कार हैं, वो ही बहुत है। और यूथ को तो खासकर मैं कहूँगी हारने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं भाई, आप अंबानी को या किसी को देखते हो कि एलन मस्क को देखते हो, वो आज सक्सेस नहीं हुए, उनकी स्टार्टिंग देखो, सबकी स्टार्टिंग जीरो से होती है। तो इस चीज से मत डरो कि यार आज मुझे 10,000 की सैलरी मिल रही है, मेरा ऐसे होगा, आज 10 से कल 50 भी होगी, पर उस 10 में आप काम कितना सीख रहे हो, काम सीखो, फोकस पैसे पे नहीं, काम पे करो, आपको काम आएगा तभी तो पैसा आएगा। और जल्दी हार जाते हैं या टाइमिंग्स ज़्यादा है, ऐसे नहीं, काम करो, मेहनत करो, काम करो। और ये कुछ नहीं है, आपको कोई मोटिवेशन जरूरत नहीं, आप शीशे के आगे खड़े हो, अपने आप को खुद मोटिवेट करो, क्योंकि आपसे बेटर कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई दूसरा इंसान नहीं जानता आपको। तो आपको कभी लगता है ना हम थक रहे हैं या हमें कुछ ऐसा मायूस हो रहा है, शीशे के आगे खड़े हो जाओ, शीशे के आगे खड़े हो जाओ और अपने आप से बात करो कि मैं इतना कायर नहीं हूँ, ठीक है। दुनिया में परमात्मा ने अगर हमें भेजा है ना तो कुछ सोच समझ के भेजा, हर बंदे के लिए ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ बनाया। तो ऐसे नहीं कि अपनी जिंदगी से हार जाओ, सुसाइड कर लो, ऐसे डिप्रेशन में चले जाओ, ड्रग्स ले लो, नशे में चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता, और ऊपर वाले ने आपको जब भेजा है तो कुछ ना कुछ एम के लिए भेजा। क्या पता आप किसी रिक्शे वाले के लिए बहुत अच्छे हो, किसी को आप चाय पिलाते हो एक कप, वो चाय उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो अपने लिए देखो कि आप कहाँ अच्छे हो
2: जी। तो आप मोटिवेट रहो, मोटिवेट करो लोगों को, मेहनत करो ऑफकोर्स, और जितना भगवान ने दिया है उसमें खुश रहो, कभी शिकायत मत करो। ये शिकायतें जो हम अक्सर भगवान से करते हैं, आज हम जहाँ पर हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, उनके पास तो वो मौके भी नहीं हैं कि वो शिकायत कर सकें। वो जितना उन्हें मिल रहा है उसमें वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, और हमारे पास भगवान ने इतना दिया है, लेकिन उसके बाद भी शिकायतें हमारी ख़त्म नहीं होती है। तो कभी शिकायत मत करो, जितना भी मिला है उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा जरूर करो। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक यू सो मच। थैंक यू।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ी सिमरन लांबा जी जो कि मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने अपनी बातों से कई कुछ जाहिर किया, बच्चों की स्थितियां बताई, बच्चों की जो कहानी, इतने छोटे बच्चे हैं किस तरह से ये बच्चों के लिए काम करते हैं, किस तरह से बच्चों के हित के लिए इनका जो काम है, जो इनकी ज़िंदगी है वो समर्पित है। तो मैं आपसे भी कहूँगी, सिमरन लांबा जी जैसे कई सारे लोग हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी इस फील्ड में आना या कहें कि बच्चों के लिए काम करना, इस संस्थाओं के साथ जुड़ना अभी बाकी है। तो अगर आप भी चाहते हैं, आपके मन में भी ये है कि हमें बच्चों के लिए कुछ करना है और या फिर ऐसे ही ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करना है, तो आप भी इस तरह की संस्थाओं के साथ जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह के कामों में आगे आइए और मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ पर लोग सभी जुड़ जाते हैं वहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ को अंजाम मिलता है। तो बस आप लोग भी ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ें और इनके कामों के साथ जुड़ें ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। और अब मेरे चलने का वक्त हो गया है तो मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिस शहर के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, उनको जाना जाता है शहरयार के नाम से। पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे तो चाहते थे कि बेटा भी यही बने, मगर ऐसा हुआ नहीं। हॉकी के दीवाने अखलाक मोहम्मद खान ने जब कलम थामी तो वो शहरयार हो गए। शहरयार ने जान लिया था कि वो क्या कर सकते हैं, और ये जानकर उन्होंने जो किया उसने उन्हें शायरी का शहरयार यानी बादशाह बना दिया। उनके लिखे को पढ़ना हमेशा चैन देता है तो ठटकने पर मजबूर भी करता है। बहुत सारी बातें आज करूंगा मैं शहरयार के बारे में, और दोस्तों शहरयार की उन गजलों को याद करेंगे जो कि इतनी मशहूर हैं, सुनने के बाद एकदम आप चौंक जाते हैं कि अच्छा, ये शहरयार साहब की लिखी हुई हैं। कराऊंगा उन गजलों से भी आपका तारुफ करवाऊंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। देखिए दोस्तों, शहरयार का जिक्र करते ही कोई भी पूछ सकता है कौन शहरयार, और जब कहें कि उमराओ जान के गीत, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, लिखने वाले शहरयार, तब सामने वाला कहेगा अच्छा वो शहरयार जिन्होंने लिखा है कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, वो शहरयार जो कम बोलते थे मगर उनकी शायरी जनता के सिर चढ़कर बोलती थी, जिनकी शायरी को साहित्य एकेडमी ज्ञानपीठ सम्मानों से भी नवाजा गया, वो शहरयार वो उर्दू के चौथे साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला। उनके पहले फिराक गोरखपुरी, कुर्तुल एन हैदर और अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। वो शहरयार जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के बीच का पुल कहा जाता है, आज उन्हीं शहरयार के बारे में बहुत सारी बातें करने वाला हूं, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अखलाक मोहम्मद खान यानी शहरयार साहब की बात हो रही है आज। और शहरयार साहब के हम पैदाइश की बात करें तो 16 जून 1936 को अलोनी जिला जो कि बरेली में पड़ता है, 1948 में उनके बड़े भाई का तबादला अलीगढ़ हुआ तो वो अलीगढ़ आ गए और वहीं के होकर रह गए। घर परिवार में कोई शायर नहीं था, पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे और जाहिर है बेटे को भी पुलिस डिपार्टमेंट में देखना चाहते थे। अखलाक खान को पढ़ाई के दौरान हॉकी से जुनून की हद तक लगाव था। हॉकी बहुत पसंद थी शहरयार साहब को, मगर जिंदगी में कोई आया और शायरी भी दाखिल हो गई। शहरयार ने अपने इंटरव्यूज में बताया कि अलीगढ़ में उनकी मुलाकात खलीलुर रहमान आजमी से हुई। आजमी की दोस्ती ने उन्हें शायरी से मिलवाया। खलीलुर रहमान के ही कहने पर अखलाक खान ने बतौर शायर शहरयार नाम अपनाया। ये तो है उनके नाम की दास्तान, लेकिन दोस्तों शहरयार साहब की एक से बढ़कर एक गजलें, नज़में और वो गीत जो हमारे भारतीय सिनेमा में आज भी गूंजते हैं, उन सब की बात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, चुनिंदा मंचों पर अपनी शायरी से मुखर रहने वाले शहरयार निजी जीवन में खामोश इंसान थे, बातचीत थोड़ी सी कम करते थे, मुशायरों में भी कम ही जाया करते थे। उमराव जान जैसी फिल्म के गाने लिखकर रातों रात चर्चित हुए, लेकिन शहरयार को धुन पर गीत लिखना रास नहीं आया और वो अदब की दुनिया में ही रहे। डॉक्टर प्रेम कुमार की किताब बातों मुलाकातों में शहरयार ने अपने जीवन के कुछ राज खोले हैं। लेखन के शुरुआती दौर के बारे में बताते हैं कि जब मैंने तय किया कि मुझे थानेदार नहीं बनना है तो घर से अलग होना पड़ा। तब मैं खलील उर रहमान के साथ रहने लगा। शुरू में मेरी जो चीजें छपी एक्चुअली वो मेरी नहीं है, बाद में अचानक कोई मेरी जिंदगी में आया। नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल है। कहते हुए शहरयार उस व्यक्ति के बारे में अपनी बात को छुपा जाते हैं। उनकी संवेदनशीलता इस कहने में झलकती है कि इस उम्र में मैं कितना ही रुसवा हो जाऊं, किसी और को रुसवा नहीं होने दूंगा। ऐसा मिजाज था शहरयार साहब का, और सबका सम्मान करते थे और लोग भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। और उनका कलाम जो कि लोगों के सिर चढ़ करके बोलता था, उसी कलाम से उनको हर जगह इज्जत मिलती थी। शहरयार साहब के बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, शहरयार साहब का जब कोई इंटरव्यू ले रहा था तो बहुत सारी बातें अपनी जिंदगी से संबंधित कर रहे थे, लेकिन एकदम अचानक किसी एक जगह पर आकर के ठहर गए और कहने लगे, नहीं भाई, कुछ बातों पर अगर पर्दा पड़ा रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। किसी को बदनाम करने से, रुसवा करने से कोई फायदा नहीं होता। तो किसी का राज है, उस राज को राज रहने दो। वो इस प्रसंग को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि तब दुनिया मुझे अजीब लगने लगी और फिर मैं शायरी करने लगा। बीए के आखिरी साल में शेर लिखने की रफ्तार तेज हो गई। एमए में साइकोलॉजी में दाखिला लिया और जल्दी ही एहसास हुआ कि फैसला गलत लिया है। दिसंबर में नाम कटा लिया, फिर 4-6 महीने केवल शायरी ही शायरी की, और ऊपर वाला भी मुझ पर रहम करता रहा। कोई बड़ी ताकत है जो मेरी चीजों को तय करती रही है। उर्दू की बहुत अच्छी मैगजीन में मेरी चीजें छपने लगी। तेज रफ्तारी से सामने आया, फिर एमए उर्दू में ज्वाइन किया। दोस्तों, साफ गोई देखिए कि शहरयार जोर देकर स्वीकार करते हैं, कबूल करते हैं कि वो मार्क्सवादी हैं, मगर एक परम सत्ता पर भरोसा करते हैं। शहरयार निजी जीवन के मामले में कम ही बोले हैं। शहरयार की अपनी बेगम यानी कि नजमा के साथ मन नहीं मिला था। उनके एकांत और खामोश मिजाजी के पीछे इसे भी एक कारण माना जाता है। पत्नी नजमा के लिए वो क्या सोचा करते थे, उनकी नज्म नजमा के लिए में दिखाई देता है। अब वो जो नज्म है उसमें उन्होंने किस तरह से अपनी पत्नी का जिक्र किया है शायराना अंदाज में, वो अंदाज भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि शहरयार साहब ने एक नज्म लिखी थी जिसका नाम था नजमा, और वो नजमा के लिए यानी कि उनकी पत्नी के लिए थी। उसमें वो लिखते हैं, क्या सोचती हो, क्या सोचती हो, दीवारे फरामोशी से उधर क्या देखती हो, आईनाए ख्वाब में आने वाले लम्हों के मंजर देखो, आंगन में पुराने नीम के पेड़ के साए में भैयू की जहाज में बैठी हुई नन्ही चिड़िया क्यों उड़ती नहीं, जंगल की तरफ जाने वाली वो एक अकेली पगडंडी क्यों मुड़ती नहीं, टूटी जंजीर सदाओं की क्यों जुड़ती नहीं, एक सुर्ख गुलाब लगा लो अपने जूड़े में और फिर सोचो। दोस्तों, शहरयार के मिजाज पर कमलेश्वर ने लिखा है, उन्होंने अपनी शायरी में मानवीय मूल्यों को सबसे आगे रखा। शायरी हो या अफसाना, शहरयार बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जो लिखना है जम कर लिखो, और इतना लिखो कि अपने लिखे को भी जी भर के खारिज कर सको, जिससे साहित्य जो सामने आए तो खूबसूरत और असरदार बन सके। इसके साथ ही वो बहसों में ना हिस्सा लेते हैं और ना शरीक होते हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपना सुकून खोना नहीं चाहते। ऐसे थे शहरयार साहब। जब फिल्मों में गाने, खासकर उमराव जान का जिक्र हुआ, तो शहरयार ने डॉक्टर प्रेम कुमार को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि मुझे जिंदगी में बहुत सी चीजें फिल्म के गानों की मकबूलियत से मिली। वो उदाहरण देते हुए कहते हैं

चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे किसान के बारे में बात करूंगा जिन्होंने किसानों के लिए लगा दी मशीनों की कतार। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के मेख गांव के किसान वैज्ञानिक यानी रोशन लाल विश्वकर्मा अपनी गन्ना उत्पादक मशीनों के कारण देश विदेश में सुपरिचित हैं। उन्हें इनके लिए कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिले हैं। अलग अलग दौर में हुई बातचीत में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा और शोध के अनुभवों को साझा किया है। वही सारी बातें आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। दोस्तों, आज जिस किसान के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, उनका नाम है रोशन लाल विश्वकर्मा, जिन्होंने किसानों के लिए लगा दी मशीनों की कतार। वो खुद अपनी जुबानी बताते हैं कि गांव में मेरे दादाजी भैया लाल किसानी के साथ साथ लोहारी का काम भी किया करते थे। उनके छोटे बेटे धनीराम के यहाँ 1967 की 8 मार्च को जन्म हुआ। बड़े पिताजी भी लोहारी का काम किया करते थे। दोनों के बीच 18 एकड़ असिंचित जमीन थी। दादाजी के निधन के बाद उन्हें 9 एकड़ जमीन मिली। पारंपरिक खेती से जैसे तैसे घर चलता था। बहनों की तो कम उम्र में ही शादी हो गई थी। 8वीं पास करके गांव से 4 किलोमीटर दूर आगे की शिक्षा के लिए दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ पिताजी को खेती में सहयोग देता, गाय बैल चराता। आगे बढ़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर के कॉलेज में दाखिला लिया। 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से खेती के काम में जुट गया। और आगे वो बताते हैं कि 1990 में मेरी शादी कमलाबाई से हो गई। आय बढ़ाने के लिए मैं खेती में नए प्रयोग करने लगा। स्प्रिंकलर सेट, छोटा ट्रैक्टर, थ्रेसर, इन सब चीजों को खरीद लिया। मोटर वाइंडिंग का काम भी सीख लिया, काम अच्छा लगा। कृषि यंत्र रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। 3 साल के बाद दुकान बंद करके जबलपुर में कार रिपेयरिंग का काम भी सीखा। इधर उधर भटक कर पिताजी से मशवरा लेकर गन्ने की खेती में नवाचारों में लग गया। अब तो आमदनी बढ़ानी ही थी, लेकिन आमदनी बढ़ी कैसे, ये दोस्तों मैं आपको जरूर बताऊंगा और बात करूंगा किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। दोस्तों, किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा बताते हैं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए मैं कई तरह की जुगाड़ों में जुट गया था। 1999 में निश्चित समय में सिंचाई के लिए टाइमर विद ऑटो स्विच का निर्माण किया। इसके बाद आलू की तरह गन्ने की सिर्फ आंख निकालकर खेत में लगाने का परीक्षण किया। एक साल में स्वस्थ पौध तैयार हो गई। पूरे राज्य में इसे लगाने के लिए यंत्र बनाने की प्रेरणा मिली। और अगर मैं 2006 की बात करूं तो 2006 में हाथ से चलने वाली शुगर केन बर्ड चिपर मशीन की मार्केटिंग शुरू की। इसका पेटेंट भी जल्दी मिल गया। करीब 2000 मशीनें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दुबई, ब्राजील यानी इन देशों और गन्ना उत्पादक प्रदेशों में गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों, कृषि क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है रोशन लाल विश्वकर्मा ने। लेकिन इनसे जुड़ी और भी बातें हैं जो हमारे किसान भाइयों को प्रेरित कर सकती हैं। वो सारी बातें आपको बताता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा का, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने गन्ने की आंखें निकालने का यंत्र तैयार किया था। अब आप कहेंगे कि गन्ने की आंखें? अरे भाई, जो आप देखते हैं, जो जॉइंट होते हैं, उनको गन्ने की आंखें कहते हैं। उन्हीं आंखों को निकालने के लिए रोशन लाल विश्वकर्मा ने एक यंत्र ईजाद कर दिया। 3 किलो की ये मशीन 1600 रुपए की है और इस यंत्र से गन्ने की चंद्राकार आकार की 250 से लेकर 300 आंख प्रति घंटे निकाल ली जाती है और निकाली गई आंख से पॉली बैग में पौधे तैयार करके उन्हें सीधे खेत में लगा दिया जाता है और जो बचे हुए गन्ने होते हैं उनका उपयोग गुड़ शक्कर बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यंत्र में गन्ने की मोटाई के मुताबिक समायोजन व्यवस्था है। यंत्र में स्प्रिंग और लंबा हैंडल होने से थकान कम होती है और वो बताते हैं कि इस यंत्र के लिए मुझे 2009 में NIF का प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस तरह से दोस्तों, रोशन लाल ने कृषि क्षेत्र में कुछ अलग काम करके कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाया है और अपने काम से लोगों को प्रेरित भी किया है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ अन्नदाता।

दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। दोस्तों किसान वैज्ञानिक रोशनलाल विश्वकर्मा कहते हैं कि अनवरत जारी हैं कृषि में नवाचार। वो कहते हैं कि 2010 में मैंने पांव से चलने वाली मशीन बनाई थी। वो प्रति घंटे गन्ने की 500 से 600 आंखें निकाला करती थी, लेकिन 2014 में पावर ऑपरेटेड मशीन बनाई और 80 किलोग्राम की ये मशीन एक घंटे में 2000 आंखें निकालती है और मेरे जरिए बनाई गई मोटर ऑपरेटेड शुगर बड चिपर सहसेट कटर 1 HP मोटर से चलती है। ये प्रति घंटे 1000 से 2000 आंख निकाल देती है। 1000-2000 टुकड़े प्रति घंटे काटे जा सकते हैं और इसकी खास बात यह है कि काटे गए टुकड़ों में आंखें क्षतिग्रस्त नहीं होती, जबकि प्रचलित पद्धति में 10-15% तक नष्ट होती हैं और अन्य कृषि यंत्र शुगर केन लीफ स्ट्रीफर शुगर केन बगास ड्रायर यानी कि इन सब को भी विकसित किया है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। दोस्तों, आज बात हो रही है किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में, जिन्होंने तकनीकी क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने किसानों के लिए लगा दी मशीनों की कतार, और जो गन्ना होता है उसकी जो आंखें होती हैं उसके लिए एक मशीन तैयार कर ली। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। उनका कहना है कि भूसे से सानी बनाने की मशीन, डॉग ट्रीटमेंट बॉक्स, ग्रामीणों की रोजमर्रा सामग्री की सही तुलाई का वितरण के लिए सप्लाई यंत्र, मॉडिफाइड हैंड व्हील हो, पैडी मार्कर, एंटी लॉक और गाजर घास की कटाई के लिए भी यंत्र बनाए हैं। और आगे बड़े ही उत्साहित होकर के वो बताते हैं कि मैंने पावर इंजन से चलित गोबर से गमले बनाने वाली मशीन का आविष्कार भी किया है। गोबर से बने गमलों में पौधों को पूरे पोषक तत्व देने की उर्वरा शक्ति होती है, और प्लास्टिक या सीमेंट के गमलों में पौधा अंदर से सिकुड़ता चला जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, वो ये भी बताते हैं कि सोशल मीडिया आज की बहुत बड़ी ताकत है, अगर आप इसका सही से इस्तेमाल कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि सोशल मीडिया का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। पहले मैं गांव के लोगों से बात नहीं कर पाता था, अब रोजाना 8 से 10 प्रदेशों के लोगों से मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल पर बातचीत बहुत आराम से कर लेता हूं। और कई प्रदेशों के लोग गांव में घर तक तकनीक देखने आते हैं। मैं भी हर साल कई बड़ी कृषि गोष्ठियों में जाता हूं और बहुत कुछ सीखकर वापस आता हूं। तो दोस्तों, इस तरह का अंदाज है किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा का। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जिसने कृषि क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया हो तो उसको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी तो किया गया होगा। उन सम्मानों की बात होगी, उन पुरस्कारों की बात होगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। दोस्तों बात हो रही है किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में। बातें तो मैंने आपको बहुत सारी बता दी हैं, लेकिन अब बारी है उनके सम्मानों की। तो वो अपने सम्मानों की बात खुद अपनी जबानी बताते हैं और कहते हैं कि गन्ना उत्पादकों के लिए विकसित यंत्रों के लिए 2005 में पहली बार ग्वालियर में सम्मानित किया गया और 2010 में ICAR ने Zone 7 में जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार प्रदान किया और 2012 में 10 लाख रुपए सम्मान राशि का राष्ट्रीय नबार्ड अवार्ड भी मिला। 2015 में 1 लाख रुपए सम्मान राशि का NIF का राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में मिला और 2018 में पैसिफिक विश्वविद्यालय और भाकिसन ने उदयपुर में खेतों के वैज्ञानिक सम्मान प्रदान किया। तो इस तरह से बहुत सारे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था। इन्हीं के बारे में कुछ और भी बातें हैं, बल्कि उनका एक संदेश है सभी किसान भाइयों के लिए। अब वो संदेश क्या है कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी बातें कर ली हैं रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में। अब जाते जाते उनकी तरफ से सभी किसान भाइयों के लिए एक संदेश है। वो कहते हैं कि उन्नत तकनीक अपनाकर ही समय अनुसार खेती करनी चाहिए। खेती में ही सबसे ज्यादा स्वतंत्रता और सम्मान है। इससे खुद का, गांव का, देश का फायदा होता है। अगर किसान मन में ठान ले कि उसे कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी किसान वैज्ञानिक जैसा सम्मान पाना है तो ये संभव है। मेरे अलावा देश के बहुत सारे किसान ऐसा कर चुके हैं और आज सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। जाते जाते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम, जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव। हमारे शो बहुत स्पेशल होता है, रीजन बीइंग यहां पर हम तो स्किल्स की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो टॉक अबाउट अ फ्यू मेजर थिंग्स जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। ये माइट बी आपके आसपास कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको एड्रेस करने का काम इस शो में हम लोग करते हैं। आज अगेन वी आर हेयर विद अ स्पेशल गेस्ट विद अस, और आज का शो अगेन बहुत खास होने वाला है बिकॉज वी हैव मिस्टर धीरज शर्मा हु इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब अमूमन आप अगर हमारे शो सुनते हैं तो आपको पता होगा कि भैया कितने सारे फ्रॉड्स हमारे आसपास होते हैं, लोग ताक लगाए बैठे हुए हैं कि कैसे एक ब्रेक थ्रू मिले आपके फोन का, आपके व्हाट्सएप का, आपके वॉलेट्स का, और किस तरीके से आपके फंड्स को गायब कर दिया जाए। बट यहाँ पर आज के शो में हम यही एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, प्राइमरीली डिजिटल अरेस्ट। अगेन हम कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं, कई बार ये बात बता चुके हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है कोई ऐसी टर्म इंडिया में, बिल्कुल एक आप कह सकते हैं नॉन एग्जिस्टिंग एक एंटिटी है, स्टिल लोग उसका विक्टिम बन जाते हैं। सो विल एड्रेस ऑल दीज थिंग्स कि कैसे आपका फोन हैक हो सकता है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, आपके एंड पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फोन के एंड पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। On this note, we'll begin the show. आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ वैल्यूज मिलने वाली हैं। But first, we'll welcome Mr. Dheeraj Sharma. Hi sir, welcome to our show.
1: Thank you, Sagar, to bring me on this show. This is, you know, very delightful for me to talk about the cyber threats we have nowadays.
0: So amazing, sir. It's an honor to have you here. I would like to start with a very basic question. When we talk about cyber threats, इसमें primarily गलती किसकी होती है? User की होती है, phone की होती है? क्या वो चीजें हैं जो common mistake सब लोग करते हैं?
1: Common mistake इसमें सागर जो होती हैं वो होता है कि हम panic में आ जाते हैं। ये technological fear है, लेकिन इसमें उससे ज्यादा psychological जो role है वो ज्यादा play करता है, क्योंकि जब भी आप किसी भी केस को अगर आप एसेस करोगे तो उस केस के अंदर आपको सबसे ज़्यादा यूज़र का जो प्रेशर है, डर है, फियर है, राइट, उसका लालच है, वही उसको हेल्प करता है, हैकर को हेल्प करता है उसको हैक करने में। क्योंकि टेक्नोलॉजी बिना आपकी मदद के, बिना आपकी मर्जी के उसको आपके डिवाइस का एक्सेस नहीं दे सकती, कहीं ना कहीं आप ही अलाउ करते हो कि वो आपको हैक करे। उसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं, मैं मानता हूं कि टेक्निकल रोल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है साइकोलॉजिकल रोल। वो आपके ऊपर एक प्रेशर बनाएगा, आपको कुछ थ्रेट्स देगा और उसकी हेल्प से वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन चोरी कर लेगा।
0: कुछ कॉमन थ्रेट्स क्या हैं साइबर थ्रेट्स?
1: अगर मैं कॉमन थ्रेट की बात करूँ, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग ऑफ इंट्रोडक्शन कहा कि आज की डेट में हमारे पास कई तरह के साइबर थ्रेट हैं, जिसमें से डिजिटल अरेस्ट एक थ्रेट है। जिसमें मैं अगर आपको एक रिसेंटली एक केस बताऊं, जिसमें एक लड़की थी, हमारी फरीदाबाद की ही लड़की थी, वो कनाडा पढ़ाई करने के लिए जा रही थी, तो उसको एक दिन एक फ़ोन आता है कि आप, तो उसका नाम बोला जाता है कि आपका नाम सो एंड सो है, आपके पास आपका आधार नंबर ये है। बोलते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे ट्रेस हैं कि आप किसी ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हो। लड़की घबरा जाती है, उसे बोला जाता है कि आपका ये पासपोर्ट नंबर है, ये डिटेल्स हैं, आप उसकी सारी डिटेल वेरीफाई कराई जाती हैं, वो सारी डिटेल वेरीफाई करती है कि हाँ मेरी सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद उसको बोला जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट पे हो, आप मूव नहीं कर सकते हो, आपको कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, अपने फोन को, मोबाइल को आप चार्ज पे लगा लो, और वो बहुत घबरा जाती है। उसके बाद उससे बात करी जाती है, नेगोशिएट किया जाता है, कई घंटों तक उसको डराया जाता है, और क्योंकि उनको पता था, हैकर को पता था कि उसके अकाउंट में पैसे हैं, और तकरीबन 3.5 लाख रुपये उससे 2 या 3 ट्रांजेक्शन में वो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। शाम तक जब वो दरवाज़ा नहीं खोलती है तो घर वाले थोड़े पैनिक होते हैं, वो बार बार दरवाज़ा खटखटाते हैं, पड़ोस से लोगों को बुलाते हैं और दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है, लड़की बहुत डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है, जब उससे बात करी जाती है तो पूरा केस निकल के सामने आता है। फिर पुलिस को इन्फॉर्म कराया जाता है, पुलिस आती है, जो यहाँ के SP थे उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं वहाँ पहुँचा, तो हमने जो डायग्नोज किया वो ये था कि लड़की का मोबाइल हैक था, उसकी सारी ट्रांजैक्शन, सारी डिटेल्स उनके पास, हैकर्स के पास थी, और उससे वो आइडिया लगा पा रही थी कि वो किस स्टेट ऑफ मोड में है, क्योंकि लड़की के कैरियर का सवाल था। उसने बहुत साल शायद मेहनत करी थी कनाडा जाने के लिए, और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो इसी डर से, इसी फियर से कि कहीं उसका कनाडा का वीज़ा रद्द ना हो जाए, वो पैनिक में आने के बाद उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अगर मैं इस केस में कहूँ तो इस केस में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है रीज़न, वो होता है अनअवेयरनेस। क्योंकि हम बहुत सालों से इस पर बात कर रहे हैं, राइट, साइबर थ्रॉट पर, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता है। कई बार लगता है कि मुझे पता है, मैंने 5 बार सुना है तो सबको पता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों को, अगर हमारी बात होती है, लोगों को नहीं पता है। लोग, बहुत से लोग हैं जो रेडियो नहीं सुनते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है। अब इस पूरे केस में क्या होता है कि वो आपको प्रेशर बनाते हैं, ये सारे प्रेशर का गेम है। उनको पता है, ऐसा नहीं है कि वो रैंडम किसी को पकड़ के अटैक करेंगे और आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे। वो ट्रेस करते हैं आपको, वो बहुत दिनों से आपको ट्रेस कर रहे होते हैं, वो आपकी एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं, वो टारगेट करते हैं ग्रुप ऑफ यूजर्स, उसमें से वो फाइंड आउट करते हैं कि हमें किसको फाइनल करना है। कैंडिडेट को फाइनल करते हैं, उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, समझते हैं कौन डर सकता है, किसी के पास पैसा है अकाउंट में, किस परिस्थिति में है, इसका क्या केस है जिससे उसको डराया जा सकता है। वो सारा डायग्नोज करने के बाद, सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अपना अटैक प्लान करते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल फेयर ज्यादा है।
0: ओके, सो इंटरेस्टिंग, काफी इंसाइटफुल केस के थ्रू आपने हमें ये चीज बताई। बट यहाँ पर आप जो बोल रहे हो कि हमारे फोन को पूरा ट्रेस किया जाता है, क्या मैं पता लगा सकता हूँ किसी तरीके से कि मेरे फोन को ट्रेस किया जा रहा है? नहीं,
1: देखिए, आज की टाइम में फोन आपका जनरल, मैं कहूँगा कि सबका फोन मैक्सिमम हैक हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार फेसबुक का डेटा हैक हुआ है, राइट, और जनरली मैक्सिमम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। इवन क्या होता है कि आप एज ए यूज़र, आपके पास बहुत सारे लिंक आते हैं, वो लिंक आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिशिंग अटैक के थ्रू आते हैं, जहां पर वो एक अट्रैक्टिव ऑफर देके आपको एक लिंक देता है, वो आपको ट्रेस करते हैं। ये बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा कि आप घर में किसी से बात कर रहे हैं, बात करते वक्त आपने एडिडास शूज़ का बात करा कि मुझे एक एडिडास का शूज़ खरीदना, मैं देख रहा हूँ, और थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे धीरे एडिडास के आपके पास ऐड आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो एक क्यों होता है, आपका फ़ोन, आपके फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन आपको 24 आवर ट्रेस करती है कि आप क्या बात करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या आपका टेस्ट है, क्या आपका शौक है, वो सारी चीज़ें एसेस करती हैं। वो डेटा कहीं ना कहीं एप्लीकेशन के पास जाता है, और जो जो एप्लीकेशन कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उस एप्लीकेशन का सारा डेटा उनके पास पहुंच जाता है। कई बार हैकर्स अपनी एप्लीकेशन भी बना के धीरे धीरे यूजर्स के उसमें लिंक के थ्रू या किसी और थ्रू इंस्टॉल कर देते हैं। तो इन सब के थ्रू आपका जो मोबाइल है उसका एक्सेस यूजर ले सकता है। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं आज की डेट में जिनके थ्रू आपका जो अकाउंट है, जो मोबाइल है, उसका एक्सेस लिया जा सकता है।
0: और ये आप कह रहे हो कि मेरी मर्जी के बिना नहीं हो सकता है, वो मुझे डराएंगे, पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट करेंगे, मर्जी मेरी ही होगी, चाहे सिचुएशन कोई भी बनाई जाए, प्रेसिंग सिचुएशन होगी मेरे सामने और मैं डर के उस चीज में एक्ट वैसे करूंगा।
1: बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। एक केस था जिसमें एक यूजर को लिंक आया, ठीक है, उस यूजर ने उस लिंक पे क्लिक किया, उसको KYC का एक मेल आया था, मैसेज आया था कि आपका KYC ड्यू है, अगर आपने नहीं करा तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो प्रेशर में आ गया, उसने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक बैंक की साइट खुली। वो बैंक की साइट एक्चुअल बिल्कुल बैंक जैसी ही थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि आदमी को लगे, क्योंकि ये बहुत आसान है, आप किसी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हो, राइट, तो बिल्कुल सेम वेबसाइट आपकी बन जाएगी। अब क्या हुआ, उसने वेबसाइट पर ध्यान दिया, अपना ID डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन करा, और कुछ दिन बाद उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मेरे अकाउंट में OTP आता है और मेरा अकाउंट सेफ है। मैं मानता हूँ आपका अकाउंट सेफ है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार हमारी खुद की गलतियों से वो अकाउंट अनसेफ हो जाता है। हैकर्स ना कभी, देखो ये फिल्मी नहीं है, ये जो एनवायरनमेंट है वो फिल्मी नहीं है कि आदमी आया एक चुटकी बजाई, किसी ने कुछ प्रेशर दिया, एक लंबे वाला आदमी आया और उसने लैपटॉप पे 5-10 मिनट की दबाई और हैक हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये एक लंबी एक्सरसाइज है, वो लोग आपको पूरा एसेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जब भी आप अपने लॉगिन ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, दूसरा होता है ओटीपी। तो वो दो पार्ट में इस पे काम करते हैं, पहले आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड लेंगे राइट, फिर उसके बाद वो लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास मोबाइल को हैक करके वो पासवर्ड या तो आपको चुरा लेंगे या उस पासवर्ड को बाईपास कर देंगे राइट। तो और ये कोई एक टेक्निक नहीं है, एक ही तरीके से होता है, ऐसा 50 तरीके से हो सकता है, ऐसे 50 तरीके होते हैं जिससे आपको बाईपास किया जा सकता है। आपके अकाउंट जो SMS आएगा आपके पास, वो SMS आप पे ना आगे किसी दूसरे मोबाइल पे चला जाएगा, वो आपका एक क्लोन होगा, या आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं मोबाइल पर तो उनको पता पड़ रहा है क्या टाइप हो रहा है। आपके कुकीज होते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं अपने ईमेल आईडी पासवर्ड कुकीज में सेव रखते हैं, लोगों को लगता है मैं इतने पासवर्ड याद नहीं रख सकता तो सेव एज कर देते हैं, एक कुकीज में अपने पासवर्ड सेव कर देते हैं। वो कुकीज किसके पास जाएगा, उस पासवर्ड आपका आईडी पासवर्ड सब उसमें मिल जाएगा उसको, बहुत आसान है। आपके लिए कठिन है लेकिन हैकर्स के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सबके लिए भी कहीं ना कहीं आपको ही अलाउ करना पड़ेगा कि वो आपके सिस्टम में घुसे। और वो उसका तरीका सिर्फ वही है, या तो वो आपको डराएंगे या आपको कोई लालच देंगे और आप किसी गलत लिंक पे आपको क्लिक कराएंगे।
0: सो इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन चल रही है जो मुझे लगता है हम सब लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज से कि हमारे एंड पर क्या गलतियां होती हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। विल टॉक अबाउट इट, बट फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

अपने परिवार को सारी खुशियां देते हैं, अपने बच्चों को सारे गुण, सारी अच्छी चीजें सिखाते हैं। लेकिन क्या आप अपनी तंबाकू की आदत अपने बच्चों को देना चाहोगे? नहीं ना? तो आज ही से तंबाकू को ना कहें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। आज हमारे साथ है मिस्टर धीरज शर्मा, और धीरज सर से हम लोग बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की, बिकॉज ही इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अभी तक हमने बेसिक्स जाने हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें क्यों एग्जिस्ट करती हैं और कैसे बाईपास किया जा सकता है हमारे फोन्स की, हमारे सिस्टम की जो सिक्योरिटी है उसको। नाउ विल डीकोड फर्दर। सर, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, प्लीज मुझे ये बताइए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि किसी भी तरीके से मेरे सिस्टम में या मेरी किसी आईडी में या मेरे जीमेल में मेरे फोन में कोई हैकर ना जा पाए, उनके वो ब्रेक थ्रू ही ना मिले, ऐसा कुछ किया जा सकता है मेरे एंड पे एज अ यूजर?
1: देखिए, आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे हम उसको हम बेसिक हार्डनिंग बोल सकते हैं या बेसिक सिक्योरिटी बोल सकते हैं। पहला तो आप अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट करते रहिए, राइट, पहला। दूसरा, आपके पास, मैं सबसे बात ये बात कहता हूँ सारे यूजर्स से, सारी ट्रेनिंग्स में, कॉर्पोरेट में काफ़ी ट्रेनिंग्स करता हूँ मैं, कि मोबाइल में एप्लीकेशन फ्री है। और ये देखो, हर यूज़र इसको रिलेट कर पाएगा कि फ्री की चीज़ इंडिया के अंदर बहुत जल्दी लोग यू नो अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। तो हमको क्या चाहिए कि आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन आपके लिए जरूरी है, जिन एप्लीकेशन के बिना आपका काम नहीं चल सकता, आप उन्हीं को रखें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई एप्लीकेशन टाइम बींग के लिए इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करने के बाद उसको आप इंस्टॉल कर दो कि लगता है कि आपको यूज नहीं करनी है फर्दर। मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, कुछ लोग के घर में बुजुर्ग होते हैं जिनको पेंशन आती है, राइट। पेंशन में ईयरली आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, ठीक है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के लिए आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं। लोग उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, उसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की एप्लीकेशन भी होती है, राइट। आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली अपने सिस्टम में, जो कि एक्टिविटी साल में एक बार होनी है, लेकिन हम उसको वापस इंस्टॉल नहीं करते। तो हमको ऐसी एप्लीकेशंस जिनका हमें यूज नहीं करना है और टाइम बींग के लिए यूज है, तो यूज करने के बाद उनको अनइंस्टॉल कर दो। तीसरा टिप्स ये है कि आप जो भी एप्लीकेशन आपके इंस्टॉल करते हैं उसको रेगुलरली आप अपडेट करते रहो, आप उसमें देखते रहो कि किसी एप्लीकेशन का अपडेट तो नहीं आया है। एंड्रॉयड में, एप्पल मैक में, सब में एक फीचर होता है कि आप जाके चेक कर सकते हो किस एप्लीकेशन का कौन सा अपडेट आया है, आप उसे अपडेट करें। तीसरा ये है, आपको ये देखना है कि आपने किस एप्लीकेशन को किस लेवल का एक्सेस दिया हुआ है, और आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन को इस एक्सेस का जरूरत नहीं है, तो आप उसे डिसेबल कर दीजिए। हो सकता है किसी टाइमिंग आपको जरूरत रहे किसी भी एक्सेस की, तो आप उस एक्सेस को टाइमिंग सिर्फ उसे दीजिए और उसके बाद डिसेबल कर दीजिए। अगर आप ये बेसिक जानकारियां अपनी नॉलेज में रखेंगे और बेसिक सेटिंग आप करके रखेंगे, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है हैक होने की वो कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता खत्म हो जाएगी, क्योंकि और बहुत तरीके हैं करने के, पर प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। जब आपका बेसिक स्ट्रक्चर सिक्योर रहेगा तो आपके चांसेस कम है। और सबसे बड़ा, सबसे बेसिक नियम जो आपकी लाइफ में, वो ये है कि आपको क्लिक करने से बचना है, आपको अनअवॉइड अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। आप क्लिक जितना करेंगे उतना आप अपने रिस्क को बढ़ाएंगे। जब तक आपको लगता नहीं ये जरूरी है मेरे लिए, किसी मेरे नॉन सोर्स ने आपको भेजा है आपको कोई लिंक, आप सिर्फ वही लिंक ओपन करिए, अदरवाइज जस्ट इग्नोर द लिंक्स। कई बार मैंने देखा है कि अमेजोन का एक मैसेज आता है कि अमेजोन पे एक शूज जो 10,000 रुपए मिल रहा था 1,000 रुपए मिलता है। पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि ऐसा प्रोबेबिलिटी होता नहीं है कि वो 10,000 की चीज 800 में मिल रही हो, 1,000 रुपए मिल रही हो। और अगर मिल भी रही है, प्रोबेबिलिटी है, तो आप अमेजोन की साइट पे जाके भी तो चेक कर सकते हैं ना, डायरेक्ट उस लिंक से ही जाएंगे, जरूरी तो नहीं आपको तभी मिलेगा। आप अगर वो ऑफर है तो अमेजोन की वेबसाइट पर भी वो ऑफर है, ऐसा नहीं है कि उस लिंक पे ही ऑफर है। तो यूजर को थोड़ा वेट करना चाहिए, अपने लालच को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि हो सकता है प्रोबेबिलिटी है, तो आप अमेजोन की एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर है, आप वहां जाइए, वहां से आप उसे सर्च करिए और देखिए वो ऑफर है कि नहीं।
0: सो वंडरफुल। सच बात है कि अगर आपको कोई ऑफर कोई कंपनी दे रही है तो ऐसा तो नहीं है कि छुपा के आपको देगी। अगर वो दे रही है तो जाहिर सी बात है वो सबसे बड़ी यूएसपी उस कंपनी की उस टाइम के लिए बनेगी। सो यू शुड चेक इट आउट ऑन दैट वेबसाइट। अगला सवाल मेरा रहेगा अबाउट पब्लिक वाईफाई। ये बहुत बार हम सुनते हैं कि इज इट सेफ टू यूज पब्लिक वाईफाई?
1: देखिए पब्लिक वाईफाई में जो एक रिस्क है वो ये बहुत बड़ा रिस्क ये होता है कि जब आप पब्लिक वाईफाई एक्सेस करते हो तो पब्लिक वाईफाई आपके लिए फ्री नहीं होता है, हैकर के लिए भी फ्री होता है। हैकर उस नेटवर्क में स्पूफ करके बैठ जाता है और जब आप उस नेटवर्क कनेक्ट करते हो तो वो उस कनेक्शन के थ्रू एक मालवेयर आपके मोबाइल या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकता है आसानी से। और वो जो मालवेयर जो वो इंस्टॉल करेगा उसको आज यूज नहीं करेगा, वो उसको आपको ट्रेस करने के लिए यूज करता है। अभी मैंने जैसे अपनी डिस्कशन में बताया कि जो हैकर्स होते हैं वो आपको लंबे समय तक ट्रेस करते हैं, आपको एनालिसिस करते हैं, फिर आप प्लान करते हैं आप पे अटैक का। तो वो कैसे ट्रेस करते हैं? वो ऐसे ट्रेस करते हैं, वो साइलेंटली किसी लिंक के थ्रू, किसी एप्लीकेशन के थ्रू, कहीं पर आपने वाईफाई एक्सेस किया जो अनसिक्योर था, उसके थ्रू आपके सिस्टम में एक छोटा सा मालवेयर डाल देंगे और उसके थ्रू आपका डेटा धीरे धीरे धीरे धीरे चुराते रहेंगे। जरूरी तो नहीं है ना कि आज आपने एक मालवेयर मैंने आपके सिस्टम में डाला, आज ही आपने लॉगिन कर लिया बैंक की साइट पे, ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है आप 15 दिन बाद लॉगिन करो, हो सकता है आप 20 दिन बाद लॉगिन करो, तो मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप वो डेटा जो मैं चाहता हूं आप लॉगिन ना करें। आप लॉगिन करोगे डेटा को मैं चोरी करूंगा, उसको चोरी करने के बाद मैं नेक्स्ट प्लान करूंगा कि अब मुझे क्या करना है, मुझे यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करनी है, मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, कैसे ट्रांसफर करना है पैसा, और उसके लिए मुझे इस बंदे को कैसे स्पूफ करना पड़ेगा। फिर वो अलग अलग तरीके से आपको स्पूफ करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि एक बार में आप बच जाओ, वो बच जाओगे नेक्स्ट टाइम वो दोबारा ट्राई करेगा। तो ये एक कॉमन तरीका नहीं है लेकिन बचने के कॉमन तरीके हैं। जो बेसिक हार्डनिंग अगर आप करोगे तो आप 80% रिस्क को रिमूव कर दोगे, 20% फिर भी रहेगा लेकिन फिर भी आप 80% उसको रिमूव कर पाओगे।
0: आप कह रहे हो पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना चाहिए।
1: पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आज की डेट में मोबाइल बहुत सस्ता है, इंटरनेट बहुत सस्ता है, अपन में हॉटस्पॉट यूज करके कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं पब्लिक वाईफाई की आज के टाइम में कोई जरूरत है।
0: सो इंटरेस्टिंग। ऑन दिस नोट वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइफ।
2: सुनो एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे

जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा।

0: मैं अर्जय सागर शो चल रहे हैं पर वॉइस ऑफ यूथ। हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर धीरज शर्मा, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और यहाँ पर हम सर से बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स के बारे में, कि कैसे अपने डेटा को हम बचा सकते हैं, कैसे हम अपना फाइनेंसिस को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर खासतौर पर स्कैमर्स, हैकर्स, जितने भी आप टर्म सुनते हैं बहुत नेगेटिव होते हैं, इनसे कैसे अपना बचाव किया जाता है। व्हाट्सएप पर बहुत सारे अननोन नंबर से फोटो आती है हमारे पास, ठीक है। मेरी आदत ये है कि मैं जब तक मैं उस नंबर को नहीं जानता, मैं अननोन फोटोज डाउनलोड नहीं करता हूँ। व्हाट आर द थ्रेट्स इन्वॉल्व, क्या हो सकते हैं वहाँ पर थ्रेट्स?
1: देखिए, व्हाट्सएप पे ना दो बहुत कॉमन थ्रेट आज की डेट में एक्टिव है। पहला जो आपने बोला कि एक फोटो, आप शादियों का सीजन चला है, राइट? शादियों के सीजन में नॉर्मल लोग कार्ड भेजते हैं एक दूसरे को, आजकल व्हाट्सएप पे कार्ड आ जाते हैं। तो आज की डेट में आपको क्या होगा, एक अननोन नंबर से एक शादी का कार्ड आएगा, आपको लगेगा किसी रिलेटिव ने, किसी ने भेजा, उसका कोई नया नंबर होगा, उसने मुझे भेज दिया है। लेकिन वो कार्ड नहीं होता, आप जब उस पर क्लिक करते हैं, उस कार्ड के पीछे एक लिंक हाइड होता है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो एक मालवेयर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा चुपचाप। एक कार्ड आया, आपको लगेगा किसी ने मजाक करा होगा, वैसे ही कार्ड आया होगा। लेकिन आपने जैसे वो कार्ड पे क्लिक किया, उसको डाउनलोड किया, आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि वो मालवेयर आपके सिस्टम में आ गया। अब वो मालवेयर एक तरह का इन्फेक्शन नहीं होता, जैसे इन्फेक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, वो इन्फेक्शन अलग तरीके से काम करते हैं, ऐसे मालवेयर भी अलग अलग तरीके से काम होता है। तो हर हैकर का एक अपना पर्पज होता है मालवेयर को भेजने का, कि मैं किस पर्पज से इस मालवेयर को किसी यूजर के पास दे रहा हूं, तो वो उसी पर्पज को मालवेयर काम करेगा, राइट? अब उसमें क्या होगा कि जैसे आपने मूवमेंट आपने, और दूसरा क्या होता है, कई लोग स्मार्ट होते हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं क्लिक करेंगे, लेकिन उनके यहाँ पर ऑटो डाउनलोड इनेबल्ड होता है मोबाइल के अंदर। आप देखोगे व्हाट्सएप में एक फीचर होता है कि आप जैसे कोई आता है, ऑटोमेट आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। वो सबको वो फीचर डिसेबल्ड करना चाहिए। अगर आप फीचर डिसेबल नहीं करते हैं, तो आप क्लिक भी नहीं करते हैं, वो तभी भी अपने आप डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में। तो बेसिक ये है कि सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे जाइए अभी इमीडिएटली। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप की सेटिंग में जाइए और डिफॉल्ट जो डाउनलोड है उसको डिसेबल कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि जब आप उसको, अगर कोई ऐसा केस आता है, हमको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली उस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर आपका कोई नॉन है तो आपको कॉल करेगा, राइट? वो आपको बताएगा कि भाई मैंने आपको शादी का कार्ड भेजा है। और जो लोग खाली व्हाट्सएप पे आपको कार्ड भेज रहे हैं, आपको फोन भी नहीं कर रहे हैं, तो उनके जाने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, राइट? तो आपको ये सोचना चाहिए, अगर कोई कार्ड भेज रहा है तो आपको फोन भी जरूर करेगा। तो जब आपका फोन करे और बताए कि आपको मैंने इस नंबर से कार्ड भेजा है, तब आप उसको ओपन कर सकते हैं। जब तक आपके पास ये श्योरिटी ना आए किसी नॉन बंदे ने मुझे कोई चीज भेजी, आप उसे डाउनलोड नहीं करेंगे। दूसरा एक और थ्रेट आ रहा है आजकल, क्या हो रहा है कि मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आता है। मैं भी आपको एक केस बताता हूं, एक बेंगलोर का केस है। वहां पर एक 45-50 ईयर के बीच का एक आईटी प्रोफेशनल थे, उनके पास एक वीडियो कॉल आया। और वीडियो कॉल में जैसे उन्होंने वीडियो कॉल उठाया, एक लेडी थी जो कंप्रोमाइज स्टेज में थी, राइट? और उन्होंने उससे बात करा, थोड़ी देर बात करा कि भाई आप क्या है, उन्होंने फोन काट दिया थोड़ी देर बाद ही। लेकिन जैसे उन्होंने डिस्कनेक्ट किया, थोड़ी देर बाद एक बंदे का फोन आता है, उसको बोलता है कि आपके कुछ फोटोज हैं हमारे पास, जो आप एक लेडी के साथ कंप्रोमाइज स्टेज में हो, और ये जो आपके फोटोज हैं आपको वायरल कर देंगे। वो डर जाता है बंदा, राइट? डर जाता है, उसके बाद उससे कुछ पैसा मांगा जाता है, वो दे देता है एक बार, दो बार, तीन बार। लेकिन वो कुछ अपने खास दोस्तों के साथ इसके बारे में डिस्कशन करता है, जिनको पता था कि ये फ्रॉड है। वो उसको समझाते हैं कि ये फ्रॉड है, फिर वो पुलिस कंप्लेन होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन इसमें क्या एज ए यूजर आपको समझने की जरूरत है कि ये फ्रॉड होता है जहां पर एक वीडियो कॉल आता है। ये आपको पता होगा तो आप उन वीडियो कॉल को इग्नोर कर सकते हैं, राइट? और दूसरा, अगर एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो जाता है तो इमीडिएटली आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। आपको डरने की जरूरत नहीं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको बेसिक समझना चाहिए, राइट? पुलिस का जो डर है ना हमारे मतलब जहन में, वो कई बार हमको गलत करने के लिए मजबूर कर देता है। तो इसलिए हमको पुलिस से डरना नहीं चाहिए, राइट? वो जो आप, अगर मैं कहता हूँ बुरी से बुरी स्थिति में, जो आप पैसा हैकर को दे रहे हो, अगर आप वो हैकर को नहीं दोगे तो पुलिस आपको कहीं ना कहीं सेफ करेगी। आप उनके पास जाइए, पुलिस को बताइए, अगर आप गलत हो तभी आपको डरने की जरूरत है, आप गलत नहीं हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं इतने पुलिस वालों को जानता हूं, उनके साथ दिन रात काम करता हूं, लेकिन मेरी अपनी नजर में मुझे पता है कि पुलिस वाले अगर आप गलत नहीं हो तो आपको परेशान नहीं करते हैं। जर्नली कुछ लोग हर जगह होते हैं गलत, हर पेशे में गलत होते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप एक फियर बना लें कि पुलिस वाले के पास जाऊंगा तो कुछ गड़बड़ी होगा, ऐसा नहीं है। उसके चक्कर में आप अपने साथ गलत करा लेते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो आपको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए।
0: सो वंडरफुल। तो कोई भी अगर ऐसी चीज होती है, कोई भी फ्रॉड होता है जहां पर आपने कुछ गलत नहीं किया है, जस्ट इमीडिएटली गो टू पुलिस। 1930 हेल्पलाइन नंबर है, साइबर हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉल करके सहायता जो है वो ले सकते हैं। सवाल हालांकि और बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है, इसलिए शो को यहां पर हमें कंक्लूड करना होगा। तो प्राइमरीली आज हमने बात करी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स की, क्या होते हैं, कैसे अवॉइड किया जा सकता है इन सिचुएशंस को। खासतौर पर सेक्सटॉर्शन एक टर्म है जहां पर सर ने भी जिक्र किया कि वीडियो कॉल आएगा अननोन नंबर से। तो बेसिकली अननोन नंबर कुकीज में अपने पासवर्ड आईडी सेव करना, या अननोन लोगों को रैंडम एंटरटेन करना, या कोई लिंक आपके फैमिली ग्रुप में आया उसको फॉरवर्ड करना, उसके ऊपर क्लिक करना, ऑल दीज थिंग्स आर यू नो मेकिंग अ ट्रैप अराउंड यू जिसमें आप शायद फंस सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सर ने दो तीन चीजें और बहुत अच्छी बताई कि कोई एप्लीकेशन अगर आपके यूज में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप साल में एक बार किसी एक चीज को यूज करते हैं, एक एप्लीकेशन को, उसको हटा दीजिए, वो आपका स्टोरेज घेर रही है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो एक थ्रेट के तौर पर है, अगर उसको यू नो बाईपास कर लिया गया किसी एक पॉइंट पे तो वो आपके फोन की सिक्योरिटी को भी बाईपास किया जा सकता है बहुत इजीली, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट मत करिए अपने फोन को। आपको लग रहा है वाईफाई फ्री है, लेकिन भूलिएगा मत, सबसे कीमती चीज उस टाइम पर उस फ्री वाईफाई के थ्रू जा सकती है, वो है आपका डाटा, आपकी सबसे प्रेशियस चीज है, वो वहां पर लीक हो सकती है। टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर, इट मींस अ लॉट टू अस कि आप यहाँ पर आए और अपना यू नो ये इंपॉर्टेंट टाइम हमें देकर ये सब बताया। थैंक यू सागर। ऑलराइट दोस्तों, वी आर डन विद आवर क्वेश्चंस ऑन दिस नोट, वक्त है शो का कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ आज के शो से कुछ मूल्य आप लोगों तक हम पहुंचा पाए। इसी नोट पर इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, दिस इज योर दोस्त एंड दिस इज योर होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: शायद कभी कभी।
1: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया।
2: सच?
1: प्यार हो गया, क्या करें।
2: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

0: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आरजे सागर आ चुका हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो 107.8 के साथ, फील गुड फील लाइव। हर बार की तरह यही कहूंगा, लेकर के आया हूँ एक और यूनिक शो, एक और यूनिक केस स्टडी आपके लिए, एक और नई कंपनी आपके लिए। बात करेंगे इंडस्ट्री को, आपको समझाएंगे, कंपनी को बताएंगे, फाउंडर्स के बारे में बताएंगे, की ड्राइवर्स आपको बताएंगे, तमाम चीजें आपको बताएंगे जो आपकी हेल्प कर सकती हैं इस समझने में कि अगर अपना को स्टार्ट करना है तो कैसे किया जा सकता है। विल टॉक अबाउट इट, बट फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में बात करेंगे। स्टेडियम फील गुड फील लाइव।
1: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ गुरुदेव, ना इज्जत

महाराज पधारे, चिंता चरस चिलम और चेले साथ साथ में सारे, चिंते लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे, और ये देखो भगवान के चमके पड़े हैं।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी करते हैं। एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

0: तेरा प्यार है।
1: वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ जो है हैंडल करी है, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजेक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजेक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुकी है अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। So, UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, SEBI की तरफ से बनाई गई हैं, IRDAI की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं, मैं हूँ सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूं जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गांव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या QR बेस्ड UPI। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फ्री, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं, जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइनजी, IDFI, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग AI एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना बताया कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था, जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इंप्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिथम्स काफी एडवांस हो गए हैं जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं, जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव जो है वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो RBI के इनिशिएटिव्स है, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी है, और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए, सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए, यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन ईजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। टीयर टू एंड टीयर थ्री जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप, और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

107.8 FM के साथ फील गुड फील लाइव फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उनके सामने आता है और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंसिस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहां यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसिस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब ले रहे हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइफ।

पुरस्कार चंदन का। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

फाइनली बिना किसी देरी के कंपनी की बात करते हैं। सो भैया हमारी आज की कंपनी जो फिनटेक में डील करती है वो है कुवेरा। कुवेरा एक इंडियन फिनटेक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये आपको अलाउ करता है टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, डिजिटल गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड इवन इन यूएस इक्विटीज, जो मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे सारे एप्लीकेशन पर नहीं होता है, तो यूएस इक्विटीज में भी आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल एट वन प्लेस, एट वन प्लेटफॉर्म। 2016 में स्टार्ट हुई, बेंगलोर में हेडक्वार्टर्स हैं, पेरेंट कंपनी है एरिवोक एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बाद में इसको क्रेड ने एक्वायर कर लिया 2024 में, ठीक है। अ जीरो कमीशन फ्री टू यूज इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्ट कैसे हुई। तो जो फाउंडर्स हैं उन्होंने एक ब्रूटल ट्रुथ आइडेंटिफाई किया यहां पर कि वेल्थ मैनेजमेंट जो इंडिया में है वॉज बिल्ट फॉर द रिच, नॉट फॉर द मिडिल क्लास। तो जो ट्रेडिशनल एडवाइजर्स थे वो कमीशन चार्ज किया करते थे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो उन प्रोडक्ट्स को पुश किया करते थे जिनमें उनका कुछ प्रॉफिट हो, लेकिन मिडिल क्लास इंसान जो यार जिसको पता नहीं बहुत सारी चीजें और या फिर उसको पता भी है तो वो कहां पर जाए। मतलब अगर आपको खरीदना है कोई म्यूचुअल फंड तो आपके पास डायरेक्ट वो एक्सेस नहीं था, बहुत कम ऐसे लोग थे जिनके पास वो एक्सेस आ पाता था अगर आप ट्रेडिशनली बात करेंगे तो। यहां पर ये कंपनी आती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो कंफ्यूज थे, मिसलेड थे या इग्नोर किए जा रहे थे। तो कुवेरा जो है वो इसलिए बनाया गया टू डेमोक्रेटाइज इन्वेस्टिंग बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। प्लेटफॉर्म ऑफिशियली लॉन्च किया गया था अराउंड 2017 विद रोवो एडवाइजरी टूल्स। ओके, आइडिया बहुत सिंपल था, रिमूव मिडलमैन, रिमूव कमीशंस, इंक्रीज इन्वेस्टर रिटर्न्स, सिंपल सॉर्टेड। अगर कमीशन नहीं पे करना है, किसी को बीच में पैसा नहीं खिलाना है, जाहिर सी बात है सारा पैसा आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका, नुकसान भी आपका। तो ये एक थॉट जो है इसके साथ इस कंपनी को जो है शुरू किया गया। सो इंस्टेड ऑफ अर्निंग फ्रॉम कमीशंस, कुवेरा ने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो ऑफर करने शुरू कर दिए, नो डिस्ट्रीब्यूटर कट, याद रखिएगा। टेक और ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया टू गाइड यूजर्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे फोकस किया गया, नॉट क्विक ट्रेडिंग। एंड ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो है वो दे कैन इंक्रीज योर रिटर्न्स बाय अप टू 1-1.5% एनुअली, ठीक है। जो अगर आप थ्रू आउट द टाइम, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को मन लोग लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं तो जब कंपाउंड होकर आएगा तो बहुत ज्यादा लगता है वो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कंपनी। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून, फील गुड, फील हो।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: पुल पे? वहाँ अकेला क्या कर रहा है?
2: वेलकम बैक, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। तो ये हमारी जो आज की कंपनी है कुवेरा, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। थॉट क्या था, कैसे स्टार्ट हुई, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट, लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडर्स। पहला नाम आता है गौरव रस्तोगी, ही इज द CEO ऑफ दिस कंपनी। ये मॉर्गन स्टैनली में पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पर जॉब किया करते थे पहले। अगर आप इनकी एजुकेशन की बात करते हैं, IIT दिल्ली से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में जो है पढ़ाई की है, पर शिकागो बूथ से इन्होंने अपना MBA किया है। ठीक है, वेल्थ को बहुत अच्छे से समझते हैं, वेल्थ को बहुत अच्छे से समझा है काम करके, सिस्टम में रह करके। और ये चीज़ इन्हें समझ में आ गई थी कि कॉमन जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको अमूमन इग्नोर किया जाता है, या फिर उनके ऊपर प्रेशर है बहुत, कमीशन देना है, प्रॉफिट पूरा नहीं मिल पाता उन्हें, दैट वॉज द थिंग। सेकेंड नेम इज नीलाब सान्याल, COO, Chief Operations Officer, former Vice President है Axis Capital के। ठीक है, Vice President के तौर पर सर्व कर चुके हैं। Axis बहुत बड़ा ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, हाउ मनी वर्क्स को समझते हैं, कस्टमर्स के इंटरेस्ट को समझते हैं, सो ही इज ऑल्सो सर्विंग वेल। थर्ड नेम इज मयंक शर्मा, CTO, Chief Technical Officer। 2017 में इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, क्लाउड आर्किटेक्ट रह चुके हैं। ठीक है, इस कंपनी का टेक बैकबोन जो है वो इनके हवाले है। अब आप ध्यान से देखेंगे ना, तीनों लोगों का अलग अलग अनुभव है, अलग अलग डोमेन से आते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन एक सिमिलर सेम पैशन जो है वो शेयर करते हैं। किसी ने बोला कि मैं टेक बना दूंगा, इतना अच्छा बना दूंगा, क्योंकि भाई टेक फिनटेक की हम लोग बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो ऐसे में टेक का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो काम मयंक ने किया, हाउ मनी वर्क्स वो काम नीलाब ने किया, पोर्टफोलियो को समझना, इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम को समझना, वो काम किया गौरव रस्तोगी ने। तब जाकर के इन तीनों ने मिल करके ये कंपनी जो है बनाई। सो इट्स नॉट अ कॉलेज ड्रॉप आउट स्टार्टअप स्टोरी, इसलिए ग्लोरीफाई नहीं करना चाहेंगे हम उस चीज को कि कॉलेज ड्रॉप आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर लिटरली एक्सपीरियंस पीपल जिन्हें वो चीज समझ में आई सिस्टम में रह करके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन लोगों के पास इनसाइडर नॉलेज थी फाइनेंशियल सिस्टम की, ग्लोबल मार्केट्स का एक्सपोजर था इनके पास, रिटेल इन्वेस्टर्स के पेन को समझते थे अच्छे से, दैट्स हाउ दे बिल्ड दिस होल प्लेटफॉर्म। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितना आपको समझाया कि स्टडी आपको समझ आई है और आपको अच्छा लग रहा है। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आके बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मेरा नाम सागर, शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। हम लोग यहां पर जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम है कुवेरा। चलिए बात करते हैं इसकी यूएसपीज की। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कुवेरा का सबसे बड़ा वेपन है 100% फ्री इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। कोई कमीशन नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं। एंड दिस इज इनसेन इन फाइनेंस, क्योंकि अगर मान के चलिए ना, 1% भी अगर वहां पर कोई इंसान कमीशन रख देता है, 0.5% भी अगर कोई कमीशन वहां पर प्लेटफॉर्म रख देता है, वो भाई बड़े अमाउंट पे बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर सेम चीज आपके प्रॉफिट के तौर पे आपके पास रहे तो इट्स अ ग्रेट थिंग ना। तो ये है इस कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी। एडिशनल यूएसपीज क्या है? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आपको मिलते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बीच में मिडिलमैन बैठा हुआ है, डायरेक्ट आप खरीदते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग टूल्स आपको मिलते हैं, फैमिली अकाउंट ट्रैकिंग आपको मिलती है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आपको मिलती है, यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग इंटीग्रेशन यहां पर मिलता है, विच इज अ बिग थिंग। तो ये उस कंपनी की यूएसपीज हैं जो उसको आगे लेकर के जा रही हैं। बात करेंगे यहाँ के की ड्राइवर्स की। फर्स्ट इज जीरो कमीशन मॉडल। अगेन, पीपल हेट हिडन चार्जेस, ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए। तो कुवेरा जो हमारी आज की कंपनी है, उन्होंने एग्जैक्टली यही किया कि उनको हटा दो भाई, ठीक है। टेक प्लस रोबो एडवाइजरी, ठीक है, बिगिनर्स के लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दिया भाई, बहुत सिंप्लीफाई कि आप डिसीजन लीजिए, उनको गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसी हटा दी, ह्यूमन एडवाइजर जो हुआ करते थे, क्योंकि वो अपने हिसाब से पुश करते थे जहां पर उनका फायदा होगा। अमूमन ऐसा देखा गया, जहां पर उनको कमीशन ज्यादा मिलेगा, उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसको वो लोग आगे पुश किया करते थे, उसको हटा दिया गया, मिडिलमैन हट गया, कमीशन हट गया, व्हाट एल्स वी नीड। तो कितना सिंप्लीफाई कर दिया एक प्लेटफॉर्म से। फाइनेंशियल अवेयरनेस बूम लाई इंडिया में 2018 के बाद, ज्यादा SIP इन्वेस्टर्स हमने देखे, डिजिटल अडॉप्शन हमने ज्यादा देखा, डिस्ट्रस्ट देखा गया ट्रेडिशनल एडवाइजर्स में, जिसकी वजह से लोगों ने टेक प्लेटफॉर्म्स को जो है ऑप्ट करना शुरू किया। और वहां पर क्योंकि कंपनी पहले से ही तैयार थी, इन्होंने पहले से ही सिस्टम ऐसा बना के रखा हुआ था कि जब लोग आएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो सिंप्लीफाई करते टाइम सही टाइम पर सही चीज कर दी गई और लोगों को भी समझ में आया कि भाई हमें जो है अपने पैसे को अपने पास रखना है, दैट्स हाउ दे आर ग्रोइंग। तो ये वो कोर रीजंस हैं जिसकी वजह से ये कंपनी जो है ग्रो कर रही है, जो इसके की ड्राइवर्स हैं। हालांकि 2024 में क्रेड ने जो है फैसला लिया कि हम वेल्थ मैनेजमेंट में एंटर करेंगे, तो उन्होंने जो है इसको एक्वायर कर लिया। अब यहाँ पर प्रीमियम यूजर्स भी आ गए क्योंकि क्रेड आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, प्लस इन्वेस्टमेंट का इंजन ऑलरेडी कुवेरा ने एक्सेल किया हुआ था। दैट्स हाउ ये कंपनी इतनी बड़ी बन पाई। आई होप इट हेल्प्स। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मेरा नाम सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज हमने जिस कंपनी की बात करी है उस कंपनी का नाम है कोवेरा। अब यहाँ पर हम कुछ कुछ चीजें आपको बताएंगे, उसके बाद इसको हम यहाँ पर कंक्लूड करना चाहेंगे आज के शो को। फर्स्ट थिंग, कोवेरा इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ स्टेटमेंट। ये कमीशन बेस्ड एडवाइजर्स को भाई सब चैलेंज करता है, मिस सेलिंग कल्चर को चैलेंज करता है। सेकेंड, फ्री इज नॉट चैरिटी, इट्स स्ट्रेटजी। कोवेरा अर्न करता है थ्रू इकोसिस्टम पार्टनरशिप्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंटीग्रेशंस, लॉन्ग टर्म यूजर वैल्यू। तो फ्री मीन्स का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। दे आर स्मार्ट इनफ टू फिगर इट आउट कि कैसे और हम पैसे यहां से कमा सकते हैं। थर्ड, टारगेट ऑडियंस इज नॉट मासेस। तो यहां पर बहुत सिंपल है, जो फाइनेंशियली अवेयर लोग हैं डेफिनेटली यार वही लोग आएंगे। आ सकता है कोई भी इंसान डेफिनेटली आपको, बट वो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मासेस तक, इसलिए शायद बहुत कम लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट इज द रियल करेंसी, ये बात इस कंपनी को समझ में आई। फाइनेंस कंप्लीटली ऑल अबाउट ट्रस्ट गेम। कोवेरा ने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया थ्रू ट्रांसपेरेंसी, नो कमीशन, क्लीन यूजर इंटरफेस। दैट्स हाउ कंपनी जो है लोगों के बीच पहुंच पाई, जुबान पर चढ़ पाई। दैट्स हाउ इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो जगा इस कंपनी में। एंड एक्विजिशन टेल्स अ स्टोरी, क्योंकि भैया क्रेड ने एक्वायर किया है। क्रेड अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो फुल फाइनेंशियल इकोसिस्टम हो गया कंपनी का। तो ये है जी ये कंपनी हमारी आज की कोवेरा। डिस्पाइट हैविंग सो मैनी प्लेयर्स इन फिनटेक मार्केट, स्टिल हमारी आज की ये कंपनी जो है आई मार्केट में ग्रो कर पाई, लोगों के बीच में ट्रस्ट गेन कर पाई, इन्वेस्टर्स का ध्यान ले पाई, एंड बूम एवरीथिंग इज स्मूथ। अब इसी नोट पर चलते हैं। आशा करता हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इजाजत दीजिए। आपको आज की केस स्टडी कैसी लगी मुझे बताइए 8010781078 पर। अब फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन अब जो मुलाकात होगी वो होगी हमारी अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: फील गुड फील लाइव, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूँ दीक्षा आपके साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को एक अलग पहचान दिलाई है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने न केवल 1, 2 या 10 मेडल जीते होंगे, वो भी गोल्ड या सिल्वर, बल्कि अनगिनत मेडल्स उनके घर की एक वॉल पर लगे हुए हैं जो कि आर्चरी के फील्ड में उन्होंने अर्जित किए हैं। जी हाँ, हम आज के कार्यक्रम बियॉन्ड द गेम में बात करने वाले हैं देश के जाने माने आर्चर अर्जुन अवॉर्डी, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियनशिप के मेडलिस्ट अभिषेक वर्मा जी से, जो कि फिलहाल इंडियन आर्चर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स भी हैं। तो आज इनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। प्रोग्राम का नाम है बियॉन्ड द गेम, मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।
2: अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
3: थैंक यू सो मच।
2: तो अभिषेक जी, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जिन्होंने आर्चरी के क्षेत्र में देश को एक अलग पहचान दिलाई है। और जब मैं आपके मेडल्स के बारे में देख रही थी इंटरनेट पर, जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो मुझे टिपिकली फिंगर से काउंट करने पड़े, इतने सारे मेडल्स थे आपके। तो कैसे ये आर्चरी की दुनिया में आपने कदम रखा, किस तरीके से शुरुआत हुई, ये हमारे लिसनर्स को आप बताएं।
3: ये एट दी एंड अगर आपने मुझे भी मेडल याद दिलाए हैं कि इतने इतने इतने, मैं भी कैलकुलेट कर रहा था कि हाँ इतनी वर्ल्ड चैंपियनशिप, इतने एशियन गेम्स और ऐसे खेला है, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चला कि कब कैसे, देखते देखते 20 साल बीत गए और 20 इयर्स के सर्कल में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। मैं बात करूँ 2006 में मैंने फर्स्ट अपना डेब्यू किया था एज अ सीनियर इंटरनेशनल टीम में मैं एंटर करके
2: जी।
3: और फर्स्ट मेडल मेरा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में आया था। तो आई सपोज वो स्टार्टिंग जर्नी थी, टिल अभी तक लास्ट मंथ ही हम फ्लोरिडा वर्ल्ड कप खेल करके आए हैं, उसमें मेरा मेडल रहा है। तो बैक टू बैक टूर्नामेंट आते गए, खेलते गए, तो मेरा बस यही है कि एक टूर्नामेंट बीत गया, नेक्स्ट टूर्नामेंट की सोचो और आगे बढ़ो। अगर आने वालों की खुशी या गम अगर हम करते रहेंगे तो आने वाले टूर्नामेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं ज्यादा सोचूं, चाहे वो इंटरनेशनल में एशियन गेम्स हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या वर्ल्ड कप्स हो या कोई नॉर्मल नेशनल हो, मैं हर एक को इक्वल ही सोचता आया हूँ। टूर्नामेंट को टूर्नामेंट की तरह सोचा है और आगे बढ़ता चला हूँ। एक टूर्नामेंट खत्म तो मेरे को दूसरे की प्रिपरेशन करनी है, दूसरा खत्म तो मुझे आगे एक और की प्रिपरेशन करनी है। तो बैक टू बैक मेरा ये रहा और फॉर श्योर मतलब कोशिश करी कि अच्छा कर पाऊँ, मेडल ले पाऊँ, और बैक टू बैक में मेडल दिए भी हैं। और ये भी है कि इतने सारे मेडल लिए हैं पर इससे कहीं ज्यादा मैंने हार भी फेस करी है। ऐसा नहीं कि मैं जाता हूँ और मेडल लेकर के आ जाना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड वाइड प्लेयर आते हैं, परफॉर्म करते हैं, मेडल सिर्फ 3 ही होते हैं। तो अगर आपने 2 जीत देखी है तो उसके पीछे 3 हार भी हैं, जो हार्ड वर्क होता है, जो चीजें होती हैं, तो वो भी एक प्लेयर की लाइफ में इम्पोर्टेंट लेसन है। अगर उस हार को अगर वो बना ले कि अपना फियर बना ले कि नहीं मैं तो हार गया, मैं कोशिश ही ना करूं, तो आने वाली जीत का वो मजा नहीं ले पाएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी लंबी आपकी मेडल्स की लिस्ट है, ये आपने आर्चरी में जीते हैं, लेकिन शुरुआत आपने शायद आर्चरी से नहीं, लॉन टेनिस से की थी। आप लॉन टेनिस खेलते थे और उसके बाद आर्चरी में आए, क्या ये सच है?
3: नहीं, बिल्कुल सच है। ये लॉन टेनिस मेरा फर्स्ट गेम था। ऑल्दो मैं काफी सारे गेम्स मैंने खेले हैं अपने चाइल्डहुड में, मैं क्रिकेट खेलता था, हॉकी खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, स्केटिंग करता था, सारे काफी करे हैं, पर प्रोफेशनली मैंने एक बार एंटर, फर्स्ट जब मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जाना है, तो मैंने लॉन टेनिस लिया। 2 महीने करा, 2 महीने में 2-3 रैकेट तोड़े और 2 पेयर मैंने खराब करे। फिर पेरेंट्स ने बोला नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, कोई अपने स्कूल में जाना और अपने पीटी टीचर से जाकर के बोलना कोई ऐसा गेम बताए जिसमें
2: तोड़ फोड़ थोड़ी कम हो,
3: तोड़ फोड़ नहीं, उसमें फाइनेंशियल भी कम लगे, उनका कोई अमाउंट ना लगे, उनका कोई पैसे ना लगे। और बाई चांस ही मेरे बस जो सीनियर, क्योंकि हमारा स्कूल हब होता था आर्चरी गेम का, तो उन्होंने भी बोल दिया, मेरे जो टीचर थे राम कुमार सरावस, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप आर्चरी ज्वाइन कर दो। कहने के लिए तो चलो बहुत अच्छा किया, मुझे आर्चरी में डाल दिया, पर ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी ना कि बहुत ये सबसे मतलब इसमें अमाउंट नहीं लगता वो है, पर एक्सपेंसिव गेम के मुझे लग रहा है कि टॉप एक्सपेंसिव गेम्स में आर्चरी शूटिंग ये सब आते हैं
2: जी।
3: वो रहा इसमें, पर ठीक रहा, अच्छा रहा, उनका अच्छा डिसीजन था, उन्होंने प्लेयर को बखूबी नापा कि कैसा प्लेयर है, क्योंकि आर्चरी या शूटिंग ऐसे गेम है जो वो होते हैं ना, कई तरह के बच्चे होते हैं हमारे, एक होता है चंचल वाला होता है, एक होता है शांत होता है, तो एक प्लेयर को देख करके जज करना कि कौन सी गेम के लिए सुटेबल है, जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ का, वो शायद पीटी टीचर ध्यान से देखते हैं कि कोई एक्टिव है कोई नॉन एक्टिव है, कौन चेस के लिए बढ़िया है, कौन क्रिकेट के लिए बढ़िया है, कौन रनिंग में बढ़िया है, कौन शॉर्ट पुट में बढ़िया है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: फर्स्ट डिसीजन लाइफ का उन्होंने दिया था।
2: जी जी,
1: सो बहुत सारी बातें हम अभिषेक जी से कर रहे हैं, देश के जाने माने आर्चर जिन्होंने तीरंदाजी को एक नया मकाम दिया है, और किस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी इससे लेकर, और किस तरीके से वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं आज भी, ये हम जान रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है बियॉन्ड द गेम। वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM. नाम है मेरे दीक्षा और आपके लिए कार्यक्रम लेकर आई हूँ बियॉन्ड द गेम, एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ पर हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो खेल जगत की जानी मानी हस्ती हैं, देश का नाम विश्व पटल पर रोशन कर चुके हैं और आज भी उनकी कोशिशें जारी हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज अभिषेक वर्मा जी से, जो कि वैसे तो असिस्टेंट कमिश्नर हैं इनकम टैक्स विभाग में, लेकिन इसके साथ साथ जिस लेवल पर ये पहुंचे हैं वो अपने खेल के कारण पहुंचे हैं। और खेल इनका है आर्चरी यानी तीरंदाजी, एक ऐसा खेल जिसमें इन्होंने शुरुआत करी यूं ही मजे मजे में, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहां तक पहुंच जाएंगे और मेहनत मशक्कत और अपनी सोच के साथ इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। दिन रात की कोशिशें, दिन रात की मेहनतें, पूरे परिवार का सपोर्ट लगता है तब जाकर एक खिलाड़ी तैयार होकर गोल्ड मेडल लेकर आता है। तो अभिषेक वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोग्राम का नाम है बियॉन्ड द गेम।
1: तो ये स्कूल से शुरुआत करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी स्कूल के दिनों के बारे में, हमें कुछ बताइए कि आप गेम्स तो बहुत सारे खेलते थे, आपने अलग अलग स्पोर्ट खेले हैं और अच्छे खेले हैं, जब कोई रैकेट तोड़ने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो गेम भी बहुत सॉलिड तरीके से खेल रहा है ताकि रैकेट टूट चुके हैं, लेकिन फिर उसके बाद आर्चरी में आए, तो स्कूल के दिनों की कुछ यादें, फिर आर्चरी की शुरुआत आपने करी, उसमें क्या स्ट्रगल फेस करी या किस तरीके से कितना फोकस्ड रहना पड़ता है इस खेल के लिए, ये हमें थोड़ा सा बताएं।
2: देखिए ये ना गेम लेना ना एक पैशन का काम होता है। वो फॉर एग्जांपल जब कोई जीत करके आता है प्लेयर और उसको सबके सब सम्मानित करते हैं, प्रिंसिपल ड्यूरिंग द प्रेयर सेरेमनी उसको अवार्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको सबके सब जानने लग जाते हैं। तो मेरे जब सीनियर स्कूल नेशनल खेल करके आए तो उनको इमीडिएट माला पहनाई, कैश अवार्ड दिए, चीजें करी, तो बहुत एक तरह से वो प्रेरित, वो करने वाला इमोशन वो मेरे आज भी मेरे पे है। मैंने जब देखा फिर हुआ कि नहीं ये तो हमें भी करना चाहिए, मुझे भी लाना है, मुझे भी करना है, तो एक वो जोश लाना कि स्पोर्ट्स के प्रति कि नहीं ये स्पोर्ट्स करना है, तो अपने घर में जाके बात करना, फिर पीटी टीचर, तो एक सबसे अहम भूमिका वो टीचर की रही है, स्पोर्ट्स टीचर की, क्योंकि जो और टीचर होते हैं तो फॉर श्योर एक बच्चे के भविष्य के लिए ही काम करते हैं, पर जो स्पोर्ट्स टीचर है एक ही स्पोर्ट्स टीचर होता है पूरे स्कूल में,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: एफर्ट करता है वो कि वो होना हो। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने 100%, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स इनिशियली जब करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग रहता है, एकदम रिजल्ट आपका नहीं आता इनिशियली, उसको भी नहीं जाता। मेरी अगर बात करें तो मैंने क्लास 8 क्लास में मैंने आर्चरी स्टार्ट करी थी, यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मैं जाता था ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि कोच वहीं पे थे लोकेश सर मेरे, तो वहां पे वो सिखाते थे। इनिशियली मुझे 2 साल 1 साल मतलब अप्रोक्सीमेट 18 महीने से 2 साल मेरे को लग गए एक नेशनल में परफॉर्म करने लायक बनने के लिए। तो उस ड्यूरिंग पीरियड क्लास 8 to 9 मुझे सपोर्ट चाहिए था मुझे, क्योंकि क्लासेस मिस भी होती थी, मिस होते थे
1: बिल्कुल,
2: तो उसमें हेल्प करने के लिए मेरे पे बस एक ही शक्ल होती थी मेरे पीटी टीचर की, सर प्लीज हेल्प मी, तो वो जाते थे टीचर से बात करते थे। मेरे एग्जाम में भी उस टाइम पे रिजल्ट पे इम्पैक्ट आया, पहले मैं कह सकते हैं 60-70% वाला एवरेज स्टूडेंट था, फिर गेम और उसको अगर एक गेम को आप 6 घंटे दे रहे हैं लाइफ के, उसके बाद थकार के सो रहे हैं, तो उसके बाद इम्पैक्ट आएगा, तो वो एवरेज घट करके 40-50% पे आ गई, पर वो रही, रेगुलर रही।
1: दो साल
2: के बाद ही ड्यूरिंग द स्कूल टाइम ही एट द क्लास ऑफ 10th में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने नेशनल चैंपियनशिप में, नेशनल था वो, तो इमीडिएट ऐसा एफर्ट हुआ कि मतलब आफ्टर द नेशनल चैंपियनशिप नेशनल चैंपियन बनते के साथ ही मैंने न्यू मॉडर्न बोज में स्विच करते के साथ इंडिया टीम में नेक्स्ट ईयर मैंने सीनियर इंडियन टीम में मैंने अपना डेब्यू किया, तो वहाँ पे स्कूल में एकदम कैसे मतलब नाम फैल गया अभिषेक अभिषेक, तो
1: स्कूल में और आसपास के जो लोग होते हैं पड़ोस में अब एकदम हीरो बन जाते हैं, वो वाली सिचुएशन हो गई आपके साथ
2: फॉर श्योर। एक आप एक स्कूल में एक नॉर्मल स्कूल में एक अच्छी एक अचीव करना और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में एक चैलेंजिंग काम था कि
1: वहाँ पे क्योंकि बच्चे भी बहुत सारे होते हैं वहाँ पर,
2: कह सकते हैं हमारी 60 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी, फिर एटमोसफेयर

0: भी वैसा ही होता है, बट ठीक है। मैं खुश हूँ अपने एकेडमिक, जो मेरा हिस्ट्री रही है, मेरी क्लासेस रही है, मेरे टीचर्स रहे हैं, मेरे को सपोर्ट रहा है, शायद उसी के बदौलत मैं आज अच्छा कर पा रहा हूँ। तो
1: जी
0: स्कूल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में, क्योंकि वो वही गाइडेंस देता है। वो कहते हैं ना कि एक बिफोर बिलो 18 तो मतलब एडल्ट भी नहीं, मतलब उनका माइंड काम ही नहीं करता, इसलिए गवर्नमेंट भी वही मानती है। और मतलब सारा स्कूल एक तरह से फ्रेशर का स्कूल होता है, जैसा ढाल दो वो वैसा ढलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक बात कही आपने।
0: तो हमें भी नहीं मालूम होता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इसमें अहम भूमिका जो लाइफ की जो चेंज करने वाले होते हैं, शायद पेरेंट्स के बाद वो स्कूल के टीचर्स ही होते हैं जो गाइडेंस करते हैं, और उन्हीं की गाइडेंस पे हमारा पूरा थ्रू आउट द करियर डिपेंड होता है। कई लोग साइंस लेते हैं, कई लोग आर्ट्स लेते हैं, कई लोग गेम में जाते हैं, कई लोग कॉमर्स में जाते हैं, तो वो डिसीजन शायद स्कूल के टीचर देख करके करते हैं, और वो वही एक लाइफ लॉन्ग बन जाता है।
1: जी।
2: तो बहुत सारी बातें और भी जारी रहेंगी अभिषेक वर्मा जी के साथ, लेकिन अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और इस बातचीत को आप बार बार सुनना चाहते हैं, किसी खेल प्रेमी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो दिल में मत रखिए, शेयर कीजिए। हमारी ऐप यानी हमारा इंटरनेट रेडियो ऐप डाउनलोड कीजिए, रेडियो मानव रचना, जो कि प्ले स्टोर और iOS पर उपलब्ध है। आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद पॉडकास्ट सेक्शन में जाइए, आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सुन सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम बियॉन्ड द गेम, और बियॉन्ड द गेम में हर हफ्ते एक खास खिलाड़ी के साथ होती है मुलाकात जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर बनाई है अपनी एक अलग पहचान। और आज इसी कड़ी में हम बात करें हैं अर्जुन अवार्डी अभिषेक वर्मा जी से, जो कि देश के जाने माने आर्चर हैं। जी हाँ, आर्चरी को इन्होंने अपने खेल की श्रेणी में रखा। शुरुआत में कुछ और गेम्स खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आर्चरी की तरफ बढ़े तो दुनिया ने इनका लोहा माना। और आज की तारीख में ये असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स विभाग हैं, और साथ ही एक बहुत ही जाने माने आर्चर भी हैं, जो कि दुनिया भर में अभी भी भारत का परचम लहरा रहे हैं।
1: तो अभिषेक जी, ये तो स्कूल की बात हुई, स्कूल के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, तो उसमें भी आपके इस गेम का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेना होता है तो स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है और उनको आगे अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती है।
2: देखिए, ये बहुत हमारे पे एडवांटेज बोलते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन, अब अगर आप कंपेयर करोगे नॉन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स वाला जो मेडलिस्ट होगा उसके पास चॉइस होती है कि कौन से कॉलेज में जाए।
1: बिल्कुल।
2: पर जो नॉर्मल वाले जो होते हैं वो स्कोर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं मुझे ये कॉलेज मिलेगा।
1: बिल्कुल।
2: तो शायद मेरे लिए लाइफ में भी यही था कि मैं 2007 में मैंने स्टार्ट किया था हंसराज कॉलेज, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है हंसराज से 2007-10 में। तो मेरे पास एट द टाइम ऑफ 2007 मेरे पे ऑप्शन था दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है।
1: Okay.
2: क्योंकि मैं एशियन चैंपियन बन चुका था, इंडिया टीम के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेडल ला चुका था, सीनियर नेशनल चैंपियन बन चुका था, मेडल ऑफ वो थे, और कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी गेम्स जो होते हैं वो मेन माने जाते हैं, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप लाना मायने रखता है, इंटर कॉलेज मायने रखता है, तो हर कॉलेज भी चाहता है कि हमारे कॉलेज में अच्छे प्लेयर्स आए जिससे कि हम चैंपियनशिप और आगे बढ़ पाए।
1: बिल्कुल।
2: तो मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन था, और थैंक यू हंसराज कॉलेज एक आउटस्टैंडिंग मेरे को सपोर्ट करने के लिए, आउट ऑफ द वे जाकर के सपोर्ट करने के लिए। उसमें सविता कोचर मैम हुआ करती थी मेरे टाइम पे, एमपी शर्मा सर आज तक मेरे हंसराज कॉलेज में आज भी हैं और सपोर्टिव रहे हैं हमेशा। तो बियॉन्ड दैट वो कह सकते हैं ना कि वो एकेडमिक भी आपकी चल रही है साइड बाई साइड, आपकी आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा ग्राउंड था वो जो कि खोल रखा था उन्होंने कि आप कभी भी ट्रेनिंग करो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: जी, यानी फैसिलिटीज बहुत होती हैं, और कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में तो बहुत सारी स्पोर्ट्स की सुविधाएं होती हैं, ड्रामेटिक्स का, म्यूजिक का, हर तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं।
2: बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक है। एक अच्छा कॉलेज वही है ना कि आपको टाइम देता है, ऑप्शन देता है, आपको सपोर्ट करता है, स्कॉलरशिप देता है, स्कॉलरशिप में आपकी फीस रिफंड कराता है, आपको सपोर्ट करता है कि एक बच्चा का फ्यूचर अच्छे से बन पाए। इसमें अहम भूमिका अदर टीचर्स की भी रहती है, फिर अगेन वही कि इसमें हमारे स्पोर्ट्स टीचर का बड़ा रोल रहता है कि वो जाकर समझाता है, क्योंकि हर कोई टीचर अपने उसमें रहता है कि वो अच्छा करे, पर उसके लिए टाइम चाहिए होता है, टाइम स्पोर्ट्स काफी सारा टाइम ले लेता है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन दे नहीं पाता, पर फिर भी इतना निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल ही पीछे हो जाओ। एटलीस्ट मैं 12th में 68% वाला स्टूडेंट रहा।
1: 68 तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अगर मैं कहूँ जिस तरीके से आपने अपना शेड्यूल बताया है उस दौरान रहा करता था।
2: नहीं, अगर आप कंपेयर करेंगे 80 वाले से तो शायद नीचे में आ जाते हैं,
1: पर 80 वाला सिर्फ ट्यूशन जाता है और पढ़ के एग्जाम देता है।
2: हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में 8 घंटे जुड़ गए थे स्पोर्ट्स के नाम के, और उसके बाद 8 घंटे रनिंग भी, एफर्ट भी, धूप में, क्योंकि आर्चरी आउटडोर गेम है।
1: बिल्कुल।
2: करने के बाद थक हार के जो बच्चे जो हालत होती थी कि रात में तो कुछ समझ में नहीं आया, 9 बजे तो बस लेटे, मतलब बैठे बैठे सो गए, ऐसा हालत था।
1: तो पेरेंट्स खुश हो गए थे इसके बाद आपके बहुत ज्यादा?
2: मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, पेरेंट्स फॉर श्योर बहुत खुश थे नेशनल चैंपियन बनने के बाद, एक अवार्ड मिलने के बाद एक रिवॉर्ड उनको मिला कि इतना बड़ा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ली, पर उनके लिए एक चैलेंजिंग था कि गेम स्विच करना। आर्चरी में ना 2-3 तरीके के गेम्स होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल में जो परफॉर्म करते हैं रिकर्व और कंपाउंड, और एक होता है जो सिर्फ नेशनल लेवल पे किया जाता है और यूनिवर्सिटी लेवल पे किया जाता है, उसको बोलते हैं इंडियन राउंड बोल, दैट इज कॉल्ड, मतलब वुड का बना होता है पर वो इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर सकते, वो बेसिक बो होता है। तो जब आपको स्विच करना होता है, एक बेसिक बो की कॉस्ट अराउंड उस टाइम पे 2000 थी,
1: पर एक उस समय आज से 20 साल पहले की बात आप बता रहे
2: हैं। हाँ जी, पर एक प्रोफेशनल बो की कीमत 1,00,000 रुपए थी।
1: ओ, जो कि काफी महंगा रहा है। जैसे हम शूटिंग में अक्सर देखते हैं कि बहुत महंगा गेम है, बहुत महंगा स्पोर्ट है, वैसे ये भी महंगा ही है।
2: बिल्कुल महंगा स्पोर्ट है, और कह सकते हैं 1,00,000 रुपए उस टाइम पे, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के, और जिसका जिसको हमें मालूम ही नहीं फ्यूचर हमें कैसा होगा या स्पोर्ट्स टाइम पे क्या होता था। आज के टाइम में तो गवर्नमेंट, स्टेट, यूनिवर्सिटी, मानव रचना जैसे इंस्टीट्यूट इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा हेल्प मिल पा रही है, पर उस टाइम पे कुछ भी नहीं था ऐसा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही है कि फैसिलिटीज उस दौरान थी नहीं, और अब तो जिस तरीके से मेडल्स धीरे धीरे आ रहे हैं तो गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है, तो ये काफी बदलाव है आजकल के खिलाड़ियों के लिए।
2: बिल्कुल ठीक है, तो वही टाइम अगर याद करूं तो मैंने, मुझे भी नहीं मालूम कि पेरेंट्स ने कैसे उन्होंने कहा, मैंने बस मजाक में कहा था कि मॉडर्न बोज में आना है और करना है, और उन्होंने पता नहीं कहां से लेके आए, मुझे नहीं मालूम, उस टाइम पे नहीं थे हम, पर लेकर के आया और स्विच करवाया, और विद इन अ ईयर मैंने उनको रिजल्ट दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी सेटिस्फाई हुए हैं चीज से कि कहां से कैसे हुआ, पर अच्छा हुआ जो भी हुआ
1: जी
2: हुआ उस टाइम को,
1: और बहुत अच्छा हुआ तभी भारत को इतने मेडल्स मिल पाए और आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
0: तो अभिषेक वर्मा जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, दोस्तों कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। बहुत ही कमाल की और बहुत ही रोचक बातें चल रही हैं। अभिषेक वर्मा जो कि जाने माने आर्चर हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं आर्चरी के क्षेत्र में, उनसे हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, प्रोग्राम का नाम बियॉन्ड गेम।

0: फील गुड फील लाइव, मैं हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम बियॉन्ड द गेम, जहां पर खिलाड़ी और खिलाड़ियों की जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें, उनके करियर से जुड़ी बातें, उनके खेल में आई हुई स्ट्रगल्स और अचीवमेंट से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। और आज इसी कड़ी में इस प्रोग्राम में मैं दीक्षा लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खास मेहमान, अभिषेक वर्मा, जो कि अर्जुन अवार्डी हैं, वर्ल्ड चैंपियन है और देश के जाने माने आर्चर हैं, जो फिलहाल बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल्स पर भारत को मेडल्स दिलवा चुके हैं। और मेडल्स की जो तालिका है वो तो मैं आपको शुरुआत में बता ही चुकी हूँ, लेकिन इनके करियर से जुड़ी हुई कुछ और बातें भी अभी जाननी बाकी हैं। तो करते हैं और भी बातचीत,
1: बात करते हैं थोड़ी सी आर्चरी की फील्ड के बारे में। जब आप आर्चरी में कदम रखते हैं तो आपने जैसे कहा कि आपको तो लगा कि शायद सस्ता गेम है, लेकिन सस्ता स्पोर्ट है नहीं, ये काफी कॉस्टली है। आपको भी बहुत सारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं, बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट सुन रहे होंगे, उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो कैसे आर्चरी की फील्ड में एक स्टूडेंट को शुरुआत करनी चाहिए, पेरेंट्स क्या सोचे, क्योंकि हमारा देश वो देश है जहां पर क्रिकेट को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस बात के लिए मैं नेगेटिव भी नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन हाँ, एक जो प्यार होता है लोगों को, एक जुड़ाव होता है, वो क्रिकेट से बहुत ज्यादा है। तो हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा क्रिकेटर बन जाए, बच्चे को सबसे पहले खिलौने में बैट दिला दिया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद बाकी चीजों की बारी धीरे धीरे आती है, और आर्चरी के बारे में नॉर्मली लोग नहीं सोचते हैं।
2: देखिए, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है, हर कोई चाहता है क्रिकेटर बन जाए, ये एक चाहना एक अलग हो गया, पर एक मेरा इंडिया टीम में खेले, क्रिकेटर बन जाए, फेम आ जाए, पैसा आ जाए, वो एक चाहने वालों की मतलब वो ज्यादा हो गए परसेंटेज, 90% लोग ऐसे सोचते हैं। पर अगर आप देखें पूरे देश में क्रिकेट खेलने वालों की जनसंख्या कितनी है, और उसमें से सिर्फ 11 खिलाड़ी खेल पा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो अपॉर्चुनिटी अब आपके लिए, देखिए स्पोर्ट्स करना, एक मेरे मायने में स्पोर्ट्स करने के दो रीजन होते हैं। हर कोई प्लेयर नहीं बन पाता, हर कोई मेडल नहीं ले पाता, पर
1: बिल्कुल
2: हर कोई अपनी सेहत को अच्छा कर सकता है स्पोर्ट्स करके। स्पोर्ट्स कराया इसलिए जाता था कि पीसफुल माइंड के लिए, बॉडी रिलैक्स के लिए, एक कसरत के लिए, यही तो था मेन फंडा हमारा स्पोर्ट्स करने का।
1: फोकस बहुत अच्छा होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी
2: होती है। ये गेम टू गेम डिफर करता है। अगर आपको रनिंग कराई जाती थी तो आपको स्टेबिलिटी, आपको मतलब मींस आपको बॉडी में स्ट्रेच और सब चीजें कराने के लिए और फोकस करने के लिए, फोकस वाले गेम करवाए, तो माइंड कंसंट्रेशन करने के लिए आपको चेस, आर्चरी, शूटिंग, ऐसे ऐसे गेम करवाए जाते हैं। तो उस टाइम पे, अब तो कॉम्पिटेटिव आ गए कि हमें मेडल लाना है, हमें ये लाना है, पर गेम एक्चुअली गेम करने का रीजन यही होता था कि बच्चा एक्टिव रहे,
1: बिल्कुल
2: सेहत एक्टिव रहे। और अब आज की जनरेशन में दूसरे पॉइंट से स्पोर्ट्स हो गया है कि भैया बच्चा मीडिया में ना घुस जाए, वो बाहर निकले, आउटडोर एक्टिविटी करे, वो रनिंग करे, वो स्विमिंग करे, वो आर्चरी करे, वो फोकस करे, वो इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से बाहर निकले। वो आज की डेट में क्या हो रहा है, बच्चा फोन लेकर के चिपक गए या टैब में चले गए। आप कहीं पे भी चले जाइए, कोई से भी पेरेंट्स को देख लीजिए, रेस्टोरेंट हो तो बच्चे के हाथ में फोन होगा, या फ्लाइट हो तो भी बच्चे के हाथ में फोन होगा।
1: बिल्कुल,
2: फॉर श्योर अट्रैक्ट करता है, फॉर श्योर ये शायद टाइम कंज्यूम, पेरेंट्स को अपना टाइम मिल जाता है, ठीक है, तो एट द टाइम वो गलत। क्यों ना इसको हम दूसरे वे में देखा जाए कि एक बच्चा स्कूल के बाद आने के बाद, अपनी ट्यूशन करने के बाद, अपना एक दो घंटे के लिए कोई भी गेम पकड़ करके उसमें चला जाए, उसमें थक हार के दो तीन घंटे बाद थक हार के आए, उसको खाना खाते के साथ वो नींद आ जाएगी, वो सो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: बॉडी की एनर्जी को यूटिलाइज करा जाए उसकी।
1: बिल्कुल,
2: ये भी हमें करनी चाहिए। ये शायद स्पोर्ट्स हमारे लिए एक हो गया जीतना, और एक हो गया बॉडी के लिए, माइंड के लिए, अपने लिए, एक अच्छी फिजिक के लिए स्पोर्ट्स हो गया। तो आप क्या चूज करते हैं, वो आपकी सोच है
1: जी। और अगर आर्चरी की फील्ड में कोई बच्चा जाना चाहता है या उसके पेरेंट्स चाहते हैं वो आर्चरी को एक्सप्लोर करें, तो क्या सही उम्र रहती है और किस चीज का ध्यान बच्चों को और पेरेंट्स को रखना चाहिए, कैसे शुरुआत करें इस फील्ड में?
2: देखिए, एट द एज ऑफ 6-7 आप स्टार्टअप ले सकते हैं कि हाँ आर्चरी में एंटर, 7 ईयर्स में आप कर सकते हैं, क्योंकि आर्चरी में अब अंडर 10, अंडर 14, अंडर 15, अंडर 18, 21 ऐसी कैटेगरीज हैं। और जरूरी नहीं है कि इमीडिएट आते के साथ आप मॉडर्न बोझ लीजिए, आप जो नेशनल लेवल पे किया जाता है, सीनियर नेशनल, यूनिवर्सिटी, स्कूल नेशनल, SGFI, स्टेट, वो वाले सारे के सारा इवेंट का

0: पर होता है इंडियन बोज किट में, उसकी कॉस्ट अराउंड 8 to 10,000 आती है
1: ओके
0: थ्रू आउट द ईयर। आप उसको कर सकते हैं, एक 1 or 2 और मैक्सिमम 3 years के बाद आप देख सकते हो कि आर्चर कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंटरेस्ट कैसा है, वो टाइम दे रहा है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप इसको मॉडर्न बोज में शिफ्ट कर सकते हो, तो आपको भी जजमेंट मिल जाती है कैसा बच्चा परफॉर्म करेगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो यानी शुरुआत 6-7 साल की उम्र से अब की जा सकती है
0: बिल्कुल की जा सकती है।
1: जी, और अपने आसपास की एकेडमीज को एक्सप्लोर करना चाहिए पेरेंट्स को, और स्कूल में अगर ये सुविधा है तो उसका जरूर फायदा उठाना चाहिए।
0: हाँ, स्कूल लेवल एक अच्छा है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, पर साथ साइड बाय साइड आपको एक अच्छी एकेडमी में ज्वाइन करना एक इजी हो जाता है। आपको एक अच्छा कोच मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है कि आप कैसे कर सकते हैं।
1: जी। तो अभिषेक जी, आपने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, आपने एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, ये सारी चीजों में आपने मेडल्स जीते, और उसके बाद आपने जो अर्जुना अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा, वो कुछ पल हमें बताना चाहेंगे आप?
0: 2014 में मुझे अर्जुन अवार्ड मिला था। मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि कंपाउंड इवेंट नॉन ओलंपिक इवेंट था, तो
1: जी
0: मैं मेडल्स तो काफी सारे ले आया था, पर किसी भी नॉन ओलंपिक आज कंपाउंड में किसी को भी आज तक हिस्ट्री में वो नहीं मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला नहीं था। मैं बहुत उम्मीद थी, चीजें थी, रिक्वेस्ट थी या परफॉर्मेंस थी, उस टाइम पे फेम था, सब चीजें हुआ था कि मैं इमीडिएट मतलब एशियन चैंपियन बना था। एशियन चैंपियन के साथ 3 ही गोल्ड होते हैं, तीनों की तीनों गोल्ड क्लिंच करे थे मैंने, फिर नेशनल चैंपियन बना था, वर्ल्ड कप्स मेडल लिए थे कॉन्टिन्यू, और एशियन गेम्स के लिए सेलेक्ट होकर के हमारा प्रिपेयर कर रहे थे। तो वो बड़ा कह सकते हैं कि टाइम बड़ा उम्मीदों भरा था कि फर्स्ट में इंडियन कंपाउंड आर्चर बना जिसको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो कह सकते हैं उसके बाद लाइन लगाने वाला, ओपनिंग बेस्ट मतलब ओपनिंग वाला करने वाला अर्जुन अवार्ड का मैं बना था। उसके बाद कंटिन्यू, क्योंकि हमने एशियन गेम्स में मेडल गोल्ड मेडल लिया, इमीडिएट फिर एक और को दिया गया, फिर हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया, फिर अर्जुन अवार्ड तीसरे को दिया गया तीसरे साल, तो कॉन्टिन्यू कंपाउंड के लिए भी ओपनिंग हो गई थी। फिर ये अपने
1: जी, और ये
0: आप में
1: बहुत
0: सबसे बड़ा अवार्ड आपको मिलना, मतलब
1: जी
0: पूरे एक स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम होता है अर्जुन अवार्ड मिलना, और
1: बिल्कुल
0: आर्चरी में हार्डली अभी तक 7-8 जनों को मिला है, और उसमें अपना नाम बनाना एक अपने आप में सबसे बड़ा मेडल है ये।
1: जी। और मैं हमारे लिसनर्स को ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि जब भारत के टॉप आर्चर्स की बात होती है, टॉप 10 आर्चर्स की बात होती है, तो उसमें अभिषेक जी का नाम उस लिस्ट में जरूर आता है, और ये बहुत गर्व की बात है कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और हम रेडियो मानव रचना के माध्यम से सभी को आपकी ये बातचीत और आपकी जर्नी सुना रहे हैं आज।
0: हाँ जी,
2: बातों का सिलसिला जारी रहेगा अभिषेक जी के साथ। आर्चरी के क्षेत्र में अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं 8010781078। रेडियो मानव रचना की पहल ऐसे ही कुछ जाने माने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से आपकी पहचान कराएं, मुलाकात कराएं, और क्या पता आप या आपके परिवार में कोई और भी कल देश का नाम रोशन करें इनसे इंस्पायर होकर। सो ऐसी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा प्रोग्राम बियॉन्ड द गेम में। वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप रेडियो मानव रचना 107.8 FM। प्रोग्राम चल रहा है बियॉन्ड द गेम और इस खास प्रोग्राम में हर हफ्ते मुलाकात होती है एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जिन्होंने भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है खेलों के क्षेत्र में। और आज इसी कड़ी में हम बातचीत करें हैं अभिषेक वर्मा जी के साथ, जो कि आर्चरी के क्षेत्र में एक बहुत ही जाना माना नाम है। और साथ ही अगर आप देश के 10 आर्चर्स की बात करेंगे तो उस श्रेणी में ये आते हैं काफी ऊपर लिस्ट में। और अर्जुन अवार्डी हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, मेडल्स की लिस्ट तो आप पूछिए ही मत कितनी बड़ी है, जिसको शायद मैं एक प्रोग्राम में पूरा बता भी नहीं सकती हूँ। तो अभिषेक जी से जुड़कर बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारी बातें उनसे हम जाने हैं आर्चरी के क्षेत्र के बारे में।
1: तो अभिषेक जी, अब अर्जुना अवार्डी तो आप बन गए और आपने इतना कुछ अचीव भी कर लिया, लेकिन उसके बाद आप आज असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर कार्यरत हैं इनकम टैक्स विभाग में। ये किस तरीके से जो है अपॉर्चुनिटी आई और किस तरीके से आप उस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोगों को अक्सर लगता है कि खिलाड़ियों का करियर खेल में बन गया तो बन गया, वरना फिर नहीं बन पाएगा।
2: देखिए, पहले तो मैं सबको बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आज का टाइम स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत गोल्डन पीरियड का टाइम कह सकते हैं आप। अगर एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लेवल की आपको जॉब मिलती है। अगर कोई नेशनल लेवल में अचीवर है तो उसको क्लास सी की जॉब मिल सकती है। कोई इंटरनेशनल में एक्सप्लोरर है, मेडलिस्ट है, तो उसको ग्रुप बी की जॉब मिल सकती है। और अगर कोई अच्छे गेम्स मीन्स एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ऐसे इवेंट में मेडल आता है तो उसको उसके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर की जॉब मिल सकती है।
1: जी,
2: तो ये अप टू स्पोर्ट्स पर्सन के हाथ में होता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% सपोर्ट कर रही है स्पोर्ट्स पर्सन को, उनके कोटा दे रही है, सीट दे रही है, सब चीजें दे रही है। अगर मेरी बात मानी जाए, मतलब मेरी बात करी जाए, तो मैं एकेडमिकली, मैंने कहा आपको कि मैं आफ्टर द ग्रेजुएशन मैंने अपनी पोस्ट ग्रेड, मैंने अपनी बीपीएड एमपीएड मैंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से करी थी।
1: जी,
2: मैंने अपनी एकेडमी को कंटिन्यू रखा। साइड बाय साइड मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट टीए ग्रुप सी की जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली थी 2014 में।
1: ओके,
2: मैंने उसको ग्रैब किया क्योंकि मैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में उस टाइम पे जॉब थी ही नहीं, बहुत कम थी। मैंने इमीडिएट मैंने ग्रैब करी, मैंने वेट करा अपना साइड बाय साइड। मैं डिपार्टमेंट का थैंक यू करता हूँ अगेन, वही मेरे स्कूल कॉलेजेस, और अब डिपार्टमेंट की बारी आई कि उन्होंने मुझे 100% सपोर्ट करा, फ्रीडम दी कि आप खेलो, अच्छा परफॉर्म करो। और मैंने रिजल्ट दिए एशियन गेम्स 2014 में, मैंने इमीडिएट डिपार्टमेंट ज्वाइन करते के साथ ही मैं डबल मेडलिस्ट बना, बैक टू बैक। 15 में मैं वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड कप विनर बना, बैक टू बैक एशियन चैंपियनशिप में मैंने फिर अगेन चैंपियन बना, तो मेडल मैंने कंटिन्यू रखे। फिर 2016 में अगेन एक अपॉर्चुनिटी आई जो स्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई ग्रुप बी की।
1: ओके,
2: मैंने इमीडिएट मैंने ज्वाइन करा, उसके एक टेस्ट होते थे,
1: एग्जाम देने पड़ते हैं इसके, जो लोगों को नहीं पता है शायद,
2: मैंने क्लियर करें। उसके बाद एक, जब आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं, इंस्पेक्टर बनने के बाद भी आपको कंफर्मेशन एग्जाम होते हैं।
1: ओके,
2: 4 एग्जाम होते हैं कंफर्मेशन, जो कि आपको विद इन अ 10 ईयर आपको करने हैं।
1: जी जी,
2: मैंने डिपार्टमेंट में रहते हुए उस ट्रेनिंग करी, उन एग्जाम की तैयारी करी, साइड बाय साइड मेरा गेम भी चल रहा था, साइड बाय साइड में इसकी भी, जब भी मेरे को टाइम मिलता था तो मैं इसकी भी तैयारी करता था। अपने चारों एग्जाम क्लियर करे मैंने कंफर्मेशन के, उसके बाद मैं एलिजिबल हुआ आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर के एग्जाम देने के लिए।
1: ओके,
2: मैंने अपने इनकम टैक्स ऑफिसर के मैं एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और मैंने अपने एशियन गेम्स 2018 का आ गया था, मैंने उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करी, दोनों प्रिपरेशन चल रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 5 एग्जाम होते हैं उनमें से 4 क्लियर कर लिए थे।
1: ओके,
2: और एक एग्जाम मेरा रह रहा था क्योंकि मेरा वो टूर्नामेंट से क्लैश कर गया था, मैं दे नहीं पाया था।
1: जी,
2: तो टाइम पीरियड दिया जाता है कि जो क्लियर कर लिया वो नेक्स्ट ईयर आप, आपको जो नहीं क्लियर करा वो नेक्स्ट ईयर आप दे सकते हैं। पर 2018 में मैंने अगेन मैंने मेडल ले लिया एशियन गेम में। तो भारत सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है जो कि DOPT में स्पोर्ट्स पर्सन को प्रेरित करती है, देती है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन।
1: ओके,
2: किसी भी स्पेसिफिक इवेंट्स जैसे कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक, वर्ल्ड कप नहीं,
1: वर्ल्ड चैंपियनशिप,
2: वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इन चार इवेंट में कोई भी अगर आप मेडल अचीव करते हो, क्योंकि बहुत बड़ा मेडल है, तो आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा।
1: ओके जी।
2: मैं स्पेक्टर तो बन ही गया था, मेरे को आउट ऑफ, मैंने एग्जाम भी क्लियर कर लिए थे, ऑल्दो मैं नेक्स्ट ईयर कर भी लिया था, पर मुझे आउट ऑफ टर्न एग्जाम के, मतलब आउट ऑफ टर्न देने के बिहाव से मुझे ITO इनकम टैक्स ऑफिसर मुझे प्रमोट किया गया
1: जी।
2: अब आउट ऑफ टर्न के बाद मैंने, मतलब मैंने ज्वाइन करते के साथ अपना गेम को कंटिन्यू रखा और साइड बाय साइड मैंने अब ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी ACIT ग्रुप के लिए।
1: ओके।
2: क्योंकि मंजिलें आगे बढ़ती जा रही है, मैं कह रहा हूँ कि एक के बाद एक टूर्नामेंट्स आते रहेंगे, एक के बाद आके बाद चैलेंजेस आते रहेंगे, वो कंटिन्यू आपको करनी है। तो मैंने अगेन, मैं 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने मेडल लिया और उसके बिहाफ पे मैंने अपना सेकेंड आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मैंने ग्रैब करा अपने डिपार्टमेंट के थ्रू। अपॉर्चुनिटी मिली कि ड्यू टू दिस मेरे को मिल सकता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में मैक्सिमम 3 ही आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलते हैं
1: जी, जो
2: कि आप अवेल कर सकते हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOPT गाइडलाइंस के थ्रू आपको अवार्ड और प्रमोशन देती है। तो मैं ACIT मैंने 2023 में मैंने एज ACIT मैंने ज्वाइन किया और अपनी ट्रेनिंग हाथ के हाथ कम्प्लीट करी। पर ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ऑल एग्जाम और सब चीजें, इसके साथ साथ मेरा टूर्नामेंट और प्रिपरेशन कंटिन्यू रही।
1: इसके
2: साथ साथ मैंने MA साइकोलॉजी भी कंटिन्यू ओपन से करता रहा, क्योंकि मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाह रहा था कि ठीक है ये अपॉर्चुनिटी आई है अगर करने की, तो मैं कंटिन्यू कर रहा था। 2022 में एशियन गेम्स होने थे जो कि पोस्टपोन होकर के 23 में हुए। अगेन ये मेरा थर्ड 23 में मेरा एशियन गेम्स आया और डबल मेडल मैंने वापस से एशियन गेम्स में क्लिंच करे और मैं एलिजिबल हो गया अपने थर्ड और लास्ट आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए। हर एक के रूल्स रेगुलेशन सब चीजें होती हैं, तो उसमें मुझे अपनी ट्रेनिंग और अपना प्रोविजन पीरियड अपना कंप्लीट करना होता है, बीच में एग्जाम्स भी सब चीजें होती हैं, वो सब कंप्लीट करते हुए आपको 2 साल आपको सर्व करना है, उसके बाद आप थर्ड के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये पीरियड रहता है, ये चीजें रहती है। तो मैं यही सबसे ये कहूंगा कि अपनी एकेडमिक को छोड़ना नहीं है, साइड बाय साइड लेकर के चलना है। अगर आपने वहां पे छोड़ दिया, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, जो स्पोर्ट्स पर्सन तो अच्छे पर एकेडमिक ट्वेल्थ भी नहीं करी उन्होंने,
1: बिल्कुल बिल्कुल, उससे वो रुक जाते हैं,
2: वो रुक जाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि एजुकेशन आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए कह सकते हैं जिम्मेवार है, ये नहीं सिर्फ कोई डिग्री ले ली और आप एलिजिबल हो गए, वो आपको चीजें सिखाती है, आपका लाइफस्टाइल सिखाती है, आपको बोलना, चीजें करना, या आपको आना जाना समझ देना, मतलब एक तरह से आपको लेसन है लाइफ के। ये शायद स्पोर्ट्स के साथ साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, लाइफ लॉन्ग ये आपके साथ जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को अक्सर ये लगता है कि सिर्फ खेल लिया तो काम बन जाएगा, पर खेलों के साथ साथ अगर एकेडमिक्स पे ध्यान दिया जाए तो आपकी तरक्की जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाती है और बहुत अच्छे तरीके से होती है, सिस्टमैटिक वे में होती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है
1: जी। तो अभिषेक जी, बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, मैं कुछ चीजों में ना विजुलाइज करने लग गई थी कि किस तरीके से आप खेलते होंगे या किस तरीके से आपने एग्जाम्स दिए होंगे, क्योंकि इन फील्ड्स में एग्जाम देना, खासतौर पर से जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑलरेडी आप उसमें होते हैं और प्रमोशन के लिए एग्जाम देना होता है, अपने आप में बहुत थकाने वाली चीज भी हो जाती है, क्योंकि आप उस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, आप एक्सपर्ट अपने खेल के होते हैं, फिर भी आपको दूसरों से कम्पीट करना होता है अपनी फील्ड में भी।
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल कहा, ये बहुत चैलेंजिंग होता है अपने, मतलब उसी डिपार्टमेंट में बैठ करके कि जहाँ पे रोज वो रूल रेगुलेशन लगाते हैं और हमें उसकी नॉलेज नहीं, एग्जाम देना, प्रिपेयर करना चैलेंजिंग होता है, फॉर्चुनेट होता है, पर स्पोर्ट्स पर्सन एक अच्छा वो है जिसको फाइट करनी आती है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल आपने जो बातें कही हैं बहुत ही कमाल की बातें कही हैं, और मैं चाहूंगी बस आप कुछ ही शब्दों में एक अच्छा सा मैसेज हमारे यंग आर्चर्स के लिए और साथ ही उन सभी बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा फोन छोड़ के किस तरीके से जाएं, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं ये बस बता दीजिए हमें।
2: देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको अभी समझ नहीं है, तो पेरेंट्स को इसमें बहुत अपना रोल अदा करना है, एक उनके साथ साथ आपको भी टाइम देना पड़ेगा बच्चों को, गार्डन ले जाइए, पार्क ले जाइए, स्टेडियम्स ले जाइए, कहीं पे भी ले जाइए, उनके साथ साथ आप अपनी जर्नी भी स्टार्ट कीजिए, आप अपना डेब्यू भी स्टार्ट कीजिए, आप वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, आप भी गेम कीजिए। जरूरी नहीं सिर्फ बच्चे ही खेलेंगे, बैडमिंटन बच्चा खेलने गया साइड में आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चे को भी बूस्ट मिलेगा, बच्चे को भी वो होगा, प्रेरित होगा और आपकी नजरों में भी रहेगा और एक बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आज के टाइम में दिल्ली NCR चीजों में ऐसे उलझ गए हैं, पोल्यूशन, हेल्थ, डॉक्टरों के चक्कर काटना, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसीलिए है कि एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पा रही, बच्चे की लाइफस्टाइल नहीं हो पा रही। एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन इजिली, बहुत इजिली बीमार नहीं होता, अगर आप कंपेयर करेंगे नॉर्मल से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उनके दिमाग में बिल्कुल मतलब वो है फिजिक को लेकर के, मतलब बिल्कुल एक्टिव है क्योंकि उनकी बॉडी एक्टिव है। तो अपने बच्चों को एक्टिव रखिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए कि क्या रिजल्ट आएगा, वो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, पर एक अच्छी हेल्थ रहेगी। बच्चा एक टाइम ऐसा भी आता है मेहनत करने के बाद एक टाइम क्लिंच होगा ऐसा कि आपकी सक्सेस आपको मिलने लग जाएगी, पर मुझे नहीं मालूम वो कब मिलेगी, 2 साल 3 साल 4 साल, पर मेहनत कर रहे हो कंटिन्यू तो एक क्लिंच ऐसा आएगा जिसमें आप बढ़ते चले जाओगे।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है आजकल के जो बच्चे हैं जेन जी कह लें या जेन अल्फा कह लें, इन लोगों में पेशेंस थोड़ा सा कम है। वो पेशेंस ना होने की वजह से ये बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उस चीज को छोड़ देते हैं।
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। एक वही है ना, एक हमारे में 10,000 hours लगते हैं किसी भी बड़ी विक्ट्री को अचीव करने में
1: जी।
2: अब आप गिव अप कर देते हैं 500 hours में, तो गिव अप मत कीजिए। आपको अभी 10,000 कंप्लीट करने हैं और 100% विक्ट्री आपको मिलेगी, बीच में नहीं छोड़ना आपको। तो वही सबसे बोलूंगा कि एक हार, दो हार, तीन हार पर जीत चौथी पांचवी आपकी है।
1: बिल्कुल, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस अगर आप हार भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ बार हारेंगे लेकिन अल्टीमेटली आप जीतेंगे और सीखेंगे तभी आप जीतेंगे। तो अभिषेक जी बहुत अच्छा लगा बियॉन्ड द गेम में आपने आज हमसे बातचीत की और आर्चरी की दुनिया से हमें रूबरू कराया, हमारे लिसनर्स को रूबरू कराया। आपसे बातचीत करके मुझे तो बहुत मजा आया और यकीनन हमारे लिसनर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आगे आने वाले अलग अलग टूर्नामेंट्स के लिए और भारत को ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहें, जिस प्रकार से अनगिनत मेडल्स लेके आपने भारत को एक एक आर्चरी की दुनिया में एक नया मकाम दिया है, ऐसे ही आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनते रहें आगे भी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
0: बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं बियॉन्ड द गेम में और बहुत ही मजेदार, बहुत ही रोचक कॉन्वर्सेशन रही है। आपको ये बातचीत, ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नंबर हमारा बहुत आसान है, इट्स 8010781078। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है या आप किसी के साथ ये जानकारी जो आर्चरी के क्षेत्र से, तीरंदाजी के खेल से जुड़ी हुई शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। बस आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, इंटरनेट रेडियो मानव रचना, और इस ऐप को प्ले स्टोर या iOS किसी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के अनुसार। और फिर ये पॉडकास्ट आपको पूरा कभी भी सुनने को

मिलेगा, कहीं भी सुन सकते हैं आप इसे, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और क्या पता आपके एक शेयर से एक नया खिलाड़ी हमारे देश को मिल जाए। फिलहाल बहुत सारी बातें मैं कर चुकी हूँ बियॉन्ड द गेम में, फिर से होगी मुलाकात एक नए खिलाड़ी और उनके कुछ खास सफलता के सूत्रों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

0: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आप सभी को पता है कि मानवता की राह पर एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें मैं आपको अनसंग हीरोज से मिलवाने की कोशिश करती हूँ, उन लोगों से मिलवाने की कोशिश करती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे हैं, हमारे समाज, देश और दुनिया के लिए अलग अलग किस्म के काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मैं आपको उन लोगों से मिलवाने की कोशिश करती हूँ जिन्हें मैं अनसंग हीरोज ऑफ द सोसाइटी कहती हूँ, यानी वो लोग जो मानवता के ढेर सारे काम कर रहे हैं। और आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं धरती माँ ट्रस्ट से। धरती माँ ट्रस्ट की मैं अगर बात करूँ तो इनका नाम बड़ा ही क्यूट है। मुझे याद है बॉलीवुड इंडस्ट्री ने धरती माँ की सौगंध हमें बड़ी खिलाई है और हम धरती माँ की सौगंध खाते भी आए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो ओरिजिनली धरती माँ के लिए काम कर रहे हैं। हम सब तो सौगंधे खाते हैं और उन्हें याद करते हैं, पर ये धरती माँ की रक्षा कैसे कर रहे हैं, सेवा कैसे कर रहे हैं, आज इसकी कहानी इन्हीं की जुबानी। और इसके लिए मैं करूंगी स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में भवन सिंह बिष्ट जी को और दीपिका बिष्ट जी को। भवन सिंह बिष्ट जी जो धरती माँ ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं और दीपिका बिष्ट जो की सेक्रेटरी हैं। तो आपका स्वागत है रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल भवन सिंह आप जी से करती हूँ। भवन सिंह जी, मुझे बताइए, धरती माँ ट्रस्ट, आप लोग ना पर्यावरण पर बहुत सारा काम करते हैं, पर मुझे ये बताइए कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और हर चीज के पीछे ना एक कहानी होती है। मतलब शायद ही मैं किसी ऐसे एनजीओ से मिली हूँ जो कॉन्शियसली सोचा हुआ नहीं है या उसके पीछे कोई कारण नहीं था। तो अगर मैं धरती माँ ट्रस्ट की बात करूँ तो इसकी शुरुआत कैसी है और इसके पीछे की कहानी क्या है?
1: जी, सभी देशवासियों को और पूरे भारतवासियों को मैं धरती माँ ट्रस्ट की ओर से सादर नमस्कार करता हूँ। धरती माँ ट्रस्ट की जो नींव रखी एक दिव्य प्रेरणा के माध्यम से, जो मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने मुझे यह नाम दिया कि जिस तरीके से मुझे बचपन से ही एक छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करना, उनको यूजफुल बनाना, यह मेरी आदत में था। और कहीं ना कहीं पूरे यूनिवर्स में ये जो वाइब्रेशन गई थी, उस माध्यम से मेरे गुरुदेव ने ही मुझे यह सुना होगा कि इस कार्य के लिए, कि उन्होंने इस नाम को मुझे दिया कि धरती माँ नाम रख करके एक बड़ा आपने काम करना है पूरे विश्व के लिए। तो यह नाम मुझे मिला और इस पर हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि हम कोई ऐसी एनजीओ बनाएं, हम छोटा सा अपना एक जो जिससे हमारी फैमिली अच्छे से उसका पालन पोषण हो सके उस तरीके से काम करता था। मैं अपना फर्नीचर का काम था हमारा, और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी में एक हम इंटीरियर का, वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट भी आज भी है, उस चीज़ को मैं अच्छी तरीके से कर रहा था। तो ये बीच में इनिशिएटिव जो मेरे जीवन में आया तो एक मेरे लिए एक ज़िंदगी का नया मोड़ था जो शायद मेरे लिए ईश्वर ने चुना होगा। तो इस फील्ड में फिर हम आगे बढ़ते रहे। और पर्यावरण क्या है, धरती को कैसे सुरक्षित और व्यवस्थित किया जा सके, फिर धीरे धीरे इस चीज़ पर हमने स्टडी करी और उन छोटी छोटी चीज़ों पर हमने फोकस किया, उन पर उनको प्रयास किया कि इसको मानव समाज तक हम एक अच्छा संदेश कैसे दे सकें। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि एक छोटा सा एक टॉफ़ी या बिस्कुट का जो रैपर होता है उसको हमने संभालना शुरू किया, उसको वेस्ट के डब्बे में हमने डालना बंद किया कि ताकि अगर वो वहाँ पहुँचेगा तो हमारे द्वारा धरती बिल्कुल दूषित हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। यहाँ से हमने इसकी शुरुआत करी।
0: वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम आज भी देखें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इस चैलेंज पर इसलिए ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इतने सारे डंपिंग यार्ड्स बने हुए हैं और हमारे घर से कूड़ा सुरक्षित तरीके से चला जाता है, हमारा घर बहुत ही साफ रहता है, तो आगे ये वेस्ट का क्या होता है, हमें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब इतने सालों में आप खुद देख रहे हैं, चाहे आप रोज़ अगर गुड़गांव जाते हैं तो बंदवाड़ी का वो डंपिंग यार्ड देखते होंगे, फरीदाबाद के आसपास आप देखते हैं तो अलग अलग खत्ते बने हुए हैं और वहाँ पर आपको अब दिख रहा है कि ये वेस्ट काली पन्नियाँ, नीली पन्नियाँ भर भर कर और उन्हें मवेशी खाते हुए। सो कहीं ना कहीं हमने इस वेस्ट को अब खुद ही अपने पर्यावरण का हिस्सा बना लिया है और अपने घरों से निकलकर शायद हमारी सड़कों पर ये वेस्ट आ गया है। लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है और इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस पर कोई है जो काम कर रहा है और वो है धरती माँ ट्रस्ट। बहुत सारी बातें हैं जो इनसे करने वाली हूँ, बस उससे पहले लेने वाले हैं एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप कहीं नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम बात कर रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के बारे में। धरती माँ ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं BS बिष्ट जी, वो मेरे साथ बैठे हैं और उनके सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट मेरे साथ बैठी हैं। दीपिका, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण पर आप लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, सो एग्जैक्टली किस तरीके से करते हैं और क्या है आपकी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग पूरी?
1: मेरा नाम दीपिका बिष्ट है और हम लोग सब लोग NGO में मिल के काम करते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप होता है कि अपने लेवल पे, अपने सेल्फ लेवल पे हम लोग धरती पर वेस्ट ना पहुंचाएं।
0: जी,
1: जितना हो सकता है उसको बचाया जा सकता है, रीयूज़ करें। हम लोग फर्स्टली मार्केट में जाते हैं वेजिटेबल्स लेने के लिए, तो हम लोग पॉलीथीन का बैग का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, अपना एक कॉटन का बैग लेके जाते हैं, सारी सब्जियों को उसी में कैरी करते हैं और घर पे आकर उसे कैटेगरीज कर देते हैं। जितना हो सकता है हमने आसपास हम जितने लोगों को मिलते हैं उनको ये मैसेज ज़रूर देते हैं। ये एक फर्स्ट स्टेप होता है, हमारे जो पॉलीथीन है वो डेली यूज़ में आती ही आती है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बस जितना हो सकता है अपने सेल्फ लेवल पे उसको अवॉइड करें। और हमारी NGO जो है पर्यावरण के लिए बहुत सालों से काम कर रही है, तो हम लोग इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं जगह जगह जा कर के, स्कूल में, कॉलेज में, क्योंकि एक यूथ ही है जो इसको अच्छे से समझ सकता है और जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको लगता है कि वो उसको जल्दी हमारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, समझते नहीं हैं। वो जो यूथ है उनको पता है कि हाँ आने वाले टाइम में ये चीज़ हमें प्रॉब्लम देगी, तो हम सस्टेनेबल के भी ऊपर काम करते हैं। तो उसका अल्टरनेट हमने मार्केट में ये निकाला, फिर हमने पूछा कि आप इसका अल्टरनेट क्या बताएंगे, तो फिर हमारे हमने बैग्स बनाने शुरू करे।
0: जी,
1: कॉटन के बैग्स हो गए, जूट के बैग्स, ताकि उनसे हम बचाया जा सके मार्केट को और अपनी एनवायरनमेंट को।
0: दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। सो इसको सही में अगर आप चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आदत हमें पड़ जाती है, फिर चाहे वो रोज सुबह उठकर चाय पीने की है, कॉफ़ी पीने की है, या फिर एक आदत है कि आप सड़कों पर चलते नहीं हैं, आप सड़कों पर रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, या फिर आप मोबाइल फ़ोन पर घंटों बात करते हैं, या आप अपने घर का वेस्ट जो है आज भी सेग्रीगेट नहीं करते हैं, उसे इकट्ठा करके एक काली पन्नी में डालते हैं और उसे कूड़े वाले को दे देते हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की आदतें हैं। आपके घर में RO होगा, लेकिन आज भी RO का जो पानी है वो यूं ही, जो वेस्ट वाटर है वो यूं ही बहता रहता होगा। ये सब हमारी आदतें हैं और एक लंबे समय से इन आदतों को हमने पाल लिया है और फिर ये आदतें जाती नहीं हैं। और जैसा दीपिका ने कहा कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं या एल्डरली लोग हैं, या फिर कहना चाहिए वो लोग हैं जो अब मिडिल एज हैं, उनका माइंडसेट बदलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बदल पा रहे हैं और वो है आज की जेनरेशन। उस जेनरेशन को यह समझ में आता है कि घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ मिलता है, और आप घर से नहीं देश से बाहर निकलिए तो विदेश में जाकर आपको चकाचक सड़कें मिलती हैं, खूबसूरत सड़कें मिलती हैं और वहाँ पर कूड़ा नहीं है।

तो मैनेज तो किया जा सकता है, पर जरूरत है खुद को बदलने की। सो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट को बदलने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स की जरूरत है, जिन्हें क्रिएट करती है धरती माँ ट्रस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक छोटा सा क्लॉथ बैग लेकर जाया जा सकता है, तो आप भी सब्जी खरीदने के लिए एक पहल या एक बदलाव कर सकते हैं। क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे बताइएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेशा 107.8 FM के साथ, क्योंकि अब है फिलहाल एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। फील गुड, फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं आज धरती माँ ट्रस्ट के साथ। धरती माँ ट्रस्ट से हमारे साथ प्रेसिडेंट बीएस बिष्ट जी और सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट हमारे साथ हैं। अब बात करते हैं इनके एक बड़े खास कार्यक्रम की, स्पैरो कंजर्वेशन। जी हाँ, स्पैरोस को बचाने की बहुत जरूरत है। एक जमाने में हमारे घरों के बाहर या फिर अगर कहना चाहिए छतों पर चींची चींची करती छोटी छोटी चिड़ियाएं होती थी, बट आजकल खत्म हो गई हैं। आजकल हमें कहीं कहीं पर सोसाइटीज के बड़े बड़े घरों में या फिर शॉफ्ट्स में हमें सिर्फ कबूतर नजर आते हैं। सो क्या कारण है इन चिड़ियाओं के चले जाने का, और वो जो वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़ियाएं होती थी वो कहाँ लुप्त हो गई हैं, जानते हैं। सो किस प्रकार से इन चिड़ियाओं को बचाया जाता है भवन सिंह जी?
1: सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, गौरैया हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा वरदान है, प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। जो पहले जिन घरों में गौरैया रहा करती थी वो इतने जानकार थे, इतने समझदार थे और इतने साइंटिफिक थे कि उनके लिए अपने घरों में ही उन्होंने उनके लिए घोंसला छोड़ दिया था, जगह छोड़ दी थी दीवारों में, और जमीन से लेकर के 10 फीट के हाइट पे, 15 फीट के हाइट पे, 9 फीट के हाइट पे वो होल होते थे जहाँ पर गौरैया रहा करती थी। तो धरती माँ ट्रस्ट ने उन अपने पुराने दादाजी के घर के उस जगह को देखते हुए, उन होलों को देखते हुए, यहाँ NCR दिल्ली फरीदाबाद गुड़गांव में भी इस इनिशिएटिव कदम को इस तरीके से मार्केट पर पहुँचाया ताकि हम अपनी गौरैया को बचा सकते हैं। और हमने समाज में लकड़ी के पुराने, जो पुरानी लकड़ियाँ होती हैं फैक्ट्रियों से जो वेस्ट बच जाता है उनको हम कलेक्शन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये वेस्ट हमें दे दीजिए। कहीं पे हमें वेस्ट फ्री में भी मिल जाता है और कहीं हमें खरीद के भी लाना पड़ता है, तो उसका उसके लिए निश्चित जो उसका जो साइज़ है 9x7x8 साइज़ का हम उसका घोंसला तैयार करते हैं और 10 फीट की 9 फीट की हाइट पर उसको स्टेबल कर देते हैं। और इवन आप मुश्किल से उसको लगाएंगे, गौरैया अगर आसपास देख रही होगी तो उसको अडॉप्ट कर लेती है और उसके बाद उसकी जनरेशन आगे बढ़ती है और खुश होकर के वो धन्यवाद देती है प्रकृति को, मानव को, कि किसी ने मेरे बारे में सोचा और मैं इसके बारे में क्यों ना सोचूंगी।
0: सो भाई देखिए, अगर हम स्पैरो कंजर्वेशन की बात करें तो न सिर्फ अब हम खुद ही ये देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे एनिमल्स और बर्ड्स, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, अब सोसाइटियाँ बन रही हैं और पुराने जमाने के घर नहीं रह गए हैं, बड़े बड़े बंगलोज नहीं रह गए हैं, तो इन सभी जीव जंतुओं के घर छिन गए हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जंगल खत्म हो गए तो सारे के सारे जानवर, अगर आप देखें तो रोज सुबह अगर आपको अपनी पूरे सोसाइटी में ढेर सारे बंदर नजर आते हैं तो दरअसल ये बंदर तो अपने ही जंगलों में घूम रहे थे, बट परेशानी है कि इनके जंगलों को काटकर हमने सोसाइटी बना ली है, तो अब ये बंदर कहाँ जाएंगे या फिर ये बाकी जानवर कहाँ जाएंगे। सो इन जानवरों को अपना घर बनाने की भी जरूरत है, लेकिन बंदरों के लिए शायद आप बड़े घर नहीं दे सकते हैं, जिराफ के लिए नहीं दे सकते हैं, एलिफेंट के लिए नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी गोरैया के लिए तो आप अपने ही इस घर के अंदर जगह बना सकते हैं। सो कोशिश करिए कि लुप्त होती हुई गोरैया के लिए आप छोटा सा एक घर जरूर बनाएं। सो अपने घर में एक छोटा सा घोंसला बनाने की जरूरत है, और उस घोंसले को अगर आपने प्रोक्योर करना है तो उसके लिए आप धरती माँ ट्रस्ट को जरूर कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको रेडीमेड ऐसे घोंसले देंगे जिसमें गौरैया रहकर खुश रहेगी और आपके घर में चहलकदमी मची रहेगी। छुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के साथ। धरती माँ ट्रस्ट से हमारे साथ प्रेसिडेंट बीएस बिष्ट और साथ के साथ सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट जी हैं। अब हम आपसे एक बड़ा खास सवाल पूछना चाहेंगे पवन सिंह जी, और पवन सिंह जी वो ये है, आपके दो बड़े खास इनिशिएटिव हैं, नव सृजन टूरिज्म और उसके साथ साथ वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट। मुझे बताइए, जो वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट है और नव सृजन टूरिज्म है, दरअसल इसमें आप क्या करते हैं?
1: सबसे पहले तो मैं वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा। नव सृजन एक हमारा प्रोजेक्ट है, धरती माँ ट्रस्ट ने इसकी जब नींव रखी धरती माँ ट्रस्ट की, उसके बाद हमने एक नव सृजन एक अलग से हमने प्रोजेक्ट बनाया कि इसके अंतर्गत हम किन किन कैटेगरीज में हम काम कर सकते हैं। नव सृजन जो वेस्ट क्राफ्ट है, हमारे घर और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जिस भी प्रकार का जो भी वेस्ट है, हम मानव समाज तक हर इकाई उस हर एक वर्ग तक हम पहुँचते हैं, जिस तक हमारी पूरी प्रयास रहती है कि हम किन किन को इस बातों को कि इस मैसेज को पहुंचा सके। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर हम बताने जाएंगे, स्कूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी नींव है, वो उन बच्चों को हम सिखाते हैं कि वेस्ट को हमें किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, उस किस तरीके से उसको अलग अलग करना है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व में इस कचरे को दो तरीके से, तीन तरीके से हम समझ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसको दो तरीके से बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे, गीला कचरा और सूखा कचरा। हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को, गीले कचरे को अलग ग्रीन कलर के आप किसी भी तरह का एक डब्बा बनाइए, उसमें रखिए, और सूखा कूड़ा जो होता है उसको एक दूसरे रेड कलर के डब्बे में उसको आप रखिए, ताकि उसमें हम छोटे छोटे बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो वेस्ट है हम उससे कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको हम आराम से ज़मीन पर गाड़ भी सकते हैं, उससे हमारी खाद बन सकती है। और सूखा जो कूड़ा होता है उससे आप समाज के उस व्यवस्था को, जो समाज ने, सरकार ने हमारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, वहां तक हम उसको बहुत अच्छी तरीके से, हम जैसे हमारे घरों में आजकल गाड़ियाँ आती हैं वेस्ट को लेने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलेक्शन के तौर पर करते हैं, तो उनको हम वो सूखा कूड़ा देंगे तो उनको बहुत ईजिली उसको अलग अलग करने में कोई असुविधा नहीं होगी। और गीले कूड़े से जो आप खाद बनाएंगे उससे एक आप जैविक ताकि और आगे बढ़ सकते हैं, उससे आप कंपोस्ट से अच्छी तरीके से खेती भी कर सकते हैं। आप अपने घर में बालकनीज में छोटे छोटे पौधों में अच्छी सी खाद आप बनाएंगे तो गीला कचरा हमारे बाहर जाने से बच जाएगा। और सूखे कूड़े से आप जैसे टॉफ़ी के, बिस्किट्स के, नमकीन के, कई तरह के जो आप रैपर्स हैं, उन रैपरों से भी आप बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना सकते हैं। और कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते हैं उसको एक छोटा सा एक ऐसा रूप दे सकते हैं, पुराने घर में हमारे कपड़े बहुत पड़े रहते हैं, उसका एक छोटा सा थैला बना करके उसमें आप भरते जाइए, एक कुशन का, एक तकिए का काम भी करेगा, आपके बैठने के काम आएगा। और जिस भी प्रकार का जो भी वेस्ट, जैसे क्लॉथ है, आज हमारे मार्केट में कपड़ों की ऐसी डिमांड आ रही है, हम कपड़ों को भी यूँ ही फेंक दिया करते हैं डंपिंग यार्डों में, और हमारे देश में आज भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ कपड़ों की बहुत सख्त ज़रूरत हो। ठंडियों में आप देखें बहुत से लोग ठिठुरते रहते हैं, बैठे रहते हैं स्टेशनों में, बहुत हम जगह जगह घूमते हैं, हर स्टेशनों में आप देश के कई राज्यों में आप पहुँचे, जैसे गरीब जो लोग रहते हैं उन तक हम इस कपड़े को पहुँचा सकते हैं। आप धरती माँ ट्रस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं कि अपना घर का जो भी वेस्ट है, वो चाहे किसी भी तरह का वेस्ट है, वो भी आप हमें दे सकते हैं एज ए डोनेट के तरीके से आप। और इन चीज़ों को आप यूज़फुल कैसे बनाएंगे, इसको आप क्रिएटिव कैसे करेंगे, हमारी जो यूट्यूब चैनल है धरती माँ ट्रस्ट के नाम से, हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, धरती माँ .org पे भी विजिट करें, उससे भी आप इन बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं।
0: सो दोस्तों, अब आपको समझ में आया कि वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट क्या है, मतलब जो वेस्ट है उसको आप बहुत खूबसूरत क्राफ्ट में बदल सकते हैं और उसे मैनेज करते हुए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे ना तो आप वेस्ट को कूड़े में जाने देंगे और उसे धरती में वापस जाने से अच्छा धरती माँ को सुरक्षित और स्वच्छ रख सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम सुन रहे हैं आप मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के साथ, जिसके प्रेसिडेंट BS बिष्ट और सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट मेरे साथ बैठी हैं। दीपिका, आपसे जानना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप इन कामों को करने के लिए जाती हैं, खास तौर पर मैं वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूंगी, किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं? क्योंकि ना, मुझे पता है आप लोगों को जाकर कितना भी समझा ले, बट क्योंकि लोगों का माइंडसेट नहीं बदलना है, लोगों की आदत नहीं है, सो बड़ा मुश्किल होता है। सो किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं?
1: जैसे हम किसी को फर्स्ट समझाएंगे जी, तो वो तो कहते हैं कि हमारे करने से क्या हो जाएगा जी, पूरी दुनिया ऐसा कर रही है, ये तो होता ही रहता है, हमें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। तो वो लोग इसको समझते नहीं है, पर हम जितना हो सकता है हम उन्हें समझाते हैं, बताते हैं। जो यूथ होते हैं वो थोड़ा बहुत समझते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम फॉलो करेंगे, पर कुछ टाइम तक फॉलो करते हैं, फिर वो भी जो नेचुरली सब कर रहे हैं वैसे करना शुरू कर देते हैं। और बड़े लोग हैं वो तो मोस्टली सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है उस चीज़ को, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा।
0: वाकई ये बिल्कुल सही है, मतलब दीज आर सम रियल टाइम चैलेंजेस लोग फेस करते हैं। आप सोचिए ना कि आप जाएंगे और आप लोगों को एजुकेट करेंगे, आपके आज के बाद से आपके घर का जो कूड़ा है उसे ना सेग्रीगेट करिए, गीला अलग करिए, सूखा अलग करिए, तो अक्सर लोग ये जवाब देते हैं कि आप अपना काम खुद करिए, ये तो सरकार की ड्यूटी है कि हम अपने घर से कूड़ा निकाल देंगे, वहां जाकर ये कूड़ा आगे सेग्रीगेट हो जाएगा। सुन, सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली सेग्रीगेट हमेशा सोर्स पर होता है, यानी जहाँ कूड़ा बन रहा है वहीं आप उसे अलग कर सकते हैं। एक बार आपने सूखे कूड़े को गीले कूड़े में मिला दिया तो बड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि वो जो गीला कूड़ा है वो सूखे कूड़े को भी गीला कर देता है, उसके बाद आप उसको वापस सुखाएंगे। एक प्रोसेस सोचिए कि आपके गीले और सूखे कूड़े को जब आप मिक्स कर चुके हैं तो कहाँ कौन सज्जन है जो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके इस मिक्स करे हुए कूड़े को पूरा पहले वो अलग करेंगे, फिर सारी चीज़ों को अलग करने के बाद सेग्रीगेट करेंगे, जो पॉसिबल नहीं होता है। सो ये कुछ खास चैलेंजेस हैं, हम अपनी धरती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तादाद में लोग इस धरती को पोल्यूट कर रहे हैं। सो चलिए हम सब भी वो बने जो धरती माँ ट्रस्ट की तरह कॉन्शियसली इस वेस्ट को सही ढंग से मैनेज करें। और जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के साथ। धरती माँ ट्रस्ट बहुत बेहतरीन काम कर रही है पर्यावरण पर, जिनके प्रेसिडेंट बी एस बिष्ट जी और दीपिका बिष्ट जो कि सेक्रेटरी हैं मेरे साथ हैं। अब भवन सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी टीम कितनी बड़ी है और आप लोग दरअसल किस प्रकार काम करते हैं। सो अवेयरनेस फैलानी है, फिर साथ के साथ लोगों में बदलाव लाने की कोशिश करनी है, वेस्ट मैनेजमेंट के क्राफ्ट्स हैं, आप लोग स्टॉल्स लगाकर इसका सामान भी बेचने की कोशिश करते हैं, लोगों को एजुकेट भी करते हैं कि वेस्ट में से सामान कैसे बनाया जा सकता है। सो किस प्रकार करते हैं
1: इसमें? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे घर में किस प्रकार का जो कूड़ा होता है
0: जी,
1: उसको हम कैसे हम उसको यूजफुल बना सकते हैं
0: जी,
1: ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि हम जो हमारे घर का जो किसी भी प्रकार का जो कूड़ा है, उस कूड़े को हमने ये समझना है कि ये व्यर्थ नहीं है
0: जी।
1: इससे भी हम कुछ न कुछ अर्न कर सकते हैं, इससे भी हम कुछ वेल्थ में इसको बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँगा, हमारी पुरानी जीन्स की पैंट है, हमने फेंकनी है, अब हमने नहीं पहननी, उसका आप थैला बना लीजिए। उसका जब आप थैला बनाएंगे तो कुछ भी नहीं, तो आपका साल या दो साल आराम से वो थैला आपके काम करेगा और एक अच्छी फीलिंग भी आपको देगा कि मैंने अपने हाथों से यह बैग बनाया। और कई सारी ढेर सारी पॉलीथीन को आप बचा सकते हैं। और जो हमारी टीम काम करती है, हम घर से ही इसका प्रयास शुरू करते हैं
0: जी।
1: जैसे कि हमने जो भी प्रकार का जो कूड़ा है उसको हमने कैसे किया, हमने अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा इसको आपने अलग अलग रखना है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, समाज की एक नींव कहाँ से रखी जाएगी, अपने घर से। अपने बच्चों को आप सिखाइए, अपनी आदत में बदलिए उसको कि हमने उसको वेस्ट में डालना ही नहीं है। अब इसका करेंगे क्या, लोगों की यही सबसे बड़ा प्रश्न होता है। अब हमें इसका, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है इसको सेग्रीगेट करने का, इसको अलग अलग करने का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश का जो हमारी जेब से पॉकेट में से जो रोज के आपके बगैर कहे, आपको बगैर समझे हुए आपके 50 रुपये यूँ ही निकल जाया करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, जो कि आप रोज़ाना 50 रुपये दे रहे हैं भारत सरकार को। कैसे समझिए, हमारे घर से जो भी कूड़ा ले जाने वाला व्यक्ति है उसको सरकार सैलरी देती है, कहाँ से देगी, हमारी पॉकेट से देगी। उसके बाद उसने बड़ी गाड़ी में उसको ट्रांसफ़र करना है, उनको सैलरी कहाँ से जाएगी, हमारी सेब से जाएगा। अब उसके बाद जो ट्रक जाएगा डंपिंग यार्ड में जाएगा, वहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनको सैलरी कौन देगा, भारत सरकार देगी, भारत सरकार हमारी जेब से निकालेगी। हम जो टैक्स पेयर करने वाले हैं उनके जेब से जाएगी। अब उस पर सेग्रीगेट करने वाले जो लोग हैं, वो गीले कचरे को और सूखे कचरे को जब अलग अलग करते हैं, उनमें से जो निकलने वाली जब इकट्ठा होता है उसमें डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जब निकलती हैं, तो बताइए सो दोस्तों, वो हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारे जैसे हाथ पैर नाक कान आँख वाले लोग हैं, वो कितनी मुसीबतों के साथ हमारे समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए और हमें एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमारे घरों के आसपास हमारी गंदगी ना हो उसको व्यवस्थित करने के लिए वो इतने गहरे डीपली हम काम कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पे और कार्बन डाइऑक्साइड। वो दिन रात सूंघते रहते हैं और वो इस चीज़ से बीमार भी हो जाते हैं। आज डंपिंग यार्ड जितने भी बन चुके हैं हमारे देश में, आप वहाँ के आप देखिए, दिल्ली NCR के आसपास आप जब लोग जाते होंगे तो कितनी, मतलब कितनी बदबूदार जो स्मेल जो वहाँ से आती है, उससे हम प्रदूषित भी हैं और आप इसको मैं 100% ये कहना चाहूँगा, उससे हम लोग बीमार भी रहते हैं। तो जो हमारी टीम है, यहीं से उसकी शुरुआत होती है कि उसको हम अलग अलग रखें और उससे फिर यह निष्कर्ष निकालें अब इसको हम किस तरीके से इसको वेल्थ में बदल सकते हैं। जैसे बैग बनाना है, पेंटिंग्स बनानी है और उसके फ्लावर पॉट बनाने हैं, इवन धरती माँ ट्रस्ट जो पॉलीथीन होती है उसकी चप्पलें भी बनाते हैं। हम जगह जगह जा कर के स्टॉलों के माध्यम से अपने गुड्स को बेचते हैं और समाज को ये समझाते हैं कि आप जो है इस चीज़ को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, हमने राष्ट्र को अपने पूरे विश्व को बदलना है, उसको सुव्यवस्थित करना है, उसको दुनिया से एक भारत को अलौकिक स्थान दिलाना है। हम उनको संदेश देते हैं कि हम अपनी धरती पर वेस्ट को जाने से यहीं से शुरुआत उसकी करते हैं। हमारी ऐसी इस तरीके से पूरी टीम काम कर रही है, क्योंकि हमारे गली मोहल्ले में लोग हैं और धरती माँ ट्रस्ट के 150 वॉलंटियर आज काम कर रहे हैं जो मानव समाज को जागृत कर रहे हैं।
0: वाओ, तो भाई देखिए, इतने सारे लोग हैं जो पॉलिथीन से चप्पल बना रहे हैं, बहुत सारे पॉलिथीन बैग से क्राफ्ट आइटम बनाया जा रहा है, वेस्ट से यूजफुल चीज़ें बनाई जा रही हैं जिसे रोज़मर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जरूरत ये है कि इसमें कहीं ना कहीं माइंडसेट और उसके बदलाव की जरूरत है। सो क्या आप इस माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी धरती माँ ट्रस्ट के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो मेरा अगला सवाल यही है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के साथ, जिसके की प्रेसिडेंट बीएस बिष्ट जी और सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट मेरे साथ बैठी हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई इस ट्रस्ट के साथ कैसे एसोसिएट हो सकता है। भाई देखिए, मुझे भी पता है कि इनकी बातें सुनकर आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई है, थोड़ा सा एंथुजियाज्म आया और आपको भी लग रहा है कि चलिए अपनी धरती माँ को बचाया जाए। तो धरती माँ को बचाया कैसे जा सकता है, जानते हैं दीपिका बिष्ट से, जो कि सेक्रेटरी हैं धरती माँ ट्रस्ट की। दीपिका, अगर कोई आपके धरती माँ ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहता है, कोई वॉलंटियर करना चाहता है, कोई एसोसिएट करना चाहता है, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो क्या आपकी वेबसाइट है, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं और कैसे आप तक पहुँच सकते हैं?
1: हमारी वेबसाइट है www.dhartimaa.org, आप उसमें विजिट कर सकते हैं, हमारे उसमें सारी डिटेल्स हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसमें मेंबर्स बन सकते हैं, वॉलेंटियर का फॉर्म भर सकते हैं, हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसमें आप आइए। हम अपने वॉलेंटियर्स को, अपने मेंबर्स को यही बोलते हैं कि आप अपने लेवल पे एक स्टेप जरूर आगे करिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पर्सन को इस चीज़ को समझाइए, अपने तक ही उस मैसेज को ना रखें। आगे आप बात को बढ़ाएंगे तो तभी हमारा पूरा जो समाज है वो एक साथ जुड़ेगा, एक सोच के साथ आगे बढ़ेगा। तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करिए, उसमें आपको डिटेल्स मिलेंगी। हमारे काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ जगह जगह जाके स्टॉल्स लगाते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम में, वो सब हम सब मिल के लोगों को आगे मोटिवेट करते हैं।
0: वाकई भाई, आप अगर मोटिवेटेड हैं तो आप इनके साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं, तरीका आपके पास है। अगर आपको लगता है कि आप श्रमदान देना चाहते हैं तो आइए किसी दिन वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके को सीख लीजिए। अगर आपको लगता है आपके पास समय नहीं है लेकिन आपके पास पैसा है, आप इन्हें धन दे सकते हैं, जिससे कि वो अलग अलग एरियाज में जाकर इस पर्यावरण को ठीक कर सकेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप इनके इनिशिएटिव से अपने आप को जोड़ सकते हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप इनके साथ वॉलंटियर बनिए और अलग अलग तरीके से धरती माँ को एक बार फिर से वो तोहफा दीजिए जो धरती माँ आपसे चाहती हैं, गंदगी नहीं सफाई। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरत्न 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना, रेडियो मानवरत्न 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हमने ढेर सारी बातें जानी धरती माँ ट्रस्ट के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानवता की राह पर चल रहे हैं। ऐसे ही आज दो शख्सियत से मैंने आप लोगों को मिलवाया, प्रेसिडेंट बी एस बिष्ट भवन सिंह जी, और साथ के साथ अगर देखा जाए तो दीपिका बिष्ट जो कि सेक्रेटरी हैं धरती माँ ट्रस्ट की, आज यहाँ पर आई और उन्होंने बताया कि धरती माँ ट्रस्ट का सही मायने में उद्गम किस लिए हुआ और उसका उद्गम होने के बाद इतने लंबे समय, अगर आप देखें 2009 से इन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया, 2014 से लेकर 2025 तक की मैं अगर बात करूं तो इतना लंबे समय से ढेर सारे काम कर रहे हैं मानवता की राह पर चलते हुए। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी भवन सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स जो आपको रेडियो मानवरत्न के जरिए सुन रहे हैं, उन्हें क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं एक छोटा सा एक कहानी के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ।
0: जी,
1: अगर एक मेले में, मैं कहूँ कि ये हमारा पूरा विश्व जो है एक मेला है, एक बाजार है, इसमें पिता पुत्र ये आप फिर कहें कि एक पूरी फैमिली अगर साथ में जा रही है कहीं पे, तो उसमें फैमिली का एक भी मेंबर अगर छूट गया, एक भी सदस्य अगर उस मेले में अगर कहीं खो गया, तो वह बच्चा भी परेशान हो जाएगा और पूरी फैमिली भी परेशान हो जाएगी और पूरा गांव भी परेशान हो जाएगा। हो सकता है उसके लिए पूरा जिला और पूरा राज्य भी परेशान हो सकता है, यहाँ तक कि पूरा देश भी परेशान हो सकता है। हम इस बात को इतनी गहराई से समझ सकते हैं कि हमारे द्वारा, हमारी एक सोच के द्वारा अगर हम एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, वह है वेस्ट मैनेजमेंट। और वेस्ट मैनेजमेंट ही हमें पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व में एक ऐसा अलौकिक स्थान दिला सकता है जो कि सोच भी बहुत बड़ी, एक कल्पना आप उसको करिए तो आप हमारे इस देश को पूरे विश्व में ऐसा सुंदर बना सकते हैं। इसी बात को लेकर के हमने एक बीच में एक प्रश्न हमसे छूट गया था कि नवसृजन टूरिज्म, नवसृजन टूरिज्म में भी एक बहुत बड़ा संदेश यह है कि अगर आप बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर जाना चाहते हैं, खूबसूरत जगहों को ढूंढना चाहते हैं और खूबसूरत सा आप भोजन ढूंढते हैं, खूबसूरत रहना ढूंढ सकते हैं और अच्छा शुद्ध पानी ढूंढ सकते हैं, तो यह हमारी डिमांड होती है वहाँ जा करके। तो इसको वहाँ पर जा करके हम शुद्ध कैसे पाएंगे? जब हम करेंगे तब हमें वो शुद्धता मिलेगी। हम एक उदाहरण के तौर पर और आपको बताना चाहूँगा कि अगर सपोज एक एग्जांपल के तौर पर आप उत्तराखंड में, मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ, आप नैनीताल की झील पर आइए, घूमिए, किसी भी स्टेट में आप जाइए, वहाँ पर जा करके अगर आप अपने द्वारा कुछ भी वेस्ट अगर करके आ रहे हैं तो आप बहुत बड़ा एक पाप करके आ रहे हैं और इस धरती माँ पे आप जो बोझ एक्स्ट्रा डाल रहे हैं और जो उसके द्वारा उसको वहाँ पे उसको इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद वो बहुत सारी प्रोसेसिंग के जरिए जाता है, बहुत अज्ञानतावश वहाँ पे अभी भी, आज भी हमारे देश में इतना सब काम होने के बावजूद, स्वच्छता अभियान होने के बाद भी, देश के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, उसके बावजूद भी आज हम एक ही गलती कर रहे हैं। जो इस गलती को हम सुधार सकते हैं वह है हमारा नवसृजन प्रोजेक्ट का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, कूड़ा न जलाएं, न बहाएं, न फैलाएं, इसे विश्व कल्याण के लिए उपयोगी बनाएं। अगर इस मुहिम को आप अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहते हैं, उसका अनुसरण करना चाहते हैं, तो आइए धरती माँ ट्रस्ट के साथ जुड़िए और आप हमारे वॉलंटियर बन सकते हैं। हमारे धरती माँ ट्रस्ट के वॉलंटियर न बन करके आप अपने वॉलंटियर बनिए, अपने पूरी फैमिली के लिए, अपने पूरे राज्य के लिए, पूरे विश्व के लिए, यही मेरा संदेश है। आइए हम सब मिलकर अपनी धरती माँ की रक्षा करें, सुव्यवस्थित करें और सुंदर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तहे दिल से धन्यवाद बिष्ट जी, आज आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। दोस्तों, वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि ऐसे धरती माँ ट्रस्ट के शायद 150 वॉलंटियर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना इनके साथ जुड़कर या इनके बिना भी हम अपने घर पर सिर्फ एक छोटा सा प्रण लें कि आज के बाद से हम अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वेस्ट को उस धरती पर न जाने दें जहाँ दरअसल जिस धरती को हम अपनी माँ कहते हैं। अगर एक छोटा सा इनिशिएटिव हम लेते हैं, एक माइंडसेट में बदलाव लेकर आते हैं, तो ये पर्यावरण यूं ही ठीक हो जाएगा, धरती खूबसूरत हो जाएगी और बहुत सारी परेशानियों का हमें हल मिल जाएगा। इसी बात पर मैं यानी आरजे भावना ले रही हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानवरत्न 107.8 FM के साथ। फील गुड, feline।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ और इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम में जहाँ मैं आप लोगों के पास होती हूँ पूरे दो घंटे के लिए, जहाँ होती हैं खूब सारी बातें और खूब सारे गाने मैं आपको सुनाती हूँ, तो आज के प्रोग्राम में भी आप बिल्कुल तैयार हो जाइए जहाँ आपके पसंद के गाने मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और इसी के साथ ही आज के इस खास मौके पर, जी हाँ, चिल्ड्रंस डे के इस मौके पर आप सभी को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम में वही कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपको बहुत सारे भाव मन के अंदर आने वाले हैं। क्या होने वाला है ये आपको मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में, तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और एक गाना सुनाती हूँ मैं आपको। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आपका कोई सवाल है या कोई मैसेज आपको हम तक या बाकी लिसनर्स तक पहुँचाना है या कोई गाना आपको सुनना है या किसी को डेडिकेट करना है, तो हमारा नंबर है 8010781078। चलिए गाना एंजॉय करते हैं और इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।
1: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और

कहते हैं बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है, जहां ना कोई चिंता ना कोई डर, बस खेल, सपने और ढेर सारी मासूमियत। रेडियो मानव रचनाओं 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। ये एक ऐसा शो जो दिल से जुड़ता है और आज तो दिल को छू लेने वाला दिन है। जी हां, आज है चिल्ड्रंस डे और आज इस मौके पर मैं एक ऐसी जगह पे हूं जहां जिंदगी को दूसरा नाम मिलता है। जी हाँ, यहाँ वो बच्चे रहते हैं जिन्हें शायद अपना कोई ना मिला, लेकिन अब इनके पास है मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी का प्यार भरा परिवार। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी की, जहां हम गए, हमने ढेर सारी बातें की और इस संस्था के प्रेसिडेंट है श्रीमती सिमरन लांबा, जो पिछले कई सालों से इन बच्चों की जिंदगी में माँ जैसी ममता और मार्गदर्शक जैसी शक्ति लेकर आई है। सिमरन, जिसे आज हमने बहुत सारी बातें की, इनसे जाना मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी किस तरह से इन बच्चों के लिए काम करता है, आप किस तरह से सहयोग दे सकते हैं और भी बहुत कुछ, यहाँ तक कि बच्चों की कहानियां हम सुनेंगे इस प्रोग्राम में कि किस तरह की कहानी है उन छोटे छोटे बच्चों की जिन्होंने शायद कुछ देखा ही नहीं अभी, जो अभी देखना बाकी है, लेकिन एक मोड़ पर उन्हें कोई अपना छोड़कर चला गया। तो आज हम करने वाले हैं सिमरन लांबा जी से ढेर सारी बातें और साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई सवाल है आपका, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। तो आइए एंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और इस वक्त हमारे साथ में है सिमरन लांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम।
1: थैंक यू प्रियंका जी।
0: जी, मिरेकल के प्रेसिडेंट हैं और आज हम इनसे ढेर सारी बात करने वाले हैं, आपसे जानने वाले हैं आपकी इस पूरी जर्नी के बारे में, मिरेकल की नींव कैसे रखी जाई गई, किस तरह से आज ये वर्क करता है और भी बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। सबसे पहले आप हमारे रेडियो के माध्यम से जुड़ी हैं, सभी लोग आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी, सभी लोगों के लिए मैसेज क्या होगा आपका?
1: सबके लिए मेरा मैसेज ये होगा कि बच्चों को थोड़ा बच्चों के तरीके से देखें और थोड़ा इंसान को ह्यूमैनिटी ग्राउंड में होना चाहिए और जितना हम बढ़ चढ़ के आप सपोर्ट कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भविष्य में हमारे देश के लिए या संसार के लिए ये जनरेशन है, क्योंकि ये अभी हमारी स्टार्टिंग स्टेज है, नींव है हमारे बच्चे है ना। आज ही इनका भविष्य अगर अच्छा होगा तो कल आने वाला हम सबका भविष्य अच्छा होगा, देश के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए उन्नति वो होगा ये।
0: जी मैम, सबसे पहले मिरेकल की नींव कैसे रखी गई, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, और कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है एक ड्रीम से, तो क्या आपका भी कोई सपना था या किस तरह से आपने मिरेकल की नींव रखी?
1: मिरेकल की नींव तब स्टार्ट हुई जब मैंने मास्टर्स किया MSW, तब हम लोग इंटर्नशिप करने के लिए होम्स में जाते थे, तो जब हमने ऑर्फनेजेस के अंदर इंटर्नशिप किया, मैंने वहाँ एक चीज़ महसूस की कि बच्चों को ना मतलब माँ बाप की कमी कहीं ना कहीं खलती थी, अगर किसी ने कोई डोनेशन दिया या कुछ भी दिया तो उनको पता रहता था, और वो चीज़ कहीं ना कहीं ना हम बड़े तो बड़ों की तो डिग्निटी होती है पर हम ये भूल जाते हैं बच्चे की भी अपनी एक डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और हम कहीं ना कहीं उसको ना हार्म कर रहे होते हैं उनके हाथों में कुछ ना कुछ दे के और फोटोज़ क्लिक करके। आजकल ये ट्रेंड भी है कि हमें देना है या हमने कोई पुण्य का काम करना है जी तो हमें बच्चों को देना, तो वो कहीं ना कहीं हार्म करती है और वो बच्चा डीमोटिवेट होता है, वो सोसाइटी में जेल नहीं हो पाता
0: जी।
1: तब मैंने डिसाइड किया कि मैं कैसा होम बनाऊंगी जो जीरो होगा, यहाँ बच्चे नहीं रहेंगे और हर बच्चे को उसका घर मिलेगा। फिर हमने स्टार्ट किया, तब गवर्नमेंट का साथ टाई अप करके हमने एडॉप्शन देना स्टार्ट किया कि होम के अंदर एक भी बच्चा नहीं हो, बच्चे की सही जगह उसका घर हो, फैमिली से बेटर कोई जगह नहीं है। तो तब हमने फिर इसको 2015 में इसको स्टार्ट किया।
0: तो करीबन इसे 10 साल हो गए,
1: 10 साल हो गए इसको, 10 साल हो गए, और कम से कम मैंने 250 बच्चों को अडॉप्शन में दे दिया हमने, इन कंट्री, इंटर कंट्री, 40 बच्चों के तो खुद के उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ के उनको वापस किया। कई बार बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं, या मियाँ बीबी का कभी झगड़ा हो जाता है तो वाइफ रोड पर छोड़ के चली जाती है बच्चे को, तब हमने 40 बच्चों को तो उनके बायोलॉजिकल को वापस किया, बाकियों को हमने जो स्पेशल नीड हैं या आपके नॉर्मल बच्चे हैं तो हमने एडॉप्शन में दिए हैं सारे।
0: तो कई बार ऐसा होता होगा कि काफ़ी ब्रूटल केस भी आते होंगे आपके पास में, तो कोई ऐसी कहानी जो आप शेयर करना चाहें?
1: काफ़ी केस है, एक बार कोविड में हुआ था कि दो भाई बहन को उनके सगे ताऊ ने जला दिया था बिल्कुल बम बांध के, और BK चौक पर उनको फेंक दिया था बच्चों को, और एक बच्चा है जो 9 साल की लड़की है वो सेक्सुअली असोल्ट भी है, 3 बहनें हैं, हमारे पड़ी शायद बाप ने ही दारू के लालच में उस बच्चे को बेच दिया। तो बहुत वर्स्ट केसेस में आते हैं बच्चे, बहुत ट्रोमाटाइज भी होते हैं बच्चे, उन्हें कभी कभी अपने उस पास से निकलने के लिए साल साल दो दो साल लग जाता है, पर जब वो निकलते हैं फिर बहुत अच्छा निकलता है।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और आज हम हैं मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी, जहां पर हम बात कर रहे हैं इस संस्था के प्रेसिडेंट श्रीमती सिमरन लांबा जी से, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं, बच्चों के एक्सपीरियंस जान रहे हैं और किस तरह से हर एक बच्चे की कहानी है जो ये हमें बता रही हैं और कितनी तकलीफें बच्चों की जिंदगी में और उनको कैसे उभारने का काम करते हैं सिमरन जी। तो काफी कुछ हमें इनसे जानने को मिल रहा है। ये वाकई ऐसा होता क्यों है, क्यों इस तरह से बच्चों के साथ में चीजें होती है? बच्चों को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है या उसके माँ बाप कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनको वापस से आपने वो किया, तो कितनी खुशी होती होगी ना ये देख करके कि जो बच्चे खो गए हैं वो वापस से अपने माँ बाप के पास पहुँच गए।
1: काफ़ी कई बार कई पेरेंट्स के बच्चे मिसिंग हो जाते हैं पर वो सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं और बच्चा यहाँ तड़पता है अपने माँ बाप के लिए और जब वो मिलता है और उसके बाद वो बहुत टाइटली पकड़ के रखता है कि मैं दोबारा नहीं खो जाऊँ, कि देखो बच्चे के अंदर एक फियर होता है, डर होता है उसके अंदर कि मैं दोबारा नहीं कहीं जाऊँ। अब कई बार लोग कहते हैं बच्चा वहाँ से भाग गया, मेरे यहाँ होम में गेट खुला रहता है, उसको पता है वापस आना है। कहीं घूमने भी जाते हैं ना तो वहाँ पर वो ढूंढते हैं कि बड़ी मम्मा कहाँ है, हम कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि उनको लगता है एक बार खो के हम दोबारा नहीं खोना चाहते। तो बच्चा बहुत मासूम होता है और ये सच में आपसे सच में प्यार करता है। देखो बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप पैसे वाले हैं, सुंदर हैं, नहीं है, वो जो आपको सच में कह, हम लोग कहते हैं ट्रू लव आपको बच्चा ही कर सकता है लाइफ में और कोई नहीं कर सकता है।
0: बहुत बहुत बड़ी आपने ये बात बोली है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अभी मिरेकल में कितने बच्चे हैं अभी जो यहाँ पर हैं?
1: 95 बच्चे हैं यहाँ पे।
0: अच्छा, तो 95 है जिसमें से आप एज बताएंगे कैसे कैसे?
1: हाँ, मेरे पास 0 से लेके 16 साल तक के बच्चे हैं, 62 गर्ल्स हैं, बाकी 33 मेरे पास बॉयज हैं और नॉर्मल बच्चे हैं प्लस स्पेशल बच्चे हैं और ओवरऑल हरियाणा के 0 to 6 वाले स्पेशल नीड बच्चे यहीं आते हैं, स्पेशल बच्चे ज़्यादा हैं।
0: ओके, तो जब ये बच्चे इतने हैं तो कभी ऐसे खर्चे को लेके कभी ऐसे दिमाग में थॉट आया हो कि क्या कहीं से हम कुछ कर सकते हैं, या कितने लोग हैं जो आपके साथ इस जगह को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, कितने लोग फंडिंग दे रहे हैं, कितने लोग हैं जो आपके मदद के लिए आगे आ रहे हैं कुछ सा?
1: हाँ, हमारे पास 2 कंपनीज जुड़ी हुई हैं, एक है ब्रिलियन, एक है फ्लोर। ब्रिलियन वो जो ऑल आउट कंपनी ऑल आउट बनाती है वो कंपनी हमें स्पॉन्सर करती है, एक फ्लोर कंपनी है जो बच्चों का स्पॉन्सर करती है, प्लस कुछ कभी कभी हमारे पास रोटरी है जो सामान के लिए हमें कुछ चाहिए काइंड्स के लिए तो हम रोटरी को, कुछ इंडिविजुअल डोनर्स हैं, पर फिर भी क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, मेडिकल एक्सपेंस ज़्यादा हैं क्योंकि स्पेशल नीड है और इन्फेंट्स हैं तो उसमें हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, फंड्स की तो दिक्कत आती है छोटे बच्चों बहुत, क्योंकि हर चीज़ फ्री में नहीं आती, हर चीज़ में पैसा लगता है।
0: जी।
1: बच्चों के दूध है, लैक्टोजन है, डायपर्स हैं, खाना है, मेरे 30 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका लंच है, सब कुछ है। मेरी बिल्डिंग है जो ये रेंटेड बिल्डिंग है, इसमें बिजली है और जो स्टाफ है उसकी सैलरी है, कोई फ्री में नहीं करेगा ना, क्योंकि सबका अपना अपना घर है, कोई 1 महीना 2 महीना कर देगा कैसे करेगा, सर्वाइवल कैसे करेगा? तो टिल ऑफ द एंड जो लास्ट में क्वेश्चन आ जाता है पैसा, तो पैसा कहीं ना कहीं तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
0: वाकई में किसी संस्था को चलाना है तो पैसा बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए। आप अगर चाहते हैं इनके साथ जुड़ना तो मैम कैसे जुड़ सकते हैं लोग आपके साथ?
1: आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, हमारे मिरेकल की वेबसाइट पे जाके डोनेशन दे सकते हैं, आप फिजिकली आके दे सकते हैं, किसी एक बच्चे को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं 5,000 पर मंथ, या आपको लगता है हमें किसी का लंच स्पॉन्सर करना है लंच कर सकते हैं बच्चों के लिए, ये काइंड्स में कुछ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, कि किसी बच्चे का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का है एक्सपेंस तो आप वो उसको बेयर कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर कोई एक बंदा 500 रुपये पर मंथ भी देता है तब भी वो हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए वो 500 रुपये छोटा है पर वो हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा।
0: क्या कोई यहाँ क्राइटेरिया है कि मतलब बच्चा इतनी एज के बाद वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होगा या कब तक बच्चा यहाँ रह सकता है?
1: हमारे पास जो सर्टिफिकेशन है वो 0 to 6 तक है। अच्छा। पर मेरे पास बड़े बच्चे भी हैं जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, और मेरा मानना है कि भाई बहन अलग नहीं होने चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से यहाँ थे अब वो बड़े हैं, तो उसके लिए भी हमने एक CCI के लिए फाइल चलाई हुई है कि मेरा एक्सटेंड कर दो 25 बच्चों का, एटलीस्ट मेरे बच्चे मेरे पास ही वो रहेंगे, क्योंकि उनके लिए ये घर है और मैं नहीं चाहती कि वो पहले से उनके पेरेंट्स नहीं है, फिर हम भाई बहनों को भी अलग कर दें, या एक बच्चा बचपन से यहाँ से पला है, अब सडनली आप किसी को चेंज करते हैं, आप सोचो ना हम एक न्यू जॉब भी शिफ्ट करते हैं ना, तब भी हमें कैसा लगता है, और वहाँ तो वो बच्चा है, यहाँ उसकी अटैचमेंट है, पता नहीं दूसरी जगह उसकी अटैचमेंट होती है, वहाँ पे वो मिक्सअप होता नहीं होता है केयर टेकर से या और बच्चे कैसे हैं, तो ये है, ये आपको पलट के थैंक्स भी नहीं कर सकते, इनको पता, इनको ये भी नहीं पता है कि इनके लिए लड़ा कौन, बच्चे को क्या पता, शायद उसको आगे से पता भी नहीं चलेगा। तो लोग जो है आजकल शायद बेनिफिशियरीज के लिए काम करते हैं, या हमको यहाँ से कुछ थैंक्स मिलेगा या हमारी वाहवाही होगी, तो उसके लिए लोग ज्यादा करते हैं, पर इनके लिए ये भी नहीं सोचते। मैं हमेशा कहती हूँ डिपार्टमेंट से भी कुछ भी डिसीजन किसी बच्चे के लिए लेना है तो अपने बच्चे को हमेशा आंखों के आगे रखो कि अगर ये चीज मेरे बच्चे के साथ है तो उस पर कैसा इम्पैक्ट करेगा, तब जाके यहाँ सोचो। हमारे JJAC में लिखा तो है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, पर क्या हम बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के लिए काम कर रहे हैं? हम उस बच्चे को एज अ पेपर के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर, वहाँ से वहाँ ट्रांसफर, वहाँ से वहाँ। वो ये नहीं सोचते, मैंने अभी घर शिफ्ट किया उसमें मछलियाँ ट्रांसफर हुई हैं, तो मछलियों ने दाना नहीं खाया क्योंकि उनके लिए नया घर था, तो वो मछलियाँ हैं, और यहाँ तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं। मेरे स्पेशल नीड रूम में जो बच्चे हैं उनका रूम बिल्कुल सेटअप है, अगर आप उसको एक रूम से या उनकी केयर टेकर भी हटा देते ना, वो खाना नहीं खाते दूसरों से। सोचो परमात्मा ने अगर कोई चीज़ छीनी है ना, तो दूसरी चीज़ दी भी है, तो हम हमारे केयर टेकर्स बहुत मुश्किल होता है जो स्पेशल बच्चों के पास हैं, कि भैया नहीं, दूसरे के हाथ से वो पानी मुंह बंद कर लेते हैं, दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि उनको वही केयर टेकर चाहिए, वही रूम चाहिए जिस रूम में वो लोग रह रहे हैं,
2: वो तो उनको माता पिता मान चुका
1: है। यस, तो मैंने क्या कहा, परमात्मा कुछ चिंता ना कुछ देता भी है एक सेंस, और जो हमारे तरफ पास बच्चे आते हैं उनके अंदर एक ऑलरेडी डर होता है अबैंडन होने का, कि वो ऑलरेडी पहले से उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, और फिर वो यहाँ जेल होते हैं, यहाँ एडजस्ट करते हैं, अपनाते हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर एक डर होता है। तो क्या हम इन बच्चों को ये डर ही दें हमेशा? कुछ अच्छा नहीं दे सकते क्या हम लोग? दे सकते हैं
2: बिल्कुल। जो भी इस धरती पर आया है और आ करके अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो आप गलत है, क्योंकि अगर आपने जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर अच्छा है जिसे आप देख नहीं रहे हैं। अब जैसे ये बच्चे हैं, इनके साथ बचपन से ही बहुत गलत होता आया है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो इस तरह से माँ या बाप के रूप में आगे आता है। तो चलिए अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, बता तो उस वक्त मैं कहां था, बता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और आज के इस प्रोग्राम में यानी आज इस खास मौके पर हम हैं मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी। एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है और वो बच्चे जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं या अपनों ने उन्हें छोड़ दिया है, ऐसे बच्चों को यहाँ पर पनाह दी जाती है। और सिर्फ पनाह ही नहीं बल्कि हर तरह का ख्याल रखा जाता है, फिर चाहे हम मेडिकल की बात करें या फिर उनकी एजुकेशन की बात करें या फिर उनकी हम हर एक चीज़ की बात करें, सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और इस संस्था को, इस पूरे मिरेकल को चलाती हैं यानी कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिमरन लांबा जी, इनसे आज हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं बच्चों के बारे में। सिमरन लांबा जी जो काम कर रही हैं, बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला ये काम है, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देने वाला है। मैं दोबारा कहूँगी, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैम एक बार आप अपने बारे में और बता दीजिए।
1: मेरी जो संस्था का नाम है मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी है, ये सूरजकुंड लेकवुड सिटी के अंदर है। आप गूगल पे जैसे सर्च करेंगे, आप एडॉप्शन एजेंसी डालें या मिरेकल डालें तो आपको आएगा हमारा। वहाँ मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। या किसी को कोई अबैंडेंड बच्चा मिलता है, और आपसे मैं एक चीज़ और भी ये कहूँगी कि अगर कोई लड़की लगता है कि अनवेड है, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसको लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो बच्चा डिलीवर करके उसको फेंके नहीं, उसको हमारे पास आए और हमारे पास बताएं और हम उस बच्चे को सेफ सरेंडर करवाएंगे। उसमें उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। कई बार बच्चों में होता है कि हमें पता नहीं होता और अब बच्चा पैदा किया और फेंक देते हैं। कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, आप प्रेग्नेंट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके लिए आप अबॉर्शन ना कराएं, क्योंकि आप अबोर्ट कराते हैं, बच्चा अबोर्ट नहीं होता, फिर उसको फिर फेंक देते हैं, फिर बच्चा वो स्पेशल नीड हो जाता, पूरी जिंदगी उसकी बेड पर निकल जाती है। तो कोशिश करें, आपको लगता है नहीं, आप गूगल पे जाएं, मेरा नंबर है उसके अंदर, मैं नंबर बोल भी देती हूँ, 7291-977-831। कोई भी लगता है कि प्रेग्नेंट है, बच्चा है, हम नहीं रखना चाहते हैं, इवन कपल भी कि गर्ल चाइल्ड हम रखना नहीं चाहते, आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आके लेके जाएंगे। आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, गवर्नमेंट का प्रोविजन है, कुछ में नहीं होगा, आप अपना बच्चा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: एडॉप्शन की बात करें तो कितने परसेंटेज पे है यहाँ पर
1: एडॉप्शन?

0: ठीक है, रेशियो पर डिपेंड करता है कि बच्चा लीगल फ्री कैसा है, केसेस कैसे हैं। तो पेरेंट्स हैं हमारे पास, पर बच्चे भी हैं, पर लीगल फ्री के ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश करते हैं हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों। जैसे अभी इस महीने हम लोगों ने 5 बच्चे रिलीज़ किए हैं, नेक्स्ट मंथ हम 2 करेंगे। कुछ बच्चे हमारे स्पेशल नीड है, तो हमने स्पेशल नीड बच्चों को भी किए हैं। उनके लिए माता पिता हमें यहाँ नहीं मिलेंगे, पर वहाँ बाहर अब्रॉड मिल जाते हैं। तो फॉरनर्स हमेशा स्पेशल बच्चा लेते हैं। तो है रेशो, कोशिश तो है कि हमारे साथ साल में कम से 10 से 15 बच्चे तो बच्चों को घर तो मिले, परमानेंट घर मिले।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और प्रोसीजर क्या है? कई सारे माता पिता हैं जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, बट अडॉप्शन के प्रोसीजर से डरते हैं। कई बार बहुत सी चीज़ें उनके सामने आती है कि आपसे ये पूछताछ होगी, वो होगी, बहुत सारी चीज़ें। और तो क्या इस तरह के लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों?
0: अडॉप्शन के लिए गवर्नमेंट की साइट है मिशन वात्सल्य, बहुत ईजी साइट है। आप वहाँ जाएँ, वहाँ आप पेरेंट्स का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, आप संस्था में आए, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लेके हम रजिस्टर करके देंगे आपको। ऑनलाइन प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है, शॉर्टकट जाने की जरूरत नहीं है किसी भी पेरेंट को। और लीगलाइज बच्चा लेने चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं कि आपकी इतनी इनकम देखी जाएगी या आप गरीब हैं या रईस हैं। हमें बच्चों के लिए एक अच्छे माँ बाप चाहिए। एक नॉर्मल फैमिली भी अपने बच्चे को पाल लेती है। हम सिर्फ इतना वो देखते हैं कैलकुलेशन कि अगर ये एक बच्चे को पाल पाएंगे कि नहीं पाल पाएंगे, या कभी कोई सिंगल कपल रह जाता है कि एज अ सिंगल स्पाउस क्या बच्चे को पाल पाएंगे। तो हर एजेंसी देती, कहीं बच्चा वापस तो नहीं आएगा। आप समझो, बच्चा को पहले उसके बायोलॉजिकल ने छोड़ा, फिर यहाँ से वो फिर अडॉप्शन में गया, फिर पेरेंट्स वापस आए, तो उसके लिए बहुत नुकसान है। तो ये सब क्राइटेरिया देखते हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती है, कोई डर नहीं है। अडॉप्शन को लेके लोगों के दिमाग में बहुत मिथ है कि हम छुपाएंगे, बच्चा लेके आए उसको छुपाएंगे। क्यों छुपाना, आप क्राइम थोड़े ना कर रहे हो, अच्छी बात है अडॉप्शन कर रहे हो, है ना। तो अडॉप्शन को खुल के करना चाहिए, बता के करना चाहिए, प्राउडली करना चाहिए। ये काम हो रहा है। और खून का रिश्ता क्या होता है? मियां बीवी का खून का रिश्ता नहीं होता, कोई खून का रिश्ता नहीं होता। मुझे लगता है सब सफेद होते हैं। रिश्ता दिल से बनता है, और बच्चा ना पेट से कभी नहीं पैदा होता, बच्चा पैदा ही दिल से होता है। अगर बच्चा पेट से पैदा होता तो मेरे पास होम में बच्चे नहीं होते। तो कभी भी ये सोचे कि हम एडॉप्शन ले रहे हैं, हम खुल के ले रहे हैं। भाई समाज क्या कहता है? समाज का काम है बोलने का। समाज आपके दुख को नहीं देखता, ना किसी को देखता है। आपको एक परिवार मिल रहा है, एक अधूरी परिवार को एक पूरे परिवार मिल जाता है। बच्चे को माँ बाप, माँ बाप को बच्चा। तो अडॉप्शन के लिए हमेशा मैं सबको ये कहूँगी कि लीगल जाए, गवर्नमेंट की साइड है मिशन वात्सल्य। आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, वहाँ पे पास में DCPOs हैं। आपको नहीं फॉर्म फिल करना आता, आप DCPOs के पास जाएं, वो आपको फॉर्म फिल करके देंगे। साइबर कैफे या कोई भी ऐसे इन जगह पे नहीं जाएं। सरकार ने चीजें बना रखी है, सरकारी बंदों के पास आए। क्या पता दूसरा बंदा आपको फ्रॉड करे, आपका डाटा लेके बैठे, फिर आपको समझ में नहीं आऊगा, आपको कह के नहीं जी हम आपको बच्चा दिला देते हैं, जी आप कैसे कर देते, वो फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा हो जाता है। बच्चा खरीदे नहीं, पैसा देके बच्चा नहीं, फिर आपने सामान लिया, बच्चा नहीं लिया। सरकार ने यहाँ पे एक नॉर्मल फीस रखी हुई है कि आपका हर कोई बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है। तो यहाँ कोई रईस गरीब नहीं है, एक नॉर्मल फीस है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, आपके आधार कार्ड, आपका ID प्रूफ वगैरह, आपकी इनकम का प्रूफ। तो इतना मुझे नहीं लगता कोई इतना डिफिकल्ट है जितना लोगों ने बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वेटिंग पीरियड ज्यादा है। वेटिंग इसलिए ज्यादा कि 2 साल कोविड में बंद हो गया, वो बैकलॉग बढ़ गया। पर ऐसा नहीं, आप रजिस्टर करें, बच्चा मिलेगा जरूर, चाहे 3 साल बाद मिले, मिलेगा जरूर।
2: मतलब इतना लंबा टाइम पीरियड भी जाता है?
0: जाता है, क्योंकि कोविड में पहले 1.5 साल की ही वेटिंग थी, पर कोविड में 2 साल बंद था। हम अडॉप्शन देते कैसे ना, पेरेंट्स आते कैसे, वो 2 साल से हमारा बैकलॉग बढ़ गया। अब गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, पर टाइम तो लगेगा हर चीजों को करने के लिए।
2: अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गे मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और हमारे साथ इस वक्त हमारे शो में हैं सिमरन लांबा जी, जो कि मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं।
1: तो जैसे ये रिक्वेस्ट आती है तो क्या कोई रिक्वायरमेंट भी होती है कि हमें कैसा बच्चा चाहिए, किस तरह की नीड है उनकी?
2: आती है, फैमिलीज बहुत चूजी होती हैं। गर्ल और बॉय चूज करने का ऑप्शन होता है, बाकी किसी चीज़ का नहीं होता।

0: कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप ये काम कर रहे हैं और इस बीच कोई ऐसा you know, आपने अपने बारे में सुना हो, या कभी ऐसा लगता हो कि यार ये समाज ही होकर ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर कैसे कोई आगे बढ़ पाएगा? कभी ऐसा हाँ, कोई किस्सा?
1: बहुत चीज़ें सुनते हैं हम लोग को। मेरे को तो काम पे अच्छा, मैडम को तो इंटरेस्ट है, पैसा आता होगा इसलिए मैडम बच्चे अडॉप्शन में दे दें, ऐसा कुछ नहीं। बहुत नेगेटिव, मैं कभी कभी अच्छा भी बोल लूँ, हमारे समाज में है कि जो इंसान अच्छा करता है उसे करने भी नहीं देते हैं। आप सोचो ना, बच्चों को घर मिलेगा। और रही बात फीस की, फीस तो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई, मैंने तो डिसाइड नहीं की हुई ना, और वो फीस भी सोसाइटी के अकाउंट में जाती, मेरे पर्सनल अकाउंट में तो नहीं आती ना। मेरा क्या बेनिफिट है? मेरा ये बेनिफिट है कि मेरे बच्चे को घर मिल रहा है, मेरे बच्चे को घर। घर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के लिए, शायद आपके लिए या किसी और समाज के लिए घर का इम्पोर्टेंस नहीं होगा, पर मेरे बच्चों के लिए घर बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हम लोग सोचते, जब मैंने उनके मुंह से सुनना शुरू किया कि घर, तो मुझको भी रियलाइज हुआ यार घर, ये वर्ड तो मेरे दिमाग में इतने साल में कभी नहीं आया। जब बच्चों को मैंने स्कूल भेजा और जब स्कूल से वो बच्चे वापस आए, एक बच्चा मेरा सो गया, दूसरे बच्चे ने उसको कहा कि उठ जाओ, घर आ गया, और मुझे तब रियलाइज हुआ हाँ घर। मैं तो आज तक अपना एनजीओ की तरह ही चला रही थी इसको, पर मुझे नहीं पता चला उस बच्चे के लिए घर कब बन गया। और एक परमानेंट फैमिली बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है, माँ बाप से बेटर कुछ नहीं है, माँ बाप ही होते हैं।
0: हम भी जब कुछ दिन के लिए घर से बाहर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हमें अपने माँ बाप चाहिए, हमें उनको देखना है, हमारे पेरेंट्स, हम उनसे दूर हैं। तो सोचो कि ये तो बच्चे परमानेंट दूर हैं, इनको तो ये भी नहीं पता कि इनके माँ बाप कहाँ हैं, कैसे कैसे दिखते हैं, या क्या कहानी है, क्या हमारा पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं पता,
1: कुछ नहीं पता। और जिन बच्चों को पता है वो अपने बैकग्राउंड से बहुत नफरत करते हैं, जो बड़े बच्चे जिनको पता है या कोई ट्रोमा है उनको बहुत करते हैं। जो छोटे से बड़े हो जाते हैं, बड़े के पूछते हैं कि बड़ी मम्मा वाई मी,
0: अच्छा आपको बड़ी मम्मा कहते हैं,
1: बड़ी मम्मा कहते हैं, बड़ी मम्मा ऐसा क्यों हुआ, हमारे पापा मम्मी क्यों मर गए, हमें क्यों छोड़ गए, कब आएंगे या आप कब ढूंढोगे हमारे लिए, तो बोलते हैं अच्छा नए पापा मम्मी ढूंढ दो। सोचो तो वाई मी, घर, मैंने क्या कहा ना घर, माँ बाप सब बच्चों को चाहिए। क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, मैं यहाँ बैठी होती हूँ, मैं संडे को भी यहाँ आती हूँ, क्योंकि उनको अपनी हर चीज़ें बतानी होती हैं। स्कूल से आते ही मुझे बच्चे अपनी डायरीज दिखाएंगे, आज ये मिला, या दोस्त चार मिले, आज स्माइली मिला, या कोई अवार्ड मिला, कोई मेडल मिला, तो उस मेडल को उतारते नहीं, सीधा आते भाग पहन के यहाँ के दिखाते, बड़ी मम्मा देखो। सोचो कितना है, तो उन फैमिली क्यों नहीं चाहिए उनको, फैमिली देखो, ये होम ये लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए बच्चे के लिए। हम देखा जाए है तो ये अनाथ आश्रम है ना, और ये परमात्मा किसी का बच्चा यहाँ ना भेजे, परमात्मा किसी का बच्चा नहीं भेजे, आना ही नहीं चाहिए बच्चा। और मेरा तो बस चले, मैं तो सारे बच्चे रिलीज कर दूँ, सारे बच्चे अडॉप्शन में, तो सबका अपना अपना घर खाली होना चाहिए। क्या करना है बच्चों को उनका घर, ताकि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ें बता सकें। यहाँ मेरी जान खाते रहते हैं, बड़ी मम्मा ये ऐसे किया, उसने ऐसे किया, देखो मुझे आज ये मिला, आज मुझे वैसे मिला, तो कितनी चीज़ें हैं जो उनको बतानी है, उनको सुनने वाला कौन है। होम्स में मैं ये नहीं कह रही होम्स रख नहीं रहे, हम लोग एक शेल्टर दे रहे हैं सब कुछ, पर वो प्यार माँ बाप कहाँ से दें।
0: कई बार ना ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं, कई बार की चीज़ें जब समझ नहीं आती, बच्चे को इस तरीके से इस कंडीशन में छोड़ना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप उनको देखती हैं, जब आप तक खबर पहुंचती है, तो आप किस किस केस में, किस किस सिचुएशन में बच्चों को देखते हैं? और मैं चाहती हूं कि आपने जो जो केसेस देखे हैं बुरे से बुरे, वो आप सबके साथ शेयर करें, ताकि कल को किसी के जहन में अगर ये बात आती भी है तो उसको बच्चे का क्या हर्ष होता है उसके बारे में भी बताओ।
1: जब हम लोग बच्चों के केसेस की बात करते हैं, जब कुछ बच्चे साथ बहुत ट्रेजेडी होती है, और कई बार बच्चे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बहुत नफरत करते हैं, कई बार माँ है, फादर ने छोड़ दिया, मदर ने दूसरी शादी कर ली, यहाँ बच्चे को छोड़ गए, फिर मदर ने तीसरी शादी कर ली, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, वो जाता नहीं। अब एक मेरे पास एक है, दो भाई बहन, बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी मदर ने कहा मैं लेके जाऊँगी, उसने मुझे बोला बड़ी मम्मा मैं इस औरत के साथ नहीं जाऊँगा, यस, और उसको पहचानता है कि वो मेरी मम्मी है। मैं कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, उसने ये बोला बड़ी मम्मा मैं इस औरत के साथ नहीं जाऊँगा, इस औरत, मैं औरत नहीं बोलते बेटा, औरत किसने बोला, कह रहे नहीं बड़ी मम्मा वो मेरी मम्मी नहीं है। मैं कहा नहीं वो आपकी मम्मी है, उसके नहीं। तो माँ बाप ऐसी हरकत करते हैं या ऐसी चीज़ें बच्चों को छोड़ देते, देखो बच्चे को जब इनिशियल स्टेज में माँ बाप की ज़रूरत होती है ना, तब माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं। फिर जब वो अपने बुढ़ापे में जाते

फिर उनको बच्चे याद आते हैं, फिर वो चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे पास आए और हम जाए। उसने कहा बड़ी मम्मा मैं यहीं रहूंगा, शैतानी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, पर मैं इस औरत के साथ नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तो मैं कहना हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमें बड़ों को इमोशंस होते हैं, हम ही डिप्रेशन में जाते हैं, हमें एंजाइटी होता है, सब कुछ होता है। नहीं, बच्चों का अलग लेवल की एंजाइटी है जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। हमारा बच्चों की तरफ से कोई गौर ही नहीं है, बच्चों की तरफ हमारा कुछ नहीं है। बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं, बच्चों को भी एंजाइटी है, उनकी अपनी दुनिया और उनके अपने इतने सवाल हैं, उसका शायद आंसर किसी के पास नहीं।

सुबह पे जिस तरह शाम का

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका, आपके साथ प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और हमारे साथ इस वक्त हैं सिमरन लांबा जी, जो कि मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं। बच्चों के अपने सवाल, अपनी बहुत सारी बातें होती हैं, उनको सुनने वाले घर में पेरेंट्स होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो नहीं है उस स्थिति में, वो कहीं ना कहीं आपको ही माँ, आपको ही पिता, सब कुछ आपको ही समझते होंगे। और मैं समझ सकती हूँ कि वो फील कितना प्राउड मोमेंट होता होगा आपके लिए कि आप कितने सारे बच्चों की बड़ी मम्मा हैं।
1: यस, अब जैसे मेरे पास एक बड़ी ब्लड की आशा, तो उसने उसका बर्थडे था, तो मैंने कहा क्या, क्योंकि मैं यहाँ पर हर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, तो उनसे पूछ पूछ के उनके अकॉर्डिंग केक वगैरह आते हैं। अच्छा। तो उसने कहा बड़ी मम्मा मुझे ना BTS का केक चाहिए। मुझे लगा BTS कोई फ्लेवर होगा। मैंने कहा कौन सा फ्लेवर है, नया फ्लेवर है? तो फिर मेरे बेटे ने कहा नहीं मम्मी, आजकल कोरियन ग्रुप है BTS। तो मुझे लगा यार बच्चा बड़ा हो गया, कोरियन ग्रुप मतलब वो देख रही है, तो सोचो उसकी फीलिंग्स है ना। तो फिर मैंने उसके लिए वो BTS का दो उसका बनवा के दिया प्रॉपर। फिर उसने कहा बड़ी मुझे BTS की टी शर्ट चाहिए, ऐसी चाहिए, फिर वो लेके आई। तो पता भी नहीं चलता बच्चे कब आते हैं और कब बड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इच्छाएं किसको बताएंगे वो, किसको बताएंगे वो, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना माँ बाप। और जब उस लड़की की मदर एक्सपायर हुई थी, तो उसकी मदर ने लास्ट उसको एक चप्पल दी थी, लास्ट उसको एक चप्पल दी थी, और वो उस चप्पल को वो अपने पास ही रखती है, सोचो। और हर मदर्स डे में उसको निकालती है। कई बार मेरे बच्चे मदर्स डे फादर्स डे में भी ना थोड़ा मायूस हो जाते हैं। स्कूल्स में थोड़ा सा है कि आप ये भी देखो कि हमारे जैसे के बच्चे भी जा रहे होते हैं स्कूल के अंदर, तो शायद ही मदर डे फादर डे हम एक दिन ही क्यों सिखाएं, हमेशा सिखाएं ग्रैंड पेरेंट्स डे, क्योंकि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उनको बहुत मुश्किल होती है।
0: और सबसे बड़ी चीज़ बच्चों के साथ सहानुभूति,
1: सहानुभूति, क्योंकि जब मदर से आता है बड़ी मम्मा किसका नाम लिखे, मैं कह लिखो तो बच्चे मेरा नाम लिखते हैं, फादर जिसमें लिखते हैं, पर कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं कि हमारे माँ बाप नहीं हैं।
0: कितने बच्चे हैं जो अभी इस वक्त स्कूल जाते हैं, किस किस एज के?
1: वो 30 बच्चे हैं, 3.5 साल से 12 साल तक का बच्चा स्कूल जाता है।
0: अच्छा।
1: स्कूल जाते हैं यहाँ पे मुरारी लाल स्कूल है, उसमें जाते हैं, हमारे बस आती है प्रॉपर, बस में जाते हैं। अच्छा। पढ़ाई में अच्छे हैं, और मैं तो जो बड़े बच्चे बीच में आए थे उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने किया। एक को तो डॉक्टर बनना है, तो बहुत मेहनत कर रही है वो लड़की, क्योंकि बड़ी एज में आके फिर फर्स्ट करना, फिर सेकंड करना, फिर मैं तो उसको फोर्थ में करा रही थी क्योंकि हम जंप करा रहे थे। उसने कहा नहीं मुझे ना फिफ्थ में ही आप कराओ, उसको फिफ्थ में ही आप करवाओ उसको। तो मैंने मना किया उसको आशा को कि नहीं बेटा, तो उसने कहा नहीं बड़ी मम्मा मुझे फिफ्थ में करो। तो प्रिंसिपल से उसने बात की और उसे फिफ्थ में कराया। अब वो फिफ्थ करेगी, फिर फिफ्थ के बाद उसने खुद कहा कि मैं सेवन्थ करूँगी, फिर एट्थ नहीं सीधा मुझे नाइन्थ में करना, ताकि उसकी उसको उसकी उम्र भी बढ़ गई ना, बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं। तो ये है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे और बच्चों से पीछे हैं, क्योंकि उनकी स्कूलिंग लेट शुरू हुआ, उनका वैसा अलग से ट्रेजेडी थी। अपनी मेहनत अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं।
0: आपके अभी तक जितनी भी बातें मैंने सुनी हैं, मतलब आप अपने बारे में कम और इस ऑर्फनेज के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। सबका अपना ड्रीम होता है, मुझे बड़े होके ये बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे अच्छा अच्छा पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छी अच्छी फैमिली बनानी है मुझे। मुझे लगता है कि आपका सपना सिर्फ और सिर्फ मिरेकल को आगे बढ़ाना है, राइट?
1: मेरा सपना बस ये।
0: तो आज से अगर मैं 5 साल आगे आपको देखती हूँ, क्या सपना है आपका, आप मिरेकल को कहाँ तक लेकर के जाना चाहते हैं?
1: मैं मिरेकल को काफ़ी आगे लेके जाऊँगी। मेरा सपना है अपने बच्चों को IAS दुनिया बनाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने होम से 2 IAS भी नहीं निकाले तो क्या फ़ायदा। काफ़ी आगे लेके जाऊँगी, इवन नॉर्मल बच्चे नहीं, स्पेशल बच्चे भी। मेरे स्पेशल बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, मेरे पास एक बच्चा है बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, उसके लिए भी ऐसा नहीं कि स्पेशल बच्चे आइए आप दान दीजिए और रोटी चावल, नहीं, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना। मेरे पास स्पेशल एजुकेटर है, वो अच्छे से उनको ट्रीट कर रही है, अच्छे से उनको समझा रही है, पढ़ा रही है, और उनमें काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, ताकि अपने पैरों पे खड़े। मेरा मानना है कि 18 साल के बाद उनको पता होना चाहिए कि लक्स साबुन भी हमने खरीदना है, इंडिपेंडेंट। मैंने यहाँ अपाहिज नहीं बनाने, हमारे यहाँ डोनेशन देने का तरीका भी अलग है। भाई आप हाथों में बांट के लेके नहीं जाओगे, आप दे के जाओ और रिसीट लेके जाओ। बच्चों को हम वैसे देंगे, एक एक चीज हाथों में नहीं, या फोटोशूट नहीं करना चाहिए। आपने देना दो, नहीं देना मत दो, क्योंकि उससे क्या है, देखो उनकी ग्रूमिंग नहीं होती। बच्चों में ना बिहेवियर इश्यूज भी बहुत होते हैं, फिर वो डिपेंड हो जाएंगे, उनको लगेगा हमें तो कोई देगा। उनको पता होना चाहिए हमें अर्न करना है भाई, हमें हर चीज अर्न करनी है, मेहनत करनी है, इंडिपेंडेंट बनाने हैं बच्चे। अब जैसे सैटरडे संडे को ऑफ होता है, तो अलमारियां वो अपनी अपनी आप साफ करते हैं। जिसकी सबसे बेस्ट अलमारियां होगी उसको उसका डायपर को गिफ्ट चाहिए, या बाहर जो भी चाहिए, और सैटरडे में क्या बॉयज मेरे हमेशा जीतते हैं, क्योंकि वैसे वो हमेशा कभी अच्छे नहीं रखते, पर उनको पता है सैटरडे को उनको रखनी है सबसे, लड़कियों से भी अच्छे सेट सेट करके रखते हैं हमारे यहाँ। गाड़ी चाहिए, रिमोट कंट्रोल वाली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इससे क्या उनको इंडिपेंडेंट होंगे। क्योंकि सच्चाई क्या, 18 साल के बाद तो देखो एक ना एक दिन तो करना ही है ना, अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। तो आदत मुझे वही डालनी है कि मेरे होम से जब बच्चा बाहर निकले उसको दान की आदत नहीं है, उसको इंडिपेंडेंटली कि हाँ मैं ये करके इतना कमा के इतना करके मैं खड़ा हो सकता हूँ।
2: तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे बच्चे जो आज इंडिपेंडेंट हैं?
1: हाँ, है मेरे पास इंडिपेंडेंट बच्चे हैं मेरे, पर अभी मैंने एडॉप्शन ज़्यादा दिए हैं तो मैंने बड़े होने नहीं दिए, कोशिश मेरी थी कि एडॉप्शन हो जाए। ये वो बच्चे जो कोविड में भाई बहन आ गए, सिबलिंग्स हैं या माइनर स्पेशल नीड हैं, तो ये वो बच्चे हैं। अदरवाइज तो मेरे पास सारे बच्चे अडॉप्शन में, क्योंकि पहली प्रायोरिटी मेरे लिए है बायोलॉजिकल फैमिली, दोबारा उसके बाद अडॉप्शन नहीं है, फिर तो अपने पैरों पे खड़े होंगे वो। इसलिए मैंने पढ़ाई पे फोकस किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम स्कूल को भी फीस देते हैं, कोई वो नहीं है, क्योंकि हम फंड्स ले रहे हैं और फीस दे रहे हैं। दो ट्यूटर हैं, पढ़ाई की वैल्यू शायद मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगी, पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पढ़ेंगे तो अपने पैरों पर खड़े होंगे, पढ़ाई है। और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मैं ड्रीम देखती हूँ। देखो ना, आशा का ड्रीम है डॉक्टर बनना, और उस डॉक्टर बनने के लिए वो बच्ची सच में बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि बड़ी एज में आके फर्स्ट में बैठना छोटे बच्चों के साथ इतना इजी नहीं है, वो सबसे बड़ी है। और फिर मैथ पकड़ना वो काफ़ी टफ सब्जेक्ट है मेरे लिए, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है मैथ, और मैथ को निकालना करना, और वो कर रही है बच्ची, सोचो उनका अपना एक ड्रीम है। तो मैं जो ड्रीम जीती हूँ मैं अपने बच्चों का ड्रीम जीती हूँ, क्या कर रहा है वो। आशा डॉक्टर बनती है, इससे बड़ा बेटर क्या है, क्या अचीवमेंट, और कुछ भी नहीं है।
2: कितना प्राउड मोमेंट होता होगा ना जब आप अपने आप को शीशे के सामने देख के ये सोचते होंगे कि लोग तो एक दो तीन या चार बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, मैं तो कितने सारे बच्चों की पेरेंट्स हूँ, और बड़ी माँ दर्जा ही आपको बड़ी माँ का मिले।
1: हाँ, मेरे को तो वाकई में लगता है, मुझे कोई कहता ना आप ऐसे वैसे, मैं कहा मुझसे ज़्यादा रईस कोई नहीं है, मैं इतने सारे बच्चों की माँ, क्योंकि वो बच्चे सच में मुझसे प्यार करते हैं, सच में कुछ भी, बड़ी मम्मा ये, बड़ी मम्मा ऐसे, बड़ी मम्मा ऐसे, देखो बड़ी मम्मा, और खुश है। और उनको बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे नहीं, ऐसे करना। हाँ, बीच में कोई प्रॉब्लम थी, अब हमारी अपने फंडिंग की प्रॉब्लम थी, तो दूसरे बच्चे, बड़ी मम्मा को दुखी मत करो, बड़ी मम्मा के पास पैसे नहीं है, इस बैग को फाड़ना नहीं, इसको भी चलाना है। अपने आप ही अपने आप ही समझ रहे हैं। मैं तो उनकी बातें सुन रही थी, मैं तुमको किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं? अरे बड़ी मम्मा हमें पता है अभी फंड नहीं आया ना आपके पास, मैंने उसको बोल दिया वो बैग नहीं फाड़ेगा। मतलब सोचो अपने आप ही कॉस्टिंग करना, बजट की कॉस्टिंग करना उन्होंने खुद ही सीख लिया कि बड़े मम्मा को दुखी नहीं करना। तो सोचो कितना भी

0: करते हैं।
1: जी वाकई में एक बहुत प्यार एक सम्मान की बात है कि और बहुत खुशी भी मिलती होगी आपको कि बच्चे इस कदर प्यार करते हैं, जबकि आपका ब्लड से कोई रिश्ता नहीं है, बट उसके बाद भी आपको माँ कहना, आपकी फीलिंग समझना एक वाकई में प्राउड मोमेंट होता होगा। आज की जेनरेशन की बात करें तो बहुत ना ऐसे ज़रा सा दुख आए या ज़रे से असफलता मिली तो बहुत जल्दी हार जाते हैं, उसके बाद फिर या तो दूसरा रास्ता अपना लेते हैं या फिर थक हार के बैठ जाता है कि हमारी ज़िंदगी में लगता भगवान ने कुछ दिया ही नहीं है हमें। आप उन बच्चों को, उस यूथ को, स्पेशली आज के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप काम कर रही हैं, जो लोगों को आप एक मैसेज दे रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी यूथ को?
0: आजकल के बच्चे जल्दी थक जाते हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हमारे पास अगर दुख आया तो सुख भी आया, और ये हमारे अपने अंदर की जंग है और इसे हमें लड़ना है। हमें कमज़ोर नहीं बनना है कि हम वहाँ से, कोई बात नहीं, सक्सेस नहीं दोबारा हो जाएंगे। फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप टॉपर नहीं, मैं टॉपर नहीं थी अपनी क्लास की, मैं कर नहीं रही हूँ, और जो लोग टॉपर भी होते ज़्यादा क्या कर लेते हैं, तो ये मत सोचो कि कंपटीशन प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में कंपटीशन आ गया। पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपैरिजन करते हैं, ये फलाने का बच्चा ये फलाने का, क्या ज़रूरत है? सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है भाई, आपके पास सबका बच्चा है, अच्छा है, अच्छे संस्कार हैं, वो ही बहुत है। और यूथ को तो खासकर मैं कहूँगी हारने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं भाई। आप अंबानी को या किसी को देखते हो कि एलन मस्क को देखते हो, वो आज सक्सेस नहीं हुए, उनकी स्टार्टिंग देखो, सबकी स्टार्टिंग जीरो से होती है। तो इस चीज से मत डरो कि यार आज मुझे 10,000 की सैलरी मिल रही है, मेरा ऐसे होगा, आज 10 से कल 50 भी होगी, पर उस 10 में आप काम कितना सीख रहे हो, काम सीखो, फोकस पैसे पे नहीं, काम पे करो, आपको काम आएगा तभी तो पैसा आएगा। और जल्दी हार जाते हैं यार, टाइमिंग ज्यादा है, ऐसे नहीं, काम करो, मेहनत करो, काम करो, और ये कुछ नहीं है, आपको कोई मोटिवेशन जरूरत नहीं, आप शीशे के आगे खड़े हो, अपने आप को खुद मोटिवेट करो, क्योंकि आपसे बेटर कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई दूसरा इंसान नहीं जानता आपको। तो आपको कभी लगता है ना हम थक रहे हैं या हमें कुछ ऐसा मायूस हो रहा है, शीशे के आगे खड़े हो जाओ, शीशे के आगे खड़े हो जाओ और अपने आप से बात करो कि मैं इतना कायर नहीं, ठीक है। दुनिया में परमात्मा ने अगर हमें भेजा है ना, तो कुछ सोच समझ के भेजा, हर बंदे के लिए ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ बनाया। तो ऐसे नहीं कि अपनी ज़िंदगी से हार जाओ, सुसाइड कर लो, ऐसे डिप्रेशन में चले जाओ, ड्रग्स ले लो, नशे में चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता, और ऊपर वाले ने आपको जब भेजा है तो कुछ ना कुछ एम के लिए भेजा। क्या पता आप किसी रिक्शे वाले के लिए बहुत अच्छे हो, किसी को आप चाय पिलाते हो एक कप, वो चाय उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो अपने लिए देखो कि आप कहाँ अच्छे हो
1: जी। तो आप मोटिवेट रहो, मोटिवेट करो लोगों को, मेहनत करो ऑफ कोर्स, और जितना भगवान ने दिया है उसमें खुश रहो, कभी शिकायत मत करो। ये शिकायतें जो हम अक्सर भगवान से करते हैं, आज हम जहाँ पर हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, उनके पास तो वो मौके भी नहीं हैं कि वो शिकायत कर सकें। वो जितना उन्हें मिल रहा है उसमें वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, और हमारे पास भगवान ने इतना दिया है, लेकिन उसके बाद भी शिकायतें हमारी ख़त्म नहीं होती है। तो कभी शिकायत मत करो, जितना भी मिला है उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा जरूर करो। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू।

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ी सिमरन लांबा जी जो कि मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने अपनी बातों से कई कुछ जाहिर किया, बच्चों की स्थितियां बताई, बच्चों की जो कहानी, इतने छोटे बच्चे हैं किस तरह से ये बच्चों के लिए काम करते हैं, किस तरह से बच्चों के हित के लिए इनका जो काम है, जो इनकी ज़िंदगी है वो समर्पित है। तो मैं आपसे भी कहूँगी सिमरन लांबा जी जैसे कई सारे लोग हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी इस फील्ड में आना या कहें कि बच्चों के लिए काम करना, इस संस्थाओं के साथ जुड़ना अभी बाकी है। तो अगर आप भी चाहते हैं, आपके मन में भी ये है कि हमें बच्चों के लिए कुछ करना है और या फिर ऐसे ही ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करना है, तो आप भी इस तरह की संस्थाओं के साथ जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह के कामों में आगे आइए और मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ पर लोग सभी जुड़ जाते हैं वहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ को अंजाम मिलता है। तो बस आप लोग भी ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ें और इनके कामों के साथ जुड़ें ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। और अब मेरे चलने का वक्त हो गया है तो मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।

0: सुन रुबिया प्यार हो गया
1: सच
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे शायर की कि जब वो अपने शेर लोगों को सुनाता है तो लोग वाह वाह कहने पर मजबूर हो जाते हैं। नाम है राहत इंदौरी। देखिए दोस्तों, राहत इंदौरी 1950 को इंदौर में पैदा हुए थे। उनका पूरा नाम राहत इंदौरी नहीं बल्कि राहत कुरैशी था। उनके पिता का नाम था रफतुल्ला कुरैशी और माँ का नाम मकबूल उन्निसा बेगम। और इनकी जो शुरुआती पढ़ाई थी देवास और इंदौर के नूतन स्कूल में हुई थी। इसके बाद इंदौर विश्वविद्यालय से उर्दू में एमए और उर्दू मुशायरा शीर्षक से पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद 16 सालों तक इंदौर विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य के अध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दी और एक पत्रिका थी जिसका नाम था शाखें, उसमें 10 सालों तक संपादन भी किया था और सालों साल वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुशायरों की शान बने हुए थे। इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें आज मैं आपसे साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते सलाम।

और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, राहत इंदौरी उर्फ राहत कुरैशी ने दो शादियां की थी। उन्होंने पहली शादी 27 मई 1986 को सीमा राहत से की। सीमा से उनको एक बेटी शिबली और दो बेटे जिनका नाम फैजल और सतलज राहत है। उन्होंने दूसरी शादी की थी अंजुम रहबर से, जो कि ये बात है 1988 की। दोस्तों, अंजुम से उनको एक बेटा हुआ और कुछ सालों के बाद इन दोनों में तलाक हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहत इंदौरी कैसे बने शायर। हुआ क्या दोस्तों, राहत इंदौरी के शायर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो अपने स्कूली दिनों में सड़कों पर साइन बोर्ड जो होता है ना, उस पर लिखने का काम किया करते थे। बताया जाता है कि उनकी लिखावट काफी सुंदर थी। वो अपनी लिखावट से ही किसी का भी दिल जीत लिया करते थे, लेकिन तकदीर ने तो उनका शायर बनना मुकर्रर कर दिया था। एक मुशायरे के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर शायर जान निसार अख्तर से हुई। बताया जाता है कि ऑटोग्राफ लेते वक्त राहत इंदौरी ने खुद को शायर बनने की इच्छा उनके सामने जाहिर की थी। अब राहत इंदौरी की इच्छा को जान निसार अख्तर ने कितनी तवज्जो दी, इसके बारे में भी बात होगी। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर। मुझे

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि एक बार राहत इंदौरी की जानिसार अख्तर से मुलाकात हो गई। जानिसार अख्तर यानी कि जावेद अख्तर साहब के पिताजी, उनसे मुलाकात हुई और मैं भी शायर बनना

करता हूँ, ये इच्छा उन्होंने उनके सामने जाहिर कर दी। तब अख्तर साहब ने कहा था कि पहले 5000 शेर जुबानी याद कर लें, फिर वो शायरी खुद ब खुद लिखने लगेंगे। तब राहत इंदौरी ने जवाब दिया कि 5000 शेर तो मुझे पहले से ही याद हैं। इस पर अख्तर साहब ने जवाब दिया कि फिर तो तुम पहले से ही शायर हो, देर किस बात की है, स्टेज संभाला करो। उसके बाद राहत इंदौरी इंदौर के आसपास के जो इलाके थे वहाँ की महफिलों में अपनी शायरी का जलवा बिखेरने लगे। उसके बाद धीरे धीरे वो एक ऐसे शायर बन गए जो अपनी बात अपने शेरों के जरिए इस कदर रखते थे कि उन्हें नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता। राहत इंदौरी की शायरी में जीवन के हर पहलू पर उनकी कलम का जादू देखने को मिलता था। बात चाहे दोस्ती की हो या प्रेम की या फिर रिश्तों की, राहत इंदौरी की कलम हर क्षेत्र में जम कर चलती थी। इसी के साथ उनके और भी बहुत सारे कलाम हैं, आपके साथ साझा करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है राहत इंदौरी के बारे में। राहत इंदौरी एक ऐसा नाम कि जिसने अपने शेरो शायरी से लोगों को दीवाना बना दिया था। अपने देश भारत में ही नहीं बल्कि वो जिस देश में भी जाया करते थे और अपनी शायरी से लोगों को दीवाना बना दिया करते थे। उनकी शायरी कहने का जो अंदाज है, वो अंदाज ही लोगों को इतना अच्छा लगता था कि उनके दीवाने हो जाया करते थे। और राहत इंदौरी की बात चली है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर राहत इंदौरी उर्दू तहजीब के, कह सकते हैं कि वट वृक्ष की तरह थे। लंबे अरसे से श्रोताओं के दिल पर राज करने वाले राहत इंदौरी की शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब का नारा बुलंद था। कहते थे कि शायरी और गजल इशारे का आर्ट है। वो कहते थे कि अगर मेरा शहर जल रहा है और मैं कोई रोमांटिक गजल गा रहा हूं तो अपने फन, देश, वक्त सभी से दगा कर रहा हूं। ऐसा कहना था राहत इंदौरी का, ऐसा जज्बा था उनके भीतर अपने देश भारत के लिए। और भारत के लिए भी उन्होंने एक से बढ़कर एक शेर लिखे हैं, उनका भी जिक्र करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, हर कोई अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। क्षेत्र सबका अलग अलग हो सकता है, उनकी अपनी पसंद के मुताबिक, उनकी रुचि के मुताबिक। बात चल रही है शायर की, और शायर हैं राहत इंदौरी। हर आदमी की यही इच्छा होती है कि वो अपने फन को, अपने टैलेंट को इतना निखार ले कि लोगों के बीच जब वो जाए तो लोग उसकी शायरी से या जो भी कला वो जानता है उस कला से अपना बना लें। राहत इंदौरी के अंदर ये जादू वाकई में था कि किस तरह से लोगों को सम्मोहित किया जाता है, किस तरह से उनके जैसा बनकर उन्हीं की बात उनको कहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है जो राहत इंदौरी के साथ थी। शायरी लिखने से पहले वो एक चित्रकार बनना चाहते थे, और जिसके लिए उन्होंने व्यवसायिक स्तर पर पेंटिंग करना शुरू भी कर दिया था। वो भारतीय सिनेमा के जो पोस्टर होते हैं ना, और जो बैनर होते हैं, उनको बनाने का काम शुरू कर दिया। यही नहीं, वो किताबों के जो कवर होते हैं ना, उन कवर को भी डिजाइन किया करते थे। उनके गीतों को 11 से भी ज्यादा भारतीय सिनेमा ब्लॉकबस्टर फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। उसी फहरिस्त में नाम आता है मुन्ना भाई MBBS का। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहत इंदौरी एक सरल और स्पष्ट भाषा में कविता लिखते थे। वो अपनी शायरी की नज्मों को एक खास शैली में पेश किया करते थे। उनकी जो पहचान थी ना, वो पहचान भी सबसे अलग थी। राहत इंदौरी की जिंदगी के बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही है राहत इंदौरी की। चित्रकारी में भी काफी नाम अर्जित किया था राहत साहब ने। राहत इंदौरी की दो बड़ी बहनें थीं, जिनके नाम तहजीब और तकरीब थे। एक बड़े भाई अकील और फिर एक छोटे भाई आदिल रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और राहत साहब को शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपने शहर इंदौर में मात्र 10 साल की उम्र से ही एक साइन चित्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। चित्रकारी उनकी रुचि के क्षेत्रों में से एक थी और बहुत जल्द ही इस क्षेत्र में उनका नाम हो गया था। अपनी प्रतिभा, असाधारण डिजाइन कौशल, शानदार रंग भावना और कल्पना के चलते वो कुछ ही समय में इंदौर के व्यस्तम साइन बोर्ड चित्रकार बन गए थे। एक दौर वो भी था जब ग्राहकों को राहत के जरिए चित्रित बोर्डों को पाने के लिए महीनों का इंतजार करना भी कबूल था। तो इस तरह का दौर था हमारे आज के शायर राहत इंदौरी का। लेकिन उनकी जिंदगी से कुछ और भी बातें जुड़ी हैं, आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है राहत इंदौरी के बारे में। अब उनको शेर पढ़ने का इतना शौक था कि वो चाहते थे कि जो मेरा कलाम है मैं लोगों को सुनाऊं, और इसीलिए उनके अंदर ये बात पैदा होती थी कि मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूं, इसके लिए क्या करना होगा, ये सवाल उनके जहन में आता था। राहत साहब पर लिखी डॉक्टर दीपक रूहानी की किताब, जिसका शीर्षक है मुझे सुनाते रहे लोग वाकया मेरा, इस किताब में एक किस्से का जिक्र है कि राहत साहब इंदौर के नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे जब वो 9वीं क्लास में हुआ करते थे। तो उनके स्कूल में एक मुशायरा होना था। राहत साहब की जो ड्यूटी थी वो शायरों के वेलकम में लगी थी। वहां जब जानिसार अख्तर आए तो राहत साहब उनसे ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए और कहा कि साहब मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। इस पर जानिसार अख्तर साहब बोले कि भाई देखिए, पहले कम से कम आपको 5000 शेर याद होना चाहिए। तब राहत साहब फौरन बोले कि अरे साहब, इतने शेर तो मुझे अभी याद हैं। अब राहत इंदौरी की इस बात को सुनने के बाद जानिसार अख्तर साहब ने क्या कहा आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है राहत इंदौरी के बारे में और किस्सा चल रहा था कि एक बार जानिसार अख्तर साहब से जब राहत साहब की मुलाकात हुई तो राहत साहब ने कहा कि मैं भी शेर बोलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो जानिसार अख्तर साहब ने कहा इसके लिए आपको कम से कम 5000 शेर जबानी याद होने चाहिए बरखुरदार। तो राहत साहब ने कहा कि साहब इतने शेर तो मुझे अभी याद हैं। ये बात सुनने के बाद जानिसार अख्तर साहब ने कहा तो फिर अगला शेर जो होगा वो तुम्हारा ही होगा। इसके बाद जानिसार अख्तर साहब ने ऑटोग्राफ देते हुए अपने शेर का पहला मिसरा लिखा और मिसरा कुछ यूं था, हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह। राहत साहब के मुंह से दूसरा मिसरा निकला, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। अब दोस्तों, डॉक्टर राहत इंदौरी के इस शेर के साथ ही आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड, फील लाइव। हमारे शो बहुत स्पेशल होता है, रीजन बीइंग यहां पर हम तो स्किल्स की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो टॉक अबाउट अ फ्यू मेजर थिंग्स जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। ये माइट बी आपके आसपास कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको एड्रेस करने का काम इस शो में हम लोग करते हैं। आज अगेन वी आर हेयर विद अ स्पेशल गेस्ट विद अस, और आज का शो अगेन बहुत खास होने वाला है बिकॉज वी हैव मिस्टर धीरज शर्मा हु इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब अमूमन आप अगर हमारे शो सुनते हैं तो आपको पता होगा कि भैया कितने सारे फ्रॉड्स हमारे आसपास होते हैं, लोग ताक लगाए बैठे हुए हैं कि कैसे एक ब्रेक थ्रू मिले आपके फोन का, आपके व्हाट्सएप का, आपके वॉलेट्स का, और किस तरीके से आपके फंड्स को गायब कर दिया जाए। बट यहाँ पर आज के शो में हम यही एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, प्राइमरीली डिजिटल अरेस्ट। अगेन हम कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं, कई बार ये बात बता चुके हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है कोई ऐसी टर्म इंडिया में, बिल्कुल एक आप कह सकते हैं नॉन एग्जिस्टिंग एक एंटिटी है, स्टिल लोग उसका विक्टिम बन जाते हैं। सो विल एड्रेस ऑल दीज थिंग्स कि कैसे आपका फोन हैक हो सकता है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, आपके एंड पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फोन के एंड पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। ऑन दिस नोट विल बिगिन द शो, आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ वैल्यूज मिलने वाली है। बट फर्स्ट विल वेलकम मिस्टर धीरज शर्मा। हाई सर, वेलकम टू आर शो।
5: थैंक यू सागर टू ब्रिंग मी ऑन दिस शो। दिस इज यू नो वेरी डिलाइटफुल फॉर मी टू टॉक अबाउट द साइबर थ्रेट्स वी हैव नाउडेज।
4: सो अमेजिंग सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। I would like to start with a very basic question. When we talk about cyber threats, इसमें primarily गलती किसकी होती है? User की होती है, phone की होती है? क्या वो चीजें हैं जो common mistake सब लोग करते हैं?
5: Common mistake इसमें सागर जो होती हैं वो होता है कि हम panic में आ जाते हैं। ये technological fear है, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा psychological जो role है वो ज़्यादा play करता है। क्योंकि जब भी आप किसी भी केस को अगर आप एसेस करोगे तो उस केस के अंदर आपको सबसे ज़्यादा यूज़र का जो प्रेशर है, डर है, फियर है, राइट, उसका लालच है, वही उसको हेल्प करता है, हैकर को हेल्प करता है उसको हैक करने में। क्योंकि टेक्नोलॉजी बिना आपकी मदद के, बिना आपकी मर्जी के उसको आपके डिवाइस का एक्सेस नहीं दे सकती, कहीं ना कहीं आप ही अलाउ करते हो कि वो आपको हैक करे। उसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं, मैं मानता हूं कि टेक्निकल रोल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है साइकोलॉजिकल रोल। वो आपके ऊपर एक प्रेशर बनाएगा, आपको कुछ थ्रेट्स देगा और उसकी हेल्प से वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन चोरी कर लेगा।
4: कुछ कॉमन थ्रेट्स क्या हैं साइबर थ्रेट्स?
5: अगर मैं कॉमन थ्रेट की बात करूँ, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग ऑफ इंट्रोडक्शन कहा कि आज की डेट में हमारे पास कई तरह के साइबर थ्रेट हैं, जिसमें से डिजिटल अरेस्ट एक थ्रेट है। जिसमें मैं अगर आपको एक रिसेंटली एक केस बताऊं, जिसमें एक लड़की थी, हमारी फरीदाबाद की ही लड़की थी, वो कनाडा पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। तो उसको एक दिन एक फ़ोन आता है कि आप, उसका नाम बोला जाता है कि आपका नाम सो एंड सो है, आपके पास आपका आधार नंबर ये है। बोलते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे ट्रेस हैं कि आप किसी ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हो। लड़की घबरा जाती है, उससे बोला जाता है कि आपका ये पासपोर्ट नंबर है, ये डिटेल्स हैं, आप उसकी सारी डिटेल वेरीफाई कराई जाती हैं। वो सारी डिटेल वेरीफाई करती है कि हाँ मेरी सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद उसको बोला जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट पे हो, आप मूव नहीं कर सकते हो, आपको कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, अपने फोन को, मोबाइल को आप चार्ज पे लगा लो। और वो बहुत घबरा जाती है। उसके बाद उससे बात करी जाती है, नेगोशिएट किया जाता है, कई घंटों तक उसको डराया जाता है। और क्योंकि उनको पता था, हैकर को पता था कि उसके अकाउंट में पैसे हैं, और तकरीबन 3.5 लाख रुपये उससे 2 या 3 ट्रांजेक्शन में वो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। शाम तक जब वो दरवाज़ा नहीं खोलती है तो घर वाले थोड़े पैनिक होते हैं, वो बार बार दरवाजा खटखटाते हैं, पड़ोसी लोगों को बुलाते हैं और दरवाजा तोड़ा जाता है। जब दरवाजा तोड़ा जाता है, लड़की बहुत डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है। जब उससे बात करी जाती है तो पूरा केस निकल के सामने आता है। फिर पुलिस को इन्फॉर्म कराया जाता है, पुलिस आती है, जो यहाँ के SP थे उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं वहाँ पहुँचा। तो हमने जो डायग्नोज किया वो ये था कि लड़की का मोबाइल हैक था, उसकी सारी ट्रांजैक्शन, सारी डिटेल्स उनके पास, हैकर्स के पास थी, और उससे वो आइडिया लगा पा रही थी कि वो किस स्टेट ऑफ मूड में है, क्योंकि लड़की के कैरियर का सवाल था। उसने बहुत साल शायद मेहनत करी थी कनाडा जाने के लिए और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो इसी डर से, इसी फियर से कि कहीं उसका कनाडा का वीज़ा रद्द ना हो जाए, वो पैनिक में आने के बाद उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अगर मैं इस केस में कहूँ तो इस केस में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है रीज़न, वो होता है अनअवेयरनेस। क्योंकि हम बहुत सालों से इस पर बात कर रहे हैं, राइट, साइबर थ्रॉट पर, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता है। कई बार लगता है कि मुझे पता है, मैंने 5 बार सुना है तो सबको पता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों को, अगर हमारी बात होती है, लोगों को नहीं पता है। लोग, बहुत से लोग हैं जो रेडियो नहीं सुनते हैं, TV नहीं देखते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है। अब इस पूरे केस में क्या होता है कि वो आपको प्रेशर बनाते हैं, ये सारे प्रेशर का गेम है। उनको पता है, ऐसा नहीं है कि वो रेंडम किसी को पकड़ के अटैक करेंगे और आपके

0: आपने हमें ये चीज़ बताई, बट यहाँ पर आप जो बोल रहे हो कि हमारे फोन को पूरा ट्रेस किया जाता है, क्या मैं पता लगा सकता हूँ किसी तरीके से कि मेरे फोन को ट्रेस किया जा रहा है या नहीं?
1: देखिए, आज की टाइम में फोन आपका जनरल, मैं कहूँगा कि सबका फोन मैक्सिमम हैक हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार फेसबुक का डेटा हैक हुआ है, राइट? और जनरली मैक्सिमम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। इवन क्या होता है कि आप एज ए यूज़र, आपके पास बहुत सारे लिंक आते हैं, वो लिंक आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिशिंग अटैक के थ्रू आते हैं, जहाँ पर वो एक अट्रैक्टिव ऑफर देके आपको एक लिंक देता है, वो आपको ट्रेस करते हैं। ये बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा कि आप घर में किसी से बात कर रहे हैं, बात करते वक्त आपने एडिडास शूज़ का बात करा कि मुझे एक एडिडास का शूज़ खरीदना, मैं देख रहा हूँ, और थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे धीरे एडिडास के आपके पास ऐड आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्यों होता है? आपका फ़ोन, आपके फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन आपको 24 आवर ट्रेस करती है कि आप क्या बात करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या आपका टेस्ट है, क्या आपका शौक है, वो सारी चीज़ें असेस करती हैं। वो डेटा कहीं ना कहीं एप्लीकेशन के पास जाता है, और जो जो एप्लीकेशन कंप्रोमाइज हो जाती है, उस एप्लीकेशन का सारा डेटा उनके पास पहुंच जाता है। कई बार हैकर्स अपनी एप्लीकेशन भी बना के धीरे धीरे यूजर्स के उसमें लिंक के थ्रू या किसी और थ्रू इंस्टॉल कर देते हैं। तो इन सब के थ्रू आपका जो मोबाइल है उसका एक्सेस यूजर ले सकता है। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं आज की डेट में जिनके थ्रू आपका जो अकाउंट है, जो मोबाइल है, उसका एक्सेस लिया जा सकता है।
0: और ये आप कह रहे हो कि मेरी मर्जी के बिना नहीं हो सकता है, वो मुझे डराएंगे, पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट करेंगे, मर्जी मेरी ही होगी, चाहे सिचुएशन कोई भी बनाई जाए, ट्रेसिंग सिचुएशन होगी मेरे सामने और मैं डर के उस चीज में एक्ट वैसे करूंगा।
1: बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। एक केस था जिसमें एक यूजर को लिंक आया, ठीक है, उस यूजर ने उस लिंक पे क्लिक किया, उसको KYC का एक मेल आया था, मैसेज आया था कि आपका KYC ड्यू है, अगर आपने नहीं करा तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो प्रेशर में आ गया, उसने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक बैंक की साइट खुली, वो बैंक की साइट एक्चुअल बिल्कुल बैंक जैसी ही थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि आदमी को लगे, क्योंकि ये बहुत आसान है, आप किसी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हो, राइट? तो बिल्कुल सेम वेबसाइट आपकी बन जाएगी। अब क्या हुआ, उसने वेबसाइट पर ध्यान दिया, अपना ID डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन करा, और कुछ दिन बाद उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो गए। अब यहां पर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मेरे अकाउंट में OTP आता है और मेरा अकाउंट सेफ है। मैं मानता हूं आपका अकाउंट सेफ है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार हमारी खुद की गलतियों से वो अकाउंट अनसेफ हो जाता है। हैकर्स ना कभी, देखो ये फिल्मी नहीं है, ये जो एनवायरमेंट है वो फिल्मी नहीं है कि आदमी आया, एक चुटकी बजाई, किसी ने कुछ प्रेशर दिया, एक लंबे वाला आदमी आया और उसने लैपटॉप पे 5-10 मिनट की दबाई और हैक हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये एक लंबी एक्सरसाइज है। वो लोग आपको पूरा असेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जब भी आप अपने लॉगिन ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका लॉगिन ID एंड पासवर्ड, दूसरा होता है OTP। तो वो दो पार्ट में इस पे काम करते हैं। पहले आपका लॉगिन ID पासवर्ड लेंगे, राइट? फिर उसके बाद वो लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मोबाइल को हैक करके वो पासवर्ड या तो आपको चुरा लेंगे या उस पासवर्ड को बाईपास कर देंगे, राइट? तो और ये कोई एक टेक्निक नहीं है, एक ही तरीके से होता है। ऐसा 50 तरीके से हो सकता है, ऐसे 50 तरीके होते हैं जिससे आपको बाईपास किया जा सकता है। आपके अकाउंट जो SMS आएगा आपके पास, वो SMS आप पे ना आगे किसी दूसरे मोबाइल पे चला जाएगा, वो आपका ही क्लोन होगा, या आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं मोबाइल पर तो उनको पता पड़ रहा है क्या टाइप हो रहा है। आपके कुकीज़ होते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं अपने ईमेल ID पासवर्ड कुकीज़ में सेव रखते हैं। लोगों को लगता है मैं इतने पासवर्ड याद नहीं रख सकता, तो सेव एज कर देते हैं, एक कुकीज़ में अपने पासवर्ड सेव कर देते हैं। वो कुकीज़ किसके पास जाएगा, उस पासवर्ड, आपका ID पासवर्ड सब उसमें मिल जाएगा उसको। बहुत आसान है, आपके लिए कठिन है लेकिन हैकर्स के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन सबके लिए भी कहीं ना कहीं आपको ही अलाउ करना पड़ेगा कि वो आपके सिस्टम में घुसे, और वो उसका तरीका सिर्फ वही है, या तो वो आपको डराएंगे या आपको कोई लालच देंगे और आप किसी गलत लिंक पे आपको क्लिक कराएंगे।
0: सो इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्जेशन चल रही है, जो मुझे लगता है हम सब

तो रिलेट कर सकते हैं इसी चीज से कि हमारे एंड पर क्या गलतियां होती हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. विल टॉक अबाउट इट, बट फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक. स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ.

अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

अपने परिवार को सारी खुशियाँ देते हैं, अपने बच्चों को सारे गुण, सारी अच्छी चीजें सिखाते हैं। लेकिन क्या आप अपनी तंबाकू की आदत अपने बच्चों को देना चाहोगे? नहीं ना, तो आज ही से तंबाकू को ना कहें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। आज हमारे साथ है मिस्टर धीरज शर्मा, और धीरज सर से हम लोग बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की, बिकॉज ही इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अभी तक हमने बेसिक्स जाने हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें क्यों एग्जिस्ट करती हैं और कैसे बाईपास किया जा सकता है हमारे फोन की, हमारे सिस्टम की जो सिक्योरिटी है उसको। नाउ विल डिकोड फर्दर। सर, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, प्लीज मुझे ये बताइए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि किसी भी तरीके से मेरे सिस्टम में या मेरी किसी आईडी में या मेरे जीमेल में मेरे फोन में कोई हैकर ना जा पाए, उनके वो ब्रेक थ्रू ही ना मिले, ऐसा कुछ किया जा सकता है मेरे एंड पे एज अ यूजर?
1: देखिए, आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे हम उसको हम बेसिक हार्डनिंग बोल सकते हैं या बेसिक सिक्योरिटी बोल सकते हैं। पहला तो आप अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट करते रहिए, राइट, पहला। दूसरा, आपके पास, मैं सबसे बात ये बात कहता हूँ सारे यूजर्स से, सारी ट्रेनिंग्स में, कॉर्पोरेट में काफ़ी ट्रेनिंग्स करता हूँ मैं, कि मोबाइल में एप्लीकेशन फ्री है। और ये देखो, हर यूज़र इसको रिलेट कर पाएगा कि फ्री की चीज़ इंडिया के अंदर बहुत जल्दी लोग यू नो अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। तो हमको क्या चाहिए कि आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन आपके लिए जरूरी हैं, जिन एप्लीकेशन के बिना आपका काम नहीं चल सकता, आप उन्हीं को रखें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई एप्लीकेशन टाइम बींग के लिए इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करने के बाद उसको आप इंस्टॉल कर दो कि लगता है कि आपको यूज नहीं करनी है फर्दर। मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, कुछ लोग के घर में बुजुर्ग होते हैं जिनको पेंशन आती है, राइट। पेंशन में ईयरली आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, ठीक है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के लिए आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं। लोग उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, उसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की एप्लीकेशन भी होती है, राइट। आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है अपने सिस्टम में, जो कि एक्टिविटी साल में एक बार होनी है, लेकिन हम उसको वापस इंस्टॉल नहीं करते। तो हमको ऐसी एप्लीकेशंस जिनका हमें यूज नहीं करना है और टाइम बींग के लिए यूज है, तो यूज करने के बाद उनको अनइंस्टॉल कर दो। तीसरा टिप्स ये है कि आप जो भी एप्लीकेशन आपके इंस्टॉल करते हैं उसको रेगुलरली आप अपडेट करते रहो। आप उसमें देखते रहो कि किसी एप्लीकेशन का अपडेट तो नहीं आया। एंड्रॉयड में, एप्पल मैक में, सब में एक फीचर होता है कि आप जाके चेक कर सकते हो किस एप्लीकेशन का कौन सा अपडेट आया है, आप उसे अपडेट करें। तीसरा ये है, आपको ये देखना है कि आपने किस एप्लीकेशन को किस लेवल का एक्सेस दिया हुआ है, और आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन को इस एक्सेस का जरूरत नहीं है तो आप उसे डिसेबल कर दीजिए। हो सकता है किसी टाइमिंग आपको जरूरत रहे किसी भी एक्सेस की, तो आप उस एक्सेस को टाइमिंग सिर्फ उसे दीजिए और उसके बाद डिसेबल कर दीजिए। अगर आप ये बेसिक जानकारियां अपनी नॉलेज में रखेंगे और बेसिक सेटिंग आप करके रखेंगे, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है हैक होने की वो कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता खत्म हो जाएगी, क्योंकि और बहुत तरीके हैं करने के, पर प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। जब आपका बेसिक स्ट्रक्चर सिक्योर रहेगा तो आपके चांसेस कम हैं। और सबसे बड़ा, सबसे बेसिक नियम जो आपकी लाइफ में, वो ये है कि आपको क्लिक करने से बचना है, आपको अनअवॉइड अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। आप क्लिक जितना करेंगे उतना आप अपने रिस्क को बढ़ाएंगे। जब तक आपको लगता नहीं ये जरूरी है मेरे लिए, किसी मेरे नॉन सोर्स ने आपको भेजा है आपको कोई लिंक, आप सिर्फ वही लिंक ओपन करिए, अदरवाइज जस्ट इग्नोर द लिंक्स। कई बार मैंने देखा है कि अमेजोन का एक मैसेज आता है कि अमेजोन पे एक शूज जो 10,000 रुपए मिल रहा था 1,000 रुपए मिलता है। पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि ऐसा प्रोबेबिलिटी होता नहीं है कि वो 10,000 की चीज 800 में मिल रही हो, 1,000 रुपए मिल रही हो। और अगर मिल भी रही है, प्रोबेबिलिटी है, तो आप अमेजोन की साइट पे जाके भी तो चेक कर सकते हैं ना, डायरेक्ट उस लिंक से ही जाएंगे, जरूरी तो नहीं है आपको तभी मिलेगा। आप अगर वो ऑफर है तो अमेजोन की वेबसाइट पर भी वो ऑफर है, ऐसा नहीं है कि उस लिंक पे ही ऑफर है। तो यूजर को थोड़ा वेट करना चाहिए, अपने लालच को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि हो सकता है प्रोबेबिलिटी है, तो आप अमेजोन की एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर है, आप वहां जाइए, वहां से आप उसे सर्च करिए और देखिए वो ऑफर है कि नहीं।
0: सो वंडरफुल। सच बात है कि अगर आपको कोई ऑफर कोई कंपनी दे रही है तो ऐसा तो नहीं है कि छुपा के आपको देगी। अगर वो दे रही है, जाहिर सी बात है वो सबसे बड़ी यूएसपी उस कंपनी की उस टाइम के लिए बनेगी। सो यू शुड चेक इट आउट ऑन दैट वेबसाइट। अगला सवाल मेरा रहेगा अबाउट पब्लिक वाईफाई। ये बहुत बार हम सुनते हैं कि इज इट सेफ टू यूज पब्लिक वाईफाई?
1: देखिए पब्लिक वाईफाई में जो एक रिस्क है वो ये बहुत बड़ा रिस्क ये होता है कि जब आप पब्लिक वाईफाई एक्सेस करते हो तो पब्लिक वाईफाई आपके लिए फ्री नहीं होता है, हैकर के लिए भी फ्री होता है। हैकर उस नेटवर्क में स्पूफ करके बैठ जाता है, और जब आप उस नेटवर्क कनेक्ट करते हो तो वो उस कनेक्शन के थ्रू एक मालवेयर आपके मोबाइल या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकता है आसानी से। और वो जो मालवेयर जो वो इंस्टॉल करेगा उसको आज यूज नहीं करेगा, वो उसको आपको ट्रेस करने के लिए यूज करता है। अभी मैंने जैसे अपनी डिस्कशन में बताया कि जो हैकर्स होते हैं वो आपको लंबे समय तक ट्रेस करते हैं, आपको एनालिसिस करते हैं, फिर आप प्लान करते हैं आप पे अटैक का। तो कैसे ट्रेस करते हैं? वो ऐसे ट्रेस करते हैं, वो साइलेंटली किसी लिंक के थ्रू, किसी एप्लीकेशन के थ्रू, कहीं पर आपने वाईफाई एक्सेस किया जो अनसिक्योर था, उसके थ्रू आपके सिस्टम में एक छोटा सा मालवेयर डाल देंगे और उसके थ्रू आपका डेटा धीरे धीरे धीरे धीरे चुराते रहेंगे। जरूरी तो नहीं है ना कि आज आपने एक मालवेयर मैंने आपके सिस्टम में डाला, आज ही आपने लॉगिन कर लिया बैंक की साइट पे, ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है आप 15 दिन बाद लॉगिन करो, हो सकता है आप 20 दिन बाद लॉगिन करो, तो मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप वो डेटा जो मैं चाहता हूं आप लॉगिन ना करें। तो आप लॉगिन करोगे डेटा को चोरी करूंगा, उसको चोरी करने के बाद मैं नेक्स्ट प्लान करूंगा कि अब मुझे क्या करना है, मुझे यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करनी है, मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, कैसे ट्रांसफर करना है पैसा, और उसके लिए मुझे इस बंदे को कैसे स्पूफ करना पड़ेगा। फिर वो अलग अलग तरीके से आपको स्पूफ करने की कोशिश करता है, हो सकता है कि एक बार में आप बच जाओ, वो बच जाओगे नेक्स्ट टाइम वो दोबारा ट्राई करेगा। तो ये एक कॉमन तरीका नहीं है, लेकिन बचने के कॉमन तरीके हैं। जो बेसिक हार्डनिंग अगर आप करोगे तो आप 80% रिस्क को रिमूव कर दोगे, 20% फिर भी रहेगा, लेकिन फिर भी आप 80% उसको रिमूव कर पाओगे।
0: आप कह रहे हो पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना चाहिए।
1: पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आज की डेट में मोबाइल बहुत सस्ता है, इंटरनेट बहुत सस्ता है, आप अपने हॉटस्पॉट यूज करके कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं पब्लिक वाईफाई की आज के टाइम में कोई जरूरत है।

0: इंटरेस्टिंग सो इंटरेस्टिंग. ऑन दिस नोट वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे. जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइफ.
1: सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे

जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा।

0: मैं अर्जय सागर, शो चल रहे हैं पर वॉइस ऑफ यूथ। हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर धीरज शर्मा, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और यहाँ पर हम सर से बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स के बारे में, कि कैसे अपने डेटा को हम बचा सकते हैं, कैसे हम अपना फाइनेंसिस को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर खासतौर पर स्कैमर्स, हैकर्स, जितने भी आप टर्म सुनते हैं बहुत नेगेटिव होते हैं, इनसे कैसे अपना बचाव किया जाता है। व्हाट्सएप पर बहुत सारे अननोन नंबर से फोटो आती है हमारे पास, ठीक है। मेरी आदत ये कि मैं जब तक मैं उस नंबर को नहीं जानता, मैं अननोन फोटोज डाउनलोड नहीं करता हूँ। व्हाट आर द थ्रेट्स इन्वॉल्व, क्या हो सकते हैं वहाँ पर थ्रेट्स?
1: देखिए, व्हाट्सएप पे ना दो बहुत कॉमन थ्रेट आज की डेट में एक्टिव है। पहला जो आपने बोला कि एक फोटो, आप शादियों का सीजन चला है, राइट? शादी के सीजन में नॉर्मल लोग कार्ड भेजते हैं एक दूसरे को, आजकल व्हाट्सएप पे कार्ड आ जाते हैं। तो आज की डेट में आपको क्या होगा, एक अननोन नंबर से एक शादी का कार्ड आएगा। आपको लगेगा किसी रिलेटिव ने, किसी ने भेजा, उसका कोई नया नंबर होगा, उसने मुझे भेज दिया है। लेकिन वो कार्ड नहीं होता। आप जब उस पर क्लिक करते हैं, उस कार्ड के पीछे एक लिंक हाइड होता है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो एक मालवेयर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा चुपचाप। एक कार्ड आया, आपको लगेगा किसी ने मजाक करा होगा, वैसे ही कार्ड आया होगा। लेकिन आपने जैसे वो कार्ड पर क्लिक किया, उसको डाउनलोड किया, आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि वो मालवेयर आपके सिस्टम में आ गया। अब वो मालवेयर एक तरह का इन्फेक्शन नहीं होता, जैसे इन्फेक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, वो इन्फेक्शन अलग तरीके से काम करते हैं, ऐसे मालवेयर भी अलग अलग तरीके से काम होता है। तो हर हैकर का एक अपना पर्पज होता है मालवेयर को भेजने का, कि मैं किस पर्पज से इस मालवेयर को किसी यूजर के पास दे रहा हूं, तो वो उसी पर्पज को मालवेयर काम करेगा, राइट? अब उसमें क्या होगा कि जैसे आपने मूवमेंट आपने, और दूसरा क्या होता है, कई लोग स्मार्ट होते हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं क्लिक करेंगे, लेकिन उनके यहां पर ऑटो डाउनलोड इनेबल होता है मोबाइल के अंदर। आप देखोगे व्हाट्सएप में एक फीचर होता है कि आप जैसे कोई आता है, ऑटोमेट आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। वो सबको वो फीचर डिसेबल्ड करना चाहिए। अगर आप फीचर डिसेबल नहीं करते हैं, तो आप क्लिक भी नहीं करते हैं, वो तभी भी अपने आप डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में। तो बेसिक ये है कि सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे जाइए अभी इमीडिएटली। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप की सेटिंग में जाइए और डिफॉल्ट जो डाउनलोड है उसको डिसेबल कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि जब आप उसको, अगर कोई ऐसा केस आता, हमको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली उस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर आपका कोई नॉन है तो आपको कॉल करेगा, राइट? वो आपको बताएगा कि भाई मैंने आपको शादी का कार्ड भेजा है। और जो लोग खाली व्हाट्सएप पे आपको कार्ड भेज रहे हैं, आपको फोन भी नहीं कर रहे हैं, तो उनके जाने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, राइट? तो आपको ये सोचना चाहिए, अगर कोई कार्ड भेज रहा है तो आपको फोन भी जरूर करेगा। तो जब आपका फोन करे और बताए कि आपको मैंने इस नंबर से कार्ड भेजा है, तब आप उसको ओपन कर सकते हैं। जब तक आपके पास ये श्योरिटी ना आए किसी नॉन बंदे ने मुझे कोई चीज भेजी, आप उसे डाउनलोड नहीं करेंगे। दूसरा एक और थ्रेट आ रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आता है। मैं भी आपको एक केस बताता हूं। एक बेंगलोर का केस है, वहां पर एक 45-50 ईयर के बीच का एक IT प्रोफेशनल थे। उनके पास एक वीडियो कॉल आया, और वीडियो कॉल में जैसे उन्होंने वीडियो कॉल उठाया, एक लेडी थी जो कंप्रोमाइज स्टेज में थी, राइट? और उन्होंने उससे बात करा, थोड़ी देर बात करा कि भाई आप क्या है, उन्होंने फोन काट दिया थोड़ी देर बाद ही। लेकिन जैसे उन्होंने डिस्कनेक्ट किया, थोड़ी देर बाद एक बंदे का फोन आता है, उसको बोलता है कि आपके कुछ फोटोज हैं हमारे पास, जो आप एक लेडी के साथ कंप्रोमाइज स्टेज में हो, और ये जो आपके फोटोज हैं हम आपको वायरल कर देंगे। वो डर जाता है बंदा, राइट? डर जाता है, उसके बाद उससे कुछ पैसा मांगा जाता है, वो दे देता है एक बार, दो बार, तीन बार। लेकिन वो कुछ अपने खास दोस्तों के साथ इसके बारे में डिस्कशन करता है, जिनको पता था कि ये फ्रॉड है। वो उसको समझाते हैं कि ये फ्रॉड है, फिर वो पुलिस कंप्लेन होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन इसमें क्या एज ए यूजर आपको समझने की जरूरत है कि ये फ्रॉड होता है जहां पर एक वीडियो कॉल आता है। आपको पता होगा तो आप उन वीडियो कॉल को इग्नोर कर सकते हैं, राइट? और दूसरा, अगर एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो जाता है तो इमीडिएटली आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। आपको डरने की जरूरत नहीं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको बेसिक समझना चाहिए, राइट? पुलिस का जो डर है ना हमारे मतलब जहन में, वो कई बार हमको गलत करने के लिए मजबूर कर देता है। तो इसलिए हमको पुलिस से डरना नहीं चाहिए, राइट? वो जो आप, अगर मैं कहता हूँ बुरी से बुरी स्थिति में, जो आप पैसा हैकर को दे रहे हो, अगर आप वो हैकर को नहीं दोगे तो पुलिस आपको कहीं ना कहीं सेफ करेगी। आप उनके पास जाइए, पुलिस को बताइए, अगर आप गलत हो तभी आपको डरने की जरूरत है, आप गलत नहीं हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं इतने पुलिस वालों को जानता हूं, उनके साथ दिन रात काम करता हूं, लेकिन मेरी अपनी नजर में मुझे पता है कि पुलिस वाले अगर आप गलत नहीं हो तो आपको परेशान नहीं करते हैं। जर्नली कुछ लोग हर जगह होते हैं गलत, हर पेशे में गलत होते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप एक फियर बना लें कि पुलिस वाले के पास जाऊंगा तो कुछ गड़बड़ी होगा, ऐसा नहीं है। उसके चक्कर में आप अपने साथ गलत करा लेते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो आपको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए।
0: सो वंडरफुल। तो कोई भी अगर ऐसी चीज होती है, कोई भी फ्रॉड होता है जहां पर आपने कुछ गलत नहीं किया है, जस्ट इमीडिएटली गो टू पुलिस। 1930 हेल्पलाइन नंबर है, साइबर हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉल करके सहायता जो है वो ले सकते हैं। सवाल हालांकि और बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है, इसलिए शो को यहां पर हमें कंक्लूड करना होगा। तो प्राइमरीली आज हमने बात करी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स की, क्या होते हैं, कैसे अवॉइड किया जा सकता है इन सिचुएशंस को। खासतौर पर सेक्सटॉर्शन एक टर्म है जहां पर सर ने अभी जिक्र किया कि एक वीडियो कॉल आएगा अननोन नंबर से। तो बेसिकली अननोन नंबर कुकीज़ में अपने पासवर्ड आईडी सेव करना, या अननोन लोगों को रैंडम एंटरटेन करना, या कोई लिंक आपके फैमिली ग्रुप में आया उसको फॉरवर्ड करना, उसके ऊपर क्लिक करना, ऑल दीज थिंग्स आर यू नो मेकिंग अ ट्रैप अराउंड यू जिसमें आप शायद फंस सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सर ने दो तीन चीज़ें और बहुत अच्छी बताई कि कोई एप्लीकेशन अगर आपके यूज़ में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप साल में एक बार किसी एक चीज को यूज करते हैं एप्लीकेशन को, उसको हटा दीजिए, वो आपका स्टोरेज घेर रही है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो एक थ्रेट के तौर पर है, अगर उसको यू नो बाईपास कर लिया गया किसी एक पॉइंट पे तो वो आपके फोन की सिक्योरिटी को भी बाईपास किया जा सकता है बहुत इजीली। दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट मत करिए अपने फोन को। आपको लग रहा है वाईफाई फ्री है, लेकिन भूलिएगा मत, सबसे कीमती चीज उस टाइम पर उस फ्री वाईफाई के थ्रू जा सकती है, वो है आपका डाटा, आपकी सबसे प्रेशियस चीज है, वो वहां पर लीक हो सकती है। टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर, इट मींस अ लॉट टू अस कि आप यहां पर आए और अपना यू नो ये इंपॉर्टेंट टाइम हमें देकर ये सब बताया। थैंक यू सागर।
1: थैंक यू।
0: ऑलराइट दोस्तों, वी आर डन विद आवर क्वेश्चंस। ऑन दिस नोट वक्त है शो का कंक्लूड करने का। आशा करता हूं आज के शो से कुछ मूल्य आप लोगों तक हम पहुंचा पाए। उसी नोट पर इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए। दिस इज योर दोस्त एंड दिस इज योर होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आरजे सागर, लेकर आ चुका हूं प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, जहां पर हम लोग बात करते हैं हर एक एपिसोड में एक नई कंपनी की, यानी कि केस स्टडी के तौर पर हम एक शो लेकर आते हैं आपके लिए, जिसमें आपको हम बताते हैं कंपनी के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंडस्ट्री को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये कंपनी क्या करती है, किस एक मार्केट सेगमेंट में डील करती है, कंपनी का फाउंडर्स कौन है, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से रिसर्च करके एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप ढंग से समझा पाए। तो यहाँ पर फिर एक बार लेकर आ गए हैं एक और नई केस स्टडी आपके लिए। बात करेंगे कौन सी कंपनी है, कौन सा मार्केट सेगमेंट है, सब कुछ अच्छे से विस्तार से आपको बताएंगे। बस आप इतना करिए, अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये है रेडियो मारमशना 107.8 FM, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी। तो कंपनी के बारे में बात करने से पहले हम इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहेंगे, जिस इंडस्ट्री में हमारी आज की ये कंपनी जो है वो डील करती है। तो इंडस्ट्री का नाम है एग्रीटेक इंडस्ट्री। अब मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई काफी पुरानी भी है और काफी नई भी है। तो पुरानी इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ा है, एग्रीकल्चर आगे बढ़ा है, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये बोलूं कि इवोल्यूशन में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था ही एग्रीकल्चर का, बिकॉज जब हमें समझ में आ गया था कि अब हम खाने को उगा सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम तक, तो उसके बाद हमने बाकी चीजों में काम करना शुरू किया, जैसे कि साइंस, जैसे कि पॉलिटिक्स, जैसे बाकी जो भी चीजें हमारे पास हैं, उनके ऊपर हमने काम तब करना शुरू किया जब हमारे पास टाइम था और हमारे पास इतना एक सुकून था कि चलो पेट तो भर जाएगा, खाना हमने स्टोर कर लिया है। और नई इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत नई है। अब एग्रीकल्चर में अगर टेक्नोलॉजी को लेकर आया जाए तो यकीन मानिए कितनी ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो तो एक पॉइंट है, साथ साथ कितनी तेजी से तरक्की हो सकती है, कितनी तेज रफ्तार के साथ देश को आगे लेकर जाया जा सकता है, इसका अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज है और आज की डेट में हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। लेकिन अब से कुछ टाइम पहले तक भी किसान जो है वो पुरानी जो ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल मेथड्स हुआ करते थे उनको यूज करके हार्डवर्क करते थे, जिसमें क्या होता था कि इनपुट बहुत ज्यादा होता था, आउटपुट उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था। मतलब एफर्ट्स बहुत है, मेहनत बहुत है, लेकिन उस लेवल की क्रॉप्स नहीं हो रही है, फसल नहीं हो रही है, तो काइंड ऑफ वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होता था। तो उन एफर्ट्स को कम करने के लिए

प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना और साथ साथ फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करना, सो दैट इसको एक सस्टेनेबल मोड बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आउटपुट ले पाए मैक्सिमम जितना हो सकता है। तो ये है अल्टीमेट गोल एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करने का। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री का नाम है एग्रीटेक, यानी कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को मिलाकर कुछ अगर बनता है तो बनता है एग्रीटेक। अब इसमें आप छोटा सा ओवरव्यू, अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर इवॉल्व हुआ है हमारे साथ साथ और नई नई प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आई हैं। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ के निकाले हैं, जैसे कि प्रिसीजन फार्मिंग, जैसे कि फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो फार्मर्स के लिए जरूरी होती हैं। समटाइम्स उनके पास इतने पैसे नहीं होते, जिसको आप अगर बिजनेस फॉर्मेट में समझे तो कैपिटल उतना नहीं होता कि इन्वेस्ट कर सके, तो ऐसे में उनको अगर थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है सो दे कैन डू मच बेटर। उसी के साथ बायोटेक्नोलॉजी जैसी चीजें भी है हमारे पास, जिसमें किसानों की काफी हेल्प हो जाती है, न सिर्फ क्रॉप्स को समझने में बल्कि कुछ नया क्रिएट करने में, कुछ ऐसा इनोवेटिव सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। तो इंडस्ट्री का जो एम है वो है इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा हम रेजिलिएंट, एफिशिएंट और सस्टेनेबल बना सकें। ये है इस पूरी एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू। छोटे से रेफरेंस के तौर पे, बहुत छोटे माइन्यूट लेवल पे जाता हूँ यहाँ पे, और ये मैं जा रहा हूँ कि कुछ साल पहले जब किसान बैल का इस्तेमाल किया करते थे हल चलाने के लिए, अब वो चीज ठीक थी लेकिन फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा था उसमें, बहुत ज्यादा फिजिकल उनके एफर्ट्स लगते थे। तो उसके बाद ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर इनोवेट हुआ तो उससे काफी हेल्प हुई, जो बैल थे उनको बाकी कामों में यूटिलाइज किया गया एंड जब ट्रैक्टर आया तो उनको बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करना पड़ा। ऐसे करते करते कि चीजें भी बदल रही हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी काफी चेंज हो जाती है, हर एक रीजन में अलग तरह का एक सॉइल होता है जहां पर अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। जैसे कश्मीर जैसी जगहों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ठंडे इलाके होते हैं, तो आप सेब, केसर, इस तरह की चीजें ज्यादा उगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, यहाँ पर गेहूं, चावल, इनकी खेती थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं पर अगर आप राजस्थान जैसी जगहों की बात करते हैं तो वहां पर बाजरे की खेती थोड़ी सी ज्यादा होती है। इस तरीके से अलग अलग चीजें बटी हुई है, क्योंकि सॉइल जिस तरीके का होता है उसी तरीके की फसल वहां पर उगाई जाती है। अब इसको और प्रिसाइजली समझने में जो हेल्प होती है वो टेक्नोलॉजी करती है। वहीं पर एक और चीज होती है, फार्मर शायद रिलेट कर पाएंगे, खेतों की लेबलिंग की जाती है, जो मिट्टी होती है उसको इक्वल किया जाता है। अब उसको पहले मैन्युअली किया जाता था, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि आप एक बटन दबाएंगे और पूरे खेत को वो एक लेवल में कर देगा विद इन अ फ्यू आवर्स। तो ऐसी टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प करी है और बहुत बड़े पैमाने पर हमने इवोल्यूशन देखा है खेती बाड़ी का। अभी ये आलम है कि आप हरियाणा में, इवन यूपी में आप जाकर देखेंगे कि जैसे ही गेहूं कटते हैं लोग मूंग की दाल जो है वो बो देते हैं, उससे उनको काफी मुनाफा हो जाता है, एक थर्ड सोर्स बन जाता है उनकी इनकम का, यानी कि चावल और गेहूं के बीच में एक तीसरी फसल उगा दी गई। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तरबूज जैसी चीजें उगा देते हैं। तो ये हमने छोटे छोटे इनोवेटिव चीजें ढूंढ रखी है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी हेल्प करती है सॉइल को समझने में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके साथ डील करना होता है। जो हमने क्रॉप उगाई है वहां पर उसकी हेल्थ कैसी है, और ये एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि कितनी फसल जो है इस बार निकल के आने वाली है, उसमें और प्रिसाइज हम हो जाते हैं कि ठीक है इस बार हम ये बजट लगा सकते हैं, इतना हो सकता है, या इसमें इतने एफर्ट्स हम और मार सकते हैं, या फिर इन प्लांट्स की जो आप कह सकते हैं पोटेंशियल है वो इतनी है। तो ऐसे करके किसानों की बहुत हेल्प हो जाती है। आपने अपडेट्स में ये भी देखा होगा कि कई जगह पर बहुत तेज बारिश हो गई, या फिर ओलावृष्टि हो गई, या फिर कहीं पर लंबे टाइम तक बारिश ही नहीं हुई तो वहां पर फसल पूरी खराब हो गई, ऐसी भी चीजें सामने आती हैं। ये बहुत दुखद चीजें होती हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए काम करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे इस एक इंडस्ट्री के की ड्राइवर्स की, कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से एग्रीटेक जो है वो चल रही है और इतना तेजी से ग्रो कर रही है। पहला है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसमें आप डेटा का यूज करते हैं, जीपीएस का यूज करते हैं, आईओटी का इस्तेमाल करते हैं, एआई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मॉनिटर किया जा सके और फार्म पर होने वाले सारे ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज किया जा सके। इसमें बहुत सारे की प्लेयर्स हैं, कुछ नाम मैं मेंशन करना चाहूंगा, फैजल है, क्रॉपलिन है, देहात है, ये सब जो स्टार्टअप्स हैं ये फोकस कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों के ऊपर, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके, कैसे डेटा को यूज करके जो फार्मर्स हैं उनकी हेल्प की जा सकती है, कैसे उनके फार्म में होने वाले डे टू डे एक्टिविटीज, चाहे वो खेती बाड़ी है, चाहे वो पशुपालन है, उनको ऑप्टिमाइज किया जा सके।

सेकंड इज सप्लाई चेन एंड मार्केट लिंकेजेस। अब बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो फार्मर्स को कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली बायर्स के साथ, जिसमें मिडिल मैन का कमीशन कम हो जाता है, या वो जो किसान को होने वाला मुनाफा जो मिडिल मैन की जेब में चला गया वो डायरेक्ट अब किसान के पास आ जाता है, जिसमें इंश्योर कर लेता है किसान कि उसको उसकी जो फसल है उसका बेस्ट प्राइस मिला है। ऐसे में कुछ कंपनीज डील करती हैं निंजा कार्ट, वे कूल, जम्बो टेल। निंजा कार्ट हमारी आज की कंपनी, जिसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, बट इस एक चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। अभी तक क्या होता था कि किसान फसल उगाते थे, उसको काटते थे और उसको जो आढ़ते हुआ करती थी वहां पर ले जाकर उसको बेचते थे। इनफैक्ट अभी भी वही प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस बन चुकी हैं, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो किसानों को डायरेक्ट अपने साथ एनरोल करते हैं और उनकी खेती को डायरेक्ट बिकवाते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप बायर्स या रिटेलर्स के पास जा सकते हैं अपनी फसल को लेकर जो भी आपकी निकल के आई है। तो ऐसे में मुनाफा आपका ज्यादा हो जाता है। अगर आप आढ़त की बात करेंगे तो आढ़त पहले उनसे लेगी, उसको सरकार को बेचेगी या आगे चलकर रिटेलर्स को बेचेगी, वहां पर एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन उसमें मल्टीपल मिडिलमैन जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें किसान का जो मुनाफा है वो कम हो जाता है, जबकि सारा आउटपुट, सारी मेहनत, सारा इनपुट सब कुछ किसान का था। सो अल्टीमेटली उसके पास ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होना चाहिए। इस एक प्रॉब्लम को फिक्स करते हुए ये कंपनीज आई हैं, जिनमें हमारी आज की कंपनी भी डील करती है। देन उसके बाद है फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारे टूल्स बना दिए गए हैं जो किसानों की हेल्प करते हैं उनके ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंटली करने में। ऐसे में कुछ मैं नाम मेंशन करना चाहूंगा, कृषि हब, फार्म ईआरपी। देन नेक्स्ट मेजर सेगमेंट है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अब ऐसे बहुत सारे सीड्स इनोवेट कर लिए गए हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स इनोवेट कर लिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल जो हैं वो इनोवेट कर लिए गए हैं जो खेती को बढ़ाते हैं, साथ साथ कीटनाशक के तौर पे भी काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पर्टिकुलर यही चीजें बना रही हैं, इस तरह की चीजें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, जिससे खेती ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज हो सके। क्योंकि आज भी दोस्तों आप रूरल एरिया में जाएंगे तो मेजर सोर्स आपको जो देखने को मिलेगा इनकम का वो अभी भी खेती है, और अगर खेती नहीं होगी तो हमारा खाना कहां से आएगा। इसलिए अल्टीमेटली हम सब लोग उससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाना हम सब लोग खाते हैं, चाहिए हम सबको, लेकिन उसको जो उगा रहे हैं उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको फिक्स करना भी जरूरी है। देन उसके बाद नेक्स्ट मेजर सेगमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फार्मर्स को कई बार लोन चाहिए होते हैं, फार्मर्स को कई बार क्रेडिट चाहिए होता है, तो ऐसे में कुछ कंपनीज हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं जो उनको ये सब सुविधाएं जो है प्रोवाइड करती हैं। इंश्योरेंस चाहिए होता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ऐसी भी कुछ कंपनीज हैं जो फार्मर्स की इस एक डायरेक्शन में इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रही हैं कि लेट्स से उन्हें मिड फसल में पैसों की जरूरत पड़ गई तो ठीक है आपको मिल जाएगा, जैसे कि इंश्योरेंस कराना है फसल का, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है तो ऐसे में इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा अगर फसल जस्ट इन केस खराब भी हो जाती है। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जिनकी वजह से ये जो एग्रीटेक है ये निकल के इतना सामने आया है और इतना तेजी से ये ग्रो कर रहा है। हालांकि साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जो एट द सेम टाइम सबके होते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे आगे। बट फिलहाल अभी मैंने आपको बताया कुछ मेजर सेगमेंट्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन एंड मार्केट लिंकेज, फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बिना किसी देरी के जिस इंडस्ट्री की आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्रीटेक, उसके कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। तो पहला चैलेंज आता है सबसे बड़ा जो है वो है एडॉप्शन एंड अवेयरनेस का। जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स को पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या क्या चीजें की जा रही दुनिया में। जैसे अगर मैं बात करूं आज की कंपनी की जो है निंजा कार्ड, अब निंजा कार्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो डायरेक्ट रिटेलर्स से कांटेक्ट कर सके, लेकिन अब जब फार्मर्स को पता ही नहीं है इसके बारे में तो कैसे वो उस चीज का बेनिफिट ले पाएंगे, कैसे नई टेक्नोलॉजीज उनकी हेल्प कर पाएंगी। बिकॉज अल्टीमेटली उसको इनोवेट कर देना इज वन थिंग, लेकिन जन जन तक पहुंचाना, उनके फोन तक लेकर आना, उनको उसकी आदत लगाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सेकेंड थिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है तो वहां पर उतने इफेक्टिव तरीके से एग्रीटेक सॉल्यूशंस को नहीं एनरोल किया जा सकता। एज इन अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी मशीन्स हैं और लेट्स से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कैसे वो काम करेंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो बहुत सारी जगह पर देखने को मिल रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवरऑल यही सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, मैं कह रहा हूं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। ऑन एन एवरेज जो चैलेंजेस हैं मेजर वो हम यहां पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चैलेंज आता है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। छोटे या फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स जो है थोड़ा मुश्किल बना देते हैं सिचुएशन को, जब बात होती है किसी भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को एक लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए।
तो वो चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। एक पर्टिकुलर या तो ढर्रे में खेत नहीं होते हैं, पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में खेत नहीं देखने को मिलते हैं, या मिलते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग जगह पर डिवाइडेड होते हैं। इसलिए कुछ ऐसी चीजें जो एक लंबे एरिया पे अगर इम्प्लीमेंट करें तो ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, इसलिए वहां पर वो एक चैलेंज आता है। देन उसके बाद कुछ रेगुलेटरी के हर्डल्स होते हैं, कुछ चीजें हैं जो अभी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जिनको लेकर शायद आने वाले टाइम में बहुत सारी नई रेगुलेशंस जो है बनाई जाएंगी, नई गाइडलाइंस इश्यू की जाएंगी, बट अभी तक जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बिकॉज बहुत सारी चीजें नई है हमारे लिए, अभी डील कर रहे हैं या सीख रहे हैं, जैसे जैसे चीजें साबित होती जा रही है, प्रूव होता जा रहा है कि चलो ये ठीक है, ये देश के लिए ठीक है, किसानों के लिए ठीक है, तो उन तमाम चीजों को रेगुलेट कर दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई चैलेंजेस की। अब बात करते हैं आज की कंपनी की, जिसका नाम है निंजा कार्ट। निंजा कार्ट एक बहुत ही इनोवेटिव एग्रीटेक स्टार्टअप है। अभी तक आप एग्रीटेक को अच्छे से समझ चुके हैं, एंड आई होप कि अब मुझे ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लगभग सभी चीजें हमने कवर कर दी हैं। आपको इंडस्ट्री का ओवरव्यू दे दिया है, की ड्राइवर्स आपको बता दिए हैं, मेजर सेगमेंट्स आपको बता दिए हैं, उसके साथ साथ आपको चैलेंजेस के बारे में भी बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कंपनी की, जिसका नाम है निंजा कार्ट। सो निंजा कार्ट एक ऐसे मॉडल पर काम करती है कंपनी, जो फार्मर्स को डायरेक्ट मिलवाती है बायर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ, मतलब मिडिल मैन को कम किया जाता है। मतलब इसको आप अगर समझना चाहें तो थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी सप्लाई चेन एंड मार्केट लिंकेजेस की, तो सप्लाई चेन एंड मार्केट लिंकेजेस वाली जो प्रॉब्लम है, उस सेगमेंट की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आई है ये कंपनी, जो किसानों के लिए बहुत ही कारगर है। लेकिन प्रॉब्लम, अगेन मैं बता रहा हूँ कि चैलेंजेस हैं हमारे सामने, क्योंकि अभी किसानों को पता नहीं है इन सब चीजों के बारे में। अभी जाकर किसी को वहां पर बताना होगा, या फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो वर्ड ऑफ माउथ होता है उसके थ्रू पहुंचेगा, बट इट विल टेक सम टाइम अगेन। लेकिन पॉइंट ये है कि ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, एक अच्छा आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी मेथड है, जहां पर किसानों की जेब में जाएगा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, डायरेक्ट वो मिल सकते हैं बायर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ, और ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी फार्मिंग को। दैट्स हाउ उनका एक मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा, साथ साथ वो ज्यादा इंटरेस्ट के साथ अपनी खेती के ऊपर ध्यान देंगे, और अब उन्हें पता है कि बेचना कैसे है, तो उनके लिए वो भी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा। सो दैट्स ऑल निंजा कार्ट इज डूइंग। दोस्तों, आज की जो इंडस्ट्री है वो है एग्रीटेक, उसके बारे में सब कुछ आप लगभग जान चुके हैं, मतलब इन डेप्थ तो हम नहीं गए हैं, बट ओवरव्यू आपको मिल गया है अच्छे से, जो जो उसमें मेजर आप कह सकते हैं पिलर्स हैं उस इंडस्ट्री को ड्राइव करने वाले, और जो जो सेटबैक्स हैं साथ साथ, वो भी हमने आपको बता दिए। कंपनी के बारे में आपको हम बता चुके हैं निंजा कार्ट के बारे में, अब थोड़ा सा बात करेंगे हम फाउंडर्स के बारे में, बिकॉज रियल हीरोज ये लोग होते हैं जो इन कंपनीज को स्टार्ट करते हैं। तो निंजा कार्ट 2015 में स्टार्ट की गई, और इसको 6 लोगों ने स्टार्ट किया था। पहला नाम है थिरुकुमारन नागराजन, दूसरा नाम है शरत लोगनाथन, तीसरा नाम है आशुतोष विक्रम, चौथा नाम है कार्थीस्वरन के, पांचवा नाम है वासुदेवन अचिन्ना थाम्बी, और छठा नाम है शोभित जैन। ये जो फाउंडर्स हैं ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ को टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कुछ बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, तो सब लोगों ने अपने अपने एंड पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। दैट्स हाउ ये कंपनी इतनी बड़ी बन पाई, और कंपनी स्टार्ट होकर इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को जो है फिक्स कर पा रही है। अगर यहां पर पहले नाम की बात करें, जो है मिस्टर थिरुकुमारन नागराजन, वो इस कंपनी के सीईओ एंड को फाउंडर हैं। इनके अगर बैकग्राउंड की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है इन्होंने, एंड साथ साथ बिजनेस का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मल्टीपल स्टार्टअप्स पहले कर चुके हैं। सेकेंड नेम शरत लोगनाथन, ये है हेड ऑफ सप्लाई चेन एंड को फाउंडर। इनकी एक्सपर्टीज है टेक्नोलॉजी में एंड लॉजिस्टिक्स में, एंड एग्जैक्टली वही एक चीज है जिसको ये कंपनी एड्रेस करती है, वही एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ये कंपनी लेकर आई है फार्मर्स के लिए। तो इसमें लॉजिस्टिक्स के ऊपर बहुत स्ट्रांग होल्डिंग की जरूरत होती है, एंड ये कंपनी अगर सक्सेसफुल हो पाई है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब लोग अपने अपने एरियाज में कितने माहिर होंगे। तीसरा नाम है आशुतोष विक्रम, ही इज द सीटीओ एंड को फाउंडर। ये टेक्निकल प्रोसेस लेकर आते हैं, टेक्निकल पावर जो है वो इनके पास है, तो इसलिए एक स्ट्रांग होल्डिंग है इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, और टेक्निकल जो भी टर्म्स होती है कंपनी की उन सबको ये देखते हैं। देन उसके बाद अगला नाम है वासुदेवन चिन्ना थाम्बी, ही इज द वीपी ऑफ ऑपरेशंस एंड को फाउंडर है। ये फोकस करते हैं जितने भी ऑपरेशनल टास्क होते हैं उनके ऊपर। उसके बाद अगला नाम है कार्थीस्वरन के, ही इज द सीओओ एंड को फाउंडर। इनका भी एक स्ट्रांग बैकग्राउंड है इन ऑपरेशंस। देन उसके बाद लास्ट नेम है शोभित जैन, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड को फाउंडर। ये मैनेजमेंट एक्सपर्टीज लेकर आते हैं। तो ये अभी आपने जाना कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हुए जो लोग हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज लेकर आते हैं जो लोग एक टेबल पर, वो मिलाकर कैसे कमाल करते हैं। अब एक ऐसी प्रॉब्लम जो कई सालों से चली आ रही है,
मतलब किसानों के साथ बहुत पहले से ये सब चला आ रहा है, पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है। किसान जो है वो खेती बाड़ी करेगा, वो फसल उगाएगा, फसल काटेगा, देन उसके बाद उस फसल को एक ठेकेदार तक पहुंचा देगा, या एक आढ़ती तक पहुंचा देगा, या एक मिडल मैन तक पहुंचा देगा, आगे चलकर वो डील करेगा फिर इन सब के साथ। तो ऐसे में उनका मुनाफा कम हो जाता है, जबकि मेहनत सबसे ज्यादा उन्होंने ही करी है उसके लिए। तो ये प्रॉब्लम बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे लोग हैं जो ढूंढ कर लाए हैं और काम कर रहे हैं इस दिशा में। तो ये वो छह लोग, ये छह वो आप कह सकते हैं हीरोज हैं, जिन्होंने किसानों के लिए करने का सोचा कि चले कुछ अच्छा करते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम मार्केट को अच्छे से समझ चुके हैं, एग्रीटेक को, हम निंजा गार्ड को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, हम फाउंडर्स के बारे में जान चुके हैं, फाउंडर्स का एक्सपीरियंस भी हम समझ चुके हैं, और अभी तक इतना भी हमें समझ में आ चुका है कि ये मार्केट कितनी पुरानी है और क्या क्या चीजें हैं। अगर हम टेक यहां पर लेकर आते हैं तो क्या बैरियर्स हमारे सामने आते हैं, और जो इसके की ड्राइवर्स हैं वो क्या क्या हैं। अब इसी के साथ हम बात करेंगे निंजा गार्ड के बिजनेस मॉडल की। तो देखिए, निंजा गार्ड ने एड्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम को किया जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। जैसे कि एक मेथड बना हुआ था कि किसान अगर फसल उगाएगा, फसल को काटकर वो जाकर एक सर्टेन पॉइंट है जो फिक्स्ड है, वहां नियर बाय जितने भी एरियाज हैं वो सब किसान उस एक पॉइंट पर जाएंगे और वहां पर जाकर अपनी फसल को बेच देंगे और जो उन्हें दाम मिलेगा वो फिक्स होगा। अब उसके बाद आगे वो इंसान जाने जिसने फसल को लिया है उनसे, लेट्स से गेहूं की अगर बात करता हूं, तो वो इंसान गेहूं को स्टोर करेगा, सरकार को बेचेगा, आगे रिटेलर्स को देगा, वो उसका खुद का एक व्यापार है वहां पर। अब ऐसे करके बहुत सारे मिडल मैन जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है सबका अपना एक इंसेंटिव होता है, तो वहां पर किसान का जो मुनाफा होता है उसको आप कह सकते हैं कि वो काफी कम हो जाता है। इस एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया निंजा गार्ड ने, जिसकी वजह से किसान को सही मूल्य प्राप्त हो, साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इंस्पायर हो और वो टेक की तरफ भी आए और खेती के ऊपर और ज्यादा फोकस करे और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से, नए इनोवेटिव तरीके से कुछ लेकर आए। हालांकि इसके बहुत सारे रेफरेंसेज हम आपको अपने जो हमारा मंडे टू फ्राइडे शो होता है टैक्सी नंबर 1078 शाम को 5 से 8, उसमें कई बार दे चुके हैं कि कैसे कैसे लोग नई चीजें लेकर आते हैं और अपनी रूट्स को अपलिफ्ट करते हैं। अब यहां पर निंजा गार्ड ने क्या किया कि फार्मर्स और जो रिटेलर्स हैं डायरेक्ट उनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर दिया, जिससे क्या हुआ मिडिल मैन वहां पर काफी कम हो गए। अब डायरेक्ट जो किसान है वो रिटेलर को अपना सामान बेच सकता है। इसी के साथ मल्टीपल मिडिलमैन जो इन्वॉल्व थे उनको वहां से हटा दिया गया, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो किसान के पास आए और एक फेयर अमाउंट उसके हाथ में हो एट द एंड ऑफ द क्रॉप, ताकि उसके पास मोटिवेशन हो वो नेक्स्ट ईयर अच्छे से और फसल को उगा सके। अब इसी के साथ रिटेलर्स को भी एक बेनिफिट हो जाता है कि आपको फ्रेश फूड मिल जाता है, आपको ताजा फसल मिल जाती है जिसके ऊपर पेस्टिसाइड्स नहीं लगे हुए हैं, जिनको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं किया हुआ है, सीधा खेत से आ रही है, सीधा फार्मर की तरफ से आ रही है, और प्राइस भी उनको उतना ज्यादा पे नहीं करना होता है। अब इसका एक दूसरा फायदा रिटेलर्स को भी तो होगा ना, क्योंकि उसको भी मिडिल मैन को पे करना होता था। लेट्स से कि अगर वो उस एक सर्टेन पॉइंट से खरीद रहा है जहां पर किसान ने बेची थी, तो वो सर्टेन पॉइंट वाला जो बंदा है, अब आप उसको आढ़ती बोल लें या ठेकेदार बोल लें, जो भी है वो अपना इंसेंटिव रखेगा, वो रिटेलर से भी लेगा, फार्मर से भी लेगा। दैट्स हाउ ये पूरा लूप चल रहा था। अब इसको फिक्स किया निंजा गार्ड ने, जिसने लिटरली बहुत सारे फार्मर्स को काफी प्रोत्साहित किया, काफी इंस्पायर किया, ताकि वो काम कर पाए। इसी के साथ एक और चीज है जिसको निंजा गार्ड ने एड्रेस किया, दैट इज लॉजिस्टिक्स। वो अपने आप में एक नया चैलेंज खड़ा होता है सामने, क्योंकि किसान अपने ट्रैक्टर में लेकर जाएगा, लेकिन अगर उसको कहीं दूर देकर आने हैं, दैट्स से कि किसी यूपी के किसान ने किसी दिल्ली के रिटेलर से बात की है, अब यूपी से दिल्ली तक लाने के लिए ट्रैक्टर एक तो अपने आप में बहुत मशक्कत है, ऊपर से बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, प्लस बहुत सारे टोल प्लाजाज भी होते हैं, पुलिस को भी फेस करना होता है, ऊपर से बहुत मौसम का भी जो इम्पैक्ट है वो झेलना पड़ता है। तो इस एक इश्यू को भी एड्रेस किया है निंजा गार्ड ने। उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया, ट्रक्स हैं और मिनी ट्रक्स जो हैं वो भी होते हैं, जिससे जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और टाइमली जो फसल है, टाइमली जो भी चीज वहां पर खरीदी गई है उसको रिटेलर तक पहुंचा दिया जाए। अब इससे अगेन रिटेलर्स को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, क्योंकि आपको फ्रेशली प्रोड्यूस जो है क्रॉप मिल रही है, जिससे आप जो है अपने हिसाब से उसको बेच सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट भी पे नहीं करना पड़ा है, क्योंकि मिडिल मैन वहां पर नहीं है। इसी के साथ अगर मैं निंजा गार्ड की यूएसपी की बात करूं, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, तो वो उनकी एबिलिटी में ही लाई करती है, क्योंकि उनका सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग है और वेस्टेज काफी कम हो जाता है और फेयर प्राइसिंग जो है, ये तीन उनके यूएसपी हैं जिन्होंने इस कंपनी को यूनिक बनाया है। और टेक ड्रिवन सप्लाई चेन है, तो जाहिर सी बात है कंपनीज को ट्रैक कर सकती है, फार्मर्स को ट्रैक कर सकता है, रिटेलर्स को ट्रैक कर सकता है, तो काफी सारी चीजें, काफी सारी मशक्कत वहां पर कम हो गई, जिससे एक
स्मूथ आप कह सकते हैं कि प्रोसेस बन गया और सबके लिए बेनिफिशियल है। सो दैट्स हाउ टेक ने दुनिया को बदला है और इस एक इंडस्ट्री को भी बदला है। अभी शो को यहां पर हम कंक्लूड करेंगे और कंक्लूजन में हम आपको बता सकते हैं कि निंजा कार्ट ने एग्जैक्टली किया क्या है। तो निंजा कार्ट एक प्राइम एग्जाम्पल हो सकता है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स को अगर हम मिला दें तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी रेवोल्यूशनाइज किया जा सकता है। जैसे कि एग्रीकल्चर सप्लाई चेन बहुत बड़ा बहुत पुराना नेटवर्क है, अब उसके अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। हालांकि हम लोग चैलेंजेस की बात कर चुके हैं बट स्टिल दे आर डूइंग गुड, दिस कंपनी इज डूइंग रियली गुड, जहां पर आपकी जो लाइवलीहुड है वो एनहेंस हो जाती है एज इन फार्मर्स की और साथ साथ रिटेलर्स को भी काफी फायदा हो जाता है। फ्रेशली प्रोड्यूस आइटम मिल जाता है जिससे कंज्यूमर को भी बहुत बेनिफिट मिलता है, मतलब आपको ताजा खाना मिल रहा है साथ साथ आपको उतना ज्यादा अमाउंट जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, तो साउंड्स गुड। तो ये एक चीज है जो निंजा कार्ट ने की है, एक अच्छी खासी बहुत ही पुरानी एक इंडस्ट्री को टेक के साथ इनलाइन करके उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। सो इसी को कहते हैं इनोवेशन जो निंजा कार्ट ने अभी यहां पर करके दिखाया। एंड विद दिस नोट दोस्तों हमारा वक्त शो को यहां पर खत्म करने का, आपको आज की स्टडी कैसी लगी 8010781078 पर बताइएगा। फिलहाल मैं चलता हूं अपने शो को यहां पर खत्म करता हूं, तो फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खैरियत से रहें, गुड बाय, नमस्कार दोस्तों।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर आपका कार्यक्रम सत्यमेव जयते। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सत्यमेव जयते में बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करता हूं, और कभी मैं अकेला होता हूं तो कभी मेरे साथ मेहमान होते हैं और बात करते हैं आप ही लोगों के अधिकारों के बारे में। अधिकार की जब बात आती है तो हमें एडवोकेट याद आते हैं, और आज मेरे साथ एडवोकेट हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं, नाम है शीला असवानी। शीला जी, सबसे पहले मैं आपका रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
1: नमस्कार सर। नमस्कार ऑडियंस, मैं एडवोकेट शीला असवानी रेडियो मानव रचना से बोल रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे।
0: जी, और देखिए शीला जी, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जब कानून की बात आती है, लोगों के अधिकारों की जब बात आती है। आज हम बात करेंगे जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे सुनने वालों को यही बताइए कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं ये क्या है?
1: क्या हैं ये? जी सर, देखिए हमारे इंडियन पेनल कोड और हमारा CRPC प्लस हमारा एविडेंस एक्ट, ये हमारे अंग्रेजों के टाइम के जमाने के बने हुए हैं लॉज। आप ये देखें कि इंडियन पेनल कोड IPC शॉर्टकट में IPC बोलते हैं हम, ये हमारा 1860 का बना हुआ है, डेट मीन्स आज़ादी से पहले का ही है। और प्लस हमारा जो CRPC है वो 1974 का बना हुआ है
0: जी।
1: ये भी अंग्रेजों के टाइम का था, लेकिन थोड़ा सा अमेंड करके इंडियंस ने अपना इसका इंडियंस के नाम दे दिया गया, लेकिन है तो ही अंग्रेजों के टाइम के जमाने का ही। और आप देखिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य, ये भी 1872 का बना हुआ है। ये हमारे सारे लॉज हमारे अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं सर। ये तो उस टाइम की कंडीशंस अलग थी, आज का जमाना अलग है, आज की टेक्नोलॉजी अलग है। आप ही देखिए कि उस टाइम पे किसी घर में फोन भी नहीं होता था।
0: बिल्कुल,
1: फोन तो बहुत दूर की बात है कि जो लैंडलाइन फोन वो भी नहीं होते थे। यानी एक घर में है तो चार घर में नहीं होगा, और हम उस टाइम बड़ी बेसब्री से वेट करते थे, अच्छा फोन आया है, बहुत इंतजारी होती थी। अब तो फोन की इंतजारी नहीं है क्योंकि हमारे पास मोबाइल्स आ गए हैं। और किसी को सूचना देनी होती थी, तार के माध्यम से सूचना जाती थी, जिसको हम टेलीग्राम्स बोलते हैं। तो अगर किसी घर पे अगर तार आ जाए ना, तो समझो तो उसके हाथ पर फूलने लग जाते थे कि ये क्या क्या न्यूज, कोई बैड न्यूज आई है, कोई बुरी खबर आई है। तो अब आप देखिए कि आजकल के टाइम में, आजकल के टाइम छोड़िए, सबसे पहले हम क्या कहते थे कि फास्टेस्ट सर्विस किसकी होती थी? एरोप्लेन की। और आज के टाइम में फास्टेस्ट सर्विस है आपकी मोबाइल की, विद इन कुछ सेकंड के अंदर किसी के पास सूचना पहुंच जाती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये हमारे उस टाइम पे नहीं था। तो उस लॉज के अंदर भी, ये हमारे कानून के अंदर भी हमारी टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं था। तो इसलिए प्रावधान हमारे चेंज किए गए हैं, पनिशमेंट चेंज की गई है, बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो रिफॉर्म किया गया है। यानी हमारे जो न्यू लॉज हैं वो हमारे भारतीयों के फेवर के लिए हैं। भारतीयों के फेवर के लिए, कि भारतीयों को दंड ना मिले बल्कि उनको न्याय मिले। तो भारतीयों के न्याय के लिए ये हमारे लॉज बनाए गए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बनाए गए।
0: तो ये जो लॉज बनाए गए हैं नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ऐसा कहना है हमारी मेहमान शीला असवानी जी का। और शीला जी देखिए, क्रिमिनल लॉज की जब बात आती है तो बहुत सारे सवाल भी जहन में आते हैं, और उसी से संबंधित कुछ और सवाल हैं मैं आपसे करूंगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको सुनाता हूं एक गाना, और उसके बाद लौट करके आता हूं आज के मेहमान एडवोकेट शीला असवानी के साथ, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ सत्यमेव जयते। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी मेहमान है एडवोकेट शीला असवानी, हाई कोर्ट दिल्ली में है और आज बात कर रहे हैं न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। देखिए दोस्तों, क्रिमिनल लॉज की जब बात आती है तो बहुत सारे सवालों का जहन में उठना स्वाभाविक है। शीला जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि ये न्यू क्रिमिनल लॉज क्या है
1: जी।
0: लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, वारदातें हो जाती हैं घर में, घर से बाहर, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो लोगों के लिए हैं और लोगों को उनकी जानकारी नहीं है, उससे अवगत नहीं है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नागरिक देश का कंप्लेंट अपने किसी थाने में देना चाहता है, उसके लिए उसके क्या क्या अधिकार हैं?
1: जी सर, थाने में अगर आप कंप्लेंट दे रहे हैं, मान लो कि किसी पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, हम एग्जांपल लेके बात करते हैं, ए और बी है, उसके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है, तो अगर वो क्रिमिनल नेचर का है, क्रिमिनल अपराध है, तो आप थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर थाने वाले आपके पुलिस स्टेशन अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रावधान ये है कि आप EFIR कर सकते हैं। पहले हमारे जो पुराने लॉज है CRPC, उसके अंदर ये प्रावधान नहीं था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी हमारी उस टाइम नहीं थी, आज के में टेक्नोलॉजी है, तो आप EFIR भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन EFIR दर्ज करने के बाद आपको within 3 days, 3 दिन के अंदर वहाँ पे साइन करने जाना होगा। बिना साइन के आपकी कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी।
0: ये तो जो आपने बताया EFIR, ये EFIR क्या है हमारे श्रोताओं को जरा ये?
1: ये इलेक्ट्रॉनिक FIR है कि आप अपने फोन के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से आप पुलिस स्टेशन में अपनी EFIR के थ्रू अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और आपको 3 दिन के अंदर वहाँ पे थाने के अंदर साइन भी करना होगा। हमारी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पर्दे की आड़ में रहती हैं और जिनका पुलिस स्टेशन तक अप्रोच नहीं है, वो नहीं जा सकती हैं या उन्हें कुछ बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन फ़ोन तो सबके पास होता है, वो अपने इस फ़ोन से पुलिस स्टेशन में मैसेज भी कर सकती हैं, फैक्स भी कर सकती हैं, ठीक है, या कोई टेक्स्ट मैसेज भी कर सकती हैं या EFIR भी दर्ज कर सकती हैं। तो वहाँ से पुलिस स्टेशन से कॉल भी आती है कि आपके यहाँ से ये ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, बताइए क्या बात है, ठीक है। तो डैट मीन्स कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये लॉ बनाया गया है। सपोज कि अगर एक पॉइंट और कहना चाहूँगी कि कहते हैं कि जहाँ पे वारदात होती है आप उसी थाने में जाएंगे, लेकिन ये बात हमारे पुराने लॉज में थी। अब जो न्यू लॉज हमारा आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS
0: जी,
1: इसके अंदर एक प्रावधान और ये भी कर रखा है कि जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे दूर है, उस घटना स्थल से दूर है, तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई पर्सन अपने गांव में रहता है, गांव में कोई घटना हो गई है या उसका मकान हड़प लिया या कोई वारदात हो गई है, वो अब दिल्ली में है, आप कमाने के लिए आया है, अब वो गांव जाएगा तो इतने में तो सारे सबूत मिट जाएंगे, ठीक है, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? तो वो जहां अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में भी अपनी EFIR या वहाँ के लोकल थाने के अंदर भी अपनी कंप्लेंट या अपनी FIR दर्ज करा सकता है ताकि उसको इंसाफ मिले। गांव पहुँचते उसके 2 दिन लग जाएंगे, तो ये प्रावधान यहाँ पे दे रखा है कि आप कहीं पर भी अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। बहुत से एग्जांपल्स हैं कि सपोज कि उस पर्सन का जिस स्थान जो पर्सन जहाँ पे रहता है, जहाँ घटना हुई है वहाँ पे थाने के अंदर कोई मोनोपोली है, ठीक है, या फिर कोई प्रेशराइज है किसी पॉलिटिशियन का, वो उसकी दर्ज नहीं कर रहे कंप्लेंट, तो किसी और थाने से भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, इरिस्पेक्टिव एरिया। ये मेंशन किया गया है FIR के अंदर, इरिस्पेक्टिव एरिया, EFIR हो गया आपका, ऐसी बातें इसमें दर्ज की गई। तो बहुत ही अच्छे प्रावधान बनाए गए हैं हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, BNSS में
0: जी। और दोस्तों देखिए क्या है कि धाराएं होती हैं, आपके अधिकार होते हैं, उनसे जुड़ी धाराएं होती हैं। और जैसा कि बताया शीला जी ने कि आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं, और वहाँ नहीं होती है तो आप कहीं से भी करा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है शीला जी। और भी सवाल है, मैं आपसे करता रहूँगा, फिलहाल अपने दोस्तों को अभी एक गाना सुना देते हैं।
1: जी जी जरूर सर।
0: चलिए दोस्तों आप गाना सुनिए, गाने के बाद दोबारा से आता हूँ आज की मेहमान एडवोकेट शीला असवानी जी के साथ, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते में आज हमारे साथ एडवोकेट शीला असवानी हैं, हाई कोर्ट दिल्ली से। न्यू क्रिमिनल लॉस के बारे में बातें हो रही हैं। अभी आपने बहुत अच्छी बातें पीछे बताई थी न्यू क्रिमिनल लॉस के बारे में। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो कम्युनिटी सर्विस है
1: जी,
0: इसके बारे में क्या लॉस हैं?
1: जी जी, बहुत अच्छा है क्वेश्चन सर। कम्युनिटी सर्विस हमारा जो हमारे IPC है, इंडियन पेनल कोड, अब उसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता नाम से पता लग रहा है कि भारतीयों को न्याय देना। और इंडियन पेनल कोड का मतलब अब इंडियन पेनल कोड, दंड प्रक्रिया, दंड इसको मिलेगा भारतीयों को। तो एक तो नाम चेंज किया गया है कि हमारा IPC हटा के हमारा अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता, की नागरिक जो हमारे इंडियंस हैं उनको न्याय मिले। और इसके तो बहुत सी बातें, बहुत प्रावधान जोड़े गए हैं, बहुत ही बढ़िया रिफॉर्म किया गया है। इसमें एक रिफॉर्म और भी किया गया पनिशमेंट में, कम्युनिटी सर्विस। हमारी 5 टाइप की हमारी पनिशमेंट पहले थी और वही 5 पनिशमेंट यहाँ भी रखी गई है, साथ में एक पनिशमेंट और जोड़ दी गई है। 5 पनिशमेंट हमारी थी, जैसे डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया आपका, और आपका ये प्रॉपर्टी टू फॉरफीचर, फाइन्स हो गए, ठीक है। और इसमें एक पनिशमेंट और जोड़ दी, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये हो गया कि सपोज किसी ने पहली बार चोरी करी है, नाम कम्युनिटी सर्विस से लग रहा है कि सामुदायिक सर्विस करना, सेवा करना। तो सपोज किसी ने पहली बार चोरी करी है, ठीक है, और उसका जो चोरी का अमाउंट है वो लेस देन 5000 है 4999, लेस देन 5000 रुपीज, और पहली बार चोरी करी है। तो कोर्ट बोले कि भाई देखो, या कहीं जेल में जाके कहीं बेस्ट क्रिमिनल बन के ना आ जाए, जैसी संगत वैसी रंगत। तो उसको रिफॉर्म करने के लिए कोर्ट उसको कम्युनिटी सर्विस देगी। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये हो गया कि चलो उससे पेड़ पौधे लगवा दिए, भाई इतने 100 पेड़ पौधे लगा दे जरा, ठीक है, और ये काम कर दो, वृद्धाश्रम में जाइए, वहाँ पे जो वृद्ध होते हैं, ओल्ड होते हैं, उनसे अपना टाइम स्पेंड कीजिए, इतना टाइम दे रखा है, इतना टाइम स्पेंड कीजिए। मीन्स कम्युनिटी, जिसको कम्युनिटी को फ़ायदा हो, ऐसी कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की गई है अगर इसने फर्स्ट टाइम चोरी करी। और भी प्रावधान है इसके अंदर
0: जी,
1: ठीक है, इसमें ये ऐड किया गया कम्युनिटी सर्विस, ये बहुत अच्छा प्रावधान दिया गया है इसमें। दैट्स कम्युनिटी सर्विस एक तरह की पनिशमेंट ही है। ऐसा नहीं है कि हमारा ये भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है। आप देखिए कि जुवेनाइल जो एक्ट है, बच्चों के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं, कोड बनाए गए, उसके अंदर भी कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की गई है। तो अब इसमें भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी कुछ हमारे सेक्शंस हैं जिसके अंदर कम्युनिटी सर्विस दी जाती है।
0: जी, कम्युनिटी सर्विस क्या है और कम्युनिटी सर्विस आपको किस तरह के अधिकारों के साथ जोड़ती है? और देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती हैं। अब साथ में हमारे वकील साहिबा हैं तो आपको तो पूरी जानकारी है और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है शीला जी कि सवाल अभी ख़त्म हो गए।
1: नहीं, से पूछिए आप सवाल।
0: हाँ, मैं सवाल और भी पूछूंगा, लेकिन सवाल और जवाब के साथ साथ लोगों को गाने भी सुनवाते होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी एक गाना सुनते हैं, उसके बाद दोबारा से आते हैं आपके साथ आपके कार्यक्रम सत्यमेव जयते में।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं सत्यमेव जयते। आज की हमारी मेहमान है एडवोकेट शीला असवानी। बात हो रही है न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। शीला जी, आपने अभी कुछ बातें बताई थी, बहुत अच्छी जानकारी थी वो। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी ने कोई अपराध कर दिया और पुलिस उसको सर्च करने के लिए उसके घर जाती है, तो उसको वीडियो बनाना या कोई ऑडियो बनाना, इस तरह से कवर करना, ये ज़रूरी होता है या वो ना करे तो चलेगा?
1: नहीं नहीं सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन जो ये बनाए गए हैं लॉ इसके ऊपर कि अगर कोई पुलिस सर्च करने जाती है किसी एक घर पे और उसमें सर्च में जो आर्टिकल्स निकलते हैं
0: जी,
1: उसकी पूरी ऑडियो या वीडियोग्राफी बनाई जाएगी।
0: ओके,
1: ये बहुत ज़रूरी है सर। वो इसलिए क्योंकि कहीं पुलिस कोई प्लांट खुद ना कर दे, खुद ना वहाँ पे लगा दे आर्टिकल्स की हाँ ये रिकवरी हुई है वहाँ से, तो उसकी एक ऑडियो या वीडियोग्राफी बनाई जाएगी कि हमने ये सामान रिकवर करा है, हमने ये आर्टिकल्स रिकवर करे हैं। और जो लिस्ट बनाएंगे उसकी भी ऑडियो वीडियो होगी उसकी, और प्लस जो दो विटनेस साइन करेंगे उनका भी रिकॉर्डिंग होगा। और ये पक्का है, ये पक्का उनको करना है, इससे वो अपनी ड्यूटी से हट नहीं सकते हैं। और ऐसा करने के बाद फौरन विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के वो ये रिपोर्ट और ये रिकॉर्डिंग आगे फॉरवर्ड करेंगे डीएम साहब को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब को, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को फौरन फॉरवर्ड करेंगे, ताकि उस ऑडियो या वीडियो में कोई टैम्पर ना किया जाए।
0: लेकिन अगर पुलिस वाले गए हैं उनको सर्च करने के लिए और किसी भी तरह की वीडियो वो नहीं बनाते हैं, तब क्या होना चाहिए?
1: उन्होंने फिर राइट का उल्लंघन किया है सर, क्योंकि प्रावधान हमें यही कहता है कि उनको बनाना है
0: जी,
1: और जरूर बनाना है, 100% बनाना है। अगर वो ऐसे करते हैं तो उन्होंने अपनी ड्यूटी से ब्रीच किया है अपना, तो राइट्स तो वॉलेट हो ही रहे ना पब्लिक का, तो क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही ये प्रावधान दे रखा है, सेक्शन 105, तो ये प्रावधान दे रखा है, पुलिस वालों को करना ही करना है सर्च एंड सीजर के टाइम पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही प्रावधान दे रखा है ये।
0: जी
1: जी,
0: तो चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी है शीला जी। अब देखिए, बातें बहुत सारी हो चुकी हैं लेकिन समय और ज्यादा नहीं है
1: जी,
0: इसलिए आखिर में मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से सभी सुनने वालों के लिए क्या मैसेज है?
1: मैं तो यही कहूंगी सर सबसे कि अपने अधिकारों को जाने, अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो, जो सोता है वो खोता है। अगर आप सोए रहेंगे तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी कोर्ट में, उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप ये कहें हमें तो अपने कानून के बारे में पता ही नहीं है, आप इंडिया में रहते हैं, और कोई अगर पर्सन बोले कि मुझे तो पता ही नहीं अपने कानून के बारे में, तो ये बात गलत है, इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल। आप अपने अधिकारों को जाने, आजकल तो सबके पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आप उन पे भी अपनी क्यूरीज डाल के अपने क्वेश्चन, अपने आंसर सर्च कर सकते हैं। अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहे, यही मेरा मैसेज है। धन्यवाद।
0: बिल्कुल शीला जी, आप आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ सभी श्रोताओं को दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: धन्यवाद सर। कहना चाहूँगी कि रेडियो मानव रचना का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और रूबरू कराया ऑडियंस के साथ, थैंक यू सो मच सर।
0: जी, तो दोस्तों, अब फहीम भी आपसे इजाज़त चाहता है, लेकिन जाते जाते बस यही कहूँगा कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक आप किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा, अपना ख्याल रखना, नमस्ते, खुदा हाफिज।
1: शुक्रिया।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। फाइनली आज के ब्रांड की बात करेंगे, मतलब उम्मीद कर रहा हूँ इंश्योरटेक के बारे में जितना मैंने आपको बताया उतना आप समझ पाए अच्छे से। आज की हमारी कंपनी है इंश्योरेंस देखो, एक इंडियन इंश्योरटेक स्टार्टअप है, आप कह सकते हैं ब्रोकर या एग्रीगेटर मॉडल के उस पर काम करता है, जो कंज्यूमर्स की हेल्प करता है कंपेयर करने में, परचेज करने में और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को जो है मैनेज करने में अक्रॉस मैनी इंश्योरेंस। ठीक है, दे यूज एजेंट नेटवर्क्स, जिसको आप POSPs के तौर पे जानते हैं, ऑफलाइन एजेंट्स के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। टेक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कंपैरिजन आप इजीली कर सकते हैं, रिन्यू आप अपनी पॉलिसी को करा सकते हैं, रिन्यूअल के आपको रिमाइंडर्स मिल जाते हैं, क्लेम्स का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, बोथ अर्बन एंड नॉन अर्बन मार्केट्स इन इंडिया। कैसी कंपनी स्टार्ट हुई? सो कार देखो ग्रुप का एक वर्टिकल है ये, ठीक है, जिसके अंदर ही इसको आप समझ सकते हैं कि इनक्यूबेट किया गया। अब ये ऑटो या फिर आप कह सकते हैं व्हीकल मार्केट प्लेस एक ग्रुप है जो पहले से ऑपरेट कर रहा है, जो अच्छे से उस एक इंडस्ट्री को समझता है। सो दे यूज द एक्सपीरियंस ऑफ दैट प्लेटफॉर्म द ब्रांड ऑफ कार देखो टू ब्रांच इनटू इंश्योरेंस। इसके जो फाउंडर्स हैं वो हैं अंकित अग्रवाल एंड ईश बब्बर। ठीक है, ये जो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को अच्छे से समझते हैं, उनको ये पता है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो बहुत लो है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, खासतौर पर टीयर टू की अगर आप बात करें या जो सेमी अर्बन एरियाज होते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने थोड़ा अपना स्ट्रीमलाइन किया, उसको थोड़ा स्मूथ बनाया, और जो क्योंकि लैक ऑफ कंपेरिजन था, ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी कमी थी जो इन्हें समझ में आई, इसकी वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट।

कई बार तुमने घूंघट भी खोल लिए, एक घूंघट के भीतर तुमने कोई ना पाया तो भी तुम्हें समझ नहीं आती, तब तुम दूसरा घूंघट खोलने में लग जाते हो। एक मुट्ठी झाग झाग सिद्ध हो गई तो मन कहे चला जाता है सारी ही झाग थोड़ी झाग होगी, एक घूंघट व्यर्थ हुआ दूसरे घूंघट में खोज लेंगे। ऐसा जन्म जन्मों से घूंघट उठाने का क्रम चलता है, किसी घूंघट में कभी किसी को नहीं पाया, सब घूंघट खाली थे। तुमने कभी किसी में किसी को पाया, पति में कुछ पाया, पत्नी में कुछ पाया, मित्र में कुछ पाया, सगे साथी में कुछ पाया, या सिर्फ घूंघट था? नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है वहां, लेकिन मन की आशा कहती यहां नहीं मिला तो कहीं और मिल जाएगा। इस झरने में पानी सिद्ध नहीं हुआ फिर दूर और झरना दिखाई पड़ने लगता। तुम कब जागोगे इस सत्य से कि झरने तुम कल्पित करते हो, कहीं कोई नहीं है, तुम्हारे अतिरिक्त सब अयथार्थ है, तुम्हारे अतिरिक्त सब माया है। यमराज की दृष्टि से बचकर आगे बढ़ो। अगर जीवन को सचमुच पाना है तो मौत से, जहां जहां मौत हो वहां वहां जीवन नहीं है, इसको तुम समझ लो। जहां जहां परिवर्तन हो वहां शाश्वत नहीं है, और जहां जहां क्षणभंगुर हो वहां सनातन नहीं है, और जहां जहां चीजें बदलती हो वहां समय को मत गमाना, उसको खोजो जो कभी नहीं बदलता है। उस न बदलने को खोज लेने की कला का नाम धर्म है। एस धम्मो सनातनो। विषय रूपी फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उसी तरह उठा ले जाती है जिस तरह सोए हुए गांव को भरी हुई बाढ़, जिस सोए हुए गांव में अचानक नदी में बाढ़ आ जाए और लोग सोए सोए ही बह जाते हैं, ऐसे ही विषय रूपी फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उठा ले जाती, सोए ही सोए बाढ़ आ जाती है और जिंदगी विदा हो जाती। तुम सपने ही देखते रहते हो और बाढ़ आ जाती। सारी काम वासना स्वप्न देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यह ऐश के बंदे सोते रहे फिर जागे भी तो क्या जागे, सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए। एक तो जागते ही नहीं, सोए ही रह के बिता देते, और अगर कभी कोई सोचता भी है कि जाग गया तो सोचता ही है कि जाग गया, वो भी जागना जैसे सपने में ही जागना है। सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए, तो लोग अपने जन्मदिन को याद रखते, मृत्यु दिन की कौन चर्चा करता है। लोग जीवन पर नजर रखते, मौत की बात ही करनी बेहूदी मालूम पड़ती। अगर किसी से पूछो कि कब मरोगे तो वो नाराज हो जाता, मरोगे के नहीं तो फिर तुम्हारा तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं, वो तुम्हें दुश्मन समझ लेगा। पूछा कुछ गलत न था, जो होने ही वाला था वही पूछा था, लेकिन मौत की लोग बात भी नहीं करना चाहते, बात से भी भय लगता है। फिर भी मौत तो है, उस तथ्य को इनकार न कर सकोगे। किसी भांति उस तथ्य को स्वीकार करो तो शायद इस जीवन से जागने की क्षमता आ जाए। जिसने भी मृत्यु को स्वीकार किया वो देखेगा मृत्यु कभी आती है ऐसा थोड़ी, रोज हम मर रहे हैं, अभी आती है, अभी आ रही है, अभी घट रही है, ऐसा थोड़ी कि कभी 70 साल के बाद घटेगी, रोज रोज घटती है, 70 साल में पूरी हो जाती। जन्म के साथ ही मौत का सिलसिला शुरू होता है, मरने के साथ पूरा होता है, लंबी प्रक्रिया है। मृत्यु कोई घटना नहीं है, प्रक्रिया है, पूरे जीवन पर फैली है। जैसे झील पर लहरें फैली हो ऐसे जीवन पर मौत फैली है। अगर तुम मौत को छिपाते हो, ढांकते हो, बचते हो तो तुम जीवन के सत्य को ना देख पाओगे। जिसे तुम जीवन कहते हो इस जीवन का सत्य तो मृत्यु है। सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए। सूरज उग चुका है, ढलने में ज्यादा देर ना लगेगी। जो उग चुका वो ढल ही चुका, जो उग गया है वो ढलने के मार्ग पर है। सुबह का सूरज
सांझ का सूरज बनने की चेष्टा में संलग्न है। सांझ दूर नहीं है अगर सुबह हो गई। जब सुबह ही हो गई तो सांझ कितनी दूर हो सकती है? जिसको तुम भर जवानी कहते हो

वो केवल आधे दिन का पूरा हो जाना है, आधी सांझ का आ जाना है। जवानी आधी मौत है, लेकिन कौन याद रखता है? जो याद रख लेके वही शिष्य है। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, जिंदगी भी जान लेकर जाएगी। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, जिंदगी भी जान लेकर जाएगी। मौत को दुश्मन मत समझना, जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो मौत ही है, वो भी जान लेकर जाएगी। फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उसी तरह उठा ले जाती है जिस तरह सोए हुए गांव को बढ़ी हुई बाढ़। तू हविस में दुनिया की जिंदगी मिटा बैठा, भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी। तू हविस में दुनिया की जिंदगी मिटा बैठा, दुनिया को पाने की चेष्टा में वो जो जीवन था उसे तूने मिटा दिया, और दुनिया के पाने की चेष्टा को ही तूने जिंदगी समझी, वो जिंदगी ना थी। भूल हो गई गाफिल सोए हुए आदमी, भूल हो गई जिंदगी ही दुनिया थी। इसे थोड़ा समझ लो, जिसे तुम दुनिया कहते हो तुम्हारे बाहर जो फैलाव है उसे जिंदगी मत समझ लेना। अगर उस बाहर की दुनिया को ही इकट्ठा करने में लगे रहे तो असली जिंदगी गंवा दोगे, पीछे पछताओगे, समय बीत जाएगा और रोओगे, फिर शायद कुछ कर भी ना सकोगे। अभी कुछ किया जा सकता है, मरते क्षण में शायद अधिकतम लोगों को यह समझ आती है। तू हविस में दुनिया की जिंदगी गंवा बैठा, मरते वक्त अधिक लोगों को यह ख्याल आना शुरू हो जाता है। भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी, लेकिन तब समय नहीं बचता। मरते मरते दिखाई पड़ना शुरू होता है कि महल जो बनाए, धन जो इकट्ठा किया, साम्राज्य जो फैलाए, भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी। भीतर की जिंदगी को जान लेते तो दुनिया को पा लेते, बाहर की दुनिया को पाने में लग गए, भीतर की जिंदगी गंवा दी। बाहर और भीतर में उतना ही फर्क है जितना सत्य में और स्वप्न में। बाहर है स्वप्न का जाल, भीतर है साक्षी का निवास। जो दिखाई पड़ता है उस पर ध्यान मत दो, जो देखता है उस पर ध्यान दो। जो भोगा जाता है उस पर ध्यान मत दो, जो भोगता है उस पर ध्यान दो। आंख की फिक्र मत करो, आंख के पीछे जो खड़ा देखता है उसकी फिक्र करो। कान की फिक्र मत करो, कान के पीछे खड़ा जो सुनता है उसकी फिक्र करो। न जन्म की चिंता करो न मृत्यु की, चिंता करो उसकी जो जन्म में आता है और मृत्यु में जाता है, जो जन्म के भी पहले है और मृत्यु के भी बाद है। मरते क्षण में ये याद भी आए तो फिर क्या करोगे? जिनको पहले याद आ जाती है वे कुछ कर लेते हैं। हिचकियों पर हो रही है, हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, झटके देकर तार तोड़े जा रहे। मरते क्षण में तो फिर ऐसा ही लगेगा कि जिसको जिंदगी समझी, हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, वो सारे स्वप्न, वे सारे गीत, वो सारा संगीत हिचकियों में बदल जाता है। हिचकियां ही हाथ में रह जाती है। हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, झटके देकर तार तोड़े जा रहे। इसके पहले कि सब कुछ हिचकियों में बदल जाए, और इसके पहले कि तुम्हारा साज तोड़ा जाए, भीतर के गीत को गा लो। इसके पहले कि मौत शरीर को छीने, तुम उसे जान लो जिसे मौत छीन ना सकेगी। इसके पहले कि बाहर का जगत खो जाए, तुम भीतर के जगत में पैर जमा लो। अन्यथा तुम सोए हुए गांव की तरह हो, बड़ी हुई नदी की बाढ़ तुम्हें सोया सोया बहा ले जाएगी। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है,
वैसे ही मुनि गांव में भिक्षाटन करे। जीवन के गांव की बात है। बुद्ध कह रहे हैं जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है, ऐसे ही तुम इस जिंदगी में रहो। जीवन जो रस दे सके ले लो, मगर रस केवल वे ही ले पाते हैं जो जागृत है। शेष तो उन भौनों की तरह है जो रस लेने में इस तरह डूब जाते कि उड़ना ही भूल जाते। सांझ जब कमल की पखरियां बंद होने लगती तब वे उसी में बंद हो जाते, उनके लिए कमल भी कारागृह हो जाते। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को बिना हानि पहुंचाए रस लेके चुपचाप चल देता है, ऐसे जिंदगी को बिना कोई हानि पहुंचाए, यही अहिंसा का सूत्र है। अहिंसा का सूत्र इतना ही है कि रस लेने के तुम हकदार हो, लेकिन किसी की हानि पहुंचाने के नहीं। फूल को तोड़ के भी भोगा जा सकता है, वो भी कोई भोगना हुआ। भौरा आता है फूल पर, चुपचाप गुनगुनाता है गीत, रिझा लेता है फूल को, रस ले लेता, उड़ जाता, तोड़ता नहीं, मिटाता नहीं। भौरे की तरह मुक्त, भ्रमर की तरह मुक्त। बुद्ध कहते हैं जीवन के गांव में तुम जियो जरूर, लेकिन आबद्ध मत हो जाना, बंद मत हो जाना। हमारी हालत तो बड़ी उल्टी है, इससे ठीक उल्टी। बुद्ध कहते हैं दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया के मत हो जाना। बुद्ध कहते हैं दुनिया में रहना, लेकिन हमारी हालत से ठीक उल्टी है। बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम है, बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम है। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में है। मर भी जाएं हम तो भी गम नहीं मरते, कब्र में भी तुम पड़े रहोगे। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में, तब भी तुम सपने देखोगे, तब भी तुम उसी दुनिया के सपने देखोगे जिससे तुमने कुछ कभी पाया नहीं। तुम्हारी आंखें फिर भी उसी अंधेरे में खोई रहेंगी जहां कभी रोशनी की किरण न मिली। तो एक तो है ढंग, दुनिया उसके भीतर से नहीं हटती, और एक है सन्यासी का ढंग, वो जीता भी है तो दुनिया उसके भीतर नहीं होती। ये जीवन के विराट नगर के संबंध में भी सही है, और यही बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए कहा कि गांव गांव जब तुम भीख भी मांगने जाओ, भिक्षाटन भी करो, तो चुपचाप मांग लेना, ऐसे ही जैसे भौरा फूलों से मांग लेता और विदा हो जाना। ले लेना जो मिलता हो, धन्यवाद दे देना जहां से मिले, अनुग्रह पूर्वक स्वीकार कर लेना। न मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि मिलना चाहिए धन्य भाग, न मिले संतोष। और जो न मिलने पर संतुष्ट है उसे मिल ही जाता है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी कि मिल जाने पर भी संतोष नहीं, तो मिल के भी नहीं मिल पाता, हम दरिद्र के दरिद्र ही रह जाते हैं। जीवन से बहुत कुछ पाया जा सकता है, सपने से भी सीखा जा सकता है, और मृग मरीचिकाएं भी बुद्धत्व का आधार बन जाती, भ्रम से भी जागने की कला उपलब्ध हो जाती। रस को लेकर चल देता है, वैसे ही मुनि गांव में भिक्षाटन करे। न तो संसार का सवाल है, न संसार को छोड़ने का सवाल है, क्योंकि जो तुम्हारा है ही नहीं उसे तुम छोड़ोगे कैसे। इतने भर जानने की बात है कि हम यहाँ मेहमान से ज्यादा नहीं। जब तुम किसी के घर मेहमान होते हो, जाते वक्त तुम ऐसा थोड़ी कहते हो कि अब सारा घर तुम्हारे लिए छोड़े जाते, त्याग किए जाते। मेहमान का यहाँ कुछ है ही नहीं, घर में ठहरने का सौभाग्य मिल गया, धन्यवाद। अपना कुछ है नहीं, छोड़ेंगे क्या। इसलिए त्यागी वही है जिसने ये जान लिया कि हमारा कुछ भी नहीं, वह नहीं जिसने छोड़ा, क्योंकि जिसने छोड़ा उसे तो अभी भी ख्याल है कि अपना था छोड़ा। अपना हो तो ही छोड़ा जा सकता है, अपना हो ही ना तो छोड़ना कैसा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं छोड़ने की भ्रांति में मत पड़ना, क्योंकि वो पकड़ने की ही भ्रांति का हिस्सा है।
तुम तो पकड़ने की भ्रांति को ही समझ लेना, अपना कुछ भी नहीं। अभी नहीं थे तुम, अभी हो, अभी फिर नहीं हो जाओगे। इस संसार को भीतर घर मत बनाने देना। तुम संसार में रहना लेकिन संसार तुम में न रह पाए, गुजरना पानी से लेकिन पैर भीगे नहीं, जीना लेकिन भंवरे की तरह किसी को हानि न पहुंचे। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है। क्या रस है, किस रस की बात कर रहे हैं बुद्ध? समझा दूं, क्योंकि डर है कि तुम कुछ गलत ना समझ लो। बुद्ध किस रस की बात कर रहे हैं, किस भंवरे की बात कर रहे हैं? तुम जिन्हें सुख कहते हो उनकी बात नहीं कर, तो वही रस है, क्योंकि जिसने वो जान लिया उसके लिए महारस के द्वार खुल गए। तो जीवन के हर फूल से और जीवन की हर घटना से, जन्म हो कि मृत्यु, और जीवन की हर प्रक्रिया से तुम एक ही रस को खोजते रहना और चुनते रहना। हर अवस्था तुम्हें जगाने का कारण बन जाए, निमित्त बन जाए। घरों की गृहस्थी, बाजारों की दुकान, कोई भी चीज तुम्हें सुनाने का बहाना न बने, जगाने का बहाना बन जाए। तो तुमने रस ले लिया। मरने के पहले अगर तुमने इतना जान लिया उनको, महाजीवन को जान लिया, तो तुमने रस ले लिया। तो तुम यूं ही न भटके, तो तुमने ऐसी ही गर्द गुबार न खाई, तो रास्ते पे तुम चले ही नहीं, पहुंचे, पहुंचे भी तब तुम अचानक हैरान होगे, चकित होगे कि जिसे तुम खोजते फिरते थे वो तुम्हारे भीतर था। वो परमात्मा का राज तुम्हारे हृदय के ही राज्य का दूसरा नाम है। मोक्ष तुम्हारे भीतर छिपी स्वतंत्रता का ही नाम है। और क्या है, अहंकार का टिमटिमाता दिया बुझ जाता है तो ऐसा नहीं कि अंधकार हो जाता है, उस टिमटिमाते दिए के बुझते ही महासूर्यों का प्रकाश तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि जब वे गीतांजलि लिख रहे थे तो पद्मा नदी पर एक बजरे में निवास करते थे, रात गीत की धुन में खोए, कोई गीत उतर रहा था, उतरे चला जा रहा था, वो एक टिमटिमाती मोमबत्ती को जला के बजरे में देर तक गीत की कड़ियों को लिखते रहे। कोई आधी रात फूक मार के मोमबत्ती बुझाई, हैरान हो, पूरे चांद ही गीत था। जैसे ही मोमबत्ती बुझी कि बजरे की उस छोटी सी कुर्सी में सब तरफ से सूरज, सब तरफ से चांद की किरणें भीतर आ गई, रंध रंध से वो छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी चांद की किरणों को बाहर रोके हुई थी। तुमने कभी ख्याल किया, कमरे में दिया जलता हो तो चांद भीतर नहीं आता, फिर दिया फूंक मार के बुझा दिया, चांद बरस पड़ा भीतर, बाढ़ की तरह सब तरफ से आ गया। रविन्द्रनाथ उस रात नाचे और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि आज एक अपूर्व अनुभव हुआ, कहीं ऐसा ही तो नहीं, कहीं हम निर्वाण है, इधर तुम बुझे, उधर सब तरफ से परमात्मा या जो भी नाम दो भीतर प्रविष्ट हो जाता है। तो एक तो जीवन को जीने का ढंग है जैसा तुम जी रहे हो, एक बुद्धों का ढंग भी है। चुनाव तुम्हारे हाथ में, तुम बुद्धों की भांति भी जी सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा सिवाय तुम्हारे, और तुम दीनहीन भिखमंगों की भांति भी जी सकते हो जैसा तुम जी रहे हो, कोई तुम्हें जबरदस्ती जिला नहीं रहा, तुमने ही न मालूम किस बेहोशी और नासमझी में इस तरह की जीवन में जानो जिनमें तुम खुद ही कैद हो गए हो। मैं एक घर में मेहमान था, सामने एक मकान बन रहा था और एक छोटा लड़का वहां मकान के सामने पड़ी हुई रेत और ईंटों के बीच में खेल रहा था। उसने धीरे धीरे, मैं देखता रहा बाहर बैठा हुआ, मैं देख रहा था, उसने धीरे धीरे अपने चारों तरफ ईंटें लगा ली और ईंटों की जमाता गया ऊपर, फिर वो घबराया जब उसके गले तक ईंटें आ गई क्योंकि वो खुद कैद हो गया, तब वो चिल्लाया कि बचाओ। मैं उसे देख रहा था और मुझे लगा यही आदमी की अवस्था है, ढंग से रखी है उसी ढंग से गिरा दो, तुमने ही रखी है तुम ही उठा सकते हो,
कारागृह तुम्हारा

फूल को देते। प्रश्न पूछते समय थोड़ा सोचा भी करे कि प्रश्न का सार क्या है। यदि ऐसा हुआ होता, यदि वैसा हुआ होता, इन सारी बातों में क्यों व्यर्थ समय को व्यतीत करते हो? महाकाश्यप नहासा होता तो बुद्ध फूल देते या न देते, इससे तुम्हें क्या होगा? महाकाश्यप ना भी हुआ हो, हुआ हो, कहानी सिर्फ कहानी हो, तो भी तुम्हें क्या होगा? कुछ अपनी पूछो, कुछ ऐसी बात पूछो जो तुम्हारे काम पड़ जाए। प्रश्न ऐसे न हो कि सिर्फ मस्तिष्क की खुजलाहट हो, क्योंकि खुजलाहट का गुण है जितना खुजाओ बढ़ती चली जाती है। पूछने के लिए ही मत पूछो, अगर न हो प्रश्न तो पूछो ही मत, चुप बैठेंगे। शायद तुम्हारे बीच कोई महाकाश्यप हंसते। हंसना न हंसना महत्वपूर्ण नहीं है, बाहर जो घटता है उसका कोई मूल्य बुद्ध पुरुषों के लिए नहीं। फूल तो महाकाश्यप को दिया ही होता, वो अकेला ही था वहां जो बुद्ध के मन को समझ सकता था। हर हालत में फूल उसके पास गया होता, बुद्ध न देते तो भी गया होता। छोड़ दो फिक्र, हंसता नहीं, बुद्ध ना भी देते फूल तो भी मैं कहता हूँ उसी के पास गया होता, फूल खुद चला गया होता, कोई बुद्ध को देने की जरूरत भी न थी। घटना को समझने की कोशिश करो, ब्यौरे की व्यर्थ बकवास में मत पड़ो। घटना सीधी है कि बुद्ध चुप रहे, उस चुप्पी को कोई और न समझ पाया। चुप्पी को समझने के लिए तुम्हें भी चुप होना जरूरी है। जिस भाषा को समझना हो उस भाषा को जानना जरूरी है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी जानना जरूरी है, मैं चीनी बोलूँ तो चीनी जानना जरूरी है, तभी समझ सकोगे। बुद्ध उस दिन मौन बोले, मौन की भाषा बोले, जो मौन का रस जानता था वही समझा, जो मौन का रस नहीं जानते थे उन्होंने उस मौन को भी अपने चिंतन का व्यापार बना लिया। वो सोचने लगे बुद्ध मौन क्यों बैठे। अभागे लोग जब बुद्ध मौन थे तब चुप हो गए होते तो फूल उन्हें भी मिल सकता था, लेकिन वे सोचने लगे कि बुद्ध मौन क्यों बैठे, कि बुद्ध हाथ में फूल क्यों लिए। जिसने सोचा उसने गंवाया। बुद्धों के पास सोचने से संबंध नहीं जुड़ता, बुद्धों के पास तो न सोचने की कला आनी चाहिए। महाकाश्यप चुप रहा, उसने बस भर आंख देखा, उसने सोचा नहीं कौन फिक्र करे। इतना अप्रतिम सौंदर्य उस दिन प्रकट हुआ था, ऐसा सूरज उगा था जैसा कभी कभी सदियों में उगता है। बुद्ध उस दिन सब द्वार दरवाजे अपने मंदिर के खोलकर बैठे थे, निमंत्रण दिया था कि जिसे भी आना हो आ जाए। परमात्मा द्वार पर आके खड़ा था, दस्तक दे रहा था। तुम सोचने लगे, तुम विचार करने लगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों बुद्ध चुप बैठे हैं, पहले क्यों कभी नहीं बैठे। विचारक चूक गए। महाकाश्यप कोई विचारक न था, वो सिर्फ देखता रहा बुद्ध को। जैसे बुद्ध फूल को देखते रहे ऐसा महाकाश्यप बुद्ध को देखता रहा। वही तो इशारा था कि जैसे मैं देख रहा हूँ फूल को, मात्र दृष्टा हूँ, ऐसे ही तुम भी दृष्टा हो जाओ। आज हो चुकी बहुत बातें दर्शन की, अब दृष्टा हो जाओ। दर्शन की बात कब तक चला रखोगे? हो चुकी चर्चा भोजन की, अब भोजन करो, अब स्वाद लो। बुद्ध ने थाली सजा दी थी अपनी, तुम सोचने लगे भोजन के संबंध में। बुद्ध भोजन रखे सामने बैठे थे,

फूल को देख रहे थे, वैसा ही महाकाश्यप बुद्ध के फूल को देखने लगा। बुद्ध ने एक फूल देखा, महाकाश्यप ने दो फूल देखे, दो फूलों को एक साथ देखा, उन दोनों फूलों का तारतम्य देखा, संगीत देखा, लयबद्धता देखी, एक अपूर्व छंद का उसे अनुभव होने लगा। रुकता भी महाकाश्यप कैसे बिना हंसे, क्यों हंसा महाकाश्यप? हंसा लोगों पर जो कि सोच में पड़ गए हैं। मंदिर सामने खड़ा है और वो मंदिर की खोज कर रहे हैं। सूरज उग चुका है, वो आंख बंद किए प्रकाश की चर्चा में लीन है। महाकाश्यप हंसा लोगों की मूर्ता पर। हंसा कहना ठीक नहीं, हंसी निकल गई, कुछ किया नहीं हंसने में, और रुक न सका, घट गया, फूट पड़ी हंसी। देख के सारी न समझी, हजारों लोग मौजूद थे, चूके जा रहे इस मूर्ता पर हंसा है, और इस बात पर भी हंसा कि बुद्ध ने भी खूब खेल खेला, जो नहीं कहा जा सकता वो भी कह दिया, जो नहीं बताया जा सकता उसको भी बता दिया, जिसको जतलाने में कभी अंगुलियां समर्थ नहीं हुई उस तरफ भी इशारा कर दिया। उपनिषद उस दिन मात हो गए, जो नहीं कहा जा सकता था उसे कृत्य बना दिया, वक्तव्य दे दिया उसका संपूर्ण जीवन से। इसलिए उस दिन के बाद जैन परंपरा में जब भी गुरु प्रश्न पूछता है तो शिष्य को उत्तर नहीं देना होता, कोई कृत्य करना होता है जिससे वक्तव्य मिल जाए, कोई कृत्य, ऐसा कृत्य जिसमें शिष्य संपूर्ण रूप से डूब जाए। महाकाश्यप हंसा ऐसा नहीं, महाकाश्यप हंसी हो गया। पीछे कोई बचा नहीं जो हंस रहा था, कोई पीछे खड़ा नहीं था जो हंस रहा था, महाकाश्यप एक खिलखिलाहट होकर बिखर गया उस संगत पर। जैन फकीर प्रश्न पूछते, एक जैन फकीर हुआ बैठा था, शिष्य बैठे थे, एक बर्तन में पानी रखा था। उसने कहा कि सुनो, बिना कुछ कहे बताओ कि ये क्या है, ये बर्तन और ये पानी, बिना कुछ कहे कोई वक्तव्य दो, अर्थात कृत्य से घोषित करो जैसा महाकाश्यप ने किया था खिलखिलाकर। और जब कृत्य से महाकाश्यप ने घोषित किया तो कृत्य से बुद्ध ने उत्तर भी दिया फूल देकर। आज मैं भी तुम्हें फूल देने को उत्सुक हूं। शिष्य देखने लगे हाथ में कोई फूल तो नहीं था, सोचने लगे कि ये बात तो और उलझन की हो गई, कम से कम बुद्ध हाथ में फूल तो लिए थे, इस आदमी के हाथ में कोई फूल नहीं, वो फूल के संबंध में सोचने लगे। और उन्होंने लाख सोचा कि इस पानी भरे बर्तन के संबंध में क्या कहो, बिना कहे कैसे वक्तव्य दो। और तभी भोजन का समय करीब आ रहा था, रसोईया जो भिक्षु जो सन्यासी रसोई का काम करता था वो भीतर आया। उसने ये उदासी चिंतन से तने हुए लोग देखे, उसने पूछा मामला क्या है? गुरु ने कहा एक सवाल है, इस बर्तन जल भरे बर्तन के संबंध में वक्तव्य देना है, कोई वक्तव्य जो इसकी पूरी के पूरे रहस्य को प्रकट कर दे, शब्द का उपयोग नहीं करना है, और जो ये करेगा वही फूल में देने को तैयार हूं जो बुद्ध ने दिया था। लेकिन उस रसोई ने गुरु के हाथ की तरफ देखा ही नहीं कि फूल वहां है या नहीं। गुरु फूल है, अब इसमें फूल क्या देखना। वो उठा, उसने एक लात मार दी उस बर्तन में, पानी लुढ़क के सब तरफ बह गया, और वो बोला कि अब उठो, हो गई बकवास बहुत, भोजन का समय हो गया। कहते हैं गुरु ने उसके चरण छू लिए, दे दिया फूल, वक्तव्य उसने प्रकट कर दिया। अस्तित्व को तो ऐसे ही बिखेर के बताया जाता है, अब और क्या कहने को रहा, उल्टा दिया पात्र, जल बिखर गया सब तरफ। ऐसे ही उस दिन महाकाश्यप ने भी उल्टा दिया था अपना पात्र, खिलखिलाहट बिखर गई थी सब तरफ।
ऐसी फिर हजारों घटनाएं हैं जैन परंपरा में। एक घटना को दोबारा नहीं दोहरा सकते, याद रखना, क्योंकि दोहराने का तो मतलब होगा सोच के। इसलिए हर घटना अनूठी है और आखिरी, फिर तुम उसे पुनरुक्त नहीं कर सकते। अगर मैं आज फूल लेके आ जाऊं तो जो हंसेगा उसको घर नहीं मिलेगा। अगर आज मैं बर्तन में पानी रख के बैठ जाऊं और तुमसे पूछूं तो जो लात मार के लुड़काएगा उसको घर नहीं मिलेगा। वो तो विचार हो गया। अब तो महाकाश्यप की कहानी पता है, हजारों घटनाएं, लेकिन हर घटना अनूठी है और उसकी पुनरुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पुनरुक्ति यानी विचार। कुछ कहो पूरे अस्तित्व से और कुछ कहो इस ढंग से जैसा कभी ना कहा गया हो, तो फिर मन को जगह नहीं बचती। मन तो अनुकरण करता है, दोहराता है, यंत्रवत है। मन के पास कोई मौलिक सूझ नहीं होती। एक दूसरे दिन फकीर का एक शिष्य बहुत दिन से चिंता में रखे, गुरु ने कोई सवाल दिया है जो हल नहीं होता। जब सब तरह के उपाय कर चुका तो उसने प्रधान शिष्य को पूछा कि तुम तो स्वीकार हो गए हो, तुम तो कुछ कुंजी दो, हम परेशान हुए जा रहे हैं, वर्षों बीत गए, कुछ हल नहीं होता, कोई राह नहीं मिलती, और जब भी जाते हैं हम उत्तर भी नहीं दे पाते। गुरु कहता बस बकवास बंद, अभी हम बोले भी नहीं, अभी तो हद हो गई, ऐसे तो हम कभी भी जीत ना पाएंगे, कम से कम बोलने तो दो, हम कुछ कहें फिर तुम कहो गलत और सही। हम बोलते ही नहीं और गलत हो जाता है, तो अब तो सही होने का कोई उपाय ना रहा है। गुरु नाराज है। शिष्य हंसने लगा। प्रधान शिष्य का नाराज नहीं, क्योंकि जब तुम विचार करते हुए जाते हो तो चेहरे का ढंग ही और होता है, जब तुम निर्विचार में जाते हो तो चेहरे का ढंग ही और होता है। सोचो थोड़ा, जब तुम विचार से भरे होते हो तो सारे चेहरे पर तनाव होता, आंख में माथे पर बल होते, जब तुम निर्विचार में होते हो सब बल खो जाते हैं, सब तनाव खो जाता है। जब तुम निर्विचार में होते हो तब तुम्हारे चारों तरफ ऐसी शांति झरती कि अज्ञानी भी पहचान ले तो गुरु ने पहचान लिया। वो तुम्हें दरवाजे के भीतर घुसने देता है, ये भी उसकी करुणा। उस प्रधान शिष्य ने कहा कि मेरी तुम्हें पता नहीं, दरवाजे के बाहर ही रहता था, वो कहता था लौट जा, फिजूल की बकवास लेके मत आ। अभी उसने मुझे देखा भी नहीं था, लेकिन जैसे मेरी छाया मुझसे पहले पहुंच जाती, जैसे मेरा वातावरण, मैं दरवाजे पर होता और उसे छू लेता, जैसे कोई गंध उसे खबर देती थी। तो इस नए शिष्य ने पूछा फिर तुमने कैसे उसकी अनुकंपा को पाया, उसके प्रसाद को पाया। उसने कहा वो तो मैं कभी ना पा सका, जब मैं मर ही गया तब मिला। उसने कहा भले मानुष पहले क्यों ना बताया, यही हम भी करेंगे। अब कहीं कोई ये कर सकता है। दूसरे दिन वो गया, जैसे ही गुरु ने उसकी तरफ देखा, इसके पहले कि गुरु कहे कि नहीं बकवास बंद, वो भड़ाम से गिर पड़ा, हाथ बंद कर दी, हाथ फैला दी, जैसे मर गया। गुरु ने कहा बहुत खूब, बिल्कुल ठीक ठीक किया। प्रश्न का क्या हुआ? उस शिष्य ने अब मजबूरी एक आंख खोली और कहा कि प्रश्न तो अभी हल नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा ना समझ, मुर्दे बोला नहीं करते और न मुर्दे ऐसे आंख खोलते, उठ भाग यहां से और किसी दूसरे से उत्तर मत पूछना। पूछे उत्तरों का क्या मूल्य है, वो तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारे अंतरतम से आना चाहिए, तुम उसमें मौजूद होने चाहिए। वो तुम्हारा गीत हो, वो तुम्हारा नाच हो, उसमें तुम पूरे लीन हो जाओ, वो जीवन हो कि मौत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकाश्यप उस दिन हंसा, कहना ठीक नहीं हंसा, हंसी फैल गई। देख के ये सारी दशा, बुद्ध का सामने होना और लोगों का अंधे बने रहना, सूरज का निकल आना और अंधेरे का न मिटना, देख के हंसा। ज्ञान बरसता हो और लोगों के घड़े चिकने हो और जल उन पर पड़ता ही न हो,
ये देख के हंसा, हंसता या न हंसता भूल उसे मिलना था। हंसी न हंसी तो संयोगी थी। बुद्ध ने फूल हर हालत दिया होता, हंसने की वजह से नहीं दिया, ध्यान रखना नहीं तो फिर भूल हो जाएगी। यही तो भूल है मन की। तब तुम सोचो कि हंसने की वजह से दिया, तो अगर अब दोबारा कभी ऐसा मौका हमें मिलेगा तो हम हंस देंगे, वहीं तुम चूक जाओगे। हंसने की वजह से नहीं दिया, हंसी के पीछे जो मौन था, हंसी के पीछे विचार भी हो सकता तब व्यर्थ हो गई। हंसी के पीछे जो मौन था, उस खिलखिलाहट के फूलों के पीछे जो परम शांति थी, वो हंसी निर्वाण का फूल थी। न हंसता तो बुद्ध उठ के गए होते, हंसा तो बुद्ध ने उसे बुला भी लिया। न हंसता तो बुद्ध खुद उठ के गए होते, खुद उसकी झोली में उड़ेल दिया होता। लेकिन इस तरह के प्रश्न तुम्हारे मन में उठते क्यों? तुम्हारे जीवन की समस्याएं हल हो गई कि तुम महाकाश्यप की चिंता में पड़े हो? तुम्हारा जीवन समाधान को उपलब्ध हो गया कि तुम इस तरह के बौद्धिक प्रश्न उठाते हो? मत गमाओ समय को इस भांति, अन्यथा कोई महाकाश्यप तुम पर भी हंसेगा, तुम्हारी मूर्ता पर भी हंसेगा। यहां मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं, कुछ हो सकता है। जब मैं मौजूद नहीं रहूंगा तब तुम रोओगे, अगर अभी न हंसे तो तब तुम रोओगे। इस मौजूदगी का उपयोग कर लो, इस मौजूदगी को पी लो, इस मौजूदगी को तुम्हारे रग रेसे में उतर जाने दो। व्यर्थ के ऊहापोह में मत पड़ो। मदरसे तक ही थी बहस आराइयां, पाठशाला तक तर्क तर्क जाल, प्रश्नों प्रश्नों के विस्तार। मदरसे तक ही थी बहस आराइयां, चुप लगी जब बात की तह पा गए। तो जो मैं कहता हूं उसको तुम तर्क मत बनाओ, अन्यथा तुम चूके। तब तुम किसी दिन पछताओगे कि इतने करीब थे और चूक गए। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि सोचने वालों ने गंवा दिया है और न सोचने वालों ने पा लिया है। कभी कभी क्या हमेशा ही ऐसा हुआ है? जो मैं कह रहा हूं वो इसीलिए कह रहा हूं ताकि चुप लग जाए और तुम बात की तह पा जाओ। तुम बात में से बात निकाल लेते हो, बात की तह नहीं पाते। एक बात से तुम दस दूसरी बातों पर निकल जाते हो। मैं करता हूं इशारा चांद की तरफ, तुम उंगली पकड़ लेते हो। तुम उंगली के संबंध में पूछने लगते हो, तुम चांद की बात ही भूल जाते हो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम्हें कहना पड़े, थी ना आजादे फना, किस दिए दिल ए ना खुदा, मौज तूफान से बची तो नजरे साहिल हो गई। किसी तरह तूफान से बच के आ भी गए तो किनारे से टकरा गए। थी ना आजादे फना, किस दिए दिल ए ना खुदा, मौज तूफान से बची तो नजरे साहिल हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि हम मेरे किनारे पे आके भी डूब जाओ। कोई एजाजे सफर था या फरेबे चश्मे शौक, सामने आकर नेहा आंखों से मंजिल हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल सामने आ गई हो और फिर भी तुम चूक जाओ। उस दिन बुद्ध के सामने बैठे लोग चूक गए। सामने आकर नेहा आंखों से मंजिल हो गई, आ गई थी सामने मंजिल, लेकिन जिसे पहुंचना है अगर वही तैयार न हो तो मंजिल भी क्या करे। सामने भी आ जाए तो भी तुम चूक जाओगे, क्योंकि सवाल मंजिल का नहीं तुम्हारा है। व्यर्थ की बातों में मत पड़ो। और यदि ऐसा होता तो कैसा होता, ये तो पूछो ही मत। इसकी तुम्हें व्यथना नहीं दिखाई पड़ती कि यदि रावण सीता को न चुराता तो रामायण का क्या होता? अब इसका कौन उत्तर दे, इसका कौन उत्तर दे, और उत्तर का क्या अर्थ है?
जो हो गया हो गया, उससे अन्यथा नहीं हो सकता था। अब तुम उसमें से और व्यर्थ की बातें मत निकालो, नहीं तुम सोचते ही रहोगे। प्रत्येक पल सोचने में गवाया बड़ा महंगा है, क्योंकि उसी पल में सब कुछ उपलब्ध हो सकता था। दूसरा प्रश्न, बुद्ध के देह में जीवित रहते उनका भिक्षु संघ एकता में रहा, लेकिन बुद्ध के देह विसर्जन के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, बुद्ध धर्म अनेक शाखाओं एवं प्रशाखाओं में बटने लगा। अज्ञानी संप्रदाय बनाते हैं, लेकिन बुद्ध के ज्ञानी शिष्य भी अनेक विभिन्न एवं विपरीत संप्रदायों में बट गए। कृपया इस घटना पर कुछ प्रकाश डालें। अज्ञानी संप्रदाय बनाते हैं, ज्ञानी भी संप्रदाय बनाते हैं, लेकिन अज्ञानी का संप्रदाय कारागृह हो जाता है और ज्ञानी का संप्रदाय मुक्ति की एक राह है। संप्रदाय का अर्थ होता है मार्ग, संप्रदाय का अर्थ होता है जिससे पहुंचा जा सकता है। ज्ञानी मार्ग से पहुंचते हैं, मार्ग बनाते भी, अज्ञानी मार्ग से जकड़ जाते हैं, पहुंचते नहीं। मार्ग बोझिल हो जाता है, छाती पर पत्थर की तरह बैठ जाता है। ज्ञानी मार्ग का उपयोग कर लेते हैं, अज्ञानी मार्ग से ही बंध जाते हैं। संप्रदाय में कुछ बुराई नहीं अगर पहुंचाता हो। संप्रदाय शब्द बड़ा बहुमूल्य, जिससे पहुंचा जाता है वही संप्रदाय है, लेकिन बड़ा गंदा हो गया। लेकिन गंदा हो जाने का कारण संप्रदाय नहीं है। अब कोई नाव को सिर पर रख के ढोए, इसमें नाव का क्या कसूर है? क्या तुम नाव के दुश्मन हो जाओ कि लोग नाव को सिर पर रख के ढो रहे हैं? मूल तो ढोएंगे ही, नाव न होती कुछ और ढोते हैं। मंदिर मस्जिद न होते लड़ने को तो किसी और बात से लड़ते हैं, कुछ और कारण खोज लेते हैं। जिन्हें जाना नहीं वे मार्ग के संबंध में विवाद करने लगते, जिन्हें जाना है वे मार्ग का उपयोग कर लेते, और जिसने मार्ग का उपयोग कर लिया वो मार्ग से मुक्त हो जाता है। जिसने नाव का उपयोग कर लिया वो नाव को सिर पर थोड़ी ढोता है, नाव पीछे पड़ी रह जाती, रास्ते पीछे पड़े रह जाते, तुम सदा आगे बढ़ते चले जाते हो। संप्रदाय में अपने आप कोई भूल भ्रांति नहीं है, भूल भ्रांति है तो तुम में। तुम तो औषधि को भी जहर बना लेते हो, बड़े कलाकार, तुम्हारी कुशलता का क्या कहना। जो जानते हैं वे जहर को भी औषधि बना लेते हैं, वक्त पे काम पड़ जाता है जहर भी जीवन को बचाने के। तुम्हारी औषधि भी जीवन की जानलेवा हो जाती है। असली सवाल तुम्हारा है। बुद्ध के जाने के बाद धर्म शाखा प्रशाखाओं में बटा, बटना ही चाहिए। जब वृक्ष बड़ा होगा तो पेड़ ही पेड़ थोड़ी रह जाएगा, शाखा प्रशाखाओं में बटेगा। पेड़ ही पेड़ बड़ी ठूठ मालूम पड़ेगी, उस वृक्ष के नीचे छाया किसको मिलेगी जिसमें पेड़ ही पेड़ हो? उससे तो खजूर का वृक्ष भी बेहतर, कुछ तो छाया थोड़ी बहुत कहीं पड़ती होगी। वृक्ष तो वही शानदार है, वही जीवित है जिसमें हजारों शाखाएं प्रशाखाएं निकलती। शाखाएं प्रशाखाएं तो इसी की खबर है कि वृक्ष में हजार वृक्ष होने की क्षमता थी, किसी तरह एक में समा लिया है। खर्च भी कुछ नहीं है, जितनी शाखाएं प्रशाखाएं हो उतना ही सुंदर, क्योंकि उतने ही पक्षी बसेरा कर सकेंगे, उतने ही पक्षी घोंसले बना सकेंगे, उतने ही यात्री विश्राम पा सकेंगे, उतनी ही बड़ी छाया होगी, उतनी ही गहन छाया होगी, धूप से तपे मानों के लिए आसरा होगा, सरल होगी। जो वृक्ष फूट रह जाए उसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ हुआ वृक्ष बांझ, उसमें फैलने की क्षमता नहीं। जीवन का अर्थ है फैलने की क्षमता,
सभी जीवित चीजें फैलती हैं, सिर्फ मृत्यु से।

मृत्यु सिकुड़ती है, जीवन फैलाता है, जीवन विस्तार है, एक से दो, दो से अनेक होता चला जाता है। परमात्मा अकेला था फिर अनेक हुआ, क्योंकि परमात्मा जीवित था। अगर मुर्दा होता तो अनेक नहीं हो सकता था। संसार को गाली मत देना, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आया तो समझोगे कि संसार परमात्मा की शाखाएं प्रशाखाएं, तुम भी उसी की शाखा प्रशाखा हो। इतना जीवित है कि चुकता ही नहीं, फैलता ही चला जाता है। वृक्ष भारत में बड़े प्राचीन समय से जीवन का प्रतीक रहा है। बुद्ध के वृक्ष में बड़ी क्षमता थी, बड़ा बल था, बड़ी संभावना थी। अकेली पीर से कैसे बुद्ध का वृक्ष चिपटा रहता, जैसे जैसे बड़ा शाखाएं प्रशाखाएं हुई। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में उन शाखाओं प्रशाखाओं में कोई विरोध न था, वे सभी एक ही वृक्ष से जुड़ी थी और एक ही जड़ पर जीवित थी। उन सभी का जीवन एक ही स्रोत से आता था, बुद्ध स्रोत थे। ज्ञानी ने इसमें कुछ विरोध न देखा, इसमें इतना ही देखा कि बुद्ध में बड़ी संभावना है। ये जरा हैरान की बात है, सारी मनुष्य जाति में बुद्ध ने जितनी संभावनाओं को जन्म दिया किसी दूसरे आदमी ने नहीं दिया। महावीर के वृक्ष में केवल दो शाखाएं लगी, दिगंबर श्वेतांबर बस, और उनमें भी कोई बहुत फासला नहीं है, क्षुद्र बातों का फासला है। कि कोई महावीर का श्रृंगार करके पूछता है, कोई महावीर को नग्न पूछता है। श्रृंगार के भीतर भी महावीर नग्न है और नग्न में भी उनका बड़ा श्रृंगार है, इसमें कुछ बड़ा फासला नहीं। उनकी नग्नता ही श्रृंगार है, अब और क्या सजाना है उनको। और सजाना तो ऐसे है जैसे कोई सांप पर पैर चिपका है, तो सांप अकेला बिना पैर के खूब चलता था, अब तुम और पैर चिपका के उसे खराब मत करो। ये तो उन पर और श्रृंगार करना ऐसे है जैसे कोई मोर को और रंगों से पोते, मोर वैसे ही काफी रंगीन था, अब तुम कृपा करके रंग खराब मत करो। महावीर की नग्नता में ही खूब श्रृंगार है, उन जैसी सुंदर नग्नता कभी प्रकट हुई तो फिर तुम्हारी मौज है, तुम्हारा मन नहीं मानता। इसलिए नहीं कि महावीर में कुछ कमी है, तुम्हारा मन बिना किए कुछ नहीं मानता, तुम कुछ करना चाहते हो करो भी क्या। महावीर जैसे व्यक्ति के सामने एकदम असमर्थ हो जाते हो, सुंदर कपड़े पहनाते हो, सुंदर आभूषण लगाते हो, ये तुम्हारी राहत है। महावीर का कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारे सब वस्त्रों के पीछे भी वे अपनी नग्नता में खड़े नग्न ही है। ऐसे छोटे छोटे फासले हैं। दिगंबर कहते हैं कि उनकी कोई शादी नहीं हुई, श्वेतांबर कहते हैं शादी हुई, क्या फर्क पड़ता है। दिगंबर कहते हैं उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, जब शादी ही नहीं हुई तो बच्चा कैसे हो। श्वेतांबर कहते हैं उनकी एक लड़की थी, पर क्या फर्क पड़ता है। महावीर में से क्या फर्क पड़ता है शादी हुई कि न हुई, ये तो फिजूल के विस्तार की बातें हैं। महावीर के होने का इससे क्या लेना देना है, शादी हुई हो तो ठीक, न हुई हो तो ठीक, जिसको जैसी मौज हो वैसी कहानी बना ले, लेकिन कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं होगा। जीसस के भी दो शाखाएं फूट के रह गई, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, कोई बड़ा विस्तार नहीं होगा। बुद्ध अनूठे हैं, अद्वितीय हैं, सैकड़ों शाखाएं हुई और प्रत्येक शाखा इतनी विराट थी कि उसमें से भी प्रशाखाएं हुई। कहते हैं जितना दर्शन के मार्ग अकेले बुद्ध ने खोले उतने मनुष्य जाति में किसी व्यक्ति ने नहीं खोले। बुद्ध अकेले समस्त प्रकार के दर्शनों का स्रोत बन गए। ऐसी कोई दार्शनिक परंपरा नहीं है जगत में जिसके समतुल परंपरा बुद्ध धर्म में ना हो। अगर तुम बुद्ध धर्म का पूरा इतिहास समझ लो तो बाकी सब धर्मों का इतिहास छोड़ भी दो तो कुछ हार जाना होगा, क्योंकि सारे जगत में जो भी कहीं हुआ है, जो विचार कहीं भी जन्मा है, वो विचार बुद्ध में भी जन्मा है। बुद्ध अकेले बड़े विराट वृक्ष, ये तो सौंदर्य की बात है, ये तो अहोभाव और उत्सव की बात है, इसमें कुछ चिंता का कारण नहीं है।
ये तो इतना ही बताता है कि बुद्ध में बड़ी संभावना थी। ज्ञानी ने तो उस संभावना का उपयोग किया, उसमें कोई झगड़ा न था। बिल्कुल विपरीत जाने वाली शाखाएं भी, एक पूरब जा रही है, एक पश्चिम जा रही, फिर भी एक ही तने से जुड़ी होती, विरोध कहां है? और उन दोनों का जीवन स्रोत एक ही जगह से आता है। एक बुद्ध ही फैलते चले गए सब में, इससे कुछ अड़चन न थी। लेकिन अज्ञानी अड़चन खड़ी करता है। अज्ञानी की अड़चन ऐसी है कि वो ये भूल ही जाता है कि सभी विरोध अलग अलग दिशाओं में जाती शाखाएं एक ही स्रोत से जन्मी है। मैंने सुना है एक गुरु के दो शिष्य थे। गर्मी की दोपहर थी, गुरु विश्राम कर रहा था और दोनों उसकी सेवा कर रहे थे। गुरु ने करवट बदली तो दोनों शिष्यों ने आधा आधा गुरु को बांट रखा था सेवा के लिए। बाया पैर एक ने ले रखा था, दाया पैर एक ने ले रखा था। गुरु ने करवट पड़ी तो बदली तो बाया पैर दाए पैर पर पड़ गया। स्वभाव तो झंझट खड़ी हो गई। गुरु तो एक है, शिष्य दो थे। उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान बांटा हुआ था। तो जब दाएं पैर पे बाएं पैर पड़ा तो जिसका दाएं पैर था उसने कहा हटा ले अपने बाएं पैर को, मेरे पैर पर पैर सीमा होती है सहने की, बहुत हो चुका, हटा ले। उस दूसरे का देखूं किसकी हिम्मत कि मेरे पैर को कोई हटा दे, सिर कट जाएंगे, मगर मेरा पैर जहां रख गया रख गया। ये कोई साधारण पैर नहीं, अंगद का पैर है। भारी झगड़ा हो गया, दोनों लठ लेके आ गए। गुरु इस उपद्रव सुन के उसकी नींद खुल गई। उसने देखी ये दशा, उसने जब लठ चलने के ही करीब आ गए, लठ चलने वाले थे गुरु पर, क्योंकि जिसका दाया पैर था वो बाएं पैर को तोड़ डालने को तत्पर हो गया था और जिसका बाया पैर था वो दाएं पैर को तोड़ डालने को तत्पर हो गया था। गुरु ने कहा जरा रुको, तुम मुझे मार ही डालोगे, ये दोनों पैर मेरे, तुमने विभाजन कैसे किया? अज्ञानी बांध लेता है और भूल ही जाता है कि जो उसने बांटा है वो एक ही व्यक्ति के पैर या एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। अज्ञानी ने उपद्रव खड़ा किया, अज्ञानी लड़े, एक दूसरे का विरोध किया, एक दूसरे का खंडन किया, एक दूसरे को नष्ट करने की चेष्टा की। जब संप्रदाय अज्ञानी के हाथ में पड़ता है तब खतरा शुरू होता है। ज्ञानी संप्रदाय को बनाता है, क्योंकि धर्म की शाखाएं प्रशाखाएं पैदा होती, जितना जीवित धर्म उतनी शाखाएं प्रशाखाएं। दुनिया से संप्रदाय थोड़ी मिटाने हैं, अज्ञानी मिटाने हैं। जिस दिन संप्रदाय मिट जाएंगे दुनिया बड़ी बेरौनक हो जाएगी। उस दिन गुरु बिना पैर के होगा, उसको फिर जैसे भिकमंगों को ठेले पर रख के चलाना पड़ता है ऐसे चलाना पड़ेगा। फिर वृक्ष बिना शाखाओं के होगा, न पक्षी बसेरा करेंगे न राहगीर छाया लेंगे। और जिस वृक्ष में पत्ते न लगते हों शाखाएं न लगती हों उसका इतना ही अर्थ है कि जगह सूख गई, अब वहां जीवन नहीं, जीवन छोड़ चुका उसे, उड़ गया। तुम पूछते हो बुद्ध के देह में जीवित रहते उनका भिक्षु संघ एकता में रहा? नहीं, ज्ञानी के लिए तो वो अब भी एकता में है। और तुमसे मैं कहता हूं अज्ञानी के लिए वो तब भी एकता में नहीं था जब बुद्ध जीवित थे, तब भी अज्ञानी अपनी तैयारियां कर रहे थे, तभी फिरके बटने शुरू हो गए थे। बुद्ध के जीते जी अज्ञानियों ने अपने हिसाब बांट लिए थे, अलग अलग कर लिए थे। बुद्ध के मरने से थोड़ी अचानक अज्ञान पैदा होता है, अज्ञानी तो पहले भी अज्ञानी था, वो कोई अचानक थोड़ी अज्ञानी हो गया। और जो अज्ञानी है बुद्ध के जीवित होने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। अज्ञान तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, बुद्ध क्या कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तो तुम्हें पड़ेगा, समझा सकता हूँ, समझना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर तुम न समझने को ही जिद किए बैठे हो, अगर समझने के लिए तुमने जरा भी तैयारी नहीं दिखाई है, तो बुद्ध लाख सिर पीटते रहे कोई परिणाम नहीं हो सकता।

0: Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन।
1: नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी। इसमें जिंदगी का ये सफर तय करते, कई रोल्स निभाते, कई बार एक सवाल बार बार उठता है कि कौन हूँ मैं। उस सवाल को हम दबा कर आगे बढ़ जाते हैं और हर रोल को फिर निभाने लगते हैं। लेकिन हमने जो ये सफर तय किया है उसमें इस सवाल को सामने लाए हैं और इस पूरे सफर में ये तलाशने की कोशिश की है। कई जवाब हमें मिले भी हैं, लेकिन हम उस पड़ाव पर पहुंचे थे कि किस तरह से जो हमारी ईगोज हैं, वो कई बिहेवियर्स जो हमारे होते हैं उनको बताती है कि वो अड़चन बन सकती है, और कैसे हम सुप्त अवस्था में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। जागना क्यों जरूरी है और जागा कैसे जा सकता है, यही आज तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी इस कड़ी में। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ है ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
2: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, बहुत कुछ हमने अपने बारे में जानने की कोशिश की है, जाना है कि ईगो क्या है। जिसे हम मानते थे कि ईगो है, वो कहीं ना कहीं अंदर के आंतरिक भय से जुड़ा था, अटैचमेंट से जुड़ा था, और अब ये भी जान गए हैं कि हम सोए हुए हैं। कहीं ना कहीं जागना जरूरी है।
2: जागना टू रियलिटी।
1: यस।
2: से अवेकन टू व्हाट? अवेयरनेस ऑफ व्हाट? अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस। अभी तक सोए हुए थे, मतलब सोचेंगे क्या सोए हुए थे, कि जो सत्य है उसकी तरफ जैसे मून उससे परे हटा हुआ था, आंखें बंद थी, तो जिसको हम कहते हैं अज्ञान की नींद में सोए हुए थे। नहीं कहते कि तीसरा नेत्र खुल गया, मतलब ज्ञान का नेत्र खुल गया, जो असलियत है, जो सत्यता है, जो अंदर एक प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में जागरूकता हो गई। तो नाउ क्योंकि अब प्रोसेस पता चल गया, अब उसको फॉलो करना शायद थोड़ा सा ईजी हो जाना चाहिए।
1: देखो सिस्टर शिवानी, जैसा आपने ये कहा कि किसके बारे में जागना है, क्योंकि हमें कई बार कहा जाता था, मुझे भी अगर मैं अपने आप को देखूं तो कहा जाता है कि खुद के बारे में अवेयर हो जाओ, अपने बारे में सोचो, मेडिटेट करो। ये सारे सवाल आते तो थे, सब कुछ तो था, लेकिन करना कैसे है? आज जब ये प्रोसेस समझ में आया है कि ये होता है हमारे अंदर, ना किस तरह से हमारा थॉट जो है वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता है, किस तरह से ईगो दो तरह की हो सकती है। हम हर्ट होने को, सेंसिटिविटी को अपनी, हम अपनी स्ट्रेंथ मानते थे, वो कहाँ किस तरह से हमारे भय का एक रूप होती
2: है, और कोई ना कोई एक अटैचमेंट है,
1: हाँ,
2: जो पकड़ी हुई है, वी हैव टू लेट गो,
1: लेट गो। लेकिन ये जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जो सुप्त अवस्था है, कि हम नहीं जानते कि भाई क्या है हम, उसको जागृत करने का प्रोसेस अब क्या है?
2: We will have to go through a few steps. मतलब ये सब कुछ जैसे आपने कहा हमें समझ पे भी आ गया, फिर भी सारा दिन में करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि थोड़ा सा उसको समय देना पड़ेगा। एंड वो समय देना मतलब क्या, आप देखो सवेरे से उठते हैं, इट बिगिन्स विद न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इस तरफ से रेडियो ऑन है, चौथी तरफ सब तैयार हो रहे हैं, शोर मच रहा है, एंड एक्चुअली जो सारा दिन हमारा बीतता है वो बहुत शोर में बीतता है। शोर नॉट नेसेसरली बाहर, लेकिन शोर अंदर। यू नो, इफ यू जस्ट एक मिनट के लिए डिटैच होकर सबसे पहले अपने मन की स्थिति को देखें, तो सारा दिन साइलेंस बहुत कम है। सारा दिन मन में ये करना है, ये करना है, जल्दी करो, यहाँ हुआ कि नहीं, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे तो ये करना था। द स्पीड ऑफ द माइंड इज वेरी फास्ट। अगर इतनी ज्यादा स्पीड होगी तो फिर रास्ते में कौन आ रहा है जा रहा है वो नहीं दिखाई देगा। यू नो, इफ यू आर गोइंग एट 120 तो यू विल नॉट रियली सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द जर्नी।
1: बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अस।
2: इनसाइड में
1: अंदर ही इतनी तेज स्पीड पे चल रहे हैं,
2: बहुत ज्यादा तेज है ना। आप देखो संकल्पों की गति इज अबाउट 25-30 थॉट्स पर मिनट, और आजकल हम बहुत ज्यादा नॉर्मल स्पीड पर भी नहीं है, वी आर स्लाइटली हायर स्पीड। आप देखो सड़क पर भी गाड़ी चलाने की एक स्पीड रखी जाती है ना, आज कितनी पुलिस खड़ी होती है कि जैसे ही आपने उस स्पीड को क्रॉस किया, स्टॉप। क्यों? जहां स्पीड बढ़ेगी वहां कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। मन की स्पीड इस टाइम कैसी है?
1: बहुत फास्ट है,
2: बहुत फास्ट है। एक संकल्प उसके बाद तुरंत दूसरा, मतलब देयर इज नो टाइम, इतना फास्ट है। और जितनी स्पीड ज्यादा है तो समझ लीजिए कि क्वालिटी ठीक नहीं है। आप देखो जब हम परेशान होते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, उसके बाद तो मन की स्पीड कैसे चलती है? क्यों कहा, अपने को ऐसा समझता है, सबके सामने बोल दिया, मेरा कुछ नहीं है क्या, मेरी सेल्फ, इट्स फास्ट। अगर किसी के लिए अच्छा सोचना है आप उसकी स्पीड देखिए, इट इज स्लो। तो पॉजिटिव थॉट्स विल ऑलवेज बी स्लोअर, एंड नेगेटिव थॉट्स आर ऑलवेज फास्टर. तो अगर बहुत स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन है कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है. तो अब अवेयरनेस चाहिए, तो पहली बात तो इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा. हम बहुत ज़्यादा नॉइज सारा दिन कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से, इंफॉर्मेशन, नॉइज, टेलीविजन, रेडियो, मीडिया, यू नो, जस्ट फिलिंग इट इन. जितना भरते जाएंगे उतना
1: हम खाली होते
2: जाएंगे. इट विल गो वेरी फास्ट.
1: इनफैक्ट मैंने हमने ये भी देखा है कि जैसे ही हम खाली होते हैं हम भागते हैं किसी नॉइज की तरफ.
2: हाँ,
1: बिकॉज़ हम खाली रहना नहीं चाहते.
2: हमें अभ्यास ही नहीं रहा कि दो मिनट अगर बैठ जाए. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन स्टार्ट इज बीच बीच में कुछ क्षण निकाल के जस्ट बी क्वाइट एंड नॉट बी क्वाइट जस्ट वर्बली. ना शांत रहना मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुख से चुप रहना, लेकिन आंतरिक.
1: तो क्या हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं उस टाइम?
2: सप्रेस नहीं करना और ना थॉट को बंद करना है, लेकिन देखना है इस समय. लेट्स डू इट राइट नाउ. जो सभी देख भी रहे हैं इस टाइम प्रोग्राम को, इस क्षण हम कर सकते हैं. जो कर रहे हैं, जैसे बैठे हैं, एक सेकंड के लिए जो कर रहे हैं वो रुक जाइए. जस्ट स्टॉप एंड अभी सिर्फ डिटैच होकर देखिए मेरे मन में इस समय कौन सा संकल्प चल रहा. एंड वेरी ऑफन वी विल फाइंड कि वो बहुत रेलेवेंट नहीं होगा इस टाइम. वो या तो पास्ट में होगा, कुछ थोड़ी देर पहले किसी से बात की होगी, कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, या वो आने वाले टाइम के बारे में प्लान कर रहा होगा, अभी ये करना है. वेरी रेयरली वी आर इन

0: नाउ इस क्षण का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा रहे होंगे, बैठे हैं बात कर रहे हैं, बैठे हैं प्रोग्राम देख रहे हैं, मन लेकिन पूरा पूरा उस बात को, जब हम जो बात अभी सुन रहे हैं उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना कहाँ पॉसिबल है। तो वो तभी होगा जब माइंड थोड़ा सा साइलेंट होगा, उस ब्लॉटिंग पेपर को क्लीन रखना पड़ेगा। वो ब्लॉटिंग पेपर इतना सैचुरेटेड रहता है कि उस पर कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रह जाती कि कुछ नया डाला जाए। तो इसका एक जेन्युइन अभ्यास अगर हम करना शुरू करें कि बीच बीच में जस्ट बी क्वाइट फॉर फ्यू मिनट्स, एक मिनट, दो मिनट, कुछ मत अभ्यास करें कि कुछ नहीं सोच रहे, बट एक्चुअली कुछ नहीं सोच रहे ऐसा नहीं होगा, लेकिन करना क्या है, सिर्फ देखना है कि मेरा मन क्या कर रहा है। जैसे हम बीच बीच में चेक करते हैं ना बच्चे क्या कर रहे हैं, बीच बीच में जो ऑफिस में सीनियर होगा वो एक राउंड मार के देखेगा कि सब लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, इसी तरह बीच बीच में चेक करना मन क्या कर रहा है, तो डिटैच हो जाएगा और डिटैच होके चेक कर लेगा ठीक काम कर रहा है, नहीं तो थोड़ा सा उसको प्यार से, अभी आपको इस टाइम ये नहीं सोचना है, अभी आपको ये सोचना है, ब्रिंग इट बैक।
1: ओके,
0: यू हैव टू टॉक टू योर माइंड, इट्स योर माइंड। अगर हम दूसरे को जाकर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप ऑफिस में एक हेड है, आप अपने ऑफिस में चक्कर लगा के सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अभी आपको ये नहीं करना ये करना, आप किससे बात कर रहे हैं? आप उनके मन से ही तो बात कर रहे हैं ना, कान सुनेगा मन ही तो उस चीज को परसीव करेगा। सबके मन से बात कर सकते हैं तो अपने मन से क्यों नहीं बात कर सकते?
1: अब अपने मन से, मेरे मन से, मैं, आई द सोल इज टॉकिंग,
0: क्या इट्स लाइक दिस, आई एम सिटिंग हियर एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन पे बात की थी तो मुझे कोई और चीज के बारे में पता चला, अब मैं यहाँ कुछ और बात कर रही हूँ आपसे और सोच कुछ और रही हूँ, तो मैं अपने साथ और आपके साथ धोखा है, यू नो, बिकॉज मेरा मन यहाँ होना चाहिए इस टाइम, उसको हम कंसंट्रेशन कहेंगे, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आराम से आपसे अभी बात करते करते कुछ और सोच सकती हूँ, लेकिन फिर हमारा वो जो रिलेशनशिप बनना चाहिए वो नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद कोई पूछता है, आर यू रियली लिसनिंग? ऑफ कोर्स आई एम लिसनिंग, एंड ऊपर ऊपर से वी विल गो यस यस आई एम लिसनिंग बट नो, एंड फिर हम सुनेंगे लेकिन उसको ठीक से ग्रहण नहीं करेंगे, जाकर कर कुछ और देंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइंड, मोस्ट ऑफ द टाइम द माइंड वॉज डूइंग समथिंग एल्स। ऑफिस में आप देखो कितनी बार होता है, मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया था ना, आपने सुना नहीं था उस टाइम, सुना तो था, कानों ने सुना था,
1: रजिस्टर नहीं हुआ।
0: दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। आई एम हियरिंग, कान सुन रहे हैं, लिसनिंग
1: समझ रहे हो,
0: तो दैट विल ओनली बी पॉसिबल अगर बीच बीच में हम चेक कर लें कि मन कहाँ है।
1: अच्छा, हम जब चेक कर रहे हैं तो जो विचार, जो संकल्प उसी वक्त चल रहा है उसी को देखें या पीछे जो गुजरा वक्त थोड़ा सा है?
0: अभी चेक करें अभी क्या चल रहा है, कुछ और चल रहा है, अपने आप से पूछे क्या इस टाइम ये इम्पोर्टेंट है, नहीं ये तो बीती हुई वाली बात है, अभी कुछ और करना है, इसके बारे में कब सोचे, शाम को सोचेंगे घर जाने के बाद, ठीक है शाम को हम इसके बारे में सोचेंगे, फुल स्टॉप। इट्स जस्ट दैट वी नेवर टॉक्ड टू आवर माइंड। अगर हमने किसी के साथ बात ही नहीं की, उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कैसे चलना है, तो वो अपने आप चल रहा है
1: हिसाब से जो उसे समझ में।
0: अगर ऑफिस में हम नहीं बताएंगे कि क्या कब करना है तो वो अपने हिसाब से करेंगे, तो हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, बीच बीच में स्टॉप करके चेक करना है। दैट इज व्हाट वी से, जस्ट बी क्वाइट फॉर सम टाइम, और थोड़े टाइम के बाद क्या है, मन को पता चल जाएगा काम करने का तरीका कैसा है, एक सिस्टम बन जाएगा और फिर वो मन उसी सिस्टम के अनुसार चलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ, एंड दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट स्टॉप, डिटैच, चेक, क्या सोच रहे थे, अच्छा ये वाली बात तो कल के लिए है ना, ये तो कल की मीटिंग में करना है, अभी ये, ओके, लिविंग इन द प्रेजेंट। किसी ने कुछ कह दिया, वो सुनकर घर पहुंच गए, ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, घर आ गए, घर में बच्चों के साथ है इस टाइम, वाइफ के साथ है, जितना थोड़ा समय मिलता है इट शुड बी क्वालिटी टाइम, यू नो वी टॉक अबाउट क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम यही है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली अवेलेबल नहीं है, मेंटली अभी भी मन सोच रहा है क्यों ऐसा डांटा, इतनी सी तो बात थी या व्हाटएवर, टेल द माइंड वो ऑफिस की बात है ना, और शायद उन्होंने जो किया वो ठीक ही किया था, जो भी किया था कल सोचेंगे ऑफिस जाने के बाद, एंड इट विल लिसन, गिव इट वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन, माइंड को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देना है। अगर हम मन को सिर्फ ये कहेंगे अभी नहीं सोचना, पर ये इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, कल सुबह 9 बजे आना,
1: तब सोचेंगे।
0: यस एंड इट इज सो परफेक्ट, वो कल सुबह 9 बजे आपको थॉट आ जाएगा।
1: अच्छा, इट लाइक हियर यू,
0: या इट इज लिसनिंग, व्हाट इज इट, इट इज प्रोग्रामिंग, एक इंस्ट्रक्शन फीड हो रही है। कंप्यूटर में भी रिमाइंडर फीड करते हैं ना, टुमारो मॉर्निंग 9 o'clock रिमाइंडर, और वो एग्जैक्ट 9 o'clock आ जाएगा। सेम टू द माइंड,
1: गुड, इट्स लाइक गुड एक्चुअली, वी कैन ऑलवेज ट्राई इट आउट,
0: लेट्स ट्राई करेंगे, वो प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी एंड इट विल हैपन। एक बार अगर सपोज उसने आपकी बात नहीं मानी, फिर आ गया, आपको कहा ना कल सुबह 9 बजे, फिर आ गया, क्या कहा था आपको कल सुबह 9 बजे, बस थोड़ा सा फिर इट्स डन।
1: ओके, That's nice.
0: It's very simple. It's very simple.
1: So okay.
0: But yeah. The thought should be, ये मेरी काम की चीज़ है ही नहीं. So stop. Why am I wasting my energy? Full stop. फिर आएगा thought, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है. It's wastage of energy. Stop. 2 बार 3 बार finished. नहीं, अगर नहीं stop किया,
1: तो आता रहेगा और वो convert करेगा फिर destiny में.
0: सिर्फ एक नहीं आएगा, इतनी chain आती है फिर उस thoughts के. इसलिए जहाँ अगर बीच बीच में रुकते हैं ना, तो थोड़ी सी भी क्वालिटी अगर दूसरी साइड पर जा रही है, तो हम उसको जल्दी से
1: वापस ले आते
0: हैं। तो पूरा दिन वेस्ट नहीं होता। कई बार हम अपनी चेकिंग करते हैं लेकिन दिन के एंड पे, बट बाय देन द डे इज ओवर।
1: सो लाइक इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ एक्चुअली यू नो लाइक इट्स अ टिप कि वी कैन ऑल यूज इट, इट्स अ प्रैक्टिकल टिप एक्चुअली।
0: बिल्कुल, सो सिंपल है, बीच बीच में थोड़ा सा क्वाइट हो जाए और अपने मन को देखे। दूसरी चीज जो बहुत सिंपल हमें करनी पड़ेगी, अटैचमेंट्स जो हमने देखी थी, लेट गो, लेट गो करना पड़ेगा।
1: नो, लेट गो टू द अटैचमेंट, बेसिकली
0: टू द अटैचमेंट,
1: सो दैट इज लाइक वी विल हैव टू गो डाउन, यू नो लाइक जो हमने पूरा प्रोसेस देखा कि जहां हमने ईगो की बात की, वो ऐसा बिहेवियर जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमारी ईगो को जनरेट कर रहा है। बिकॉज अभी ये मिथ भी तो जेल लेके जी रहे थे हम कि सेंसिटिविटी होना या हर्ट होना तो हमारी स्ट्रेंथ है, यू नो लाइक, और हम अपनी ईगो को कहीं अपनी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहे थे,
0: राइट।
1: तो वो जैसे रियलाइज हुआ, देन वी गो बैक टू द प्रोसेस,
0: सो वी हैव टू लेट गो। इवन ऑब्जेक्ट्स जो हम यूज करते हैं, लोग जिनके साथ हम रहते हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे, अभी भी वही चीज यूज करेंगे, वही फोन यूज करेंगे, लेकिन डिटैच्ड, ये मेरा है, यूज करने के लिए आया है, एक दिन ये फिनिश हो जाएगा। बट लेट गो, डोंट होल्ड ऑन टू इट। और बहुत चीज़ें जो हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर, उसको लेट गो करना
1: कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, या पास्ट में जो था वो इतना अच्छा था, वो कहाँ चला गया पास्ट,
0: दैट्स
1: वेरी डिफिकल्ट।
0: अच्छा या नेगेटिव भी,
1: हाँ
0: नेगेटिव को भी पकड़ के रखते हैं,
1: बहुत खराब था, मैंने कैसे जिंदगी गुजारी,
0: उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किसी ने कुछ एक सेंटेंस कह दिया, उसको कितने साल पकड़ के रख सकते हैं। Who will let it go? कौन था? आप खुद ही देखो, आप किसी को भी इस समय याद कर लीजिए जिसका आपका कोई बिटर मेमोरी आपके अंदर बैठी हुई है,
1: वो लिंगर है, अभी भी लिंगर है, इसका मतलब
0: अभी
1: कभी भी चाहो रिवाइव कर सकती हूँ।
0: और जितनी बार आप उसको रिवाइव करेंगे, आप अपने आप को कष्ट देते हैं।
1: Because we go through the same pain,
0: thought, feeling, attitude, everything,
1: and that chemical thing, I still remember that, you know, because pain is something which people at times do start enjoying.
0: और आपको पता है, कई बार जब शरीर को वो केमिकल नहीं मिला होता बहुत देर के लिए, और कोई आ भी नहीं रहा आसपास जो मुझे हर्ट कर रहा है, I just pick up something from the past.
1: पुराना कुछ नहीं, तभी मैं स्टोर करता रहता हूँ, करती रहती हूँ।
0: इतना सारा accumulated है कि fresh talk अगर नहीं भी मिला आज सारा दिन में, कि किसी ने कुछ आकर नहीं ऐसा कहा जिससे मुझे बुरा लगे, तो पास्ट का कितना सारा पड़ा। कोई भी एक इंसिडेंट उठा लीजिए, जस्ट 1 second इज नीडेड, आपने वो इंसिडेंट उठाया एंड दैट्स इट, यू गेट दैट सेम पेन एंड एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन, एंड देन यू आर लाइक, हाँ मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। वो जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सेल्फ सिंपथी, फिर वो शुरू हो गई।
1: वी वांट टू चेंज देम, एंड स्पेशली यू नो व्हेन वी फॉल इन लव, when we care for the other person, or maybe, you know, like now so I feel that all our belief systems have been actually wrong, maybe, you know, like standing on wrong aspects. It's like we feel that we are in love with that person, so that person has to become what we expect.
0: Want him to be. So, hum sara din jisko hum kehte hain, hum dusron ki script likhne ki koshish karte hain. Aapko aisa karna chahiye, aapko aise uthna chahiye, aise baithna chahiye, aise bolna chahiye, aise kaam karna chahiye. We are writing their script. Jitna hum dusre ko control karne ki koshish karenge, yahan pressure hai. Kyunki aap वैसे बनेंगे नहीं जैसे मैं चाहती हूँ, तो वो सारा दिन मेरी इनर जो कॉन्शियस है उसको डिस्टर्ब कर रहा है. फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हैं. आप देखो, करके देखना, एक दिन का ये एक्सपेरिमेंट है. डोंट कंट्रोल एनीबडी इन द होल डे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो जैसे हैं. इट डजेंट मीन कि हम किसी को डिसिप्लिन नहीं करेंगे. अब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डिसिप्लिन करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे. आप बहुत ज़्यादा उसको पकड़ कर फोर्सफुली अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते हैं. आप इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्पिरेशन देंगे, दैट्स ऑल. उसके बाद वो जैसा है यू विल हैव टू एक्सेप्ट. उससे आपकी इनर लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी, नहीं तो इट इज़ अ टर्मोइल. बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है. तो बी क्वाइट बीच बीच में, लेट गो जो भी अटैचमेंट्स हैं, एंड लेट पीपल बी. वो जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं. ये एक थॉट भी, ये जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट. लेकिन इफ आई से नहीं आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट. तो इट इज़ एक्सेप्टेंस. तो ये एक्सेप्टेंस भी हमारी इनर स्टेबिलिटी को बहुत अच्छा मेंटेन करके रख सकती है. जैसे ही हम ये तीन चीज़ें करना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि लेट गो और लेट बी जब कर लिया, इनर जो सारा जो सूत बहुत मूंझा हुआ है ना, वो सारा स्ट्रेटन आउट हो जाएगा. हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके बाद. यहाँ एकदम क्लैरिटी आने लगेगी, और जैसे ही वो आने लगेगी, फिर जो आपने कहा ना अंदर की आवाज़, वो सुनाई देने लगेगी. अंदर की आवाज़ मतलब, जब दूसरों के बारे में सोचना बंद करेंगे, दूसरों को कंट्रोल करना बंद करेंगे, तब तो कहीं अपना कोई प्रोसेस दिखाई देना शुरू कर रहा होगा. एंड इसको हम कहते हैं इंट्यूशन. अपनी सॉल्यूशंस खुद से. अभी पहले क्या था, इधर इतना कंफ्यूजन था तो दूसरों से पूछना पड़ता था, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए.
1: हाँ, बिल्कुल.
0: लेकिन सॉल्यूशन तो मेरे पास है, आपको तो मेरी प्रॉब्लम पता ही नहीं है. तो लेकिन यहाँ जब ये सब हट जाएगा तो क्लीन, Now I can see my own solution. एकदम स्पष्ट दिखाई देगा. तो we will be able to start listening. अंदर वो जो हमारी intuition है, वो हमारे से बात करना शुरू कर देती है. And then we really wake up. क्योंकि we are awake कि क्या हो रहा है. मतलब फिर क्या हो जाएगा, जो हमने शुरू में कहा कि सब कुछ करते हुए, लोगों से बात करते हुए, एक awareness क्या चल रहा है अंदर. अभी क्या होता है, हम गुस्सा कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, हर्ट हो जाते हैं, फिर जाके कहीं लगता है शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था. लेकिन जब एक अवेयरनेस में चलेंगे, गलती होगी, अभी भी बात करते करते मुझे आप पे गुस्सा आ जाए, लेकिन करते करते दे विल बी एन अवेयरनेस. ओके, नो दिस इज रॉन्ग, स्टॉप, चेक, चेंज फास्ट.
1: जैसे कहा जाता था कि भाई गुस्सा आ रहा हो तो आप 10 तक गिन लीजिए, या पानी पी लीजिए. लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल. वो हो ही नहीं पाता था,
0: वो हो नहीं पाता
1: था, क्योंकि जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा.
0: और फिर वो एक बाह्य पुरुषार्थ था ना, आप बाहर से पानी पी रहे थे, बट द आइडिया वाज यही कि गिव योरसेल्फ अ लिटिल गैप टू सी. लेकिन अब क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा क्लीन अंदर से चल रहे हैं, आप अवेयर हो जाते हैं कि हाँ नहीं, गाड़ी रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है, स्टॉप, राइट लेन पर उसको लेके जाना है, एंड इट विल गो. तो यू वेक अप टू द प्रोसेस दैट्स गोइंग ऑन इनसाइड. आप कंटिन्यूसली अवेयर हो जाएंगे. जैसे किसी को क्रिटिसाइज किया, तुरंत अवेयरनेस होगी, क्या डर था मुझे, किस लिए मैंने इनको क्रिटिसाइज किया, अच्छा मुझे ये डर था,
1: प्रोसेस शुरू हो जाएगा अंदर तलाश में.
0: मुझे किस बात का डर था, नहीं छोड़ दिया, तो फिर क्रिटिसिज्म बंद. तो बाह्य लेवल से हम नहीं कर सकते क्रिटिसाइज नहीं करना, क्रिटिसाइज वो नहीं होगा अनलेस माय दैट इनर प्रोसेस गेट्स सिंप्लीफाइड. तो अब अवेयरनेस आएगी, अब आउटर बिहेवियर और इनर प्रोसेस
1: के बीच का जो
0: हार्मनी. अभी क्या हो रहा था, इनर प्रोसेस चल रहा था, लेकिन इतना ऊपर कंफ्यूजन था, कुछ समझ में नहीं आता था, दिखाई नहीं देता था, आउटर बिहेवियर में वो सिर्फ आता जाता था. क्वाइट हो गए, साइलेंट कर दिया, अब दिखाई देता है. एंड देन वी वेक अप. एंड सबसे पहली चीज, जब हम वेक अप करते हैं तो हमें पता चलता है कि वी हैव अ चॉइस एट एवरी स्टेप. वी हैव अ चॉइस कि हमें कैसे बिहेव करना, हमें क्या बोलना है। एंड ये इतनी डीप रियलाइजेशन होती है कि हमें पता चलता है कि एक्चुअली कोई हैबिट्स एक्चुअली होती ही नहीं है। हम जो कहते हैं ना जी ये तो मेरी आदत है, हमें एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, आपने इस तरह से क्यों बोला, जी मेरी आवाज़ ही ऐसी है, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा, ये तो मेरी आदत है। आदत मतलब ऑटोमेटिक। अब हम ऑटोमेटिक नहीं है, आदत क्या होगा, कोई चॉइस नहीं है, लेकिन अब तो हमारे पास चॉइस है।

0: स्टार्ट लिसनिंग, वेक अप एंड नो योरसेल्फ. जो हमने पहले भी देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को जानना कि ये कौन कर रहा है, ये किसका प्रोसेस है, कौन अंदर काम कर रहा है. और सारा दिन याद रखना मैं कौन. जब हम क्वाइट भी हो जाते हैं, क्वाइट होना मतलब यही संकल्प, मैं कौन जो ये कर रहा है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा. उसने इन्होंने आकर ऐसा कुछ कह दिया, लेकिन मैं कौन. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते. चेंज्ड सो एवरी स्टेप वी विल बी एबल टू डू विद दैट.
1: दिस अ होल प्रोसेस एक्चुअली. बट देन अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से कुछ आकर होगा. इट इज विद इन अस. यू नो, सबसे पहले आपने बात यही कही कि क्वाइट, शांति, एक चुप रहकर सुनने की जरूरत है.
0: अंदर से चुप. कई बार हम बाहर बहुत शोर में हो सकते हैं, लेकिन अंदर चुप. यू नो, नहीं तो लोग बोलेंगे जी क्या करे.
1: हाँ.
0: हमेशा ही आवाज है चारों तरफ, बट इट्स नॉट दैट नॉइज, इट्स इंटरनल.
1: इंटरनली यू नो, लाइक हम और वो सुनने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है मेरे अंदर. एंड देन यू सेड कि डिटैचमेंट, लेट गो. एंड थर्ड इज लेट बी, लेट पीपल द वे दे आर. सो इन थिंग्स
0: बहुत लाइफ इजी हो जाएगी इफ वी लेट पीपल बी द वे दे आर. सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पर आ रही है.
1: बिल्कुल,
0: बहुत ज्यादा.
1: ये किस तरह से इसको एहसास करना है, ये पूरा प्रोसेस है. बट देन इट डस टेक टाइम एक्चुअली.
0: यू बिगिन, आप शुरू कीजिए कोई भी चीज. आपने शुरू कर दी, इट्स बिगन. इट्स लाइक हमें उठने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जब नींद खुली, इट्स बिगन.
1: लेकिन मुझे दिन भर में बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे ये करना है.
0: थोड़ा सा अटेंशन तो रखना पड़ेगा. थोड़े टाइम के बाद इट्स नेचुरल. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे पानी पीना. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे आराम करना है. करना ही है, नहीं तो शरीर नहीं चलेगा. इसी तरह मुझे मन को बीच बीच में आराम देना है. दैट इज बी क्वाइट, नहीं तो वो थक जाएगा. थोड़े टाइम के बाद नेचुरल.
1: बिल्कुल. ये जो हमने पूरी एक यात्रा तय की है और जागने तक के प्रोसेस पर आए हैं, ये एक बात समझ में आती है कि ये जिंदगी की शुरुआत में ही अगर समझ ले जाए तो हम इतना लंबा सोते हुए वक्त नहीं गुजार देंगे. तो सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लगा ये जो पूरी हमारी बातचीत रही. बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू.
1: आज हमने ये समझा कि हम जाग सकते हैं, इतनी आसानी से जागा जा सकता है. सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कुछ क्षणों की चुप्पी बहुत ज़रूरी है. सुनना बहुत ज़रूरी है. सुनना अपने अंदर कि क्या हमारे अंदर चल रहा है, क्या हम कह रहे हैं, या जो भी हमारे थॉट आ रहे हैं. और उसके बाद लेट द वे पीपल आर, लेट बी. जिस तरह से हैं उन्हें वैसे ही रहने दें और हम भी लेट गो कर दें. यानी जिसके साथ हम अटैच हो जाते हैं उन्हें हम जाने दें. शायद एक बात एक और कहना चाहेंगे सिस्टर शिवानी कि कहा जाता है कि जो अपना है वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा.
0: They will come back.
1: और जो कभी था नहीं आपका, उसको आप कितना भी रोक लीजिए.
0: तो ये सब फिलोसफिकली हमें पता होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में
1: बहुत मुश्किल है. नमस्कार.